मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 4 अक्टूबर 2026। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:57 और 16 सेकंड हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा। इस सभा में आपके साथ है आपकी रेडियो मित्र स्मिता। आप सभी को हमारा नमस्कार, सुप्रभात।

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 लोग पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। भारत ने पाकिस्तान से इन घटनाओं और नशीले पदार्थों

0: की तस्करी की जांच करने और अपनी सीमा सुरक्षा बलों की भूमिका पर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करने और अपनी तरफ से अवैध आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इनके लिए नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी जल संसाधन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उल्लाका ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह में पारंपरिक औपचारिक ज्योति प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ से फोन पर बात की और उनके साहस की तारीफ की। उन्होंने श्री स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। नेतन्याहू ने कैप्टन मच्छर के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की और उनके परिवार को भी शुभकामनाएं दी। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। इन केंद्रों में इन भाषाओं पर उच्च स्तर का शोध किया जाएगा। साथ ही इनके साहित्य और भाषाई विरासत को सुरक्षित रखने और डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने पर भी कार्य किया जाएगा। ये उत्कृष्टता केंद्र असम के तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल के विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे के स्नातकोत्तर डेक्कन कॉलेज और अनुसंधान संस्थान, ओडिशा के केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात के केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल सरकार मायापुर में स्थित इस्कॉन मुख्यालय को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसके अंतर्गत इस्कॉन मंदिर के आसपास करीब 2100 बीघा जमीन पर विकास कार्य किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने हाल ही में मंदिर का दौरा किया और अधिकारियों तथा इस्कॉन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार नवद्वीप को स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत विकसित करने की भी योजना बना रही है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य में कॉफी की खेती का विस्तार करने, उत्पादकता और कॉफी बीन्स की गुणवत्ता बढ़ाने तथा मजबूत मूल्य श्रृंखला के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया और राज्य के कृषि विभाग द्वारा आयोजित हिल्स टू कप कॉफी कार्यशाला में कहा कि राज्य सरकार कार्यशाला में दिए गए सुझावों पर आगे कार्रवाई करेगी और कॉफी उत्पादकों को हर संभव सहायता देगी। एशिया खेल आज भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न होंगे। समापन समारोह जापान के नागोया सिटी मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होगा। भारतीय समय के अनुसार ये कार्यक्रम शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना में आइए सबसे पहले सुनते हैं समूह स्वर में देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान। वंदना में आइए अब सुनते हैं हरिओम शरण और नंदनी शरण की आवाजों में ये भक्ति रचना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शंकर महादेवन और साथियों के स्वरों में ये भक्ति रचना। वंदना में आइए अब सुनते हैं श्यामल मित्रा की आवाज़ में ये शब्द।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्यामल मित्रा की आवाज में ये शब्द। वंदना का समापन अब हम कर रहे हैं उषा अमोनकर की आवाज में गाए इस भक्ति रचना के साथ।

उषा अमोनकर के गाए इस भक्ति रचना के साथ ही आज की वंदना यहीं संपन्न होती है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। चिंतन के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं महात्मा गांधी एक यात्रा विषय पर सुमित गौतम के विचार।

0: दिनों तक। जब सत्य लड़खड़ाता है तो उसे सहारा देती है एक लाठी, वो लाठी है गांधी। जब बुद्ध मुस्कुराते हैं वो मुस्कुराहट है गांधी। भारतीय इतिहास का एक समूचा कालखंड है गांधी। सभी अनुत्तरित प्रश्नों के जवाब है गांधी। गांधी एक मनुष्य नहीं, एक यात्रा, एक सतत यात्रा। आइए चले इस यात्रा में।
1: काका कालेलकर ने महात्मा गांधी से अपनी मुलाकात के बारे में लिखा था, जब मैं पहले पहल गांधी जी से मिला और उन्होंने अपने आश्रम में दाखिल होने के लिए मुझे आमंत्रित किया तो मैंने कहा, आपकी अहिंसा पर अभी तक मेरा पूरा विश्वास नहीं जमा है। अहिंसा में जीवन परमानुकूल है, उन्नतिकारक है, इतना तो मैं देख सकता हूँ, उसके प्रति मेरा आकर्षण भी है, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि अहिंसा स्वराज्य दिलवाएगी। स्वराज्य मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है, उसके लिए मैं हिंसा करने को भी तैयार हो जाऊंगा और बाद में चाणक्य की भांति प्रायश्चित भी कर लूंगा। ऐसी हालत में आप मुझे अपने आश्रम में कैसे ले सकते हैं? गांधी जी मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे विचार हैं वे ही सारी दुनिया के हैं। तुमको आश्रम में ना लूं तो किसे लूं? मैं जानता हूं कि बहुमत तुम्हारा है, लेकिन मैं सुधारक हूं, आज अल्पमत में हूं, अतः मुझे धैर्य से राह देखनी चाहिए। सुधारक अगर बहुमत की बात बर्दाश्त ना करे तो दुनिया में उसी को बहिष्कृत होकर रहना पड़ेगा। इस जवाब के बाद मेरे पास कहने को बचा ही क्या था। कभी किसी ने गांधी जी से पूछा, आपकी राय में जीवन में विनोद का स्थान कितना हो सकता है? गांधी जी ने कहा, आज तो मैं महात्मा बन बैठा हूँ, लेकिन जिंदगी में हमेशा कठिनाइयों से लड़ना पड़ा है, कदम कदम पर निराश होना पड़ा है। उस वक्त अगर मुझ में विनोद ना होता तो मैंने कब की आत्महत्या कर ली होती। मेरी विनोद शक्ति ने मुझे निराशा से बचाया है। गांधी जी ने सेवाग्राम की अपनी कुटी में किसी दार्शनिक का बेशकीमती वाक्य टांग रखा था, जब आपका पक्ष सही है तब मिजाज खोने की जरूरत ही नहीं, जब आपका पक्ष सही नहीं है तब आप मिजाज खोने का खतरा मोल नहीं ले सकते। गांधी जी प्रेम को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग मानते थे। वह कहते थे, दूसरों के साथ तादाद में स्थापित करके और एकात्म होने की अभिलाषा ही प्रेम है। ऐसी अभिलाषा सदैव सत्कर्मों की प्रेरणा जगाती है। प्रेम ही मानव जीवन का सर्वोपरि और अनुपम धर्म है। आपके अहिंसक प्रतिरोध की धुरी यही प्रेम है। मुझे यह महसूस कर हार्दिक प्रसन्नता हुई। परमात्मा आपको शक्ति, धैर्य और संकल्प दे। गांधी जी ने प्रार्थना को प्रेम का मूल बताया है। वह कहते हैं कि मैं अपना कोई काम बिना प्रार्थना किए नहीं करता। मनुष्य स्खलनशील है, वह कभी निभ्रांत नहीं हो सकता। जिसे वह प्रार्थना का अंतर समझता है, संभव है वह उसके अहंकार की प्रतिध्वनि हो। अचूक मार्ग दिखाने के लिए मनुष्य का अंतःकरण पूर्ण निर्दोष और दुष्कर्म करने में असमर्थ होना चाहिए। गांधी जी स्वयं को समझने और बनाने पर पूरा जोर देते थे। उनका कहना था, अपनी अल्पता का दर्शन करना महान बनने का आरंभ है। अलग पड़ा हुआ समुद्र बिंदु अपने को समुद्र कहकर सूख जाएगा, परंतु वह अपनी बिंदुता स्वीकार करे तो वह समुद्र की ओर प्रयाण करेगा और उसमें लीन होकर समुद्र बन जाएगा। गांधी जी ने एक जंतर दिया है, उसमें वो कहते हैं, मैं तुम्हें एक जंतर देता हूँ। जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम तुम पर हावी होने लगे तो यह कसौटी आजमाओ। जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुंचेगा? क्या उससे वह अपने ही जीवन और भाग्य पर कुछ काबू रख सकेगा? यानी क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज मिल सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है? तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम समाप्त हो रहा है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन के अंतर्गत महात्मा गांधी एक यात्रा विषय पर सुमित गौतम के विचार। वाचक स्वर सुमित गौतम का था। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ।

अयोध्यापुरी में श्री राम के राज्याभिषेक की सभी तैयारियां बड़े उत्साह के साथ की जा रही हैं। कुलगुरु मुनिवर वशिष्ठ जिस व्यक्ति को जो काम करने की आज्ञा देते हैं वो पल भर में ही हो जाता है, मानो उस व्यक्ति ने वो काम पहले से ही कर रखा हो। राज्याभिषेक का समाचार सुनते ही पूरे अवध में बधावे बजने लगे। अयोध्या के महल में श्री राम तथा सीता जी को अंग फड़कने के साथ शुभ शकुन की सूचना मिलने लगी। इन शकुनों को वे भरत के, जो अपने ननिहाल गए हुए थे, अयोध्या आगमन की सूचना का संकेत मानते हैं। रनिवास में हर्षोल्लास व्याप्त है। जिस सेवक ने अंतपुर में सबसे पहले राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनाया उसे ढेर सारे आभूषण तथा वस्त्रों का पुरस्कार मिला। रानी सुमित्रा ने रत्नों के मनोहर चौक पुराए तो माता कौशल्या ने ब्राह्मणों को बुलाकर दान दक्षिणा दी। ग्राम देवी देवताओं तथा नागों की पूजा की और पुत्र श्री राम के कल्याण का वरदान मांगा। अवध नरेश ने मुनिवर वशिष्ठ को आमंत्रित कर उनसे श्री राम को समयोचित उपदेश देने की प्रार्थना की।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कृषि चर्चा। आज की सामयिक चर्चा का विषय है बकरी पालन लाभकारी व्यवसाय। जानकारी दे रहे हैं सोहन सिंह।
1: किसान भाइयों, बकरी पालन व्यवसाय के रूप में करें। बकरी को गरीब की गाय भी कहा जाता है। बकरी के दूध में पौष्टिक गुण होने के साथ साथ लौह तत्व की अधिकता, प्रोटीन और वसा की मात्रा लगभग माँ के दूध के बराबर पाई जाती है। बकरी के दूध में वसा के कण छोटे छोटे कणों के रूप में पाए जाते हैं, जिससे यह दूध गाय भैंस की तुलना में शीघ्र पाचन

0: होता है। जो व्यक्ति दमा और खांसी रोग से पीड़ित होते हैं, उनके लिए बकरी का दूध दवा का कार्य करता है। बकरी गाय और भैंस की अपेक्षा आकार में छोटी होती हैं, इसलिए आवास व्यवस्था बनाने में अधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती है और कम पूंजी में व्यवसाय आरंभ किया जा सकता है। बकरियों की यदि सही तरह देखभाल की जाए और उन्हें संतुलित आहार दिया जाए तो बकरियां शीघ्र ही आय का स्रोत बन जाती हैं। बकरियों की प्रमुख रूप से दो प्रजातियां पाई जाती हैं, जमुनापारी और बरबरी। जमुनापारी बकरियां अक्सर सफ़ेद रंग के साथ साथ काले और कत्थई धब्बों के रूप में पाई जाती हैं। इनका आकार बड़ा और कान बड़े लटके हुए होते हैं। पिछले पुट्ठों पर घने और लंबे बाल पाए जाते हैं। ये बकरियां दूध और मांस उत्पादन दोनों के लिए उपयुक्त होती हैं। इनका औसत दूध उत्पादन 2 से 3 किलोग्राम तक होता है। बरबरी बकरियां प्रमुख रूप से दूध उत्पादन के लिए ही पाली जाती हैं। बकरी खरीदते समय बकरी की उम्र लगभग 3 वर्ष हो, माथा लंबा मध्यम चौड़ाई वाला हो और माथे पर घने बाल न हो, आंखें बड़ी और चमकीली हो। जिस उद्देश्य से बकरी पालन करना चाहते हैं, सुविधा अनुसार नस्लों का चयन करना चाहिए और स्थिति के अनुसार जितनी बकरियों को सफलतापूर्वक पालन पोषण कर सकें, शुरुआत कम बकरियों से करें और धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। बकरियों के लिए आवास व्यवस्था इस प्रकार बनानी चाहिए कि बकरियों को सर्दी, गर्मी, वर्षा और जंगली जानवरों से बचाव किया जा सके। साथ ही आवास ऐसी जगह पर हो जहां पर पानी न ठहरता हो, क्योंकि बकरियां कीचड़ और गीलापन बिल्कुल पसंद नहीं करती। आवास ऐसी जगह पर बनाएं जहां पर स्वस्थ हवा और प्रकाश का आवागमन होता रहे। बकरियों को स्थान का अभाव महसूस न हो। जहां पर बकरियों को रखते हैं वहां पर लगातार साफ सफाई करते रहें। नियमित अंतराल पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते रहें, जिससे किलनियाँ, मक्खी, मच्छर पैदा न होने पाएं। अधिक ठंडी और अधिक गर्मी से बकरियों का बचाव करें। संतुलित और सुपाच्य आहार दें, स्वच्छ और ताज़ा पानी पिलाएं। अंतः परजीवियों से बचाव के लिए समय समय पर दवाएं पिलाते रहना चाहिए। बकरियों में रोगों से बचाव के लिए समय समय पर टीकाकरण करवाते रहना चाहिए। यदि बकरियों की चाल में परिवर्तन दिखाई दे, भूख कम हो जाए, नथुने और थूथन सूखने लगे, नाड़ी की धड़कन कम या अधिक हो जाए, श्वसन गति में अंतर आ जाए, गोबर और मूत्र में परिवर्तन दिखाई दे, तो तुरंत ही पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए और रोग की रोकथाम का प्रबंध करना चाहिए। बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो कहीं भी और किसी भी मौसम में आसानी पूर्वक किया जा सकता है। अगर बकरियों की सही तरह देखभाल की जाए तो उन्हें जीवित रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं, उनसे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और आर्थिक आय का एक स्रोत स्थापित कर सकते हैं।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि चर्चा। आज की सामयिक चर्चा का विषय था बकरी पालन, लाभकारी व्यवसाय। जानकारी दे रहे थे सोहन सिंह। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है सूचना परक कार्यक्रम दर्पण।

0: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 बजे तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
1: प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें मुख्य हैं थर्माकोल से बनी प्लेट,

कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से, इसके अलावा निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, साथ ही 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, हमारी धरती को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाएं।

0: धरती बाकी यही पुकार, वृक्ष लगाओ बारंबार, मिलजुल कर पेड़ लगाओ, वातावरण को स्वच्छ बनाओ, धरती पर हरियाली लाओ, जल थल वायु अग्नि और आकाश, इन पांच तत्वों से ही बनता है हमारा पर्यावरण। आइए इस पर्यावरण को हरा भरा बनाएं, वृक्ष लगाएं।
1: रक्तदान जीवन का उपहार है, आइए रक्तदान करें, जीवन दान करें। रक्तदान से किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती। 18 से 65 वर्ष तक उम्र और 45 किलो अथवा इससे अधिक वजन का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति हर 3 माह में रक्तदान कर सकता है। रक्तदान एक पीड़ा रहित प्रक्रिया है। महिलाएं भी रक्तदान कर सकती हैं। रक्तदान किसी को जीवन और स्वयं को आत्मसंतोष प्रदान करता है। रक्तदान करने के लिए शासकीय अथवा रेड क्रॉस सोसाइटी के ब्लड बैंक में संपर्क करें।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
2: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
4: ए भाई,
5: सड़क पर चलते समय अपने वाहन की गति नियंत्रित रखें। किसी भी प्रकार का स्टंट करने की कतई कोशिश न करें। हो सकता है आप कुशल चालक हों, लेकिन दुर्घटना सिर्फ हमारी गलती से नहीं होती, दूसरों की लापरवाही भी हादसों का कारण होती है। दाहिने या बाएं मुड़ते समय इंडिकेटर का प्रयोग अवश्य करें। खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें।
4: ए भाई, जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं।
6: आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: संगणकीयकरणाय उच्चशैक्षणिक अनुसंधानाय ज्ञानस्य च व्यापक प्रचाराय समर्पित संस्थागत सहयोगः लप्स्यते। एकोनविंशतितमः प्रवासी भारतीय दिवस समारोहः आगामी वर्षस्य जनवरी मासस्य सप्तमदिनांकात् नवमदिनांकं यावत् पश्चिमबंग राज्यस्य कोलकाता नगरे समायोजयिष्यते। अस्य महाधिवेशनस्य उद्घाटनं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विधास्यति। तत्र हि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन सत्रे अध्यक्षतां वहन्ति, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कारान् प्रदास्यति। सम्प्रति एषः कार्यक्रमः आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
1: विशदवृत्तान्ताय एक्स् माध्यमे @AIR न्यूज अलर्ट्स् इत्यनुगच्छन्तु। यूट्यूब मञ्चे च न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल वाहिन्याः अनुग्राहकाः भवन्तु।
0: लोकसभाध्यक्षेण ओम बिरला इत्यनेन मन्त्रालयानुगुणं विभिन्नानां संसदीय समितीनां पुनर्निर्माणं विहितम्। भाजपा सांसदः भर्तृहरि महताबः वित्त समित्याः, कांग्रेस सांसदः शशि थरूरः विदेश कार्य समित्याः, सुधीर गुप्तः च रेल समित्याः अध्यक्षत्वेन नियुक्ताः। तथैव चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन खाद्य प्रसंस्करण समित्याः, राधामोहन सिंहः रक्षा समित्याः, राजीव प्रताप रूड़ी जल संसाधन समित्याः, सप्तगिरी उल्का ग्रामीण विकास पंचायती राज समित्याः, निशिकांत दुबे च संचार सूचना प्रौद्योगिकी समित्याः अध्यक्ष पदम् अलंकरिष्यन्ति। अद्य नवदेहल्यां पंचम कौटिल्य आर्थिक सम्मेलनं संबोधयन्ती वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन न्यगादीत यत् गत दशके वित्तीय संयमस्य आधारभूत संरचना निवेशस्य बैंकिंग परिष्काराणां वस्तु सेवा करस्य अथ श्रम संहितानां सुदृढ़ क्रियान्वयनेन भारतस्य आर्थिक स्थैर्यं अतीव सुदृढ़ं अभवत्। वित्तमंत्री अब्रवीत यत् विगत चतुर्षु वर्षेषु वैश्विक संकटेषु सत्सु अपि भारतस्य आर्थिक मूल तत्वानि सर्वथा अक्षुण्णानि सन्ति। इस्राइल प्रधानमन्त्रिणा बेंजामिन नेतन्याहू वर्येण आगामि स्वातन्त्र्य महोत्सवे मंगलदीप प्रज्वालयितुं भारतीय वैमानिकः कैप्टन स्मिथ मच्छारः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च सगौरवम् आहूतौ। दूरवाणी संभाषण वेलायां नेतन्याहू महोदयेन कैप्टन मच्छारस्य वीरतायाः भूरिशः प्रशंसा विहिता। स च भारत इज़राइल देशयोः धीरनायकत्वेन उद्घोषितः। परंपरागत रूपेण एतत् मंगल ज्वाला प्रज्वालनस्य गौरवं केवलं इज़राइल नागरिकेभ्यः एव आरक्षितं भवति, येन एतत् आमन्त्रणम् अतीव दुर्लभं विशिष्टं च मन्यते। जापान देशस्य नागोया नगरस्य क्रीडांगणे अद्य सायंकाले षड्वादने आईची नागोया एशियाई क्रीडायाः भव्यं समापनं भविष्यति इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इनके नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी जल संसाधन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान

0: के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 लोग पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। भारत ने पाकिस्तान से इन घटनाओं और नशीले पदार्थों की तस्करी की जांच करने और अपनी सीमा सुरक्षा बलों की भूमिका पर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करने और अपनी तरफ से अवैध आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। इन केंद्रों में इन भाषाओं पर उच्च स्तर का शोध किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता प्रदान करेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मछार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह में पारंपरिक औपचारिक ज्योति प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ से फोन पर बात की और उनके साहस की तारीफ की। उन्होंने श्री स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। श्री नेतन्याहू ने कैप्टन मछार के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की और उनके परिवार को भी शुभकामनाएं दी। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले साल 7 से 9 जनवरी तक पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी के सम्मान में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल सरकार मायापुर में स्थित इस्कॉन मुख्यालय को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसके तहत इस्कॉन मंदिर के आसपास करीब 2100 बीघा जमीन पर विकास कार्य किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने हाल ही में मंदिर का दौरा किया और अधिकारियों तथा इस्कॉन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार नवद्वीप को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकसित करने की भी योजना बना रही है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य में कॉफी की खेती का विस्तार करने, उत्पादकता और कॉफी बीन्स की गुणवत्ता बढ़ाने तथा मजबूत मूल्य श्रृंखला के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया और राज्य के कृषि विभाग द्वारा आयोजित हिल्स टू कप कॉफी कार्यशाला में कहा कि राज्य सरकार कार्यशाला में दिए गए सुझावों पर आगे कार्रवाई करेगी और कॉफी उत्पादकों को हर संभव सहायता देगी। एशियाई खेल आज भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न होंगे। समापन समारोह जापान के नागोया सिटी मिजुहू पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होगा। भारतीय समय के अनुसार ये कार्यक्रम शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 7:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ विशेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब से कुछ ही देर बाद यानी सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 8:30 पर आप आनंद ले सकेंगे लोक संगीत के कार्यक्रम का। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे फूल सिंह गौतम के गाए कुछ लोकगीत। सुबह 9:00 आप सुनते हैं सूचनाओं और समाचारों पर आधारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। 9:30 पर आप सुनेंगे साप्ताहिक सिंधी कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

सुबह 10 बजे आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी। 10:05 पर आप पुनः आनंद लेंगे अपने ही पसंद के फिल्मी गीतों के कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक हमारे प्रथम सभा के सारे ही कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

हमारी शाम की सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे युवा साथियों के कार्यक्रम युववाणी से। ये कार्यक्रम हमारे शिवपुरी केंद्र की प्रस्तुति होगी और हमारे मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित की जाएगी। शाम 5:33 पर आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। फिल्म संगीत पुनः आप सुन सकेंगे शाम 6:30 पर और रात 9:15 पर। 9:30 पर आप सुनेंगे अपनी पसंद की फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। भजन संध्या का समय होगा शाम 6 बजे। शाम 7:20 पर आप सुन सकेंगे हमारे ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन। ये कार्यक्रम हमारे ग्वालियर केंद्र की प्रस्तुति होगी। इस कार्यक्रम में चर्चा के विषय होंगे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, नवजात शिशु की देखभाल कैसे करें और विश्व पशु दिवस। साथ ही कार्यक्रम के अंतर्गत एक वार्ता भी सुनवाई जाएगी। LNIPE ग्वालियर में आयोजित AI वर्कशॉप में श्रीमती रेखा यादव की अध्यक्षता मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग से AI पर विचार। रात 10 बजे आप सुन सकेंगे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। श्रोताओं, ये थे आज हमारी दूसरी सभा में प्रसारित होने वाले कुछ विशेष कार्यक्रमों का विवरण। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। 7:20 होने को है, माफ कीजिएगा, सुबह के 7:10 होने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नई न्याय संहिता से 3 साल के अंदर मिलेगा न्याय। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज तेंदुपत्ता संग्राहकों को 36,17,00,000 रुपए के बोनस का करेंगे वितरण। प्रदेश भर में सेवा संकल्प अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां जारी और प्रदेश में हल्की ठंड का असर। रात में ज्यादातर शहरों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री के आसपास। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल भोपाल में नवीन न्याय संहिताओं की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान श्री शाह ने कहा कि

0: हमारी न्याय व्यवस्था में जो नए आपराधिक कानूनों का प्रावधान किया गया है उनके पूर्ण क्रियान्वयन के बाद आने वाले 1.5 वर्षों में FIR से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक 3 वर्षों में न्याय दिलाने का काम पूरा किया जाएगा। इन कानूनों के पूर्ण क्रियान्वयन के बाद हमारी न्याय व्यवस्था दुनिया की सबसे आधुनिक न्याय प्रणालियों में शामिल होगी।
1: नई न्याय संहिता में समग्र मध्य प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारी न्याय व्यवस्था तारीख पे तारीख के तानों से जानी जाती थी, मगर विशेषकर बहनों और युवाओं को मैं बताने आया हूँ, 1.5 साल के बाद, इसके पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद आप कोई भी FIR कराए, सुप्रीम कोर्ट तक दोषी को 3 साल में सजा कराने का काम ये नई न्याय संहिता है।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज पांडुर्णा और मंडला जिलों के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव मंडला में आयोजित प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण सह जागरूकता एवं प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि बोनस वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे और 9,04,000 से ज्यादा तेंदुपत्ता संग्राहकों को 36,17,00,000 रुपए से ज्यादा के तेंदुपत्ता बोनस का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव कार्यक्रम में 84 वन समितियों के सदस्यों को 26,56,00,000 रुपए से अधिक का कास्ट लाभांश भी वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव पांडुर्णा जिले में अलग अलग विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इस दौरान सांदीपनी स्कूल पांडुर्णा में सेवा मेरा योगदान तथा जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल केंद्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदेश में कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े विषयों पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस को अपनी कानून व सुरक्षा व्यवस्था के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना चाहिए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश में मादक पदार्थों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई शुरू हो गई है और वर्ष 2029 तक प्रदेश को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए हर स्तर पर सघन प्रयास किए जा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इसके नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता बीजेपी सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। वहीं भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी जल संसाधन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष होंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। सेवा सेतु और सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश भर में गतिविधियां जारी हैं, जिसके तहत आगरमालवा जिले में सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। आगरमालवा के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्किल अप प्रोग्राम के 80 घंटे का प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन कल हुआ, जिसमें युवाओं को संवाद, इंटरव्यू, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वर्क प्लेस और डिजिटल टूल किट की ट्रेनिंग दी गई। वहीं नर्मदापुरम जिले के इटारसी स्थित राम वृद्धजन कल्याण समिति वृद्धाश्रम में वृद्धजनों और बच्चों के साथ सेवा गतिविधियों का आयोजन किया गया। मंडला के जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य शिविर और विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया गया। बैतूल के आमला में जनपद पंचायत कार्यालय के नवीन भवन का भूमि पूजन किया गया। वहीं दमोह के जबेरा जनपद सभागार में संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मेंद्र सिंह लोधी की उपस्थिति में शिविर लगाकर हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र बांटे गए। मुरैना के पहाड़गढ़ में सांसद शिवमंगल सिंह तोमर ने ग्रामीणों से संवाद कर आवास, BPL, पेंशन, खाद्यान्न पर्ची और दिव्यांगता प्रमाण पत्रों का वितरण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एशियन गेम्स 2026 में पुरुषों की 97 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर पहलवान दीपक पुनिया और 53 किलोग्राम कुश्ती स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली अंतिम पंघाल को बधाई दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कल कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि भारतीय कुश्ती के लिए गर्व का क्षण है। पंघाल को बधाई संदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि यह उपलब्धि युवा महिला पहलवानों को खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। पहले 2 मैच जीतने के बाद भारत को कल रात मुल्लापुर के न्यू चंडीगढ़ स्टेडियम में खेले गए अंतिम मैच में 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 50 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 351 रन बनाए, जिसके जवाब में वेस्टइंडीज की

48 ओवर और 2 गेंदों में 5 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर जीत दर्ज कर ली। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में मौसम में बदलाव महसूस होने लगा है। दिन में धूप की वजह से जहां गर्मी का असर है, जबकि रात में हल्की ठंड महसूस होने लगी है। प्रदेश के ज्यादातर शहरों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान शाजापुर के गिरवर और इंदौर में 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे अधिक तापमान धार जिले में 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार रायसेन, सीहोर, राजगढ़ और विदिशा समेत प्रदेश के अधिकांश जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क बना रहा। मौसम केंद्र के अनुसार प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान आमतौर पर साफ ही रहेगा, हालांकि कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना भी व्यक्त की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में कल 13वीं दो दिवसीय इंडियन माउथहार्गन प्लेयर्स मीट का समापन हुआ। झाबुआ के मेघनगर में स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सामूहिक श्रमदान और स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। दमोह कलेक्टर ने सोयाबीन भावांतर योजना के तहत जिले में निःशुल्क पंजीयन के लिए 23 केंद्र निर्धारित किए हैं। श्योपुर कलेक्टर शीला दहिमा ने आदिवासी विकास खंड कराहल के ग्राम कुंड में महिलाओं को गुटखा और पुड़िया से होने वाले नुकसान का लाइव डेमो देकर ग्रामीणों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया। डिंडौरी के समनापुर स्थित उत्कृष्ट विद्यालय खेल मैदान में कल संभाग स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का समापन हुआ। कटनी में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और हेलमेट तथा सीट बेल्ट को लेकर 10 दिवसीय विशेष जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। खंडवा जिले के हरसूद में रानी दुर्गावती जयंती समारोह के दूसरे दिन सांस्कृतिक एवं जनजाति विभाग द्वारा नाट्य प्रस्तुति खेती खेड़ो हरिनाम की छोड़ी न चला जाए घरबार का मंचन किया गया। सीहोर की VIT भोपाल यूनिवर्सिटी का 7वां वार्षिक दीक्षांत समारोह कल संपन्न हुआ, जिसमें पूर्व चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इंडियन आर्मी रिटायर्ड जनरल उपेंद्र द्विवेदी चीफ गेस्ट रहे। वहीं प्रदेश के सूक्ष्म लघु उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने कल इंदौर में कहा कि नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने पर उद्यमी को प्रदेश सरकार 800 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से अनुदान प्रदान करेगी। लघु उद्योग भारती के उद्यम समापन सत्र में मंत्री कश्यप ने कहा कि नवीन लघु उद्योग लगाने के लिए 50% तक की सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है। वहीं सागर जिले के सुर्खी में कल मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के अंतर्गत जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में खाद्य आग्रिक आपूर्ति मंत्री उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अलग अलग विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और उपस्थित अधिकारियों से जन कल्याणकारी योजनाओं तथा दी जा रही सेवाओं की जानकारी ली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, नई न्याय संहिता से 3 साल के अंदर मिलेगा न्याय। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज तेंदुपत्ता संग्राहकों को 36 करोड़ 17 लाख रुपए के बोनस का करेंगे वितरण। प्रदेश भर में सेवा संकल्प अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां जारी और प्रदेश में हल्की ठंड का असर। रात में ज्यादातर शहरों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री के आसपास। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।
2: नमस्कार, रेडियो सेट पर नमस्कार भोपाल ट्यून के तमाम श्रोताओं का स्वागत है और कार्यक्रम में आज आपके साथ हूं मैं संतोष फिलिपोस।

बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार भोपाल में। जीवन में अक्सर ऐसे पल आते हैं जब हमारे सामने कठिनाइयां आ जाती हैं, लेकिन इन विषम परिस्थितियों में भी यदि हम अपना फेथ यानी भरोसा या विश्वास, चाहे वो ईश्वर पर हो या किसी और पर, भरोसा मजबूत रखते हैं तो विश्वास और भरोसे की नैया हमें उन परेशानियों के सागर में उलझनों के तूफान से भी सुरक्षित बाहर निकाल

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम। लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त स्मिता। सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म दुश्मन से। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है उत्तम सिंह ने। आवाजें हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की। आइए सुनते हैं फिल्म दुश्मन का ये प्यारा सा गीत।

उदित नारायण और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म दुश्मन का गीत। फिल्म संगीत में सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया। गीत के बोल लिखे हैं देव कोहली ने और इस गीत को संगीतबद्ध किया है राम लक्ष्मण ने। आवाज़ SP बाला सुब्रमण्यम की।

मैंने प्यार किया। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, इसे हमने लिया है फिल्म आशिकी से। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने, आवाज़ें अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की।

अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म आशिकी का गीत। श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का।

0: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे।
1: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
2: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से एचआईवी एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे एचआईवी एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
1: हाँ भाई समझा।
2: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: श्रोताओं, कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कलाकार से, आवाज किशोर कुमार की है।

किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म कलाकार का गीत। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म साजन से। इस गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत रचना नदीम श्रवण की है, आवाज़ SP बाला सुब्रमण्यम की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म साजन का गीत एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में। फिल्म संगीत के कार्यक्रम का अंतिम गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म खिलाड़ी से। अनवर सागर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है जतिन ललित ने। आवाज़ें हैं अभिजीत और अलका याग्निक की।

0: इस गीत के साथ ही आज का ये फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया। नए अध्यक्ष किए नियुक्त। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत के अध्ययन के लिए 5 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दी। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ का कड़ा विरोध किया। पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक कोलकाता में। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। कैप्टन स्मिथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में किया आमंत्रित। और जापान के नागोया में आज एशियाई खेलों का भव्य समापन समारोह, भारतीय निशानेबाज नीरू ढांडा होंगी ध्वजवाहक। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इनके नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी जल संसाधन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ।

0: समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता करेगी। इन 5 केंद्रों की स्थापना भारत की शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन, अनुसंधान और संरक्षण के लिए संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुपर्णा सेकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया।
3: भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 लोग पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। सीमा सुरक्षा बल BSF ने उन्हें कई बार वापस लौटने की चेतावनी दी, लेकिन वे सीमा बाढ़ की ओर बढ़ते रहे। इसके बाद BSF को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। भारत ने पाकिस्तान से इन घटनाओं और नशीले पदार्थों की तस्करी की जांच कराने और अपनी सीमा सुरक्षा बलों की भूमिका पर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करने और अपनी तरफ से अवैध आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर करेगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगे और समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगे।
4: प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में युवा प्रवासी भारतीय दिवस का भी आयोजन होगा। इसमें दुनिया भर से भारतीय मूल के युवा, कारोबारी, पेशेवर, शिक्षाविद और नवाचार से जुड़े लोग शामिल होंगे। प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी के सम्मान में मनाया जाता है। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। प्रवासी भारतीय दिवस का यह 19वां संस्करण दुनिया भर में रह रहे भारतीय समुदाय के भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने पर केंद्रित होगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह पारंपरिक औपचारिक ज्योति प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ से फोन पर बात की और उनके साहस की तारीफ की। उन्होंने कैप्टन स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। श्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की और उनके परिवार को भी शुभकामनाएं दी। ये सम्मान इसीलिए खास है क्योंकि इसराइल में स्वतंत्रता दिवस पर ज्योति जलाने का सम्मान आमतौर पर केवल इसराइल नागरिकों को दिया जाता है। कैप्टन स्मिथ का इस समय अबू धाबी में उपचार चल रहा है। अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लेंडो ने भी भारतीय पायलट स्मिथ के अदम्य साहस की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री क्रिस्टोफर ने कहा कि पायलट स्मिथ ने एक भयावह घटना को होने से बचा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की इस भावना के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आज की हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको देश में विकसित हो रहे आधुनिक नागरिक उड्डयन ढांचे और हवाई अड्डों पर उपलब्ध विश्व स्तरीय सुविधाओं से परिचित कराएंगे।
5: बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज यात्रियों और कार्गो के लिए एक बड़ा हब बन गया है, जो टेक सिटी बेंगलुरु को भारत और दुनिया भर की जगहों से जोड़ता है। 2025-26 के दौरान यहां 4 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने यात्रा की, जिसमें अकेले इंटरनेशनल यात्रियों की संख्या में लगभग 24% की बढ़ोतरी हुई। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इस एयरपोर्ट में लगभग 2.8

0: लाख विमानों का आना जाना भी दर्ज किया गया। पिछले साल यहां 5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा कार्गो को संभाला, जिससे कारोबार भारत और विदेशों के बड़े बाजारों से जुड़े। मॉडर्न चेक इन, डिजी यात्रा और बैगेज सुविधाएं, फ्लाइट की जानकारी देने वाले डिस्प्ले, लॉन्च और शानदार इंटीरियर की वजह से सोशल मीडिया पर इसकी काफी तारीफ हुई है। T2 का टर्मिनल इन द गार्डन कॉन्सेप्ट, जिसमें हरी दीवारें, छत से लगे बागान, सुंदर लैंडस्केप और सूरज की स्वाभाविक रोशनी को फिल्टर करने वाले इंजीनियर बांस का इस्तेमाल किया गया है, जो आपको याद दिलाता है कि बेंगलुरु को गार्डन सिटी भी कहा जाता है। यह एयरपोर्ट यात्रियों की सुविधाओं, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, अनोखे आर्किटेक्चर और कड़ी सुरक्षा का बेहतरीन मेल है। साथ ही यह उस शहर की पहचान को भी दिखाता है जिसकी ये सेवा करता है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: पश्चिम बंगाल सरकार मायापुर में स्थित इस्कॉन मुख्यालय को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसके अंतर्गत इस्कॉन मंदिर के आसपास करीब 2100 बीघा जमीन पर विकास कार्य किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने हाल ही में मंदिर का दौरा किया और अधिकारियों तथा इस्कॉन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार नव द्वीप को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकसित करने की भी योजना बना रही है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रिजीनगर विधानसभा उपचुनावों के लिए आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। मतदान मंगलवार 6 अक्टूबर को होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नंदीग्राम में भाजपा उम्मीदवार हसी रानी रथ के समर्थन में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। स्पष्ट और सुरक्षित मतदान सुनिश्चित कराने के लिए दोनों विधानसभा क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की टुकड़ियों को तैनात किया गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिशकियन ने कहा है कि अमेरिका के बढ़ते आर्थिक दबाव और प्रतिबंधों के बीच ईरान ने नई व्यवस्था अपनाई है। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति पजिशकियन ने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका लगातार ईरान की अर्थव्यवस्था और वित्तीय नेटवर्क पर प्रतिबंध लगा रहा है। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्धविराम के लिए भारत के प्रस्ताव को 4 प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिवेहा ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और काला सागर को शामिल करने वाले युद्धविराम पर विचार करने के लिए तैयार है। ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस बयान के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष खत्म करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस की तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेन के हमले जारी रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस ने कीव और अन्य यूक्रेनी शहरों से आम लोगों को विस्थापित करने के उद्देश्य से हवाई हमले तेज करने की नई नीति अपनाई है। श्री जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों को ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे पता चला है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सर्दियों से पहले नागरिक ठिकानों पर हमलों का दायरा बढ़ाने वाली नई सैन्य नीति को मंजूरी दी है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दूसरी शेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मैराथन वायुसेना के परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखो की याद में आयोजित की जा रही है। श्री शेखो ने वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अदम्य साहस का प्रदर्शन किया था। और अब जापान में आज होने वाले एशियाई खेलों के समापन समारोह की जानकारी के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं आज जापान के नागोया सिटी मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होने वाले के साथ। समापन समारोह भारतीय समय के अनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक महिला निशानेबाज नीरू ढांडा होंगी। वो तिरंगा लेकर भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। समारोह में खिलाड़ियों की परेड और खेलों के औपचारिक समापन कई पारंपरिक कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए क्रिकेट की, तो भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। पहले 2 मैच जीतने के बाद भारत को कल रात न्यू चंडीगढ़ में खेले गए अंतिम मैच में 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। तो फरहत, ये थे अब तक के कुछ खेल समाचार।
1: मौसम विभाग ने आज केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अगले 2 दिन में बिजली कड़कने, तेज हवाएं चलने और गरज के साथ बारिश की संभावना है। वहीं कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रह सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: गिरते खबरों से जुड़े रहिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद फरहत। 20वें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन की खबर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, गोल्डन फाइव के साथ चौथे स्थान पर पहुंचा भारत। पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 19 रन से हराकर जीता स्वर्ण। पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को 5-1 से हराकर कटाया ओलंपिक टिकट। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, स्वर्णिम उछाल, क्रिकेट से लेकर हॉकी में गोल्ड मेडल। हिंदुस्तान ने उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन के आर्थिक सम्मेलन में संबोधन का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचना जरूरी। उपराष्ट्रपति ने कहा, समावेशी विकास से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अमर उजाला ने युद्ध अभ्यास तरंग शक्ति शीर्षक से लड़ाकू विमानों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, तेजस, राफेल और F-35 ने एक साथ भरी उड़ान। बच्चों की देखभाल के लिए पिता को भी मिल सकती है छुट्टी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने निजी क्षेत्र के पुरुष कर्मियों को भी चाइल्ड केयर लीव देने समेत 37 सिफारिशें दी, दैनिक जागरण की सुर्खी है। स्क्रीन का घातक नशा, भारतीय रोजाना गवा रहे 141 करोड़ घंटे। भारत में 66 करोड़ से ज्यादा लोग ऑनलाइन वीडियो देख रहे, राजस्थान पत्रिका में है। कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडालों में दिखेगी राम राज्य की झलक। पंडाल में भगवान राम और हनुमान की होगी मूर्तियां, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने राजस्थान में हाड़ोती के प्रसिद्ध डोल मेले की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, झिलमिल रोशनी, झूलों की रफ्तार, डोल मेले में उमड़ रहा हाड़ोती।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया, नए अध्यक्ष की नियुक्ति। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत के अध्ययन के लिए 5 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दी। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ का विरोध किया, पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक कोलकाता में। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Nishit Kumar. The headlines. Lok Sabha Speaker Om Birla reconstitutes several department-related parliamentary committees for 2026-27 term. Union Education Ministry approves 5 new centres of excellence for studies in classical languages, Assamese, Bengali, Marathi, Pali and Prakrit. India summons Pak envoy to register strong protest over continued facilitation of illegal cross-border infiltration from Pakistan. 19th Pravasi Bharatiya Divas convention to be held from the 7th to 9th of January next year in Kolkata. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu describes Indian pilot Smit Macher, hero of Israel, India and entire world, invites him and Prime Minister Narendra Modi to Israel's Independence Day ceremony. An Asian Games 2026 to conclude today at Nagoya in Japan. Trap shooter Neeru Dhanda to be India's flag bearer for the closing ceremony. And now the news in detail. Lok Sabha Speaker Om Birla has reconstituted several parliamentary committees related to different ministries. BJP MP Bharthru Hari Mehtab has been appointed as the chairperson of the Committee on Finance, comprising 21 members from Lok Sabha and 10 members from the Rajya Sabha. Mr. Birla has appointed Congress MP Shashi Tharoor as chairperson of the Committee on External Affairs. It includes 21 members from the lower house and 10 from the upper house, while the Committee on Railways will be headed by BJP MP Sudhir Gupta. Mr. Birla has appointed Lok Sabha MP Dr. Kakoli Ghosh Dastidar as chairperson of the Committee on Chemicals and Fertilizers. Congress MP Charanjit Singh Channi will be the chairperson of Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing. BJP MP Radha Mohan Singh will be the chairperson of the Committee on Defence. BJP MP Rajiv Pratap Rudi has been appointed as the chairperson of the Committee on Water Resources.

श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत का। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं फूल सिंह गौतम के गाए कुछ लोकगीत। इसी क्रम में सुनते हैं इन्हीं की आवाज़ में ये चेतावनी गीत।

श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं लोक संगीत के कार्यक्रम का। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं फूल सिंह गौतम के गाए कुछ बुंदेली लोकगीत। आपके साथ ढोलक पर संगत कर रहे हैं श्रवण कुमार शर्मा और सारंगी पर साथ हैं अब्दुल मजीद खान। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं इन्हीं का गाया दहेज प्रथा गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे फूल सिंह गौतम की आवाज़ में बुंदेली लोकगीत। इस दहेज प्रथा गीत के साथ ही आज का ये लोक संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

सूचनाओं, समाचारों और नगमों के कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त स्मिता। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने आज के संडे का दिन बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं दोस्तों एक ऐसी खबर से जिसने पूरे दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। वो कहते हैं ना कि संकट की घड़ी में इंसान की असली पहचान उसके साहस से ही होती है, और आज की यह कहानी इसी साहस, कर्तव्य और मानवता की मिसाल है। तारीख 30 सितंबर 2026 को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट FZ1073 में उड़ान के दौरान अचानक एक बेहद गंभीर स्थिति पैदा हो गई। विमान हजारों फीट की ऊंचाई पर था, तभी कॉकपिट में मौजूद को पायलट ने भारतीय कैप्टन स्मिथ माछर पर कथित रूप से हमला कर दिया। इस हमले के बाद विमान तेजी से नीचे आने लगा और रिपोर्टों के अनुसार महज लगभग 30 सेकंड में विमान ने करीब 14,000 फीट की ऊंचाई खो दी। दोस्तों सोचिए, एक ओर कॉकपिट में जानलेवा हमला, दूसरी ओर सैकड़ों लोगों की जिंदगी खतरे में, और इसी बीच गंभीर रूप से घायल कैप्टन स्मिथ माछर ने हार नहीं मानी। खून से लथपथ होने के बावजूद उनका ध्यान अपनी जान पर नहीं बल्कि विमान में बैठे यात्रियों की सुरक्षा पर था। दोस्तों, उन्होंने अपनी बची हुई ताकत का इस्तेमाल करते हुए कॉकपिट

का दरवाज़ा खोलने में सफलता हासिल की। इसके बाद यात्रियों और क्रू के कुछ सदस्यों ने कॉकपिट में पहुंचकर हमलावर को काबू में किया। दोस्तों, विमान में मौजूद दो अन्य पायलटों ने भी नियंत्रण संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और फिर विमान को आपात स्थिति में सऊदी अरब के ताबुक एयरपोर्ट की ओर मोड़ा गया, जहां उसे सुरक्षित उतार लिया गया। सबसे राहत की बात तो ये है दोस्तों कि विमान में सवार सभी 174 यात्री सुरक्षित रहे, इनमें 27 बच्चे भी शामिल थे। कैप्टन स्मिथ माचर घायल हुए और उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। उनकी बहादुरी की खबर सामने आने के बाद भारत और इज़राइल सहित दुनिया भर के लोग उनके लिए सम्मान और शुभकामनाएं भेजने लगे। इज़राइल के प्रधानमंत्री श्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ माचर को ट्रू हीरो कहकर उनकी बहादुरी की सराहना की और वहीं हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी उनसे बातचीत कर उनके साहस को सलाम किया। लेकिन इस पूरी घटना की सबसे महत्वपूर्ण बात शायद यह है कि कैप्टन स्मिथ माचर ने इस क्षण अपने बारे में नहीं सोचा और उन्होंने उन 174 जिंदगियों के बारे में सोचा जो उनके भरोसे थी। एक पायलट के लिए विमान उड़ाना उसका कर्तव्य है दोस्तों, लेकिन अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रियों को बचाने का प्रयास करना कर्तव्य से कहीं आगे की मानवता है। आज कैप्टन स्मिथ माचर की कहानी हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। संदेश ये कि सच्चा साहस डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर और संकट के बावजूद सही निर्णय लेने की क्षमता है। कैप्टन स्मिथ माचर को हमारा नमन और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की शुभकामनाएं।

0: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
1: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
2: अरे वही अपना 60 रुपया।
1: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
0: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
1: और दूसरा?
0: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
1: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
0: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: दोस्तों, कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे आज के हीरो सुमित माचर की, लेकिन दोस्तों एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है इस पूरी घटना में जो हमें सीखने को मिलती है। श्रोताओं, इस घटना में एक जो बात है वो है कि क्या हम जीवन में बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग या किसी इमरजेंसी ट्रेनिंग जैसे स्किल्स के ऊपर ध्यान देते हैं? अगर हम इस घटना को देखें या इस घटना के बारे में थोड़ा विचार करें तो आप देखिए कि एक विमान हज़ारों फीट की ऊंचाई पर था, कॉकपिट में गंभीर संकट पैदा हो चुका था, पायलट घायल था और सैकड़ों यात्रियों की जान खतरे में। ऐसे समय में केवल तकनीक या मशीनें ही पर्याप्त नहीं होती दोस्तों, ज़रूरत होती है साहस की, सूझबूझ की, अनुशासन की और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता। और हम आपको बता दें कि इज़राइल की व्यवस्था में जो नागरिकों की पात्रता है वो इसके लिए सैन्य सेवा व्यापक रूप से होना बहुत ही अनिवार्य है। यहाँ की जो व्यवस्था है इसमें एक सिटीज़न को कुछ मिलिट्री ट्रेनिंग का लेना बहुत ही कंपलसरी है। हालांकि इसमें कई तरह के अपवाद भी हैं, लेकिन इसके कारण समाज में एक बड़े हिस्से को किसी न किसी स्तर पर डिसिप्लिन, इमरजेंसी रिस्पांस और सुरक्षा से जुड़ा प्रशिक्षण प्राप्त होता है। हालांकि यह विशेष घटना में यह कहना सही नहीं होगा कि यात्रियों ने केवल अपने सैन्य प्रशिक्षण के कारण हमलावर को काबू किया। और जैसा कि हम न्यूज़ में सुन रहे हैं, समाचार पत्रों में देख रहे हैं, तो इसके अनुसार उनकी तत्काल प्रतिक्रिया, साहस और सामूहिक प्रयास सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रही है और इम्पॉर्टेंट भी है। दोस्तों, इस घटना ने एक बहुत बड़ी सीख ज़रूर दी है हम सभी को कि हम भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं लाइफ सेविंग स्किल्स को जगह दें। और कुछ चीज़ें हमें ऐसे पता होना चाहिए कि कभी भी ऐसी इमरजेंसीज़ में हमें किस तरह से रिएक्ट करना है। इमरजेंसी किसी भी प्रकार की हो सकती है, घर में, बाहर में, गाड़ी में चलते हुए या किसी भी प्रकार की। तो थोड़ा सूझबूझ के साथ, थोड़ा धैर्य के साथ और इन्हीं कुछ इमरजेंसी लाइफ सेविंग स्किल के साथ हम किसी भी घटना को बड़ा रूप देने से टाल सकते हैं और मदद कर सकते हैं अपने आसपास के लोगों की, खुद की, अपने नियर डियर के जो भी आपके साथ के लोग होंगे। तो लाइफ सेविंग स्किल्स केवल सैनिकों के लिए नहीं होती है दोस्तों, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी महत्वपूर्ण है। आप कल्पना कीजिए कि अगर किसी जगह अचानक आग लग जाए या कोई व्यक्ति बेहोश हो जाए या सड़क पर कोई दुर्घटना हो जाए, अगर भूकंप या कोई और दूसरी आपदा आ जाए, तो उस समय हम किस तरह रिएक्ट करेंगे? तो एक कॉमन सी जो चीज़ है वो जैसे हम फर्स्ट एड करते ही हैं, तो फर्स्ट एड करना, CPR देना, इमरजेंसी इवैक्यूएशन के बारे में सोचना, बेसिक सेल्फ डिफेंस के बारे में सोचना और किसी भी तरह का इस आपातकाल अगर घटना होती है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट किस तरह से हम कर सकते हैं अपने लेवल पर, ये भी वहाँ शांत रहकर इसके बारे में निर्णय लेना, ये एक ऐसी स्किल है जो कभी भी किसी को भी किसी भी परेशानी से बचा सकती है। यानी हमें हर नागरिक को सैनिक बनाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर नागरिक को संकट की स्थिति में जिम्मेदारियों से प्रतिक्रिया देना ज़रूर आना चाहिए। तो स्कूलों में, संस्थानों में बच्चों को, युवाओं को भी उम्र के अनुसार फर्स्ट एड, फायर सेफ्टी, डिज़ास्टर जो प्रिपेयर्डनेस है और बेसिक सेल्फ डिफेंस है, इन जैसी प्रैक्टिकल लाइफ स्किल को सिखाना चाहिए और ये काफ़ी हद तक कहीं ज़रूरत भी है हम सभी को, क्योंकि किताबों का जो ज्ञान है वो हमें परीक्षा में सफल ज़रूर बनाता है, लेकिन जीवन बचाने का जो ज्ञान है वो किसी भी ज़िंदगी को बचा सकता है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, कार्यक्रम में हम करेंगे और भी कुछ खास बातें। फ़िलहाल सुन लेते हैं ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, कभी आपने रात के आसमान को देखकर सोचा है कि इन चमकते तारों के पार क्या है? क्या वहाँ भी कोई दुनिया है? और इंसान आखिर अंतरिक्ष की अनंत सीमाओं तक कितना पहुँच सकता है? इन्हीं सवालों ने विज्ञान को आगे बढ़ाया और आज इंसान चंद्रमा तक पहुँच चुका है और मंगल ग्रह की खोज कर रहा है। और आज से शुरू हो रहा है एक बेहद रोमांचक सप्ताह, यानी वर्ल्ड स्पेस वीक, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह। हर वर्ष 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक दुनिया भर के विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है। अब सवाल है कि इन्हीं तारीखों को क्यों चुना गया? इसके पीछे अंतरिक्ष इतिहास की दो बड़ी घटनाएं हैं दोस्तों। 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ ने दुनिया का पहला मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक 1 अंतरिक्ष में भेजा था, और 10 अक्टूबर 1967 को आउटर स्पेस ट्रीटी लागू हुई थी, जिससे अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय ढांचा तैयार किया गया था। तो दोस्तों, 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक का ये जो सप्ताह है, हमें याद दिलाता है कि अंतरिक्ष की यात्रा केवल कल्पना नहीं, बल्कि विज्ञान और मानव जिज्ञासा की वास्तविक उपलब्धि है। दोस्तों, आज अंतरिक्ष तकनीक हमारी जिंदगी से इतनी जुड़ चुकी है कि शायद हमें इसका एहसास भी नहीं होता। आपके मोबाइल का जीपीएस, जी हाँ, आपके मोबाइल का जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम आपको किसी भी जगह के लोकेशन को पहुंचने में आसानी जो आज हो रही है, वो भी एक कहीं ना कहीं इन सैटेलाइट के माध्यम से ही तो है। मौसम की जानकारी लेनी हो, या सैटेलाइट टीवी चलाना हो, या संचार व्यवस्था हो, या आपदा प्रबंधन और पृथ्वी की निगरानी, इन सब में अंतरिक्ष तकनीकी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और भारत की इस क्षेत्र में लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। इसरो ने चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशनों के माध्यम से पूरी दुनिया का ध्यान भारत के अंतरिक्ष क्षमता और आकर्षित करना, इन सभी की ओर इसको संभव किया है। और इस वर्ष वर्ल्ड स्पेस वीक की थीम है दोस्तों, रॉकेट रिवॉल्यूशन। जी हाँ, रॉकेट रिवॉल्यूशन यानी रॉकेट क्रांति। और आज वैज्ञानिक ऐसे रॉकेट विकसित कर रहे हैं जिन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे अंतरिक्ष अभियानों का जो है लागत भी कम करने और अंतरिक्ष तक पहुंच को अधिक आसान बनाने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। लेकिन अंतरिक्ष सप्ताह का उद्देश्य केवल रॉकेट और ग्रहों की चर्चा करना नहीं है, इसका एक बहुत ही बड़ा उद्देश्य है दोस्तों, वो है बच्चों और युवाओं को स्पेस टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स यानी स्टेम की ओर प्रेरित करना। क्योंकि हो सकता है आज रेडियो सुन रहा हो कोई बच्चा, कल वैज्ञानिक बन जाए, कोई साइंटिस्ट बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, कोई शायद अगला अंतरिक्ष यात्री बन जाए। तो हम आप सभी को बड़ी शुभकामनाएं देते हैं कि आप इस ओर थोड़ी जानकारी बढ़ाने के लिए अपने मन को प्रेरित करें। और इसलिए आज रात जब आप आसमान की ओर देखें तो सिर्फ तारों को मत देखें, बल्कि इनके पीछे छिपे हुए सवालों को भी देखें। क्योंकि हर बड़ी खोज की शुरुआत एक छोटे से सवाल से होती है, आखिर ऐसा क्यों? और शायद यही सवाल किसी दिन हमें अंतरिक्ष की ओर नई कहानी सुनाएगा। दोस्तों, ऐसी ही कुछ और आज की तारीख से जुड़ी बातें हम आपके सामने साझा करना चाहते हैं। वो ये कि आज है 4 अक्टूबर और हम आज का दिन मना रहे हैं विश्व पशु दिवस, यानी वर्ल्ड एनिमल डे। इस
दिन को हम मनाते हैं और इस दिन दुनिया भर के पशुओं के अधिकार, उनके कल्याण और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने का उद्देश्य जो है वो साझा करने की कोशिश करते हैं। ज़रा सोचिए, क्या पशुओं को हमारी भाषा समझ आती है? शायद नहीं, लेकिन क्या वे दर्द, भूख और डर और प्यार महसूस करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल महसूस करते हैं। एक बेजुबान जानवर बोल नहीं सकता, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कहती हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये जो विश्व पशु दिवस है, इसकी शुरुआत वर्ष 1925 में जर्मनी के बर्लिन में हुई थी और बाद में वर्ष 1931 में इटली में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इसे व्यापक रूप से मान्यता मिली। और ये दिन सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी के स्मृति से भी जुड़ा है, जिन्होंने पशुओं और प्रकृति के बीच ये रिलेशन बताया और उनके प्रति करुणा के लिए ये दिन जाना जाता है। तो आइए, आज इस वर्ष की थीम आपसे साझा करते हैं, जो बहुत ही सुंदर संदेश देती है, लुक एट द वर्ल्ड थ्रू देयर आइज, यानी दुनिया को उनकी नज़रों से देखने की कोशिश कीजिए। तो उम्मीद है कि आज का ये जो दिन है वो आपके घर में जो पेट है उनके भी साथ आप एंजॉय करेंगे। और फिलहाल कार्यक्रम के अंत में सुन लेते हैं इसी टॉपिक से जुड़ा ये गीत।

तो दोस्तों, अब मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे नई सुबह, नई जानकारी, नई ऊर्जा के साथ। तब तक सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जागरूक रहिए। आप सभी को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है साप्ताहिक सिंधी कार्यक्रम, जिन्हें हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

साथियों जय झूलेलाल। सिंधियत जी सुरहाण में तवां सबनी के मां मनोज सोनी पंजवाणी पारां सिक भरी नमस्ते। जान ए विंदुर सां भरपूर इन तवां जे पसंदीदा कार्यक्रम में अज जी पहिरीं जान आहे संकल्प सां सेवा ए मेक इन इंडिया। साथियों संकल्प सेवा अभियान यो राष्ट्रव्यापी अभियान 17 सितंबर खां वठी 17 अक्टूबर तूणी हलण वारो राष्ट्रव्यापी अभियान आहे। यो अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जे 25 सालनि जी लोक सेवा ऐं संदसि जनमदिन जे उपलक्ष में शुरू कयो वियो आहे। इन अभियान जे तहत देश जे नौजवाननि ऐं नागरिकनि खे विकसित भारत @2047 जे संकल्प सां जोड़ियो वञी रहियो आहे। हिन अभियान जे तहत साफ़ सफ़ाईअ जा कम, वृक्षारोपण यानि वण लॻाइण, रक्तदान कैम्प ऐं समाज जी भलाई लाइ ॿिए बि घणेई कम कया वञी रहिया आहिनि। इहो 1 महीने जो हलण वारो राष्ट्रव्यापी अभियान आहे। इन खां पोइ हाणे अॻियां वधंदासीं मेक इन इंडिया अभियान जे पासे। इहो अभियान भारत सरकार पारां 25 सितंबर 2014 ते शुरू कयो वियो आहे। इन जो ख़ासि मक़सदु भारत खे पूरी दुनिया जो मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन ऐं इनोवेशन जो हब बणाइणो आहे। इन अभियान जे चालू थियण खां पोइ असांखे घणेई फ़ाइदा थिया आहिनि, असांजे मुल्क खे घणेई फ़ाइदा थिया आहिनि। जीअं त असांजे मुल्क में विदेशी निवेश वधी रहियो आहे, घणेई व्यापारिक नवां मौक़ा मिली रहिया आहिनि। असांजो मुल्क भारत आत्मनिर्भर भारत बणजण जी राह ते वधी रहियो आहे। इहा त हुई ॻाल्हि साथियों मेक इन इंडिया अभियान जे बारे में। साथियों हिन वक़्तु पितृपक्ष हली रहियो आहे, पितृपक्ष माने श्राद्ध। ऐं हिन श्राद्धनि जे ॾींहनि में असां पंहिंजे वॾड़नि खे यादि करे सची श्रद्धा ऐं प्रेम सां उन्हनि खे श्रद्धांजलि अर्पित कंदा आहियूं, तर्पण कंदा आहियूं ऐं विधि विधान सां श्राद्ध कंदा आहियूं। साथियों असां पंहिंजे वॾड़नि सां जेको समय बितायोसीं, जेके उन्हनि असांखे शिक्षाऊं ॾिनियूं, जेके ॻाल्हियूं ॿुधाइनि, उहे ॻाल्हियूं असांखे हमेशह यादि ईंदियूं आहिनि। उन्हनि सां गॾु गुज़ारियल वक़्तु असां कॾहिं कोन विसरंदा आहियूं, हमेशह उन्हनि जूं सुहिणियूं यादियूं असां सां गॾु हूंदियूं आहिनि।

भगत घनश्याम जो ही वॾड़नि जी यादि में गीत हुयो। हाणे अॻियां वधंदासीं अॻिली ॼाण पासे। भारतीय वायु सेना दिवस इन ॾींहं जी अधिकृत स्थापना 8 अक्टूबर 1932 ते कई वई हुई। तंहिं करे हर साल इन ॾींहं खे वायु सेना ॾींहं जे रूप में मल्हायो वेंदो आहे। इन ॾींहं जो मोटो या जंहिंखे ध्येय वाक्य स्लोगन जेको चवंदा आहियूं उहो आहे नभ स्पृशम दीप्तम, आकाश खे गौरव सां छुअण, जेको भगवत गीता जे 11 अध्याय मां खयो वियो आहे। भारतीय वायु सेना दुनिया जी चौथी सभ खां वॾी वायु सेना आहे। इहा असांजे लाइ तमामु फ़ख्रु ऐं गर्व जी ॻाल्हि आहे। साथियो, इहो ॾींहुं असां पंहिंजे वीर जवाननि खे सम्मानित करण लाइ मल्हाईंदा आहियूं ऐं गॾोगॾु जेके वीर जवान शहीद थिया आहिनि उन्हनि खे बि श्रद्धांजलि अर्पित करे उन्हनि जी शहादत खे गौरवान्वित कंदा आहियूं। साथियो, इन ॾींहुं घणेई प्रकार जा आयोजन जीअं त भव्य परेड ऐं एयर शो थींदा आहिनि, घणेई जॻहियुनि ते हवाई करतब ॾेखारिया वेंदा आहिनि ऐं इन्हनि खे पुरस्कृत कयो वेंदो आहे। साथियो, इन खां पोइ जेका अॻिली ॼाण आहे सा आहे विश्व मेंटल हेल्थ डे, माना मानसिक सिहत सां जुड़ियल इहो ॾींहुं। हर साल 10 अक्टूबर ते पूरी दुनिया में मानसिक सिहत जी सुजागी पैदा करण लाइ इहो ॾींहुं मल्हायो वेंदो आहे। हिन ॾींहं जी शुरूआति साल 1992 में वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ जी तरफ़ां कयो वियो हो ऐं इन ॾींहं जो मक़सदु माण्हुनि में वधंदड़ मानसिक बीमारियूं जीअं त तनाव, चिंता, डिप्रेशन ऐं इन टाइप जूं जेके बीमारियूं आहिनि उन्हनि जे प्रति सुजागी आणणु, इन खां बचाव जा तरीक़ा ऐं पंहिंजो पाण खे मानसिक रूप सां कीअं शांति रखिजे, कीअं थधो रखिजे, इन जे बारे में माण्हुनि ताईं ॼाण पहुचाइणु आहे। हाणे अचो त ॿुधूं था रूना लैला जो गायल ही गीत।

0: साथियों ही गीत थियो रूना लैला जो ऐं हाणे समय आहे अॼु जे काव्य पाठ जो। अॼु असां सां गॾु स्टूडियो में कवि आहिनि भा मनोज कृपलाणी जी। अचो त ॿुधूं था हिननि खां हिननि जूं कुझु सुहिणियूं रचनाऊं।
1: जय झूलेलाल दोस्तो, मुंहिंजी पहिरीं कविता आहे जेकी तरनम में पेश कंदुमि। अॼु असां वरी नओं इतिहास लिखंदासीं, अॼु असां वरी नओं इतिहास लिखंदासीं। सिंध हिंद जूं ॻाल्हियूं जंहिंमें सभु ख़ासि लिखंदासीं, अॼु असां वरी नओं। जंहिंमें लॾ पटाण जी हूंदी कहाणी, सिंधु घाटीअ जी सभ्यता पुराणी। जंहिंमें लॾ पटाण जी हूंदी कहाणी, सिंधु घाटीअ जी सभ्यता पुराणी।

सिंध में असांजो कीअं हो वास लिखंदासीं असां वरी अॼु नओं इतिहास लिखंदासीं जंहिंमें हूंदा कवि शाइरनि जा नाला शाह सचल सामीअ जा रसाला सिंधी दरवेश संत निराला जपी सदा जिन झूलण जी माला जपी सदा जिन झूलण जी माला।

इतिहासुल कंदासी संत कंवर जी मिठड़ी लोली बीठी माता झले खाली झोली

ਸੱਚ ਸੱਚ ਰਾਮਦਾਸ ਜੋ ਦਾਸ ਲਿਖੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਵਰੀ ਨੋ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਵਰੀ ਨੋ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖੰਦਾ ਸੀ, ਸਿੰਧ ਹਿੰਦ ਜੂੰ ਜਹਿਮੇ ਗਾਲੂੰ ਖਾਸ ਲਿਖੰਦਾ ਸੀ। ਜੈ ਝੂਲੇਲਾਲ। मुझी भी कविता है, जिंदगी अना अलाए छा देखारे, जिंदगी अना अलाए छा देखारे, पल में जारे पल में मारे, पल में जारे पल में मारे, जिंदगी अना अलाए छा देखारे, मतलब जे बिना रिश्तो को भी कैसा रखे न थो, मतलब जे बिना रिश्तो को भी कैसा रखे न थो, बचो न आ मानू को अड़ो जैखे हित को ठगे न थो, रुगो केराइन हिक बे खे को कहखे न थो चाड़े, रुगो केराइन हिक बे खे को कहखे न थो चाड़े, जिंदगी

करे बुतुंजो माथी नथो सगा माथी नथो सगा तुझी खुशिया में ही यार मुझी खुशिया तुझी खुशिया में ही यार मुझी खुशिया समझी खुदा मा तो के कई तुझी बंदगीया समझी खुदा मतो के कई तुझी बंदगीया।

तमामु सुहिणियूं रचनाऊं भाउ मनोज कृपलाणीअ पारां। इन्हनि जी विशेषता आहे त इहे गीत लिखंदा आहिनि ऐं इन्हनि जा घणेई गीत सिंधी फिल्मुनि में बि अची रहिया आहिनि। हिननि तरन्नुम में ऐं काव्य जे रूप में पंहिंजूं तमामु सुहिणियूं कविताऊं ॿुधायूं। साथियो, हिन हफ़्ते जे आख़िर में माता राणीअ जा नवरात्रा बि चालू थियण वारा आहिनि। माता राणीअ जा एकाणा, अचो त माता राणीअ जी सेवा में, माता राणीअ जे दर ते

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है भिंड जिले की चिट्ठी। आलेख अनिल शर्मा का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। भिंड जिले में धान, ज्वार और बाजरा उपार्जन के लिए किसानों द्वारा पंजीयन किया जा रहा है। किसान अपना पंजीयन 10 अक्टूबर तक करा सकते हैं। किसानों की सुविधा के लिए जिले में 24 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं। जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार एवं बाजरा के उपार्जन के लिए किसानों की पंजीयन प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। पंजीयन के पर्यवेक्षण और मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तरीय जिला उपार्जन समिति, उपखंड स्तरीय उपार्जन समिति का गठन भी किया गया है। इसके साथ ही पंजीयन एवं उपार्जन कार्य में आने वाली तकनीकी समस्याओं के निराकरण के लिए तकनीकी समिति का गठन भी किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की बात करें तो जिले के मऊ कस्बे में पिछले दिनों इस शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कि प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस शिविर में 364 आवेदन प्राप्त हुए। इस दौरान 328 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। वहीं अन्य 36 आवेदनों के लिए संबंधित अधिकारियों को शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए गए। जनसुनवाई के दौरान मंत्री श्री शुक्ला, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला पंचायत सीईओ ने प्राप्त आवेदनों को लेकर संबंधित अधिकारियों को जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मंत्री श्री राकेश शुक्ला ने संबल योजना के 7 हितग्राहियों, राशन पात्रता पर्ची के 2 हितग्राहियों और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 4 हितग्राहियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। वहीं मेडिकल बोर्ड द्वारा परीक्षण के बाद मौके पर एक लाभार्थी को दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। वहीं एक लाभार्थी को 2 लाख रुपये की अनुग्रह सहायता राशि भी प्रदान की गई। भिंड जिले में 70वीं शालेय राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन 6 अक्टूबर से जिला मुख्यालय में किया जाएगा। 10 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 17 वर्ष तक के बालक और बालिका शामिल होंगे। आयोजन की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। साफ सफाई और शौचालय व्यवस्था, बच्चों के ठहरने और आवागमन, विजेताओं के लिए मेडल, ट्रॉफी तथा आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जानकारी ली गई और जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर ने कहा कि जिन स्कूलों में बच्चे रुकेंगे वे सभी स्कूल संचालक अपने स्कूल की साफ सफाई कराएं। उन्होंने प्रतियोगिता ग्राउंड की साफ सफाई करने नगरपालिका भिंड को निर्देश दिए। इसके साथ ही खिलाड़ियों के स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु प्रतियोगिता स्थल पर स्वास्थ्य दल को उपस्थित रहने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए गए। भिंड जिला रोजगार कार्यालय की ओर से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत शासकीय संभागीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI भिंड में बीते दिनों कैरियर काउंसलिंग का आयोजन किया गया। इस शिविर में शासकीय सांदीपनी उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मेहगांव के 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम में विशेषज्ञों एवं अधिकारियों द्वारा छात्रों को अपनी रुचि, योग्यता और क्षमता के अनुसार सही कैरियर चुनने के लिए मार्गदर्शन दिया गया। छात्रों को नवीन व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत उपलब्ध विभिन्न ट्रेड जैसे ITI, TES, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि तथा ITI में संचालित पाठ्यक्रमों की जानकारी दी गई। वक्ताओं ने बताया कि कौशल विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार और स्वरोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध हैं। उन्होंने छात्रों को शासन की रोजगार उन्मुखी योजनाओं तथा जिला रोजगार कार्यालय की सेवाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। वहीं छात्रों ने भी उत्साहपूर्वक अपने प्रश्न पूछे और करियर संबंधी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत भिंड जिले के शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में बीते दिनों भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। छात्र छात्राओं ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, युवा ऊर्जा, डिजिटल भारत, विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत सहित सपनों का भारत विषय पर अपने भाषण कौशल का प्रदर्शन किया। इस दौरान रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। जिले के शासकीय संभागीय ITI भिंड, उद्योग विभाग, स्वास्थ्य विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, श्रम विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के संयुक्त तत्वावधान में शासकीय MGS महाविद्यालय भिंड में युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन बीते दिनों किया गया। इस रोजगार मेले में जिले के युवाओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। मेले में कुल 158 आवेदकों द्वारा पंजीयन कराया गया। उपस्थित विभिन्न कंपनियों द्वारा आवेदकों की शैक्षणिक योग्यताओं, कौशल एवं अनुभव के आधार पर साक्षात्कार अध्ययन प्रक्रिया संपादित की गई, जिसके बाद 149 आवेदकों का प्राथमिक रूप से चयन किया गया। वहीं भिंड जिले के उमरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में सेवा से संकल्प अभियान के अंतर्गत पौधरोपण एवं रक्तदान शिविर का आयोजन बीते दिनों किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा रहे। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए परिसर में कुल 100 पौधे रोपे गए। वहीं मानव सेवा के संकल्प के साथ आयोजित रक्तदान शिविर में 14 यूनिट रक्त का संग्रहण किया गया। भिंड जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी भिंड जिले की चिट्ठी। आलेख अनिल शर्मा का था, वाचन था अभिषेक कटियार का, और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं, इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है आपके अपनी पसंद के फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम में आपके भेजे हुए व्हाट्सएप मैसेज हमको मिल चुके हैं और इस व्हाट्सएप फरमाइश के कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं पहला गीत फिल्म जमाने को दिखाना है से। मजरूह के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है आरडी बर्मन ने और आवाज़ें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता साथी एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना पप्पी, किरण खुराना, लाव्या, आरव खुराना और एस के पप्पी, लाला चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और पोत्रा गुरशबद, गांव कैरो, जिला तरन तारण, पंजाब से गुरदर्शन जी, लाला चलोत्रा जी के परिवार से सभी लोग इस गाने को सुनना चाहते हैं। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाला, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाला, शेरवानी स्कूल गुंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गीत फिल्म जमाने को दिखाना है से।

0: और फिर क्या होगा?
1: पार्टियां, दावतें।
2: Yeah!

0: श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं अपने ही पसंद के फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म दीवार से। गीत के बोल लिखे हैं साहिर ने और इस गीत को संगीतबद्ध किया है आरडी बर्मन ने। आवाज़ किशोर कुमार और आशा भोसले की। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता साथी गांव जाखोद राजस्थान से शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदर लाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा खटक। बटिंडा रोड मंडी डबवली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी नारंग, तानिया नारंग और कुंभार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन और पांडुरंग कुंभार। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी। और यही गीत सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता साथी दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा और समस्त मेहरा परिवार। आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर इस गीत को। फिल्म दीवार से ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपनी ही पसंद की फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त स्मिता। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है सनम तेरी कसम। गुलशन बावरा के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है आरडी बर्मन ने और आवाज़ आशा भोसले की है। इस गीत को सुनना चाहते हैं गोविंदपुरा सिकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। और यही गीत सुनना चाहते हैं आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और सायना शर्मा, नवीना शर्मा, निवान शर्मा, धनोरा विटाली तहसील नांदूरा से, जिला बुलडाणा महाराष्ट्र से भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल, सचिन पाटिल, गांधी चौक रोपर पंजाब से हरदेव मिक्का, बलविंदर विरक, जयतेग विरक, मिक्का विरक, ग्राम मैसवाड़ी तहसील मलकापुरा महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वकील वाल्मीकि धाड़े, नीना जी धाड़े और स्वप्निल धाड़े। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत फिल्म सनम तेरी कसम से।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले?
1: ना, पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और?
1: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
2: बढ़िया, जाओ भाई।
4: RBI कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: भाई, एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
7: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
6: मतलब?
7: मतलब ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से HIV/AIDS और अन्य संक्रमक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
6: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हों।
0: आप भी सतर्कता अपनाएं और HIV के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
8: श्रोता कौर, कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म शान से। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाए हैं RD बर्मन ने, आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और आशा भोसले की। और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता साथी, ये हमें लिखते हैं मैसेज, पटेल नगर मलौट से डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी जजोरिया, गगनदीप जजोरिया, आरजू जजोरिया और गुड्डू। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया। टोरोवाल नवाशहर पंजाब से गगनदीप, चित्रा, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम और बेबी वामिका और वाणी और समस्त थांदी परिवार। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दशानी और निमित आहूजा। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। छत्तीसगढ़ के दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, ललिता, लीलावती, विनीता और रुद्र वर्मा और समस्त वर्मा परिवार। आइए सुनते हैं आपकी ही पसंद का ये गीत, फिल्म शान से।

श्रोताओं सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है हम किसी से कम नहीं। गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत रचना आरडी बर्मन की है। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की। और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे नियमित श्रोता ग्राम संदलपुर आंतरी से कालीचरण यादव, दीपक कुमार यादव, चांदनी यादव और उर्मिला देवी। सौदागर संतर मुरार से गुड्डू मिश्रा, गिरीश मिश्रा और निशा मिश्रा। मालवा रेडियो श्रोता संघ से प्रमीलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से ये लिखते हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजूभाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू। ग्राम पंचायत बठेना से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा। चटौदर सारा गांव से सुजान वर्मा, सोहद्रा वर्मा, आयुषी और कृत वर्मा। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत फिल्म हम किसी से कम नहीं से।

दोस्तों, कार्यक्रम में सुनवाते हैं आपको अगला गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म इजाज़त से। आवाज़ें हैं आशा भोसले और आरडी बर्मन की, और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता साथी समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह रोहतास बिहार से, सोनम सिंह, अनामिका सिंह बोरखेड़ा पित्रा मल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से, विनोद नेहा जैन, दीपक मयंक, चेतन नाहटा और दीक्षा कुश।

0: श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म लव स्टोरी से। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है आरडी बर्मन ने, आवाज़ एक बार फिर आशा भोसले की। इस गीत को सुनना चाहते हैं ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या साहू। कोरिया से डोनट पाबो, छत्तीसगढ़ से प्रभा जयपुरिया और गौरैया, जालंधर से अशोक जाटव। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश, पूनम, विशाल दशानी और निमित। हरदोई रोड लखनऊ उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू, परवेज बेगम, इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र, कपिल, ईशान, पूजा और समस्त छिम्पा और परिहार परिवार। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत फिल्म लव स्टोरी से।
1: hmm?

श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है प्राण जाए पर वचन न जाए। गीत के बोल रखे हैं SH बिहारी ने और संगीत रचना OP नैयर की है। आवाज़ एक बार फिर आशा भोसले की।

इस गीत को सुनने की फरमाइश की थी गुंज डुंडवारा से श्यामुल कमर राही, शाहीन, फतीमा, अदान खान, फैज़ान खान और अनु खान। इस गीत के साथ ही ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें, जिन्हें हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में वार्ड एवं जोन स्तर पर मेगा सेवा सेतु शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सेवा संकल्प अभियान के तहत कल दमोह के जबेरा जनपद सभागार में संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी की उपस्थिति में शिविर लगाकर हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र बांटे गए। प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने कल इंदौर में कहा कि नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने पर उद्यमी को प्रदेश सरकार 800 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से अनुदान देगी। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर मंदसौर जिले के ग्राम सभाओं के आयोजन के दौरान मुख्यमंत्री

0: श्वास अभियान एवं सेवा सेतु अभियान के तहत ग्रामीणों को शासन की योजनाओं की जानकारी देकर हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। वहीं रतलाम जिले में भी रिफॉर्म उत्सव 2026 और जन योजना अभियान के तहत गांधी जयंती के अवसर पर सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। और प्रदेश में मौसम के हाल में थोड़ा सा बदलाव दर्ज किया गया है। सबसे कम न्यूनतम तापमान शाजापुर के गिरवर और इंदौर में 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे अधिक तापमान धार जिले में 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुनें।

0: नमस्कार, इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, संगीत की सबसे खूबसूरत बात शायद ये है कि उसे समझने के लिए शब्दकोश नहीं, भावकोश चाहिए। एक स्वर उठता है, दूसरा उसके पास आकर ठहरता है और देखते ही देखते कुछ ध्वनियां हमारे भीतर एक भरा पूरा सा इंद्रधनुषीय संसार रच देती हैं। फिल्मी गीतों को सुनते हुए यूं लगता है कि किसी गीत में बीते हुए समय की आहट होती है, तो किसी में आने वाले कल की हल्की सी रोशनी, और किसी धुन में बस एक जादू सा होता है कि सुनते हुए ये लगने लगता है कि जिंदगी अभी भी कितनी मधुर हो सकती है, कितनी खूबसूरत हो सकती है। तो स्वरों के इसी खूबसूरत से संसार में आपकी पसंद के साथ हम चल रहे हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम है फोन करें गीत सुने। फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी दीदी, मैं ग्राम परसेठा, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश, यानी यमुना बेल्ट के किनारे से मैं बेटा सिंह यादव बातचीत कर रहा हूँ। दीदी,
0: बेटा सिंह यादव जी, कैसे हैं आप?
1: जी दीदी, मैं मस्त हूँ, अच्छा हूँ, आप लोग कैसे हो?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। क्या चल रहा है इन दिनों यमुना पार, जहाँ आप रहते हैं वहाँ?
1: जी दीदी जी, इस समय तो ये है कि धान की फसल लहरा रही है और बीच में बारिश हुई थी, तो और भी धान की फसल को अच्छा हो गया है। और यमुना नदी का पानी भी मतलब काफी बढ़ चुका है, जो भी है।
0: जी जी जी, बारिश अच्छी हुई?
1: हाँ, इस समय बारिश अच्छी हुई, झमाझम बारिश हुई और धान की फसलों के लिए भी अच्छा हो गया।
0: तो धान की फसलें मुस्कुरा रही हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, इस खुशी में गीत कौन सा सुनेंगे?
1: जी दीदी, फिल्म का नाम है श्री 420 और गीत की बोल रहे रमैया अवस्था वैया मैंने दिल तुझको दिया।
0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गीत की आपने फरमाइश की है, तो आपके साथ हम भी सुनते हैं। बेटा सिंह जी, आपने हमें फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हाँ नमस्कार,
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं यहाँ राजाराम नगर देवास से राजेश अग्रवाल बोलता हूँ। दीदी
0: राजेश जी कैसे हैं?
1: बढ़िया है। दीदी यहाँ मेरा प्रिंटिंग प्रेस का कार्य है देवास में,
0: जी जी
1: और खुद का ही कार्य है।
0: जी भाई, देखिए गणेश उत्सव अभी
1: जैसे
0: समाप्त
1: हाँ
0: हुआ है और अब नवरात्रि का इंतजार है ना?
1: नवरात्रि
0: त्योहारों का एक
1: की
0: सिलसिला
1: तैयारी
0: लगभग
1: चल
0: शुरू
1: रही
0: हो
1: है,
0: गया।
1: और
0: जी जी
1: यहाँ पर मंदिर है माता जी का, तो बहुत श्रद्धालु आते हैं, बाहर से बहुत आते हैं यहाँ पर।
0: कौन सा मंदिर है?
1: यहाँ पर पहाड़ी पे मंदिर है ना, माता टेकरी
0: जी
1: है
0: जी जी
1: भी।
0: तो राजेश जी, रेडियो आपका चल रहा है, रेडियो से आपका पुराना
1: हाँ
0: लगाव
1: यहाँ
0: है।
1: 11 से 3 बजे तक हमारे यहाँ सुनाई देते हैं आपके यहाँ के कार्यक्रम,
0: जी तो आप
1: और मैं रेडियो पर ही सुनता हूँ, जैसे मैं ऐप पे नहीं सुनता हूँ मेरे कार्यक्रम।
0: हाँ, ये बड़ी ही खूबसूरत सी बात है। रेडियो का एहसास
1: जैसे
0: एक अलग ही एहसास है ना?
1: हमारे पास 2-4 रेडियो हमने रख छोड़े हैं, इसीलिए कि कभी भी दिक्कत आए तो हम मतलब उसको नहीं उसको सुन पाए।
0: देखिए ऐप पर भी आवाज़ तो अच्छी सुनाई पड़ती है, लेकिन एक एहसास रेडियो का, जो एक पुराना एहसास है, जो एक लगाव है,
1: हाँ
0: उसकी वजह से
1: हाँ
0: रेडियो सेट रखते हैं आप, है ना?
1: और उसमें क्या है दीदी के जैसे फोन आ जाता है तो फिर सुनाई नहीं देता, और पैसे, और ये हम क्या छोटे फोन से ही हमारा धंधे का काम इससे ही चलाते हैं हम
0: तो फोन को आप फ्री रखते हैं और रेडियो
1: छोटे।
0: सेट के
1: हाँ
0: जरिए रेडियो सुनते
1: कीपैड से
0: हैं।
1: ही फोन भी लगाते हैं, कहीं भी लगाना हो तो हमें कार्यक्रम में।
0: जी जी जी
1: हमारे साथ में ये हमारे दोस्त हैं लोकेंद्र वर्मा भी सुन रहे हैं, राम बाबू मालवी भी सुन रहे हैं इस गीत को।
0: जी जी
1: आज 4 अक्टूबर का सेलन सिंह जी का जन्मदिन है, महान गायक है वो,
0: जी जी जी जी
1: और 72 वर्ष के हो चुके हैं वो, और उनका गाया हुआ गीत है भाभी फिल्म का, ना मांगू सोना चांदी ना मांगू हीरा मोती।
0: क्या बात है, तो आपने शैलेंद्र सिंह को याद किया है
1: हाँ
0: आज, है ना?
1: हाँ बिल्कुल।
0: बहुत ही अलग हटकर उनकी एक आवाज
1: हाँ
0: है
1: वो
0: जो बहुत
1: ऋषि
0: खूबसूरत
1: कपूर की
0: लगती है।
1: आवाज माने जाते हैं,
0: जी जी जी और बहुत ही खूबसूरत उनकी आवाज लगती है।
1: गीत है उनके।
0: तो
1: हाँ
0: चलिए
1: साथ
0: आप,
1: में मन्ना डे के साथ में गाया हुआ गीत है,
0: जी जी तो
1: और काफी प्रसिद्ध हुए थे ये गीत इसके, क्योंकि
0: बिल्कुल बिल्कुल सुपरहिट गाने थे
1: उनकी
0: ये।
1: डेब्यू फिल्म थी भाभी।
0: जी जी जी जी तो राजेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। शैलेंद्र सिंह को आप याद कर रहे हैं आज और उनकी आवाज़
1: धन्यवाद।
0: में आप गीत सुनना चाहते हैं, आप तक भेजते हैं आपकी पसंद का गीत, हम भी सुनते हैं। बहुत धन्यवाद।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है हमारे अगले श्रोता का। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैम, जय श्री महाकाल। शिवा लोहट MP विदिशा से आपका नियमित श्रोता बात कर रहा हूँ मैम।
0: शिवा जी कैसे हैं?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ मैम, और आपकी मधुर मधुर आवाज सुन के और भी अच्छा लग रहा है मैम।
0: हमें भी अपने श्रोताओं से बात करते हुए हमेशा ही बहुत खुशी होती है। क्या करते हैं आप शिवा जी?
1: जी मैम, मैं एक्चुअली मैं ब्लाइंड हूँ और समाज सेवा के कार्य करता रहता हूँ मैम, छोटे मोटे, जैसे हर 3 महीने में रक्तदान करना हो गया, गाय को चारा पानी रखना हो गया, पक्षियों को दाना पानी रखना हो गया, समय समय पे गरीब लोगों को भोजन कराना हो गया, और मैम पेड़ पौधे लगाना हो गया।
0: क्या बात है, सारे अच्छे काम आप करते हैं, कितनी खूबसूरत बात है। अच्छा शिवाजी, रेडियो कब कब साथ रहता है आपके?
1: मैम देखिए, रेडियो तो मेरे साथ हमेशा हर वक्त रहता है, सुबह शाम, सुबह भी उससे होती है, रात भी उसी से होती है। पर ये है कि जब हम कभी किसी पब्लिक प्लेस में जाते हैं, वहाँ पे हमको बंद करके रखना पड़ता है, नहीं तो लोग बाग हमको दीवाना कहने लगे।
0: ये बड़ी अच्छी बात आपने की कि पब्लिक प्लेस में आपको बंद करना पड़ता है, वरना लोग रेडियो का दीवाना कहेंगे। चलिए, बड़ी अच्छी बात, खूबसूरत सी बात आपने कर दी है। तो ये बताएं कि गाना कौन सा सुनेंगे आज?
1: मैम देखिए, जिस तरह से हमारे पायलट कप्तान स्मिथ जी ने हमारे भारतीयों का सर ऊंचा किया है और सीना चौड़ा कर दिया है,
0: जी

0: तो मैं उनके माँ बाप और उनको सैल्यूट करता हूँ। मैम उनके माँ बाप के चरणों में नमन करता हूँ कि जो इतना वीरतावान पुत्र उन्होंने हमारे भारत को दिया है। और मैम मैं उन्हीं को एक गाना समर्पित करता हूँ, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया शिवा जी, आपकी बात सुनकर हमारा दिल खुश हो गया बहुत।
0: और मैं तो भारत सरकार से आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, उनको जितने भी बहादुरी के पुरस्कार होते हैं वो सबसे सम्मानित होना चाहिए।
1: देखिए आपकी भावनाएं हैं जो कि उनके लिए बहुत अच्छी हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके शिवाजी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फोन किया, आभार आपका।
0: थैंक यू मैम।

0: हेलो
1: हेलो जी, नमस्कार सुनीता दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: दीदी मैं राम बाबू मालवी बोल रहा था, कोलार रोड भोपाल से।
0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत स्वागत है राम बाबू जी, कैसे हैं?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ, और परिवार में सब आनंद मंगल में है। मम्मी है, भैया भाभी अपने में से, बच्चे वगैरह जितने भी, सब आनंद मंगल में, अपने अपने काम में लगे हैं, व्यस्त है।
0: जी
1: कोई
0: जी
1: स्कूल
0: जी
1: जा रहा है, कोई क्या कर रहे हैं।
0: सब मंगल में है ये सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। अब ये बताएं कि इन दिनों चल क्या रहा है?
1: अपने ये काम वाम चल रहे हैं, और थोड़ा सा के अभी मौसम का थोड़ा चेंज हुआ है, तो इसमें अपना स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखना पड़ रहा है इसमें।
0: तो क्या
1: जी,
0: विशेष आप बचाव के लिए क्या करते हैं?
1: विशेष ये करते हैं कि जैसे मौसम चेंज हुआ, उस प्रकार से हम खाने पीने में थोड़ा ध्यान रखते हैं भोजन का। जैसे अभी मौसम चेंज हुआ, तो वो अभी गर्मी है, उस हिसाब से खाना पीना, और

0: वैसे टाइम से सोना, टाइम से जगना
1: जी,
0: और अपना सुबह सुबह सबसे पहले हम तो 12 महीने एक ही काम करते हैं दीदी, आपको मैं बता देता हूँ, गर्म पानी पीते हैं, उसके बाद में चाय पीते हैं।
1: बहुत अच्छी बात है, सुबह सवेरे जब आप गर्म पानी पीते हैं तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है, है
0: हाँ,
1: ना।
0: और हो सकता है तो कभी कभी तो हमें ना जब सोते हैं उस वक्त भी गर्म पानी करके कुनकुना पी के फिर सोते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जी
1: तो इसी तरह से स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि जब मौसम बदलता है, जब दो
0: जी
1: मौसमों का संयोग होता है, तो उस वक्त बीमारियां बहुत तेज़ी से फैलती हैं, और सर्दी जुकाम हो चाहे बुखार हो, एक लहर सी आ जाती है ना।
0: हाँ जी बिल्कुल। और मैं बताना चाहता हूँ दीदी कि जैसे बहुत सारे बोलते हैं गोलियां खाते हैं गैस बनती है, ये होता है हमारी पाचन क्रिया ठीक नहीं है, तो मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि आप गर्म पानी सुबह सुबह पिएगा, चाय मत पिएगा आप, है ना, और सोते
1: बिल्कुल।
0: वक्त आप बिल्कुल स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा।
1: तो चलिए, आपकी तरफ से एक हेल्थ टिप तो हो गई, अब हम चाहते हैं कि आप बताएं कि पसंद क्या है आज के लिए, आपकी कौन सा गीत सुनेंगे।
0: जी आज पसंद में फिल्मी छुपा रुस्तम का ये टाइटल सुनूंगा
1: छुपा रुस्तम,
0: मैं, हाँ छुपा रुस्तम का।
1: तू निकला छुपा रुस्तम।
0: हाँ जी हाँ
1: जी
0: जी
1: जी
0: दीदी, सबको सुनाना चाहते हैं, और हम भी सुनेंगे, परिवार वाले भी सुनेंगे, दीदी आप भी सुनोगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हम सब मिलकर आपकी पसंद का ये गीत सुनेंगे। राम बाबू
0: हाँ
1: जी,
0: जी
1: आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, आपने फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, नाम बताइए।
1: हाँ, मैं ग्राम बालोदा लखा, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैडम
0: नाम बता दीजिए।
1: कन्हैया लाल प्रजापति, ग्राम बालोदा लखा, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश से।
0: कन्हैया लाल प्रजापति।
1: हाँ जी मैडम। हाँ जी,
0: कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया है, महाकाल की नगरी के पास है सर। और वो मैडम बहुत बढ़िया है और आनंद मंगल है, और अभी सोयाबीन हमने निकाली है और खेत में सूख रही है।
0: बहुत अच्छी बात है कि आपकी फसल भी अच्छी हुई है और आपने खेत से ही फोन लगा लिया है और फोन लग गया है। कौन सा गीत सुनवाया आपको आज?
1: फिल्म सावन भादो, वो कानों में झुमका, चालों में ठुमका, कमर पर चोटी लटके, वो वाला।
0: आहा, बहुत ही पुराने गीत की आपने फरमाइश की, लेकिन बड़ा ही खूबसूरत गीत है और सुपरहिट गीत था, है ना? अपने समय का बहुत ही लोकप्रिय गीत रहा है ये।
1: तो मैडम, मैं इतिहास से जुड़ा हुआ इसी में।
0: जी जी जी, तो चलिए आपकी पसंद का गीत आप तक भेजते हैं। बहुत अच्छा लगा आपने हमें फोन किया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
1: आप कौन? आप कौन है?
0: सुनीता, सुनीता सिंह।
1: बहुत बढ़िया, आपके आवाज बहुत बढ़िया आपकी।
0: धन्यवाद, धन्यवाद
1: आपको, धन्यवाद। Hi.

समझी। अरमानों के खुले दरीचे आ जा जरा सिमट के, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे पचासी झटके। हट तेरा।

0: जा से झटके हट तेरा रंग है नशीला अंग अंग है नशीला रंग है नशीला अंग अंग है नशीला।
1: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: नमस्कार, हरदयाल जाटव, जिला सेत्री, मध्य प्रदेश।
1: हरदयाल जी कैसे हैं?
2: मैडम जी बढ़िया है, मजे हैं।
1: शिवपुरी में मौसम कैसा है?
2: मौसम साफ हो चुका है, धूप निकल रही है, गर्मी सी पड़ रही थोड़ी थोड़ी।
1: जी जी, मौसम बदलने को है, तो ऐसे बदलते हुए मौसम में किन बातों का ख्याल रखते हैं आप?
2: ये ख्याल रखते हैं कि अपने माने छारे में रहो, माने ज्यादा धूप में मत निकलो, और मौसम चेंज हो रहा तो माने अपना खान पान सही रखना चाहिए।
1: जी जी, और थोड़ा सतर्क होना चाहिए। और रेडियो का साथ कब कब होता है?
2: रेडियो का तो मान लो 12 घंटा रहता है अपने साथ।
1: हाँ, 12 घंटे, वाह, बहुत ही अच्छी बात है। तो आप ऐप पर सुनते हैं या रेडियो से?

0: है आपके पास?
1: मोबाइल से सुनता हूँ।
0: मोबाइल से सुनते हैं। कौन कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं आपको?
1: ये मान लो कि नमस्ते भोपाल,
0: नमस्कार भोपाल
1: जी, और जो हालो फरमाइश और जो नाटक आते हैं संग्रह, वो और 2:30 बजे के और 4-6 बजे की सुनता रहता हूँ।
0: जी जी, तो आपने तो बहुत से कार्यक्रमों के नाम ले लिए, नमस्कार भोपाल, गीत सागर, है ना, और संग्रहालय से भी आप सुनते हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो रेडियो से कुल मिलाकर आप बहुत सघन रूप से जुड़े हुए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा।
1: ये कम से कम 1997 से लगा हूँ अपना।
0: तो 1997 से अब तक रेडियो का साथ बना हुआ है, ये साथ हमेशा बना रहे ये हम कामना करते हैं। और आज बताइए कि गाना कौन सा सुनेंगे आप?
1: दिल तो पागल का सुना दीजिए।
0: दिल तो पागल है, इसका कौन सा गीत?
1: ये गाने के बोल है और फिल्म का नाम भी यही है,
0: टाइटल सॉन्ग। ठीक है जी। तो हरदयाल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी पसंद का गीत दिल तो पागल है आप तक भेजते हैं। नमस्ते, बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में, हमारे कौन से श्रोता जुड़ रहे हैं?
1: हाँ मैं नमस्ते, मैं ग्राम उलझान बोल रहा हूँ, गेंदालाल परिहार।
0: गेंदालाल परिहार कहाँ से बोल रहे हैं?
1: ग्राम उलझावन जिला सीहोर।
0: तो गेंदालाल जी क्या करते हैं आप?
1: जी मैम मेरा सिलाई काम है।
0: सिलाई का काम है
1: जी?
0: तो क्या क्या सीते हैं?
1: क्या काम है? पेंट शर्ट और कुर्ते पजामा वगैरह, जॉकेट टॉकेट सभी सिलते हैं।
0: जी जी जी जी
1: जी मेरे साथ में लड़के हैं दो मेरे, वो भी साथ में काम करते हैं।
0: तो आपका रोजगार अच्छा चलता है?
1: जी अच्छा चलता मैम।
0: जी तो एक हुनर है आपके हाथ में जो आपकी आजीविका का साधन है, इसको बना कर रखिए।
1: मैं काफी पुराना सोता हूँ मैम आपका विभारती भोपाल का, आकाशवाणी सभी सुनता हूँ मैं।
0: अच्छा, कब से सुन रहे हैं?
1: मेरे को हो गया 45 वर्ष से ज्यादा ही हो गया मैम।
0: ओहो, 45 साल से। आपकी उम्र कितनी है?
1: मेरी 55 के
0: अच्छा,
1: ऊपर ही समझो।
0: तो मतलब आप बचपन से सुन रहे हैं रेडियो, है ना?
1: बचपन से सुना है।
0: कौन से कार्यक्रम बहुत ज्यादा पसंद है आपको?
1: मैम गाने का कार्यक्रम सुनता हूँ ज्यादातर। तुम्हें
0: गाने का शौक भी है?
1: जी सुनने का शौक है,
0: गाने का नहीं। तो आपको चिंता हुई कि कहीं मैं ये नहीं कह दूं कि आप 2 लाइन सुना दीजिए। तो बताइए आज कौन सा गीत सुनेंगे?
1: मैम मेरा नाम जोकर फिल्म गाना है।
0: हाँ हाँ,
1: इसका नाम है कि जीना यहाँ मरना यहाँ।
0: जीना यहाँ मरना यहाँ, मुकेश जी की आवाज में बहुत ही
1: जी
0: खूबसूरत गीत है। तो
1: मैं पास कहना चाहता हूँ, यानी कि टीम आई थी एक बार हमारे विधान गांव में।
0: हाँ हाँ
1: किसानों का कार्यक्रम होता नहीं आप
0: जी
1: 5 बजे
0: जी
1: से,
0: जी जी जी जी
1: उसका भैया मन्नू भैया वगैरह।
0: हाँ हाँ, तो आकाशवाणी की टीम आपके गांव पहुंची थी, तो आपसे बातचीत हुई?
1: बहुत नहीं, मैं बहुत छोटा था इस समय, करीब
0: अच्छा
1: 40 साल हो गए।
0: अच्छा, तो
1: मुझे
0: बचपन की।
1: याद है बिल्कुल।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ बचपन की आप याद कर रहे हैं कि आकाशवाणी की टीम पहुंची।
1: जी
0: चलिए
1: यहाँ पे किसानों कार्यक्रम में बैठ कर चौपाल लगाई थी उन्होंने,
0: जी जी जी जी
1: रिकॉर्डिंग करके ले गए थे, फिर उन्होंने प्रसारण भी किया था कार्यक्रम का।
0: बहुत बार हम अपने स्टूडियो से बात करते हैं और कई बार यूं होता है कि हम स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित करते हैं, तो उस
1: जी
0: स्थान पर जाते हैं, किसानों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और फिर वो रिकॉर्डिंग अपने किसान भाइयों तक पहुंचाते हैं, तो उसी की याद आपको है। तो गेंदालाल जी आपसे बात
1: जी
0: करके बहुत अच्छा लगा, रेडियो की ये जो याद है आपके मन में इसको बना कर रखिए और रेडियो से प्रेम बना कर रखिए। आपकी
1: जी
0: पसंद का गीत आप तक भेज रहे हैं, बहुत बहुत
1: जी मैम
0: धन्यवाद आपने फ़ोन किया।
1: धन्यवाद।

0: भूपेंद्र जी कैसे हैं?
1: बढ़िया है।
0: और क्या चल रहा है कोटा राजस्थान में इन दिनों?
1: कोटा राजस्थान में भी गर्मी हो रही है।
0: गर्मी हो रही है जी जी जी, मतलब बारिश रुकी है तो कुछ गर्मी का एहसास है, लेकिन मौसम तो सर्दी का आने वाला है ना?
1: सब चीज का आनंद लेना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। क्या करते हैं आप भूपेंद्र जी?
1: मैं सीनियर सिटीजन हूँ मैडम।
0: अच्छा, क्या उम्र है आपकी? अरे वाह, तो 70 साल की आपकी उम्र है और रेडियो लगातार आप सुनते हैं। कब से सुन रहे हैं रेडियो?
1: रेडियो क्या बताऊं, बचपन से सुन रहा हूं मैं।
0: बचपन से सुन रहे हैं और ये एक ऐसा लगाव है जो अब तक बना हुआ है ना?
1: गानों का ज्यादा शौक है, पुराने गाने ज्यादा सुनता हूँ।
0: अच्छा, कौन सा गाना सुनवाए आज?
1: आज आप जय चित्तौड़ का सुना दो, राजस्थान के ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े।
0: जय चित्तौड़, ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े। क्या बात है, आपने अपने स्थान का ही एक पूरा महिमा गान किया है ना? तो चलिए, राजस्थान के आप हैं और राजस्थान की ही महिमा इस फिल्म में।
1: राजस्थान एमपी सब एक ही है वैसे तो, सब
0: जी वैसे तो पूरा भारत एक है, लेकिन फिर भी एक

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार, मुझे लग रहा है कि मेरी बहन सुनीता जी बोल रही है लगता है।
0: जी जी जी, लेकिन आपका तो परिचय हमें मिले।
1: सुनीता जी, आपको बता दूं कि आज तो आपको ही मुझे बताना पड़ेगा कि मैं कौन बोल रहा हूँ।
0: वैसे हम पहचान चुके हैं कि आप फूलचंद पाल जी बोल रहे हैं, है ना?
1: क्या बात, बहुत खुश कर दिया आपने मुझे।
0: अब स्थान का नाम आप बता दीजिए, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी बिल्कुल, विश्व प्रसिद्ध नगरी है खजुराहो। और बस खजुराहो से ही है, मतलब हमारा गांव मनकारी खजुराहो, बिल्कुल खजुराहो मान लीजिए आप लगा
0: जी,
1: हुआ है।
0: जी जी जी जी,
1: और ये विश्व प्रसिद्ध नगरी है खजुराहो, और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है यहाँ, हमारा जाना भी हुआ है, और दुनिया भर से लोग आते हैं देखने, है ना, इस मंदिर को।
1: हाँ, विश्व प्रसिद्ध है, बहुत
0: जी, जी।
1: लोग आते हैं, अमेरिका, बहुत विदेशों से आते हैं लोग। और अब मैं आपको बता दूंगा, तो हमारे यहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी हो गया है, तो विदेशों से भी सीधा आते हैं लोग।
0: जी जी जी जी, तो फूलचंद जी ये बताइए कि ये तो बात हो गई खजुराहो की, आप वैसे क्या करते हैं?
1: सुनीता जी, मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय पे राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी है, वहाँ पर श्री रामचरितमानस का वाचन कर रहा हूँ।
0: अच्छा अच्छा,
1: आपने सुना होगा राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी?
0: जी सुना है, बिल्कुल, नाम सुना हुआ है। जी जी,
1: देखा है आपने कभी?
0: नहीं, नाम सुना हुआ है।
1: हाँ बिल्कुल सुना है नाम, तो आप कभी भी आइए, आपका स्वागत है, मैं यहीं मिलूंगा आपको।
0: तो क्या आप कथा करते हैं?
1: जी हाँ, श्री रामचरितमानस का पाठन करते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है। तो
1: और यहाँ क्या है कि अखंड रामायण बैठी है, कई सालों से बैठी है, कई सालों तक, मतलब वो बंद नहीं होना है, वो तो हमेशा बैठी है।
0: तो इसका मतलब है कि ईश्वर का नाम लेते हुए, है ना, भक्ति रस में डूबे हुए ही आपका जीवन।
1: जी क्या है कि मैंने फैसला कर लिया है कि अब देखिए चौथा पन है, तो चौथी पन में भगवान का नाम लो और दुनियादारी से जो है मुक्ति पाओ।
0: चलिए, आपने तो जीवन का सूत्र बताया। कौन सा गाना सुनवाए आज?
1: सुनीता जी देखिए, अब कुछ दिनों में हमारी माता रानी का आगमन होने वाला है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हाँ, अभी जो है पितृ पखवाड़ा चल रहा है, तो बस कुछ दिनों बाद ही जो है, तो मुझे मैया का एक गीत सुनना है, फिल्म का नाम है अम्बा।
0: अच्छा, गीत की बोल?
1: गीत की बोले के शेरो वाली माता का जब नाम जब पार आता है, जन्म सफल हो जाता है।
0: क्या बात है, 11 तारीख से नवरात्रि लगने वाली है, आपने पहले ही माता जी का स्वागत किया है।
1: सुनीता जी ये गीत जो है आपको और जितने हमारे श्रोता सौदा है, प्रेमदास बाबा जी हो गए, बेटा सिंह यादव जी हो गए, जितेंद्र पाल जी हो गए, और हमारे जितने राहुल पाल जी हैं, और जितने श्रोता सुन रहे हैं, राजीव यादव जी हैं, सब सभी माता बहनों को ये गीत डेडिकेट रहेगा। सभी माता बहनों को हमारी जो आने वाली नवरात्रि है, सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।
0: आपको भी नवरात्रि की अग्रिम शुभकामनाएं।
1: और सुनीता जी ये गीत आपको भी एक्स्ट्रा डेडिकेट रहेगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद फूलचंद जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया आपने फोन किया।
1: नमस्कार, जय माता जी।
0: नमस्कार।

श्रोताओं, धुनें बजकर खत्म हो जाती हैं, लेकिन उनका असर हमारे भीतर की खामोशी में लगातार बजता रहता है। शायद संगीत की सबसे खूबसूरत बात भी यही है कि वो समय के बीत जाने के बाद भी हमारे भीतर अपना एक छोटा सा मौसम छोड़ जाता है। आज की इस बेहद खूबसूरत और सुरीली मुलाकात में आपकी पसंद के स्वर हमारे साथ रहे और हर गीत ने इस सफर को एक नए रंग, एक नए एहसास से भर दिया। इन मधुर स्मृतियों को समेट कर अब हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत जल्द हम आपसे फिर मिलेंगे किसी नई धुन, किसी नए गीत के साथ। अब इस कार्यक्रम से इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।

पेश हैं इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में महिला फ्रीस्टाइल कुश्ती के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतने पर अंतिम पंघाल को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि पंघाल की ये उपलब्धि अन्य खिलाड़ियों को भी प्रेरित करेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज मंडला जिले में प्रशिक्षण सह जागरूकता एवं प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि बोनस वितरण कार्यक्रम में शामिल होकर 36,17,00,000 रुपये से ज्यादा के तेंदुपत्ता बोनस का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज पांडुना जिले में अलग अलग विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इस दौरान सांदीपनी स्कूल पांडुना में सेवा मेरा योगदान तथा जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। खंडवा जिले की ग्राम पंचायतों में भी गांधी जयंती पर विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। इन ग्राम सभाओं को रिफॉर्म उत्सव 2026 के रूप में आयोजित करते हुए नागरिक केंद्रित सुधारों और जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक सहभागिता को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। बुरहानपुर जिले में महात्मा गांधी जयंती पर चापोरा के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में हुई ग्राम सभा में इस बार गांव के विकास के मुद्दों पर चर्चा की गई। इसमें बड़ी संख्या में पहुंचे युवाओं ने साफ सफाई, सौंदर्यीकरण और प्लास्टिक मुक्त गांव बनाने का संकल्प लिया। और मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन तक प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा और धूप निकलने से दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगी। इसके बाद 7 अक्टूबर को पूर्वी मध्य प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक और आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं धामड़ी मनोरा से तुलसीराम, मायावती, संदेश, आदेश, किरण, प्रज्वल और इनकी परिवार के सदस्य। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। पिपरिया से दुर्गा राम साहू, अजय कुमार साहू और जय किशन साहू। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव, बलविंदर और मीका। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, टीजी मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, अमनदीप और इनके परिवार के सभी सदस्य। आप सभी ने सुनना चाहा है कुछ कुछ होता है फिल्म का नगमा। उदित नारायण, अलका याग्निक और मनप्रीत की आवाज़ें हैं। तो आइए आप सभी को सुनवाते हैं कुछ कुछ होता है फिल्म का नगमा, समीर का लिखा हुआ, जतिन ललित की तर्ज पर।

आइए अब आपको सुनवाते हैं आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं थाना रोड बक्सर से आशीष गुप्ता, सतीश, आयुष, आयुषी और सानवी। बक्सर से ही श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद, परमानंद, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबीर, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय। आप सभी ने सुनना चाहा है आर पार फिल्म का नगमा, जिसे गाया है गीता दत्त ने। तो आइए आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं आर पार फिल्म का ये नगमा।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं और आइए अब आपको सुनवाते हैं चांदनी फिल्म का नगमा, जिसे सुनना चाहा है कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार ने। ये ख़त हमें इन्होंने भेजा दिल्ली शहर मेरे गेट से। इसी गीत को सुनना चाहा है प्रमिलागंज आटोल ज़िला रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा। तो आइए आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं ये नगमा।

आइए, अब आपको सुनवाते हैं आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं ग्राम महेशवाड़ी से स्वप्निल, अजय और इनकी परिवार के सभी सदस्य, भाटापारा दंतेरी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झाविंद्र कुमार वर्मा।

आइए अब आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में खुदा गवाह फिल्म का ये नगमा, जिसे सुनना चाहा है मुशर्रफ खां, जरीना, मुबारक, परवेज़, रोज़मीन, तैमूर, रीना, रोजूबाई और सनी बाबू। आप सभी ने ये ख़त हमें भेजा है बुरहानपुर से, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर और ऋषिका रॉबिन ने भी यही गीत सुनने की फरमाइश हमें लिख भेजी है। तो आइए आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं ये नगमा।

0: सुनिए स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर रोचक जानकारियों का साप्ताहिक कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण प्रति सोमवार दोपहर 1 बजे।
1: आकाशवाणी भोपाल के उर्दू नशरियात के तहत समाप्त फरमाएं सोमवार सुबह 9:30 बजे उर्दू प्रोग्राम आईना।
0: सुनिए आकाशवाणी भोपाल से ग्रामीण श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम ग्राम सभा प्रतिदिन शाम 7:20 से।

ये आकाशवाणी का भो ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की जब्तशुदा कहानियों की रेडियो प्रस्तुति में जाल का तीसरा भाग।

0: ऑर्डर ऑर्डर। हाँ तुम मृदुला देवी, आपको अपने बचाव में जो कुछ भी कहना है बेझिझक होकर कहिए।
1: मैं लॉर्ड, मैं यही कहना चाहती हूँ कि पुलिस ने जो आरोप मेरे ऊपर लगाए हैं वो झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। मैंने ना किसी को रोका है, ना किसी से आरजू मिन्नत की है। कोई ग्राहक मेरे सामने आया ही नहीं। हाँ, मैं दुकान में खड़ी जरूर थी, वहां कई वॉलंटियर गिरफ्तार हुए थे, जनता जमा हो गई थी, मैं भी खड़ी थी, बस थानेदार ने आकर पकड़ लिया। मैं बेकसूर हूँ मिलॉर्ड, मैंने धरना नहीं दिया।
0: ऑर्डर ऑर्डर, सभी के बयान हो चुके हैं। अब मृदुला देवी के केस पर फैसला कल सुनाया जाएगा। द कोर्ट इज एडजॉर्न टुडे।
2: चलो अंदर जाकर बैठो। चलो।
3: अरे मृदुला, आ गई तुम?
4: क्या हुआ कांता?
3: सजा हो गई? कितने दिन की हुई है?

0: सजा होगी? और मुझे? मैंने तो साफ साफ कह दिया कि मैंने धरना दिया ही नहीं है। पुलिस ने झूठा केस बनाया है।
1: और मजिस्ट्रेट तुम्हारी बात मान भी गए? वाह,
2: ऐसा भी कभी होता है?
3: मजिस्ट्रेट तो पुलिस के बयान पर ही फैसला करेगा। मैं ऐसे कितने ही मुकदमे देख चुकी हूँ।
0: क्षमा दीदी, पुलिस वालों को तो मैंने ऐसा रगड़ा दिया है कि वो भी याद रखेंगे।
2: रगड़ा है मतलब?
0: बात ये है छाया, मैं तो मुकदमे की कार्रवाई में भाग ही नहीं लेना चाहती थी, मगर जब मैंने उनके गवाहों को सरासर झूठ बोलते देखा तो मुझसे सब्र ना हो सका। मैंने उनसे जिरह करना शुरू कर दी।
2: जिरह की? और तुमने? ये भी खूब रही।
0: कांता दीदी, मैंने भी इतने दिनों घास नहीं खोदी है, थोड़ा सा कानून जानती हूँ। पुलिस ने समझा होगा ये तो कुछ बोलेगी नहीं और हम जो चाहेंगे बयान दे देंगे। फिर जब मैंने जिरह शुरू की तो सब बगलें झांकने लगे। मैंने तीनों गवाहों को झूठा साबित कर दिया। उस समय मुझे भी ना जाने कैसे चोट पर चोट सूझती गई।
1: तुम ऐसे बोलती रही और मजिस्ट्रेट ने तुमसे कुछ नहीं कहा?
0: सुशीला बहन, मजिस्ट्रेट तो उल्टा पुलिस को डांट रहा था। उसने तो थानेदार को भी 2-3 बार फटकारा। जब भी वो मेरे प्रश्नों का उलझलूल जवाब देता, मजिस्ट्रेट बोल उठता, वो जो पूछती है उसका जवाब दो, फजूल की बातें क्यों करते हो। जरा सा मुंह निकल आया था मियाँ जी का, मैंने सबका मुंह बंद कर दिया।
2: तो क्या मजिस्ट्रेट ने फैसला भी सुना दिया?
0: नहीं, अभी साहब ने फैसला तो नहीं सुनाया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं बरी हो जाऊंगी।
2: लो, तो बरी होने की इतनी खुशी है?
0: नहीं छाया, मुझे गलत मत समझो, मैं जेल से डरती नहीं, लेकिन बेवकूफ भी नहीं बनना चाहती। वहाँ हमारे मंत्री जी भी थे और भी बहुत सारी बहनें थीं, सब कह रही थीं कि तुम छूट जाओगी।
1: भाग्यवान हो, हमारी तो मियाद साल भर की है
2: और मेरी 6 महीने की। और क्यों ना हो, हमने तो अदालत के सामने जुबान ही नहीं खोली।
1: हम पुलिस वालों से भला क्यों जिरह करते?
2: हाँ, पुलिस से जिरह करते तो हम भी छूट जाते, लेकिन हमें तो यही दिखाना है ना कि नौकरशाही से हमें न्याय की कोई आशा ही नहीं है।
4: यह तो माफ़ी मांग लेने के बराबर है। गई तो थी धरना देने, नहीं तो दुकान पर जाने का काम ही क्या था? वॉलेंटियर गए थे तो गए आपकी बला से, मगर आप क्यों गई थी वहाँ? और अब कहती है मैं तो धरना देने गई ही नहीं, तो साफ साफ क्यों नहीं कहती कि माफ़ी मांगना चाहती है?
1: और नहीं तो क्या, जेल में रहने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए। उस वक्त तो वहाँ भाई लूटने आ गई, अब रोना आ रहा है। ऐसी स्त्रियों को तो राष्ट्रीय कामों के नजदीक भी नहीं आना चाहिए। आंदोलन को बदनाम करने से क्या फायदा?
5: अरे चलो रे चलो, है ये तुम औरतों ने क्या चकचक लगा रखी है? चलो चुपचाप सो जाओ सब, चलो।
4: चलो चलो बहनों, अपनी अपनी जगह पर आराम करते हैं।
0: अरे क्षमा दीदी, आप अभी तक यही खड़ी है? आप नहीं गयी उन औरतों के साथ मुझे ताना देती हुई?
3: इतना ही जान पाई हो मृदुला मुझे?
0: नहीं दीदी, मैं क्या आपको जानती नहीं? आप इन औरतों में से नहीं हैं, आप उनसे बहुत अलग हैं।
3: हाँ, पता नहीं क्यों उन औरतों से घुलना मिलना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अभी 1 ही महीना तो हुआ है मुझे यहाँ आए, पर देखो तो यहाँ और 15 कैदीने हैं इस जनाना जेल में, लेकिन किसी से भी दिल ही नहीं मिलता मेरा। ये कुत्सा, ये कानाफूसियाँ मुझे नहीं भाती मृदुला। सच कहूँ तो जो आत्माभिमान एक पॉलिटिकल कैदी में होना चाहिए वो इनमें से किसी में भी नहीं है।
0: आप इन वजहों से इन सब से दूर रहती हैं और ये समझती हैं कि मैं
3: घमंडी हूँ ना, यही इसी वजह से वो मुझसे ईर्ष्या करती हैं, मेरी उपेक्षा भी करती हैं।
0: सच दीदी, लेकिन मुझे आपसे मिलकर कभी ऐसा नहीं लगा।
3: सच कहूँ मृदुला, अभी यहाँ आए तुम्हें 8 ही दिन हुए हैं, लेकिन कितना स्नेह हो गया है तुमसे, जानती हो क्यों? तुम्हारे अंदर वो संकीर्णता, वो ईर्ष्या नहीं है, न निंदा करने की आदत, न श्रृंगार की धुन, न भद्दी दिल्लगी का शौक।
0: क्षमा दीदी,
3: मुझे लगा था कि तुम्हारे साथ 6 महीने आनंद से कट जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य मेरा कि कल तुम चली जाओगी और मैं फिर अकेली रह जाऊंगी। अब कहाँ बैठकर मैं अपना दुख दर्द बांटूंगी बोल, देश की चर्चा कहाँ करूंगी?
0: आपकी सजा में तो अभी 8 महीने बाकी है ना दीदी।
3: किसी न किसी तरह कट ही जाएंगे बहना, पर तुम्हारी याद मुझे बराबर सताती रहेगी। इस एक सप्ताह में तुमने न जाने क्या जादू कर दिया मुझ पर। कभी कभी आकर मिलती रहना।
0: जरूर मिलूंगी दीदी, मुझसे तो खुद ही नहीं रहा जाएगा। अकेली नहीं आऊंगी, भान को भी लेकर आऊंगी साथ में।
3: भान? हाँ हाँ, तुम्हारा वो लाडला बेटा।
0: हाँ, भान से कहूंगी चल तेरी मौसी आई है, तुझे बुला रही है, दौड़ा हुआ आएगा।
3: भान की बहुत याद आती है ना?
0: सच दीदी, मुझे यहाँ और किसी की याद नहीं आई सिवाय भान के। बेचारा रोया करता होगा, मुझे देखकर रूठ जाएगा, कहेगा तुम कहाँ चली गई थी, मुझे छोड़कर क्यों चली गई। जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलता, तो मेरे घर से निकल जाओ। बड़ा शैतान है दीदी।
3: अच्छा, इतना बोलता है?
0: अरे बहुत पटर पटर करता है, अपनी तोतली जबान में बोलता है झंडा ऊंचा रहे हमारा।
3: झंडा ऊंचा रहे हमारा।
0: छोलाज का मंदिर जेल में है।
3: स्वराज का मंदिर जेल में?
0: हाँ।
3: अरे बाप रे।
0: और एक डंडी कंधे पर रख लेता है और कहता है ताली छला पीनी हलाम है।
3: मतलब ताड़ी शराब पीना हराम। अच्छा मृदुला बहन, भान के पिता?
0: वो एक अंग्रेजी कंपनी में है, बार बार इस्तीफा देने का विचार करके रह जाते हैं, लेकिन गुजर बसर के लिए कोई काम तो करना ही पड़ेगा। कैसे छोड़ें? वो तो छोड़ बैठे होते दीदी।
3: अच्छा?
0: तुमसे सच कहती हूँ, उन्हें गुलामी से घृणा है, लेकिन मैं ही समझाती हूँ उन्हें। बेचारे कैसे दफ्तर जाते होंगे मैं ही जानती हूँ। जानती हो दीदी, भान अपने पिता से कहता है तुम तो अंग्रेजों ते दुलाम हो। बेचारे जब्त करके रह जाते हैं।
3: अब भान की देखभाल कौन करता है?
0: यही तो चिंता है दीदी, बेचारे भान के बापू कैसे दफ्तर जाते होंगे, कैसे उसे संभालते होंगे। सास जी के पास तो वो रहता ही नहीं, और बेचारी बूढ़ी उसके साथ कहाँ कहाँ दौड़े। वो तो चाहती हैं कि भान उनकी गोद में दुबका बैठा रहे, और भान को गोद से चिढ़ है।
3: तो तुम यहाँ चली आई जेल में, तुम्हारी सास को अच्छा लगता होगा?
0: अम्मा जी बहुत बिगड़ेंगी, सच कहती हूँ दीदी, बहुत बिगड़ेंगी।
3: अच्छा?
0: एक बार भी नहीं आई यहाँ मुझसे मिलने। बाबूजी बता रहे थे मुझ पर बहुत खफा हैं। 3 दिन तक तो दाना पानी छोड़े रही, कह रही थी इस छोकरी ने तो कुल मर्जा डुबा दी, खानदान में दाग लगा दिया। कलमुई कुलचनी ना जाने क्या क्या भक्ति है।
3: ऐसा तो नहीं कहना चाहिए उन्हें, तुम यहाँ किसी चोरी चकारी के इल्जाम से तो नहीं आई हो?
0: जाने दो दीदी, मैं उनकी बातों को बुरा नहीं मानती, पुराने जमाने की हैं, वो नहीं आएंगी यहाँ मिलने, उन्हें तो चलकर ही मनाना पड़ेगा, बड़ी मिन्नतों से मानेंगी। कल ही कथा होगी, ब्राह्मण खाएंगे, बिरादरी जमा होगी, देख लेना, जेल का प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। जब तुम्हारी सजा खत्म होगी ना, तुम हमारे घर 2-4 दिन रहकर तब जाना, मैं आकर ले जाऊंगी तुम्हें।
3: भाग्यशाली हो बहन, भरा पूरा घर है तुम्हारा, सभी लोग हैं जो तुम्हें चाहते हैं, प्रेम करते हैं।
0: आपने अपने बारे में कभी नहीं बताया दीदी, तुम्हारे घर में कौन कौन है?
3: रहने दो, क्या करोगी जानकर।
0: बताओ ना दीदी, बहन कहती हो पर बहन जैसा व्यवहार नहीं करती, अपनों से बांटे तो दर्द बटता ही है ना दीदी।
3: वो तो सही है मृदुला, दर्द बटे, इसीलिए चल बता रही हूँ, वरना सहानुभूति मिले ऐसी अपेक्षा मैं नहीं करती। मैं अकेली हूँ, एकदम अकेली, जलियांवाला बाग में मेरा सब कुछ लूट गया।
0: सब कुछ?
3: हाँ सब कुछ, पति और पुत्र दोनों की ही आहुति चली गई उस दिन। अब ऐसा कोई नहीं जिसे मैं अपना कह

0: सच कहूं तो अभी अभी मेरा हृदय इतना विशाल नहीं हुआ है कि प्राणी मात्र को अपना समझ सकूं।
1: दीदी,
0: इन 10 वर्षों में मेरा हृदय जाति सेवा में ही धैर्य और शांति खोज रहा है। जिन कारणों ने मेरे बसे हुए घर को उजाड़ दिया है, मेरी गोद सूनी कर दी, उन कारणों का अंत करके उन्हें मिटाने में लगी हूं। बड़ा बलिदान तो पहले ही कर चुकी हूं, अब मेरे पास अपने आप को होम करने के सिवा और रखा ही क्या है, बताओ।
1: सच दीदी, आपकी तपस्या तो धन्य है।
0: हाँ, औरों के लिए जाति सेवा सभ्यता का एक संस्कार हो सकती है या यशोपार्जन का एक साधन, पर मेरे लिए तो ये तपस्या ही है।
2: अरे चलो, हाँ तुम चलो चलो, जेल में तुम्हारा समय पूरा हो गया, चलो।
1: हाँ हाँ चलते हैं। दीदी, मैं तो बाहर जाकर भी तुम्हारा साथ नहीं भूल पाऊंगी और जरूर आऊंगी तुमसे मिलने।
0: तुम्हारे लिए मैं तो कुछ नहीं थी, पर मेरे लिए तुम बहुत अच्छी थी। अपने प्रियजनों में बैठकर कभी कभी इस अभागिन को जरूर याद कर लिया करना बहन। भिखारी के लिए चुटकी भर आटा ही सही।
1: दीदी, नहीं दीदी, ऐसा मत सोचो। दीदी, मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी, हर रविवार मिलने आऊंगी तुमसे।
0: मैं इंतजार करूंगी।
2: यही खराबी है औरतों में, बातें बहुत करती। चलो
3: लो शर्मा दीदी, अब खाना भी खा लो।
4: दीदी, यूं क्यों उदास बैठी हो? क्या करे, ये इतवार भी चला गया पर वो मृदुला नहीं आई, इसीलिए उदास है।
3: बेचारी, सारा दिन उसकी बात जोती रही।
4: इसमें नया क्या है कांता दीदी? पिछले 3 माह से बाढ़ देख रही हैं शमा दीदी, पर वो मृदुला नहीं आई।
3: हैं, 3 महीने हो गए? देखो तो, समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता।
4: मुझे तो पहले ही मालूम था वो नहीं आने वाली, वो तो गलती से आ गई थी इस जेल में, इसलिए तो माफी मांग कर चलती बनी।
0: माफी?

0: काम कर दीदी, आओ ना दीदी, चलो ना, चलो श्यामा दीदी, उठो ना।
1: नहीं नहीं, आप लोग खाइए, मैं यहीं ठीक हूँ।
0: हाँ भाई, आप क्यों आने लगी हमारे साथ, इससे आपकी इज्जत नहीं घट जाएगी। चलो रे अपन चलते हैं।
2: चलो चलो। हाँ दीदी चलो, हम चलते हैं।
1: मृदुला मृदुला, ये क्या जादू कर दिया रितु ने कि तेरे बिना कुछ अच्छा ही नहीं लगता। कहाँ तो दीदी से कहती थी कि हर रविवार को आएगी, और कहाँ 3 माह बीत गए, तेरे दर्शन भी नहीं हुए। हे भगवान, अभी और 5 महीने काटने, पता नहीं। अरे ये क्या, ये कोई नई सी कैदन है।
3: हाँ हाँ, चल जा।
1: अरे
3: चलो जा, अंदर जाके बैठो।
1: ये तो पहचानी हुई लगती है। अरे ये तो मृदुला ही लगती है। हाँ मृदुला ही तो है। हे भगवान, कैसी हो गई है ये, न वो रंग, न रूप, न वो कांति। मृदुला मृदुला
4: दीदी,
1: मृदुला
4: दीदी,
1: मृदुला
4: दीदी,
1: तुम आ
4: गई। क्षमा दीदी,
1: ये तेरी क्या दशा है मृदुला, सूरत ही बदल गई है तेरी, बीमार थी क्या?
4: बीमार? बीमार तो नहीं दीदी, विपत्ति से बधी हुई हूँ। तुम भी मुझे खूब कोस रही होगी ना?
1: नहीं नहीं,
4: उन सारी निठुराइयों का प्रायश्चित करने आई हूँ, और सब चिंताओं से मुक्त होकर आई हूँ दीदी।
1: ये कैसी बातें कर रही है मृदुला बहन, इतनी जल्दी तुम यहाँ फिर क्यों आई हो? अभी तो 3 महीने ही हुए हैं ना, सब कुशल तो है?
4: अब सब कुशल है दीदी, सदा के लिए कुशल है, कोई चिंता ही नहीं रही। अब यहाँ जीवन पर्यंत रहने को तैयार हूँ। तुम्हारे स्नेह और कृपा का मूल्य अब समझ रही हूँ।
1: ये कैसी बातें कर रही हो, मेरी समझ से तो परे है ये सब।
4: तुम्हें बाहर की खबरें क्या मिलती होंगी दीदी, परसों शहर में गोलियां चली थी।
1: हाँ हाँ, कुछ सुना था, मगर ठीक से मालूम नहीं पड़ा क्या हुआ क्यों हुआ।
4: जानती हो, देहातों में आजकल संगीनों की नोक पर लगान वसूल किया जा रहा है। भैरोगंज में भी ऐसा ही हुआ, एक किसान के घर में घुसकर कांस्टेबलों ने उसे पीटना शुरू कर दिया।
1: क्या कहती हो बहन?
4: हाँ।
5: आज सुअर कहीं का चमड़ी उधड़ेगी जब देगा दमड़ी।
6: अरे मैं सच कह रहा हूँ मालिक, मुझे चाहे जितना मार लो, पर मेरे पास तो कानी कोड़ी भी नहीं बची है। अरे मेरे बीवी बच्चे कई दिन से भूखे हैं मालिक, अरे घर में अन्न का दाना नहीं है, अरे मैं लगान कहाँ से दूंगा।
5: ये ऐसे नहीं मानेगा, और पिटाई लगाओ इसकी, इतनी की चोर की चमड़ी उधड़ जाए, मारो साले।
7: अरे कर जलो, बास करो ना, मरो शर्म करो। अरे अंग्रेजी हुकूमत के इशारे पर अपने ही भाई को मार दो। अरे दलालो, डूब मरो चुल्लू भर पानी में, तुमसे दो गले के कुत्ते ही अच्छे जो कम से कम इतना तो ईमान रखते। अरे छोड़ो इसे, छोड़ो।
5: अच्छा, अरे ये औरत तो बोलना भी जानती है, गाली भी देती है साली, जबान खींच लो इस कुतिया की।
8: आपके सार कपड़े ही खींच लेते हैं, फिर देखते हैं कैसे जबान लगाई।
5: हाँ वो भी ठीक रहेगा, ऐसा सबक सिखाओ इसे कि इसका हश्र देखकर फिर कभी कोई लगान की चोरी नहीं कर पाए। वरना क्या कर लेगा है? अच्छा तो ये ले। मर गया साला, इसे उठाकर फेंक दो।

0: किए गए, पीट पीट कर किसान को मार दिया गया।
1: इतना सब कुछ होता रहा और गांव के लोग तमाशा देखते रहे।
0: प्रजा की तो हर तरह से मरण है दीदी, अगर 10-20 आदमी जमा हो जाते तो पुलिस कहती हमसे लड़ने आए हैं। पुलिस के डंडों और गोलियों से सब डरते हैं, लेकिन जब किसान मरा तो गांव वालों को तैश आ गया।
1: अच्छा।
0: लाठियां लेकर दौड़ पड़े और कांस्टेबलों को घेर लिया। संभव है 2-4 आदमियों ने लाठियां भी चलाई हों। कांस्टेबलों ने गोलियां चलाना शुरू कर दी। 2-3 सिपाहियों को हल्की चोटें आईं। उसके बदले में 10-12 आदमियों की जानें ले ली गईं। हार कर गांव वालों ने लाशें उठाई और शहर वालों को अपनी विपत्ति की कथा सुनाने चले आए। इस हंगामे की खबर शहर में पहले से ही थी। लाशों को देखकर जनता उत्तेजित हो उठी और जब पुलिस अध्यक्ष ने इन लाशों का जुलूस निकालने की अनुमति ना दी तो लोग और भी झल्लाए। बहुत बड़ा जमाव हो गया। मेरे बाबूजी भी इसी दल में थे।
1: बाबूजी?
0: हाँ, भान के दादा।
1: ओह,
0: मैंने बहुत कहा मत जाओ, आज का रंग अच्छा नहीं है बाबूजी। तो कहने लगे मैं किसी से लड़ने थोड़े ही जाता हूँ। जब सरकार की आज्ञा के विरुद्ध जनाजा चला तो 50,000 आदमी साथ थे और उधर 50-100 सशस्त्र पुलिस रास्ता रोके खड़ी थी। सवार, प्यादे, सार्जेंट, पूरी फौज थी।
1: नामर्द कहीं के, निहत्तों के सामने नामर्दों को तलवार चमकाते और झंकार से शर्म भी नहीं आई।
0: जब बार बार पुलिस की धमकियों पर भी लोग ना भागे तो गोलियां चलाने का हुक्म हो गया। अम्मा जी कमरे में भान को लिए बार बार मुझे अंदर बुला रही थी। जब मैं ना गई तो वो भान को लिए छज्जे पर आ गई। उसी वक्त 10-12 आदमी एक स्ट्रेचर पर हृदेश की लाश लिए हुए द्वार पर आ गए।
1: हृदेश? हृदेश की लाश यानी भान के बापू की?
0: उन्हीं की।
1: हे भगवान,
0: अम्मा की नजर उन पर पड़ी। अम्मा ने जाकर एक बार बेटे को देखा, उसे छाती से लगाया, चूमा, आशीर्वाद दिया और उन मध्य दशा में चौराहे की तरफ चली गई।
1: हाँ?
0: और एक ही क्षण में उनकी लाश भी जमीन पर गिर पड़ी।
1: फिर
0: क्या? अम्मा के गिरते ही योद्धाओं का धैर्य टूट गया।
1: हाँ।
0: व्रत का बंधन टूट गया। सभी के सिर पर खून सवार था। उन्होंने पुलिस पर धावा बोल दिया। सिपाहियों के होश उड़ गए। जान बचाने के लिए सिपाही भागने लगे। भागते भागते भी वे बेतहाशा गोलियां चला रहे थे। भान छज्जे पर खड़ा था। न जाने किधर से एक गोली आकर उसकी छाती पर लगी और मेरे लाल वहीं पर गिर पड़ा। सांस तक ना ली थी। मगर मेरी आंखों में अब भी आंसू ना थे।
1: हाँ बहन, कभी कभी आंसू भी पथरा जाते हैं। मृदुला, उसके बाद क्या हुआ? तुम अपने घर आ गई?
0: नहीं दीदी, नहीं, उस घर में जाने की हिम्मत ही ना पड़ी। मेरे लिए अब वो घर घर ना था। मेरा घर तो अब ये है जहां मैं बैठी हूं, या फिर वही चिता। मैं आश्रम में चली गई। कल की गोलियों में पार्टी का सफाया हो गया था। उसके दफ्तर पर पुलिस ने छापा मारा और ताला डाल दिया। महिला आश्रम पर भी हमला हुआ।

0: हमने एक वृक्ष की छांह में अपना दफ्तर बनाया और वायु के समान मुक्त होकर स्वच्छंदता के साथ काम करते रहे।
1: वाह, लेकिन मैंने सुना कि कोई जुलूस भी निकाला गया था।
0: हाँ दीदी, और जानती हो नेतृत्व किसे सौंपा गया?
1: किसे?
0: मुझे।
1: सच?
0: हाँ हाँ दीदी, निश्चित समय जुलूस ने प्रस्थान किया। उसी वक्त पुलिस ने मेरी गिरफ्तारी का वारंट दिखाया। वारंट देखते ही मुझे तुम्हारी याद आ गई। पहले तुम्हें मेरी ज़रूरत थी, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। उस वक्त तुम मेरी हमदर्दी की भूखी थी, अब मैं तुम्हारी सहानुभूति की भिक्षा मांग रही हूँ दीदी। अब मुझ में लेश मात्र भी दुर्बलता नहीं है, मैं चिंताओं से मुक्त हूँ। मैजिस्ट्रेट जो कठोर से कठोर दंड देंगे उसका स्वागत करूंगी मैं। अब मैं पुलिस के किसी आक्षेप या असत्य आरोपण का प्रतिवाद नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि जेल के बाहर रहकर जो कुछ कर सकती हूं, जेल के अंदर रहकर उससे कहीं ज्यादा कर सकती हूँ। जेल के बाहर भूलों की संभावना है, बहकने का भय है, समझौते का प्रलोभन है, स्पर्धा की चिंता है, परंतु जेल सम्मान और भक्ति की एक रेखा है, उसके भीतर शैतान कदम नहीं रख सकता। मैदान में जलता हुआ अलाव वायु में अपनी उष्णता को खो देता है, लेकिन इंजन में बंद होकर वही आग संचालक शक्ति का अखंड भंडार बन जाती है।
1: वाह मृदुला, सच तुम धन्य हो, तुम्हारा बलिदान अमर है, अमर हो गई तुम मृदुला।
2: अरे मृदुला, आ गई तुम?
0: हाँ आओ, आज हम भारत माता की सेवा का फिर से व्रत लें। आओ फिर से जय घोष करें, भारत माता की
3: जय,
0: भारत माता की
3: जय,
0: भारत माता की
3: जय।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में महिला फ्री स्टाइल कुश्ती के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतने पर अंतिम पंघाल को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि पंघाल की यह उपलब्धि अन्य खिलाड़ियों को भी प्रेरित करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज बाडूना जिले में सेवा मेरा योगदान और सेवा सेतु अभियान कार्यक्रमों में शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर जिला विकास समिति की बैठक में बाडूना जिले में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दोपहर में मंडला पहुंचेंगे, जहां तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस का वितरण करेंगे। प्रदेश में नागरिकों को शासकीय सेवाएं और उनके गांव और वार्ड स्तर पर सहज और पारदर्शी, संवेदनशील और समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सेवा सेतु अभियान सरकार आपके द्वारा का आयोजन किया जा रहा है। अभियान में आज नागरीय क्षेत्रों में वार्ड एवं जोन स्तर पर मेगा सेवा सेतु शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में आज शाम 6 बजे से भक्ति गायन, डिमरियाई नृत्य, गूंज जनजातीय कर्म नृत्य की प्रस्तुति का संयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। मौसम केंद्र के अनुसार प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर साफ रहेगा, हालांकि कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। और जापान में 20वें एशियाई खेल आज संपन्न हो रहे हैं। 2 सप्ताह से अधिक के इन खेलों में कई रोमांचक मुकाबले हुए। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य के साथ कुल 85 पदक जीतकर 4था स्थान हासिल किया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए महिला कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है।

महिला सभा सुनने वाली सभी बहनों को आपकी कार्यक्रम सखी मोनिका चतुर्वेदी का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज हम आपसे एक ऐसे विषय में बात करने जा रहे हैं जिसका हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, विश्व शिक्षक दिवस। बहनों, गुरु वह दीपक है जो स्वयं जलकर दूसरों के जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। हमारे जीवन में माता पिता के बाद शिक्षक ही वह व्यक्ति होते हैं जो हमें सही दिशा दिखाते हैं, हमारी गलतियों को सुधारते हैं और हमें एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए शिक्षक के सम्मान में मनाया जाने वाला शिक्षक दिवस केवल एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि अपने गुरुजनों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा को पहचानता है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हमारे जीवन में सफलता प्राप्त करने में माता पिता के साथ साथ शिक्षकों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। बहनों, हर वर्ष 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर देता है। बहनों, शिक्षक विद्यार्थियों के लिए एक आदर्श होते हैं। उनका व्यवहार, अनुशासन, समय की पाबंदी और दूसरों के प्रति सम्मान हमें बहुत कुछ सिखाता है। एक अच्छे शिक्षक की सीख जीवन भर हमारे साथ रहती है। वे हमें यह समझाते हैं कि सफलता केवल अच्छे अंक प्राप्त करने से नहीं, बल्कि एक अच्छा और जिम्मेदार इंसान बनने से मिलती है। बहनों, आज के आधुनिक युग में शिक्षकों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। तकनीक और इंटरनेट से हमें बहुत सारी जानकारी मिल सकती है, लेकिन सही और गलत जानकारी में अंतर समझाने तथा ज्ञान का सही उपयोग करना सिखाने का कार्य शिक्षक ही करते हैं। वे हमें केवल पढ़ना नहीं, बल्कि सोचना, समझना और सही निर्णय लेना भी सिखाते हैं। हमें अपने शिक्षकों द्वारा दी गई सीख को अपने जीवन में अपनाना ही उनके प्रति सच्चा सम्मान है। हमें अपने शिक्षकों का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वे हमारे वर्तमान को ज्ञान देते हैं और हमारे भविष्य को बेहतर बनाने की नींव रखते हैं। बहनों, समय है मनोरंजन का, तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

बहनों, अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। आगे बहनों, अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं ऋतुओं के संधिकाल और आपकी स्वास्थ्य जागरूकता के विषय में। बहनों, प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है। वर्ष भर में अलग अलग ऋतुएं आती हैं और अपने साथ वातावरण में अनेक परिवर्तन लेकर आती हैं। जब एक ऋतु समाप्त होकर दूसरी ऋतु शुरू होती है तो उस बीच के समय को ऋतुओं का संधिकाल कहा जाता है। उदाहरण के लिए, वर्षा ऋतु समाप्त होकर शरद ऋतु आती है, जब सर्दी समाप्त होकर गर्मी का आगमन होता है, जब मौसम में अचानक परिवर्तन देखने को मिलता है, तापमान, नमी, हवा और हमारे आसपास के वातावरण में बदलाव होने लगता है। यह परिवर्तन हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। संधिकाल के दौरान हमारा शरीर नए मौसम के अनुसार स्वयं को ढालने का प्रयास करता है। इस समय हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से जागरूक रहना चाहिए। मौसम बदलने पर सर्दी, जुखाम, खांसी, गले की खराश, बुखार तथा एलर्जी जैसी सामान्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए थोड़ी सी सावधानी हमें कई परेशानियों से बचा सकती है। बहनों, सबसे पहले हमें अपने खानपान पर ध्यान देना चाहिए। हमें ताजा, पौष्टिक और संतुलित भोजन करना चाहिए। फल, हरी सब्जियां, दालें, अनाज और पर्याप्त मात्रा में पानी हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। बहुत अधिक तला भुना, अत्यधिक मसालेदार या अस्वच्छ भोजन करने से बचना चाहिए। भोजन करने से पहले और बाद में हाथों को अच्छी तरह धोना भी बहुत आवश्यक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है स्वच्छता। बदलते मौसम में कीटाणुओं और संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए हमें अपने घर, कक्षा और आसपास के वातावरण को साफ रखना चाहिए। अपने हाथ नियमित रूप से साबुन से धोना चाहिए और खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढकना चाहिए। हमें गंदे पानी और खुले में रखे खाद्य पदार्थों से भी बचना चाहिए। पर्याप्त नींद और आराम भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। आजकल बच्चे पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल, टेलीविजन और इंटरनेट पर काफी समय बिताते हैं। देर रात तक जागने की आदत हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकती है, इसलिए हमें समय पर सोना और पर्याप्त नींद लेना चाहिए। इसके साथ ही व्यायाम और शारीरिक गतिविधि को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। नियमित रूप से टहलना, योग करना, खेलना और हल्का व्यायाम करना शरीर को सक्रिय और स्वस्थ रखने में मदद करता है। सुबह की ताजी हवा में कुछ समय बिताना भी लाभदायक हो सकता है। ऋतु परिवर्तन के दौरान हमें मौसम के अनुसार कपड़े पहनने चाहिए। अचानक बहुत अधिक ठंडे वातावरण में जाने से भी बचना चाहिए। बहनों, हमें पानी पीने की आदत को भी बनाए रखना चाहिए। कई बार मौसम ठंडा होने पर हमें प्यास कम लगती है और हम पर्याप्त पानी नहीं पीते, लेकिन शरीर को हर मौसम में पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए नियमित अंतराल से पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। बहनों, स्वास्थ्य जागरूकता का अर्थ केवल बीमारी से बचना नहीं है, बल्कि अपने शरीर और मन दोनों का ध्यान रखना है। हमें तनाव से बचने के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, मनोरंजन और परिवार के साथ समय बिताने को भी महत्व देना चाहिए। खुश और सकारात्मक मन भी अच्छे स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बहनों, हम अक्सर कहते हैं कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। वास्तव में स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के बिना

हम अपने जीवन के लक्ष्यों को अच्छी तरह प्राप्त नहीं कर सकते। स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए और सदैव जागरूक रहिए। आगे बहनों, अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं बारिश की नमी और सीलन से बचने के उपाय के विषय में। बहनों, बारिश का मौसम हम सभी को बहुत अच्छा लगता है। चारों ओर हरियाली दिखाई देती है, पेड़ पौधे खिले हुए उठते हैं और वातावरण ठंडा तथा सुहावना हो जाता है। लेकिन बारिश अपने साथ कुछ समस्याएं भी लेकर आती है। लगातार बारिश होने के कारण घरों की दीवारों, छतों और फर्श की नमी आ जाती है। सीलन के कारण दीवारों पर काले या हरे धब्बे दिखाई देने लगते हैं, पेंट खराब होने लगता है और घर में एक अजीब सी गंध आने लगती है। नम वातावरण में फफूंद और अन्य सूक्ष्म जीव तेजी से बढ़ सकते हैं। इससे कुछ लोगों को खांसी, छींक, नाक में परेशानी या सांस लेने की असुविधा जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए बारिश के मौसम में नमी और सीलन से बचाव करने का कुछ आवश्यक कदम उठाने चाहिए। बारिश रुकने के बाद कुछ देर के लिए खिड़कियां और दरवाजे खोल देना चाहिए ताकि अंदर की नमी बाहर निकल सके। जिन कमरों में हवा का आवागमन कम होता है वहाँ सीलन जल्दी पैदा होती है। यदि छत में पानी टपक रहा है या दीवार में कहीं से पानी आ रहा है तो उसकी मरम्मत समय पर करवानी चाहिए। छोटी सी दरार को नज़रअंदाज करने पर बाद में बड़ी समस्या हो सकती है। छत की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था भी ठीक रखनी चाहिए ताकि बारिश का पानी जमा ना हो। बहनों, हमें अपने घर के फर्नीचर और सामान को भी नमी से बचाना चाहिए। लकड़ी के सामान को दीवार से थोड़ा दूर रखना ही अच्छा है, विशेषकर उन दीवारों से जिनमें सीलन अधिक आती है। कपड़े, किताबें और जूते चप्पल भी नम स्थानों पर नहीं रहने चाहिए। बहनों, हमें यह समझना चाहिए कि सावधानी ही बचाव है। यदि हम बारिश शुरू होने से पहले ही घर की छत, दीवारों, नालियों और पाइपों की जांच कर ले तो सीलन की समस्या को काफी हद तक रोका जा सकता है। बहनों, बारिश प्रकृति का सुंदर उपहार है। हमें इसका आनंद लेते हुए इससे जुड़ी समस्याओं के प्रति भी जागरूक रहना चाहिए। आगे बहनों, अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं पितृपक्ष की सनातन परंपरा और भारतीय संस्कृति के विषय में। बहनों, भारत एक ऐसी पवित्र भूमि है जहां परिवार, संस्कार और पूर्वजों के प्रति सम्मान को सदैव विशेष स्थान दिया गया है। हमारी भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है कि हम केवल अपने वर्तमान के बारे में ना सोचें, बल्कि उन पूर्वजों को भी याद करें जिनके संस्कारों और प्रयासों से हमारा परिवार और समाज आगे बढ़ा है। इसी भावना से जुड़ी है एक महत्वपूर्ण परंपरा, पितृपक्ष। बहनों, पितृपक्ष वह अवधि है जिसमें हिंदू परिवार अपने दिवंगत पूर्वजों का स्मरण करते हैं और उनके प्रति श्रद्धा एवं कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इस दौरान श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे धार्मिक कर्म किए जाते हैं। बहनों, हमारी संस्कृति में एक प्रसिद्ध विचार है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। इसका अर्थ है कि माता और पिता को देवतुल्य सम्मान दिया जाए। पितृपक्ष इसी भाव को आगे बढ़ाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन केवल हमारी व्यक्तिगत उपलब्धियों का परिणाम नहीं है, बल्कि इसके पीछे हमारे माता पिता, दादा दादी और अनेक पूर्वजों का योगदान भी रहा है। इस समय लोग जरूरतमंदों को भोजन कराते हैं, दान करते हैं और अपने पूर्वजों को श्रद्धा पूर्वक याद करते हैं। इस प्रकार यह परंपरा केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, बल्कि मानवता की सेवा की भावना को भी मजबूत करती है। भारतीय संस्कृति की सबसे सुंदर विशेषताओं में से एक है कि वह हमें अपने जड़ों से जुड़े रहने की प्रेरणा देती है। पितृपक्ष हमें यही संदेश देता है कि अतीत का सम्मान करते हुए वर्तमान को बेहतर बनाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छे संस्कार छोड़े। बहनों, आज के समय में पितृपक्ष की परंपराओं को समझते हुए हमें इनके मूल संदेश, श्रद्धा, कृतज्ञता, परिवार के प्रति सम्मान, सेवा और सदाचार को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जिस परिवार को अपनी जड़ों का सम्मान होता है, उसकी संस्कृति की नींव सदैव मजबूत रहती है। बहनों, भारत की संस्कृति में पितृपक्ष का विशेष स्थान है। यदि हम इन परंपराओं को वैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टि से देखें तो इनके पीछे कई उपयोगी संदेश दिखाई देते हैं। पहला महत्व है मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य। समाज में सहयोग की और समानता की भावना को बढ़ावा दिलाता है।

0: इस अवधि में कई परिवार सात्विक और सादा भोजन करने पर जोर देते हैं। मौसम के परिवर्तन के समय हल्का संतुलित और स्वच्छ भोजन करना स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगी हो सकता है। पितृपक्ष हमें पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का संदेश भी देते हैं। तर्पण और धार्मिक कार्य करते समय जल को प्रदूषित न करना तथा प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करना आज के समय में अत्यंत आवश्यक है। बहनों, पितृपक्ष का वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक महत्व, इसी विषय पर और अधिक जानकारी के लिए आइए सुनवाते हैं आपको यह वार्ता। इस विषय पर जानकारी दे रही हैं श्रीमती रत्ना सरीन।
1: पैतृक पूर्वजों का पखवाड़ा, जिसे पितृपक्ष भी कहा जाता है, हिंदू कैलेंडर में 16 चंद्र दिन की अवधि है, जब हिंदू अपने पूर्वजों को विशेष रूप से भोजन प्रसाद के माध्यम से श्रद्धांजलि देते हैं, पितरों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं। इसे 16 श्राद्ध, महालय पक्ष, अपर पक्ष आदि नामों से भी जाना जाता है। जन्म एवं मृत्यु का रहस्य अत्यंत गूढ़ है। वेदों में, दर्शन शास्त्रों में, उपनिषदों में एवं पुराणों आदि में हमारे ऋषि मुनियों ने इस विषय पर विस्तृत विचार किया है। श्रीमद् भागवत में भी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जन्म लेने वाले की मृत्यु और मृत्यु को प्राप्त होने वाले का जन्म निश्चित है। यह प्रकृति का नियम है। शरीर नष्ट होता है, मगर आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती। अपने पूर्वजों को निमित्त दी गई वस्तुएं सचमुच उन्हें प्राप्त होती हैं या नहीं, इस विषय में अधिकांश लोगों को संदेह है। हमारे पूर्वज अपने कर्म अनुसार किस योनि में उत्पन्न हुए हैं, जब हमें इतना ही नहीं मालूम, तो फिर उनके लिए दिए गए पदार्थ उन तक कैसे पहुंच सकते हैं? क्या भोजन कराने से हमारे पूर्वजों का पेट भर सकता है? ना जाने इस तरह के कितने ही प्रश्न लोगों के मन में उठते होंगे। अब श्राद्ध संस्कार को ही लीजिए। श्राद्ध सूक्ष्म शरीरों के लिए वही काम करते हैं जो जन्म के पूर्व और जन्म के समय के संस्कार स्थूल शरीर के लिए करते हैं। यहाँ से दूसरे लोक में जाने और दूसरा शरीर प्राप्त करने में जीवात्मा की सहायता करके मनुष्य अपना कर्तव्य पूरा कर देता है। इसलिए इस क्रिया को श्राद्ध कहते हैं, जो श्रद्धा से बना है। जिस प्रकार सभी संस्कार प्रकृति के कार्य को सहायता पहुंचाने के लिए बने हैं, उसी प्रकार श्राद्ध पदा का भी उद्देश्य यही है कि वह प्राणमय कोष की अन्नमय कोष के यथावत रहने के समय तक उस पर अवलंबित रहने की प्रकृति को नष्ट कर दें, और जब तक प्रकृति अपने साधारण प्रक्रिया में पहुंचाना चाहे, उस मनुष्य को भूलोक में इस प्रकार धारण किए रहें। इस विषय में सबसे पहला आवश्यक कार्य यह है कि अन्नमय कोष नष्ट कर दिया जाए। पितृपक्ष की परंपरा हजारों वर्षों पुरानी है। वैदिक काल में भी श्राद्ध और तर्पण का विशेष महत्व था। पितरों को देवताओं के समान सम्मान दिया जाता था। यह मान्यता थी कि पूर्वजों का आशीर्वाद परिवार की उन्नति, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए आवश्यक है। पितृपक्ष को विशेष मानने का कारण यह है कि यह हमारे जीवन में पूर्वजों के योगदान के याद करने का अवसर देता है। यह न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि पारिवारिक मूल्यों को मजबूत करने का भी माध्यम है। यह समय आत्मचिंतन और आध्यात्मिक विकास का अवसर देता है। यह पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का सही समय है। यह परंपराओं और संस्कारों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम भी है। हालांकि पितृपक्ष धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है, इसके वैज्ञानिक पहलू भी महत्वपूर्ण हैं। श्राद्ध में उपयोग किए जाने वाले जैसे तिल, कुश और चावल का स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव होता है। पितृपक्ष में दान करने से समाज में संतुलन और सहयोग की भावना पैदा होती है। पितृपक्ष हमें यह संदेश देता है कि जीवन केवल भौतिक सुखों पर सीमित नहीं है। यह समय आत्मा की यात्रा और कर्म फल को समझने का अवसर देता है। यह हमें अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का मौका भी देता है। पितृपक्ष में दान का भी विशेष

0: महत्व है, जैसे अन्नदान, वस्त्रदान और गोदान को श्रेष्ठ दान माना गया है। यह दान न केवल पितरों को संतुष्ट करता है बल्कि परिवार में समृद्धि लाता है। यदि तिथि ज्ञात न हो तो सर्वपितृ अमावस्या को सभी पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है। पितृपक्ष हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा का प्रतीक है। यह समय केवल धार्मिक अनुष्ठानों का नहीं बल्कि आध्यात्मिक विकास और पारिवारिक एकता का भी माध्यम है। जब हम अपने पूर्वजों को सम्मान देते हैं तब हम अपनी जड़ों से जुड़ते हैं। पुराणों में कहा गया है कि हमारे पितृ पशु पक्षियों के माध्यम से हमारे निकट आते हैं। गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी के माध्यम से पितृ आहार ग्रहण करते हैं। श्राद्ध के समय पितरों के लिए भी आहार का एक अंश निकाला जाता है, तभी श्राद्ध कर्म पूरा होता है। गाय, कुत्ता, चींटी, कौवा और देवताओं के लिए निकाला गया भोजन इन जीवों के माध्यम से पंच तत्वों में विलीन होता है और पंच तत्वों में विलीन हुए प्राणियों को तृप्ति देता है। हमारी संस्कृति में सारी वसुधा को एक कुटुंब माना गया है और सर्वहित की कामना की गई है। श्राद्ध इसी परंपरा को पोषित करता है, अबोले जीवों के प्रति हमें संवेदनशील बनाता है। हमारी ऋषि परंपरा समवेद स्वर में उद्घोषित करती है कि प्रकृति को हम जो देते हैं वह वही हमें लौटाती है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक ब्रह्मांड की ऊर्जा तथा उस ऊर्जा के साथ पितृ प्राण पृथ्वी पर व्याप्त रहता है। धार्मिक ग्रंथों में मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति का बड़ा सुंदर और वैज्ञानिक विवेचन भी मिलता है। श्रद्धा इदम श्राद्धम, जो श्रद्धा से किया जाए वही श्राद्ध है। पितर के निमित्त उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक जो अर्पित किया जाता है वह श्राद्ध है। पुराणों में कई कथाएं इस उपलक्ष्य को लेकर हैं, जिसमें कर्ण के पुनर्जन्म की कथा काफ़ी प्रचलित है एवं हिंदू धर्म में सर्वमान्य श्री रामचरितमानस में भी श्री राम के द्वारा श्री दशरथ जी और जटायु को गोदावरी नदी पर जलांजलि देने का उल्लेख है एवं भरत जी के द्वारा दशरथ हेतु दश गात्र विधान का उल्लेख भरत कीनी दश गात्र विधाना तुलसी रामचरितमानस में हुआ है। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य पर तीन प्रकार के ऋण प्रमुख माने गए हैं, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। इसमें पितृ ऋण सर्वोपरि है। पितृ ऋण में पिता के अतिरिक्त माता तथा वे सब बुजुर्ग भी सम्मिलित हैं जिन्होंने हमें अपना जीवन धारण करने तथा उसका विकास करने में सहयोग दिया। चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी लगभग 3,85,000 किलोमीटर है। हम जिस समय पितृ पक्ष मनाते हैं अर्थात आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के 15 दिनों में चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट अर्थात लगभग 3,81,000 किलोमीटर पर ही रहता है। इसलिए कहा जाता है कि पितृ हमारे निकट आ जाते हैं। शतपथ ब्राह्मण में कहा है, विभु उर्ध्व भागे पितरो वसंती, यानी विभु अर्थात चंद्रमा के दूसरे हिस्से में पितरों का निवास है। चंद्रमा का एक पक्ष हमारे सामने होता है जिसे हम देखते हैं, परंतु चंद्रमा का दूसरा पक्ष हम कभी देख नहीं पाते। इस समय चंद्रमा दक्षिण दिशा में होता है। आज हम यदि आकाश को देखें तो दक्षिण दिशा में दो बड़े सूर्य हैं जिनसे विकिरण निकलता रहता है। हमारे ऋषियों ने उसे श्वान प्राण से चिन्हित किया है। शास्त्रों में इसका उल्लेख लघु श्वान और वृहद श्वान के नाम से है। इसे ही आज के विज्ञान ने केनिस माइनर और केनिस मेजर के नाम से पहचाना है। श्राद्ध में हम एक प्रकार से उसे ही हवि देते हैं कि पितरों को उनके विकिरणों से कष्ट ना हो। इस प्रकार से देखा जाए तो पितृपक्ष और श्राद्ध में हमें न केवल अपने पितरों का श्रद्धापूर्वक स्मरण कर रहे हैं बल्कि पूरा खगोल शास्त्र भी समझ रहे हैं। श्रद्धा और विज्ञान का यह अद्भुत मेल है जो हमारे ऋषियों द्वारा बनाया गया है।
1: बहनों, अभी आपने सुनी वार्ता जिसका विषय था पितृपक्ष का वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक महत्व। इस विषय पर हमें जानकारी

जानकारी दे रही थी श्रीमती रत्ना सरीन। बहनों, खाना खजाना में हम आपको बताने जा रहे हैं कद्दू से बनने वाली कुछ टेस्टी रेसिपी। जी हाँ बहनों, कद्दू से सब्जी तो सभी बनाते हैं। आज हम बनाते हैं कद्दू से मसाला टिक्की। इसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम कद्दू, इसे हमें किसकर और उबालकर इस्तेमाल करना है, 2 बड़े उबले आलू, ब्रेड क्रम्स या सूजी, 2 में से जो भी आपके घर में अवेलेबल हो ले सकते हैं, आधा कटोरी, नमक स्वाद अनुसार, हरी मिर्च 2 बारीक कटी हुई, 2-3 चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ, लाल मिर्च 1/4 चम्मच, चाट मसाला 1 चम्मच, उबले और कद्दूकस किए हुए कद्दू और आलू में ये सभी सामग्री मिलाकर एक डो तैयार कर ले। अब इन्हें टिक्कियों का आकार देकर गर्म तवे पर घी या तेल जिसमें भी आप सेकना चाहें लाइट ब्राउन होने तक सेक लें। तैयार है टेस्टी कद्दू की टिक्की, इसे आप हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। और अब बनाते हैं बहनों कद्दू का चीला। इसके लिए हमें चाहिए किसा हुआ कद्दू 1 कटोरी, 1 कटोरी रवा, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ, नमक स्वाद अनुसार, चाट मसाला 1/2 चम्मच, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 बड़े चम्मच दही। इन सभी सामग्रियों को एक कटोरे में थोड़ा लिक्विड बैटर बना ले और थोड़ा थोड़ा करके मिश्रण को चीले का आकार देकर गर्म तवे पर घी या तेल लगाकर सेक ले। तैयार है आपका टेस्टी कद्दू का चीला। बहनों, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। अपनी कार्यक्रम सखी मोनिका चतुर्वेदी को दे इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है। पहले सुनवाते हैं नरेंद्र कुमार राहुल और साथियों का गाया ये भजन।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है। आप सुन रहे हैं नरेंद्र कुमार राहुल और साथियों के गाए लोकगीत। आइए सुनते हैं चेतावनी।

बद्री प्रसाद नगर से अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। वक्त है छोटे से अंतराल का।

अंतराल के बाद आपका पुनः स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत जूली फिल्म से लिया है, जिसे आवाज दी किशोर कुमार ने। आनंद बख्शी की शब्द रचना, संगीत राजेश रोशन का।

0: किशोर कुमार की आवाज़ में गाए याराना फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:10 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमास। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज मंडला में आयोजित कार्यक्रम में 9,04,126 तेंदुपत्ता संग्राहकों को 36,17,37,518 रुपए की बोनस राशि अंतरित करेंगे। इसके साथ ही 84 वन समितियों के सदस्यों को 26,56,53,929 रुपए का काष्ठ लाभांश भी वितरित किया जाएगा। कार्यक्रम में पूर्व मंडला, पश्चिम मंडला, डिंडौरी, जबलपुर, उत्तर सिवनी, दक्षिण सिवनी, उत्तर बालाघाट और दक्षिण बालाघाट वन मंडलों के तेंदुपत्ता ग्राहक लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री इसके बाद पाडुना में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 8 अक्टूबर को मुंबई में प्रमुख उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 बैठक करेंगे। इस दौरान वे प्रदेश में निवेश की संभावनाओं और औद्योगिक विकास के अवसरों पर चर्चा करेंगे। बैठक इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश के तहत आयोजित होगी। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने आज भोपाल में मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक देश की पूरी तरह

0: नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी और देश के भविष्य के लिए ड्रग्स और नशे को खत्म करना बेहद जरूरी है।
1: देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये संकल्प लिया है कि 2029 तक ये देश पूर्णतः ड्रग मुक्त होगा, नशा मुक्त होगा। निश्चित रूप से ये इस देश के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। जब उन्होंने नक्सलवाद को समाप्त करने की बात की थी तो उसको मूर्त रूप दिया और देश से नक्सलवाद समाप्त हुआ। देखेंगे मध्य प्रदेश सरकार भी पूरी तरह से कटिबद्ध है।
0: गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। रतलाम, खंडवा, बुरहानपुर, मंदसौर और डिंडौरी सहित विभिन्न जिलों में आयोजित ग्राम सभाओं में ग्रामीणों ने विकास योजनाओं और स्थानीय समस्याओं पर चर्चा की। वर्ष 2027-28 की ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत सड़क, पेयजल, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े प्रस्ताव तैयार किए गए। स्वच्छता, प्लास्टिक मुक्त गांव, बाल विवाह और नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता पर भी जोर दिया गया। ग्राम सभाओं में सुशासन, पारदर्शिता, डिजिटल पंचायत और ग्रामीणों के विकास कार्यों में भागीदारी बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। प्रदेश से मानसून की विदाई हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसून 24 जून को दाखिल हुआ था और 3 अक्टूबर को विदा हुआ। मानसूनी सीजन में प्रदेश में 35.8 इंच बारिश दर्ज हुई, जो सामान्य से करीब 4% कम है। अगले 3 दिन मौसम मुख्यतः साफ रहेगा और दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगी। 7 अक्टूबर से पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मानसून की विदाई के बाद अब दिन में गर्मी और रात में ठंडक बढ़ने की संभावना है। अमन सहरावत ने एशियाई खेलों में पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे इस वर्ग में एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में जन विश्वास अभियान के तहत स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ संजय गोयल ने शहपुरा विकासखंड के 3 सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। नर्मदापुरम जिले में शासकीय गृह विज्ञान अग्रणी महाविद्यालय में 3 MP बटालियन के दिशा निर्देशों के तहत NCC कैडेट्स ने स्वच्छता अभियान चलाया। झाबुआ में दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे पर पत्थरबाजी और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा लगातार निगरानी, पेट्रोलिंग और जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बालाघाट जिले में मुख्यमंत्री जन विश्वास सेतु अभियान के तहत आयोजित शिविर में विधायक गौरव सिंह पारधी ने अधिकारियों के साथ क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा की। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स और डीटीएच का ऑडियो चैनल, साथ ही साथ न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर। इस समय दोपहर के 2:15 होने को हैं। कुछ ही देर में दोपहर समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अपने संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा नवाचार के बूते ही विकसित बनेगा। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनावों के लिए प्रचार आज समाप्त हो जाएगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई पीएम सेतु योजना का एक वर्ष पूरा। केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ स्थानों पर कल तक तेज वर्षा का अनुमान। यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की। हूती ने रियाद में अरामको तेल संयंत्र पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया। और जापान में एशियाई खेलों का समापन आज। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देश के संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा नवाचार की मजबूती से ही विकसित भारत का निर्माण होगा। नई दिल्ली में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के 58वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि निवेशकों का विश्वास हासिल करके ही देश प्रगति कर सकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे

0: तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और तेजी से हो रहे तकनीकी बदलावों के दौर में भी प्रवेश कर रहा है।
1: So the significance of this great journey becomes even more apparent when we look at India of today. Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile five economy, we become the fourth largest economy and I'm sure soon we are going to be the third largest economy of the world.
0: श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश में बेहतर कंपनी सुशासन को बढ़ावा देने में संस्थान का योगदान सराहनीय रहा है और टिकाऊ विकास के क्षेत्र में वैश्विक मानक स्थापित किए गए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में संस्थान के सामूहिक प्रयासों से भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकेगा। पीएम सेतु योजना का आज एक वर्ष पूरा हो गया है। इस योजना के अंतर्गत उन्नत आईटीआई के माध्यम से कौशल विकास और रोजगार की संभावना मजबूत हुई है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की यह योजना पिछले वर्ष आज ही के दिन शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य शासन में उद्योग की भागीदारी मजबूत करना, प्रशिक्षण व्यवस्था बेहतर बनाना और रोजगार की बदलती जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रमों को बढ़ाना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस योजना का उद्देश्य सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई को आधुनिक और उद्योग की जरूरतों के अनुसार तैयार करना है। योजना के तहत आईटीआई में प्रशिक्षण सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है, साथ ही युवाओं को रोजगार के लिए जरूरी व्यावहारिक कौशल देने पर जोर दिया जा रहा है। पीएम सेतु योजना के लिए कुल 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। इसमें केंद्र सरकार 30,000 करोड़, राज्य सरकार 20,000 करोड़ और उद्योग जगत 10,000 करोड़ रुपए का योगदान देगा। देश में सरकारी और निजी आईटीआई की संख्या 2014 में 9,000 से अधिक थी, जो 2026 में बढ़कर 13,000 से ज्यादा हो गई है। पीएम सेतु योजना के तहत अब तक 850 आईटीआई को चुना गया है। इनमें 172 हब आईटीआई और 678 स्पोक आईटीआई शामिल है। योजना के तहत 200 आईटीआई क्लस्टर में इसे देश भर में लागू करने की मंजूरी दी गई है। 14 आईटीआई क्लस्टर के लिए 3,446 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश योजना को मंजूरी मिल चुकी है। आनंद और ऋषु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यह यात्रा निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की इसी भावना के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज की विशेष श्रृंखला में असम में गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण की जानकारी दी जा रही है। इस हवाई अड्डे के कारण अब पूर्वोत्तर एक प्रमुख वैश्विक प्रवेश द्वार बन गया है।
3: असम का लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक क्षेत्रीय ट्रांजिट केंद्र से विकसित होकर एक प्रमुख वैश्विक प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित हो गया है, जो पूर्वोत्तर भारत में आर्थिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण को नई गति दे रहा है। प्रकृति से प्रेरित नए एकीकृत टर्मिनल 2 पर केंद्रित इस विशाल विस्तार परियोजना को केंद्र सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के तहत एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 दिसंबर 2025 को इस अत्याधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन किया था और 22 फरवरी 2026 को इसका वाणिज्यिक संचालन शुरू हुआ। नई सुविधा के साथ हवाई अड्डे की वार्षिक यात्री क्षमता बढ़कर 1,30,00,000 से अधिक हो गई है। टर्मिनल के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस प्रकार का बुनियादी ढांचा और अन्य विकास परियोजनाएं युवाओं के लिए एक नए अवसर सृजित करती है।
4: इंफ्रास्ट्रक्चर के इस विकास का बहुत बड़ा संदेश भारत की विकास यात्रा की पहचान बन रहा है। इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, निवेशकों को कनेक्टिविटी का भरोसा मिलता है, लोकल प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में पहुंचाने का रास्ता खुलता है और सबसे बड़ा भरोसा उस युवा को मिलता है जिसके लिए नए अवसर पैदा होते हैं। और इसलिए आज हम असम को असीम संभावनाओं की इस उड़ान पर आगे बढ़ते देख रहे हैं।
3: दक्षिण पूर्व एशिया के रणनीतिक संपर्क बिंदु पर स्थित यह उन्नत हवाई अड्डा बैंकॉक, पारो और सिंगापुर जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए सुगम हवाई संपर्क प्रदान कर रहा है, जिससे असम भारत के पूर्वी प्रवेश द्वार के रूप में अपनी भूमिका को और सशक्त बना रहा है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ियां दोनों विधानसभा क्षेत्रों में भेजी जा रही हैं। मतदान 6 अक्टूबर को होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज अमरीका के हिंद प्रशांत कमान के प्रमुख एडमिरल सैमुअल जे पापारो से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और अमरीका के बीच सुरक्षा साझेदारी और समुद्री सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा हुई। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज राजस्थान के जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क में दो नर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों को छोड़ा। श्री यादव ने कहा कि ये उपलब्धि भारतीय वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और कर्मचारियों की एक दशक की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पक्षियों को जंगल में छोड़ने से इनके संरक्षण में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में तकनीक और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए IIT के पूर्व विद्यार्थियों और विशेषज्ञों से सहयोग की अपील की है। विजयवाड़ा में पैन IIT आंध्र प्रदेश समिट के बाद उन्होंने कहा कि अमरावती में प्रस्तावित पैन IIT वर्ल्ड काउंसिल शिक्षा, उद्योग और IIT के पूर्व विद्यार्थियों को एक साथ लाने में सहायता करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय कल से गुजरात में 2 दिन का चिंतन शिविर आयोजित करेगा। इसमें देश में राजमार्ग के विकास और परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। शिविर में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी तथा एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी पर चुप्पी साधने के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में कहा कि पूरा राष्ट्र कैप्टन स्मिथ के असाधारण साहस से गौरवान्वित है। उन्होंने कहा कि कैप्टन स्मिथ ने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। डॉक्टर त्रिवेदी ने कहा कि जहां कैप्टन स्मिथ की बहादुरी की भारत और विश्व में प्रशंसा हो रही है, वहीं कांग्रेस नेतृत्व इस उपलब्धि पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल अपना वोट बैंक खोने के डर से मौन है। दिल्ली पुलिस ने 3 महिला पत्रकारों के पुलिसकर्मियों पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच अपराध शाखा को सौंप दी है। ये घटनाएं कल नई दिल्ली में एक प्रदर्शन के दौरान हुई। ये पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था बनाने के लिए तैनात थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: अपडेट रहे, आगे रहे, एक्स पर @AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। यमन की सेना ने देश के कुछ प्रमुख मोर्चों पर हूती लड़ाकों को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। इस बीच सऊदी अरब ने हूतियों के रियाद में मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा खारिज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की है।
6: हूती विद्रोहियों के रियाद पर हमले के दावे को सऊदी अरब ने खारिज कर दिया है। सऊदी पक्ष ने कहा है कि यमन में मिली हार के चलते हूती एक इल्यूजरी विक्ट्री का दावा कर रहे हैं। इससे पहले हूतियों ने दावा किया था कि उन्होंने रियाद के पास अरामको की एक फैसिलिटी को निशाना बनाया और उनके मिसाइल और ड्रोन हमले टारगेट पर भी लगे। वही यमन की इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट ने कहा है कि उसकी आर्म फोर्सेस ने तैज और तूर अलबहा में हूती ठिकानों के खिलाफ 97 ऑपरेशंस किए। इन ऑपरेशंस में 260 हूती लड़ाकों को न्यूट्रलाइज करने और 44 मिलिट्री व्हीकल्स और सप्लाई एसेट्स को नष्ट करने का दावा किया गया है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
0: सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रवक्ता ने कहा कि ताइज में हुए नुकसान के बीच हूती समूह अपनी जीत दिखाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह हूतियों की अपने नुकसान से ध्यान भटकाने की कोशिश है। अमरीकी तटरक्षक बल ने पुष्टि की है कि बरमूडा से बोस्टन जा रहे लापता चिकित्सा विमान का मलबा नेटकट तट के पास मिल गया है। इस विमान में कनाडा के 4 और बरमूडा के 2 नागरिक सवार थे जिनकी तलाश की जा रही थी। कनाडा के परिवहन मंत्री स्टीवन मैकिनॉन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्थिति पर पैनी नजर रखी जा रही है। जापान के नागोया में एशियाई खेल आज संपन्न हो रहे हैं। समापन समारोह कुछ ही देर में 2:30 बजे शुरू होगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि महिला निशानेबाज नीरू ढांडा भारत की ध्वजवाहक होंगी।

0: एशियाई खेलों में भारत शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। क्रिकेट, कबड्डी और हॉकी में भारतीय महिला और पुरुष टीमों ने स्वर्ण पदक जीते। इस जीत के साथ भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई भी कर लिया है। कुश्ती में अमन सहरावत ने पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत की मुक्केबाजी टीम ने 3 स्वर्ण पदक जीत कर इतिहास रच दिया। गोल्फ में प्रणवी उर्स एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला गोल्फर बनी। भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने रजत पदक हासिल किया। तीरंदाजी में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहली बार स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। जबकि कुमकुम मोहत व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज बनी। तीरंदाजी में भारत का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण सहित कुल 9 पदक जीते। समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा को जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य शिवा की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने स्वतंत्रता और वंदे मातरम का आह्वान तमिलनाडु में कोने कोने तक पहुंचाकर आजादी की भावना जगाई। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ क्षेत्रों में कल तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिन गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। वायुसेना ने आज कई शहरों में सैकड़ों भारतीय वायुसेना मैराथन आयोजित की। इनमें दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, ग्वालियर, बेंगलुरु, गुवाहाटी और जोधपुर शामिल हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने नई दिल्ली में दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर वाइस मार्शल शेखर यादव ने संवाददाताओं से कहा कि मैराथन फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सैकड़ों की स्मृति में आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सैकड़ों ने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान असाधारण साहस का प्रदर्शन किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अपने संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा नवाचार के बूते ही विकसित बनेगा। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो रहा है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई पीएम सेतु योजना का 1 वर्ष पूरा। केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ स्थानों पर कल तक तेज वर्षा का अनुमान। यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की। हूती ने रियाद में अरामको तेल संयंत्र पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया। और जापान में एशियाई खेलों का समापन आज। भारत 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

0: स्वागत है बाल मित्रों, जय हिंद।
1: जय हिंद।
0: मैं हूँ आपकी बाल मित्र रेखा दीदी,
2: लेकर आई हूँ आपका अपना प्रोग्राम बाल सभा। बाल मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों जरूरी हैं? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इन सभी सवालों के जवाब जानना सामान्य ज्ञान का एक हिस्सा है, और आज का हमारा विषय भी यही है, अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाएं। सामान्य ज्ञान का मतलब अपने आसपास की दुनिया, प्रकृति, विज्ञान, इतिहास, खेल, देश और दुनिया के बारे में जानकारी रखने से है। बाल मित्रों, सामान्य ज्ञान बढ़ाने से हमारी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और हम स्कूल में भी नई नई बातें सीख पाते हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि हम खेल खेल में भी अपना सामान्य ज्ञान बढ़ा सकते हैं, जैसे किताबों से दोस्ती करें और उन्हें पढ़ें, समाचार और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सुनें, सवाल पूछने से कभी न डरें, अपने दोस्तों के साथ कुछ गेम खेलें, अपने आसपास और प्रकृति को ध्यान से देखें और ऑब्जर्व करें। याद रखिए बाल मित्रों, हर सवाल का जवाब तुरंत आना जरूरी नहीं है, लेकिन हर सवाल का जवाब जानने की कोशिश करना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम आज से ही अपने सामान्य ज्ञान को बढ़ाते हैं। जैसे कि आज से वर्ल्ड स्पेस वीक यानी विश्व अंतरिक्ष सप्ताह का आरंभ होने जा रहा है, जो कि 4 से 10 अक्टूबर तक अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देता है। बाल मित्रों, आज एक और विशेष दिन वर्ल्ड एनिमल डे यानी विश्व पशु दिवस मनाया जा रहा है, जो कि पशुओं के कल्याण, उनकी सुरक्षा करना और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता के उद्देश्य को याद दिलाता है। तो आइए हम सब इस विशेष दिन को याद करते हुए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: में बत्ती, कान में झुमका, नाक में बत्ती, हाथ में जलती अगरबत्ती।
1: अरे नहीं यार, मगरबत्ती। अरे बोला ना अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती।
0: अगरबत्ती का छुआछा बाग पे बैठा पानी ताक।

0: करके चलता है, मांग में सिंदूर भरता है। माथे रोज लगाए बिंदे, इंग्लिश बोले मतलब हिंदी। इस पगर इस है बट पर वोट मतलब क्या? माथे रोज लगाए बिंदे, इंग्लिश बोले मतलब हिंदी। हिंदी में अलजेब्रा छान,
1: बी आई पी अटलवेर बनियान,
0: बी आई पी
2: अनोखा। बाल मित्रों, ज्ञान की दुनिया से जुड़ने के लिए हम बाल साहित्य की मदद ले सकते हैं।

0: सकते हैं, क्योंकि बाल साहित्य हमें हंसाता है, नई बातें सिखाता है और कभी कभी ऐसी सीख भी देता है जो जीवन भर हमारे साथ रहती हैं। बाल साहित्य में कहानियाँ, कविताएँ, बाल उपन्यास, चित्र पुस्तकें और ज्ञानवर्धक रचनाएँ होती हैं, जो हमारा मनोरंजन तो करती ही हैं, साथ में हमारा ज्ञान भी बढ़ाती हैं। तो इसी कड़ी में ज्ञान और मनोरंजन को बढ़ाते हैं, सुनते हैं हमारे बाल साथियों की ये मनमोहक प्रस्तुतियाँ।
1: नमस्कार, मेरा नाम अनाया है, मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। एक छोटे से गांव में एक आरव नाम का बच्चा रहता था। उसे मोबाइल पर खेलना बहुत पसंद था। एक दिन उसकी दादी ने उसे एक रंग बिरंगी कहानी की किताब दी। आरव ने किताब खोली और उसमें एक छोटे से खरगोश की कहानी पढ़ने लगा। कहानी इतनी रोचक थी कि उसने पूरी किताब एक ही दिन में पढ़ ली। अगले दिन उसने दूसरी किताब पढ़ी, फिर तीसरी। धीरे धीरे उसे जंगल, जानवरों, अंतरिक्ष और महान वैज्ञानिकों के बारे में बहुत कुछ पता चलने लगा। अब आरव अपने दोस्तों को नई नई कहानियाँ सुनाता और उनके सवालों के जवाब खोजने में मदद करता। एक दिन उसकी शिक्षिका ने कहा, आरव तुम्हें इतनी सारी नई बातें कैसे पता चलती हैं? आरव मुस्कुराकर बोला, मैम मेरी सबसे अच्छी दोस्त मेरी किताबें हैं। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, किताबें हमारी सच्ची मित्र हैं। वे हमें ज्ञान देती हैं, हमारी सोच को बढ़ाती हैं और हमें हर दिन कुछ नया सीखने का अवसर देती हैं। धन्यवाद।
2: मैं राघव फुलैया हूँ, मैं सीनियर केजी में हूँ। मैं आज एक कविता सुनाने वाला हूँ। आम स्वाद में खट्टा मीठा, हम बात है इसमें कोई खास। हर कोई देख से लंच आया भयंकर है तो रहना पाए। गर्मी के मौसम में आता फलों का राजा ये केला था। नमस्ते, मेरा नाम है अवध गुप्ता। आज मैं सीनियर के जे में हूँ और आज मैं एक हिंदी दिवस की राइम गाऊंगा। उसका नाम है एक छोटा सा बीच।

0: लगा। थैंक यू।
1: मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह है, मैं सेना केजी में पढ़ता हूँ। एक छोटी किश्ती मेरे पास, उसको बनवाई मेरी रंगवाई और पानी में तैराई। एक मेंढक बैठा पानी में, उसने देखा मुझको घूरा और कूद गया किश्ती में। मेरी किश्ती डगमगाई, वो दूर तक गई, आंखों से छिप गई, डूब गई पानी में। थैंक यू।
2: Morning everyone, my name is Jessica. Today I'll tell you a cardio.

0: नमस्ते, मेरा नाम अनिका वाष्णेय है। मैं कक्षा 4th D में पढ़ती हूँ। आज मैं सुनाना जा रही हूँ एक कविता जिसका नाम है हवा और धूल। हवा धूल को छेड़ के भागी, सोती धूल अचानक जागी, उड़ी हवा के पीछे पीछे हवा हो गई धूल के नीचे। धूल खोजती आँखें पीछे, दाएं बाएं आगे पीछे, हवा चल रही सांस खींचे, नीचे नीचे धूल के नीचे। लगा धूल को कुछ है गड़बड़, धूल दब से नीचे आई, धूल की आँख में धूल झोंक कर हवा हो गई हवा हवाई। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कविता जिसका नाम है हमारा आहार। कैसा हो अपना आहार, आओ मिलकर करे विचार, चावल दाल और सब्जी खाओ, तुम में तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। केवल आलू तुम मत लाना, भिंडी परवल नेनुआ भी खाना, दूध दही तुम छक कर खाओ, फूल फलों के बाग लगाओ, आम अमरूद पपीता खाओ, केला भी घर ले आओ, खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा, गर्मी की हरते पीड़ा। थैंक यू।
1: मेरा नाम आयु बलैया है और मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको एक कविता प्रस्तुत कराना चाहता हूँ। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। धन्यवाद।
2: माय नेम इज लावण्या यादव। मैं आपको एक पोएम सुनाने जा रही हूँ। चिड़िया आए उड़ उड़ उड़, बच्चे बोले चू चू चू, दाना खाओ पानी पियो, खूब खेलो खूब हंसो। बारिश आई चम चम चम, लेके जाता निकले हम, पैर फिसला गिर गए हम, ऊपर छाता नीचे हम।
3: मेरा नाम नैवेद्य पटेल है। मैं कक्षा 4th का छात्र हूँ। मैं आज आपको एक कविता सुनाने वाला हूँ जिसका शीर्षक है ननिहाल। नरम रुई सा गोला हूँ, गोलू गोल मटोला हूँ, करहे सा चंचल भोला हूँ, छोटा श्याम सलोना हूँ। नानी का मैं प्यारा हूँ, नाना का मैं राज दुलारा हूँ, चंदा मामा से प्यारे मामा, उनकी आँखों का तारा हूँ। नानी देती दूध मलाई, नाना मुझे पढ़ाते हैं, मामा बाहों के झूले पर लेकर मुझे झुलाते हैं। नानी जी के बाग बगीचे कितने प्यारे लगते हैं, कटहल आम नीम के ऊपर मधुमक्खी के छत्ते हैं, बेला जूही चंपा गेंदे पर भौरे मंडराते करते हैं, तोता मैना बया सरीखे पंछी गाया करते हैं। खेतों में जब दौड़ बछड़ा पीछे भागा फिरता हूँ, फूलों पर रंगीन तितलियाँ उनको पकड़ करता हूँ, और बगिया के बीच पर तलैया जिनमें मछली रहती है, सारस बगुला राम चिरैया उसके मछली डरती है, उस पर पोखर के बगल में झाड़ जंगल जैसा लगता है, उल्लू बिल्ली गीदड़ नेवला सब भी जिंस में रहता है। ऐसा प्यारा सबसे न्यारा नाना जी का गांव है, धरती की सुंदरता अद्भुत और ममता की छाव है।
4: मेरा नाम अदीशा पटेल।

है, मैं कक्षा चौथी की छात्रा हूँ। मैं आज आपको एक कविता सुनाने वाली हूँ। सर्कस एक शहर में आया, लाल किले पर टेंट लगाया, उसके जोकर खूब हंसा।

0: में शेर और वो चीता रिंग के चक्कर तीन लगाते। धन्यवाद।
1: नाम रिमझिम है और मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ जिसका शीर्षक है लगातार अभ्यास करना चाहिए। एक गांव में राम नाम का एक लड़का रहता था। वह पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था। उसके सभी दोस्त पढ़ाई और खेलकूद में उससे आगे थे। जब भी स्कूल में परीक्षा होती, राम के कम अंक आते। उसके शिक्षक भी उसे समझाते कि यदि वह मन लगाकर पढ़ाई करेगा और नियमित अभ्यास करेगा तो वह भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है। लेकिन राम जल्दी ही निराश हो जाता था। वह सोचता था कि कुछ बच्चे जन्म से ही होशियार होते हैं और कुछ बच्चे हमेशा कमज़ोर रहते हैं। इसलिए वह पढ़ाई करने के बजाय अपना अधिकतर समय खेलकूद और इधर उधर घूमने में बिताता था। एक दिन उसके विद्यालय में एक नई प्रतियोगिता की घोषणा हुई। यह गणित की प्रतियोगिता थी। राम के सभी मित्र उसमें भाग लेने के लिए उत्साहित थे। राम भी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता था, लेकिन उसकी गणित के सवाल हल करने में बहुत कठिनाइयाँ होती थी। उसने अपने गणित के शिक्षक से कहा, गुरुजी, मैं भी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूँ, लेकिन मुझे गणित बिल्कुल नहीं आती। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, मुझसे सवाल हल नहीं होते। शिक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कोई भी व्यक्ति एक दिन में महान नहीं बनता। सफलता पाने के लिए लगातार अभ्यास करना पड़ता है। यदि तुम प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करोगे तो एक दिन कठिन से कठिन सवाल भी हल कर लोगे। राम ने शिक्षक की बात ध्यान से सुन ली और उसी दिन से मेहनत करने का निश्चय किया। अगली सुबह वह जल्दी उठा और गणित की पुस्तक लेकर बैठ गया। शुरुआत में उसे एक भी सवाल ठीक से समझ नहीं आया। कई बार उसने सवाल हल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार गलती हो जाती थी। वह बहुत परेशान हुआ और पुस्तक बंद करके बैठ गया। तभी उसे अपने शिक्षक की बात याद आई, लगातार अभ्यास करने से ही सफलता मिलती है। उसने फिर पुस्तक खोली और सवाल हल करने लगा। इस बार उसने अपनी गलतियों को ध्यान से देखा और उन्हें सुधारने की कोशिश की। अब राम ने एक नियम बना लिया। वह प्रतिदिन सुबह 1 घंटे गणित का अभ्यास करता और शाम को विद्यालय से लौटकर 2 घंटे पढ़ाई करता। और उसे जो सवाल समझ नहीं आते वह अपने शिक्षक और मित्रों से पूछता। धीरे धीरे उसकी गलतियां कम होने लगीं और उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। कुछ सप्ताह बाद राम पहले से अधिक कठिन सवाल हल करने लगा। अब उसे गणित से डर नहीं लगता था। उसे समझ आ गया था कि कठिनाई का सामना करने से ही ज्ञान बढ़ता है। एक दिन उसके शिक्षक ने कहा, मैं एक बहुत कठिन सवाल दिया। पूरी कक्षा में कोई भी विद्यार्थी उस सवाल को हल नहीं कर पाया। राम ने ध्यान से सवाल पढ़ा और कुछ देर सोचने के बाद उसे हल कर दिया। उसे शिक्षक बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पूरी कक्षा से कहा, बच्चों, देखो, राम पहले गणित में कमज़ोर था, लेकिन आज उसने अपनी मेहनत और अभ्यास से कठिन सवाल हल कर दिया। यह सुनकर राम बहुत खुश हुआ। अब उससे विश्वास हो गया कि कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता यदि उसके लिए सच्चे मन से प्रयास किया जाए। कुछ दिनों बाद गणित की प्रतियोगिता का दिन आ गया। राम ने प्रतियोगिता में भाग लिया। वह बहुत कठिन सवाल पूछे गए, लेकिन राम घबराया नहीं। उसने शांत मन से सभी सवालों को हल करने का प्रयास किया। परिणाम घोषित हुआ तो राम ने प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया। यह देखकर उसके माता पिता, शिक्षक और मित्र बहुत खुश हुए। राम को पुरस्कार के रूप में एक सुंदर ट्रॉफी और परिणाम दिया गया। इससे यह शिक्षा मिलती है कि लगातार अभ्यास करने से कठिन काम भी आसान हो जाते हैं। धन्यवाद।

0: तो कैसी लगी आपको आज की हमारी मनमोहक प्रस्तुतियाँ? हमें पत्र लिखकर जरूर बताएं। अब वक्त है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए अपनी रेखा दीदी को कार्यक्रम से विदा लेने की। खूब पढ़िए, खूब सीखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे एक नई रोचक जानकारी के साथ। नमस्कार। जय हिंद।
1: जय हिंद।
2: नन्हे मुन्ने बच्चे अभी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बाल सभा। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने आज भोपाल में मीडिया से चर्चा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक देश को पूरी तरह नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी और देश के भविष्य के लिए ड्रग्स और नशे को खत्म करना बेहद जरूरी है। गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मंडला में 9,04,126 तेंदुपत्ता संग्राहकों को 36,17,37,518 रुपए की बोनस राशि अंतरित करेंगे। इसके साथ ही वन समितियों के सदस्यों को काष्ठ लाभांश भी वितरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 8 अक्टूबर को मुंबई में प्रमुख उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 बैठक करेंगे। इस दौरान प्रदेश में निवेश की संभावनाओं और औद्योगिक विकास के अवसरों पर चर्चा होगी। और प्रदेश से मानसून की विदाई हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसून 24 जून को दाखिल हुआ था और 3 अक्टूबर को विदा हुआ। मानसूनी सीजन में प्रदेश में 35.8 इंच बारिश दर्ज हुई, जो सामान्य से करीब 4% कम है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय दोपहर के 3 बजे हैं। आइए आपको जानकारी दे दें आज शाम प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से ही शाम 5:02 पर युवावाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति रहेगा। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं शाम 5:33 पर। कुछ और फिल्मी नगमे हम आपको सुनवाएंगे आज शाम 6 बजे। आकाशवाणी भोपाल से 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम होगा। जिसमें 7:30 से 8 बजे के बीच सुनिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। विषय रहेगा रबी फसलों की तैयारी एवं कृषि समसामयिक कार्य। विशेषज्ञ डॉक्टर रतनदीप सोनी। आकाशवाणी मध्य प्रदेश में रात 8 बजे फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं। 8:15 पर कार्यक्रम डगर विकास की। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी सागर की प्रस्तुति रहेगा। जिसमें आज का विषय रहेगा प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। कुछ और फिल्मी नगमे 8:35 पर सुने जाएंगे। रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 9:30 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी दिल्ली से ही रात 10 बजे सुनिएगा एशियन गेम्स 2026 पर आधारित डेली हाइलाइट्स। विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा, इसका प्रसारण होगा रात 10:20 से। ये थे आज शाम प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय दोपहर के 3:02 हुए हैं। अब मीडियम वेव पर कुछ देर के लिए हमारा ट्रांसमिशन बंद होता है। इस बीच कार्यक्रम डीटीएच पर जारी रहेगा। शाम 5 बजे से आप हमारे कार्यक्रम पुनः मीडियम वेव 188.32 पर सुन सकेंगे। डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। लीजिए सुनिए लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुर की प्रस्तुति है। जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं नरेंद्र कुमार राहुल और साथियों के गाए लोकगीत। पहले सुनते हैं कबीर का ये भजन।

अभी आपने सुना लोक संगीत, आइए अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत, बद्री प्रसाद नागर के गाए हुए। पहले सुनते हैं ये भजन।

0: बद्री प्रसाद नागर के गाए भजन अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत में। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं डीटीएच भोपाल का प्रसारण।
1: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

Carlo Tata. फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, रामायण

0: Afrika. Miss World, Dicky, World Cup, Dicka. चंद्रयान दिखा, इनसैट दिखा, नई कहानियों ने नया भारत लिखा। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल।
1: आप सुन रहे हैं डीजे भोपाल का प्रसारण। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत, आनंद फिल्म से आवाज लता मंगेशकर की, गुलजार की शब्द रचना संगीत सलील चौधरी का।

कुमार सानू और अलका याग्निक को लीजिए सुनिए सिर्फ तुम फिल्में। नदीम श्रवण का संगीत है, गीत लिखा समीर ने।

0: किशोर कुमार की आवाज़ में गाए आरती बर्मन के संगीतबद्ध किए इस गीत को हमने लिया था मेरे जीवन साथी फिल्म से, जिसे लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय कल से गुजरात में 2 दिन का चिंतन शिविर आयोजित करेगा। इस देश में राजमार्ग के विकास और परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। शिविर में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी तथा एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज पाडुना जिले के सांदीपनि विद्यालय में परिश्रमों का सम्मान किया और विद्यालय परिसर में लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक ली एवं अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कौशल विकास उद्यमशीलता मंत्रालय की पीएम सेतु योजना ने आज अपना 1 वर्ष पूरा कर लिया है। इस योजना के जरिए उन्नत आईटीआई के माध्यम से कौशल विकास और रोजगार की संभावना बढ़ाई जाती है। प्रदेश में गौपालन को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार नई पहल करने जा रही है। इसके तहत वृंदावन ग्रामों में उत्कृष्ट गौपालकों की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसमें प्रथम पुरस्कार 1 लाख, द्वितीय पुरस्कार 50,000 और तृतीय पुरस्कार 25,000

रखा गया है। प्रदेश से मानसून की विदाई हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसून 24 जून को दाखिल हुआ था और 3 अक्टूबर को विदा हुआ। मानसूनी सीजन में प्रदेश में 35.8 इंच बारिश दर्ज हुई, जो सामान्य से करीब 4% कम है। और एशियाई खेलों में अमन सहरावत फ्री स्टाइल कुश्ती वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। जापान में एशियाई खेलों का आज समापन हो रहा है। भारत ने 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदकों के साथ पदक तालिका में 4th स्थान हासिल किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: आप सुन रहे हैं डीटीएच का प्रसारण।
1: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन। कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: rotata. फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा।
1: आप सुन रहे हैं डीजे भोपाल का प्रसारण। डीजे अब सुनिए कार्यक्रम सिंधिया जी सुरहाणा।

साथियों जय झूलेलाल। सिंधियत जी सुरहाण में तवा सबनी के मां मनोज सोनी पंजवाणी पारा सिक भरी नमस्ते। जान ए विंदुर सा भरपूर हिन तवां जे पसंदीदा कार्यक्रम में अज जी पहरी जान आहे संकल्प सा सेवा ए मेक इन इंडिया। साथियों संकल्प सेवा अभियान यो राष्ट्रव्यापी अभियान 17 सितंबर का वठी 17 अक्टूबर तूणी हलण वारो राष्ट्रव्यापी अभियान आहे। यो अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जे 25 सालन जी लोक सेवा ए संदस जन्मदिन जे उपलक्ष्य में शुरू कयो वयो आहे। इन अभियान जे तहत देश जे नौजवानन ए नागरिकन के विकसित भारत @2047 जे संकल्प सा जोड़ियो वनी रहयो आहे। इन अभियान जे तहत साफ सफाई जा कम, वृक्षारोपण यानि वण लगाइण, रक्तदान कैंप ऐं समाज जी भलाई ला बे भी घणेई कम कया वनी रहा आहिन। यो 1 महीने जो हलण वारो राष्ट्रव्यापी अभियान आहे। इन खां पोइ हाणे अॻियां वधंदासीं मेक इन इंडिया अभियान जे पासे। इहो अभियान भारत सरकार पारां 25 सितंबर 2014 ते शुरू कयो वियो आहे। इन जो ख़ासि मक़सदु भारत खे पूरी दुनिया जो मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन ऐं इनोवेशन जो हब बणाइणो आहे। इन अभियान जे चालू थियण खां पोइ असांखे घणेई फ़ाइदा थिया आहिनि, असांजे मुल्क खे घणेई फ़ाइदा थिया आहिनि। जीअं त असांजे मुल्क में विदेशी निवेश वधी रहियो आहे, घणेई व्यापारिक नवा मौक़ा मिली रहिया आहिनि। असांजो मुल्क भारत आत्मनिर्भर भारत बणजण जी राह ते वधी रहियो आहे। इहा त हुई ॻाल्हि साथियो मेक इन इंडिया अभियान जे बारे में। साथियो हिन वक़्तु पितृपक्ष हली रहियो आहे, पितृपक्ष माने श्राद्ध। ऐं हिन श्राद्धनि जे ॾींहंनि में असां पंहिंजे वॾड़नि खे यादि करे सची श्रद्धा ऐं

प्रेम सां उन्हनि खे श्रद्धांजलि अर्पित कंदा आहियूं, तर्पण कंदा आहियूं ऐं विधि विधान सां श्राद कंदा आहियूं। साथियों, असां पंहिंजे वॾड़नि सां जेको समय बितायोसीं, जेके उन्हनि असांखे सिखियाऊं ॾिनियूं, जेके ॻाल्हियूं ॿुधाइनि, उहे ॻाल्हियूं असांखे हमेशह यादि ईंदियूं आहिनि। उन्हनि सां गॾु गुज़ारियल वक़्तु असां कॾहिं कोन विसरंदा आहियूं। हमेशह उन्हनि जूं सुहिणियूं यादियूं असां सां गॾु हूंदियूं आहिनि।

भगत घनश्याम जो ही वॾड़न जी याद में गीत हुयो। हाणे अॻियां वधंदासीं अॻिली ॼाण पासे। भारतीय वायु सेना दिवस इन ॾींहं जी अधिकृत स्थापना 8 अक्टूबर 1932 ते कई वई हुई। तंहिं करे हर साल इन ॾींहं खे वायु सेना ॾींहं जे रूप में मल्हायो वेंदो आहे। इन ॾींहं जो मोटो या जंहिंखे ध्येय वाक्य स्लोगन जेको चवंदा आहियूं उहो आहे नभ स्पृशम दीप्तम, आकाश खे गौरव सां छुअणु, जेको भगवत गीता जे 11 अध्याय मां खयो वियो आहे। भारतीय वायु सेना दुनिया जी चौथी सभ खां वॾी वायु सेना आहे। इहा असांजे लाइ तमामु फ़ख्र ऐं गर्व जी ॻाल्हि आहे। साथियों, इहो ॾींहुं असां पंहिंजे वीर जवाननि खे सम्मानित करण लाइ मल्हाईंदा आहियूं ऐं गॾोगॾु जेके वीर जवान शहीद थिया आहिनि उन्हनि खे बि श्रद्धांजलि अर्पित करे उन्हनि जी शहादत खे गौरवान्वित कंदा आहियूं। साथियों, इन ॾींहुं घणेई प्रकार जा आयोजन जीअं त भव्य परेड ऐं एयर शो थींदा आहिनि, घणेई जॻहियुनि ते हवाई करतब ॾेखारिया वेंदा आहिनि ऐं इन्हनि खे पुरस्कृत कयो वेंदो आहे। साथियों, इन खां पोइ जेका अॻिली ॼाण आहे सा आहे विश्व मेंटल हेल्थ डे, माना मानसिक सिहत सां जुड़ियल इहो ॾींहुं। हर साल 10 अक्टूबर ते पूरी दुनिया में मानसिक सिहत जी सुजागी पैदा करण लाइ इहो ॾींहुं मल्हायो वेंदो आहे। हिन ॾींहं जी शुरूआति साल 1992 में वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ जी तरफ़ां कयो वियो हो ऐं इन ॾींहं जो मक़सदु माण्हुनि में वधंदड़ मानसिक बीमारियूं जीअं त तनाव, चिंता, डिप्रेशन ऐं इन टाइप जूं जेके बीमारियूं आहिनि उन्हनि जे प्रति सुजागी आणणु, इन खां बचाव जा तरीक़ा ऐं पंहिंजो पाण खे मानसिक रूप सां कीअं शांति रखिजे, कीअं थधो रखिजे, इन जे बारे में माण्हुनि ताणी ॼाण पहुचाइणु आहे। हाणे अचो त ॿुधूं था रूना लैला जो गायल ही गीत।

0: साथियों ही गीत थियो रूना लैला जो हाने समय आहे अज जे काव्य पाठ जो अज असा सा गड स्टूडियो में कवि आहिन भा मनोज कृपलाणी जी अचो त बुधू ता हिनन का हिनन जो कुछ सुहणियो रचनाऊं।
1: जय झूलेलाल दोस्तों, मुझी पहली कविता है जेकी तरन्नुम में पेश कंदुम। अज असा वरी नओ इतिहास लिखंदासी, अज असा वरी नओ इतिहास लिखंदासी। सिंध हिंद जूं गालियूं जंहिं में, सिंध हिंद जूं गालियूं जंहिं में सभु ख़ास लिखंदासी। अज असा वरी नओ जंहिं में लॾ पटाण जी हूंदी कहाणी, सिंधु घाटीअ जी सभ्यता पुराणी। जंहिं में लॾ पटाण जी हूंदी कहाणी, सिंधु घाटीअ जी सभ्यता पुराणी।

सिंध में असांजो कीअं हो वास लिखंदासीं असां असां वरी अॼु नओं इतिहास लिखंदासीं जंहिंमें हूंदा कवि शाइरनि जा नाला शाह सचल सामीअ जा रसाला सिंधी दरवेश संत निराला जपी सदा जिन झूलण जी माला जपी सदा

इतिहास लिखंदासी। संत कंवर जी मिठड़ी लोली बीठी माता झले खाली झोली।

मतलब जे बिना रिश्तो को भी कैसा रखे न थो बचो न आ मानू को अहड़ो जैखे हित को ठगे न थो रुगो केराइन हिक बेखे को कहखे न थो चाड़े रुगो केराइन हिक बेखे को कहखे न थो चाड़े जिंदगी अना अलाए छा देखारे जिंदगी अना अलाए छा देखारे वसे थो मीह प्यार वारो पर माण्हू को भिजे नथो वसे थो मीह प्यार वारो पर माण्हू को भिजे नथो ॼाणे थो फल मिलंदो पाप जो माण्हू पर को ढिजे नथो वसे थो मीह प्यार वारो पर माण्हू को भिजे नथो ॼाणे थो फल मिलंदो पाप जो माण्हू पर को ढिजे नथो ॿोड़े थो ॿेड़ी हिक ॿिए जी ॿोड़े थो ॿेड़ी हिक ॿिए जी को कंहिंखे नथो तारे ॿोड़े थो ॿेड़ी हिक ॿिए जी को कंहिंखे नथो तारे ज़िंदगी अञा अलाए छा ॾेखारे ज़िंदगी अञा अलाए छा ॾेखारे ॾिसां वेठो मां माण्हुनि खे भलो को कंहिंजो करे नथो ॾिसां वेठो मां माण्हुनि खे भलो को कंहिंजो करे नथो मरनि वेठा पाण रोज़ पर मरनि वेठा पाण रोज़ पर अहंकार कंहिंजो मरे नथो ॾिसां वेठो मां माण्हुनि खे भलो को कंहिंजो करे नथो मरनि वेठा रोज़ पाण पर अहंकार मरनि वेठा रोज़ पाण पर अहंकार कंहिंजो मरे नथो करे नथो कमु को बि पंहिंजो करे नथो कमु को बि पंहिंजो ॿियनि ते वेठो भाड़े ज़िंदगी अञा अलाए छा ॾेखारे ज़िंदगी अञा अलाए छा ॾेखारे जय झूलेलाल दोस्तो हाणे अॻियां जय झूलेलाल चवंदे मां इहे चयो पेश कंदुसि थोरी तरनम में बि हूंदी।

तुंहिंजी ख़ुशीअ में ई यार मुंहिंजी ख़ुशी आहे, तुंहिंजी ख़ुशीअ में ई यार मुंहिंजी ख़ुशी आहे। सम्झी ख़ुदा मां तोखे कई तुंहिंजी बंदगी आहे, सम्झी ख़ुदा मां तोखे कई तुंहिंजी बंदगी आहे।

चाहे करे बि तुंहिंजो चाहे करे बि तुंहिंजो मां थी नथो सघां तोखां विछड़ी करे।

जा घणेई गीत सिंधी फिल्मुनि में बि अची रहिया आहिनि। हिननि तरन्नुम में ऐं काव्य जे रूप में पंहिंजूं तमामु सुहिणियूं कविताऊं ॿुधायूं। साथियो, हिन हफ़्ते जे आख़िर में माता राणीअ जा नवरात्रा बि चालू थियण वारा आहिनि। माता राणीअ जा एकाणा, अचो त माता राणीअ जी सेवा में, माता राणीअ जे दर ते अॻुवाट में ई ओराणो ॻायूं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सिंधिया जी सुरहाण। आप सुन रहे हैं DTH भोपाल का प्रसारण। DTH भोपाल के प्रसारण में इस समय शाम के 4:30 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम संग्रहालय से, जिसमें आज आपको सुनवा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की जप्तशुदा कहानियों की रेडियो प्रस्तुति का भाग 3।

0: ऑर्डर ऑर्डर। हाँ तुम मृदुला देवी, आपको अपने बचाव में जो कुछ भी कहना है बेझिझक होकर कहिए।
1: मिलॉर्ड, मैं यही कहना चाहती हूँ कि पुलिस ने जो आरोप मेरे ऊपर लगाए हैं वो झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। मैंने ना किसी को रोका है, ना किसी से आरजू मिन्नत की है। कोई ग्राहक मेरे सामने आया ही नहीं। हाँ, मैं दुकान में खड़ी जरूर थी, वहां कई वॉलंटियर गिरफ्तार हुए थे, जनता जमा हो गई थी, मैं भी खड़ी थी, बस थानेदार ने आकर पकड़ लिया। मैं बेकसूर हूँ मिलॉर्ड, मैंने धरना नहीं दिया।
0: ऑर्डर ऑर्डर, सभी के बयान हो चुके हैं। अब मृदुला देवी के केस पर फैसला कल सुनाया जाएगा। द कोर्ट इज एडजॉर्न टुडे।
2: चलो अंदर जाकर बैठो। चलो।
3: अरे मृदुला, आ गई तुम?
4: क्या हुआ कांता?
3: सजा हो गई? कितने दिन की हुई है?
1: सजा होगी? और मुझे? मैंने तो साफ साफ कह दिया कि मैंने धरना दिया ही नहीं है। पुलिस ने झूठा केस बनाया है।
4: और मजिस्ट्रेट तुम्हारी बात मान भी गए? वाह,
3: ऐसा भी कभी होता है?
5: मजिस्ट्रेट तो पुलिस के बयान पर ही फैसला करेगा। मैं ऐसे कितने ही मुकदमे देख चुकी हूँ।
1: क्षमा दीदी, पुलिस वालों को तो मैंने ऐसा रगड़ा दिया है कि वो भी याद रखेंगे।
3: रगड़ा है मतलब?
1: बात यह है छाया, मैं तो मुकदमे की कार्रवाई में भाग ही नहीं लेना चाहती थी, मगर जब मैंने उनके गवाहों को सरासर झूठ बोलते देखा तो मुझसे सब्र ना हो सका। मैंने उनसे जिरह करना शुरू कर दी।
3: जिरह की? और तुमने? ये भी खूब रही।
1: कांता दीदी, मैंने भी इतने दिनों घास नहीं खोदी है, थोड़ा सा कानून जानती हूँ। पुलिस ने समझा होगा ये तो कुछ बोलेगी नहीं और हम जो चाहेंगे बयान दे देंगे। फिर जब मैंने जिरह शुरू की तो सब बगलें झांकने लगे। मैंने तीनों गवाहों को झूठा साबित कर दिया। उस समय मुझे भी ना जाने कैसे चोट पर चोट सूझती गई।
4: तुम ऐसे बोलती रही और मजिस्ट्रेट ने तुमसे कुछ नहीं कहा?
1: सुशीला बहन, मजिस्ट्रेट तो उल्टा पुलिस को डांट रहा था। उसने तो थानेदार को भी 2-3 बार फटकारा। जब भी वो मेरे प्रश्नों का उलझलूल जवाब देता, मजिस्ट्रेट बोल उठता, वो जो पूछती है उसका जवाब दो, फजूल की बातें क्यों करते हो। जरा सा मुंह निकल आया था मियाँ जी का, मैंने सबका मुंह बंद कर दिया।
3: तो क्या मैजिस्ट्रेट ने फैसला भी सुना दिया?
1: नहीं, अभी साहब ने फैसला तो नहीं सुनाया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं बरी हो जाऊंगी।
3: लो, तो बरी होने की इतनी खुशी है?
1: नहीं छाया, मुझे गलत मत समझो, मैं जेल से डरती नहीं, लेकिन बेवकूफ भी नहीं बनना चाहती। वहाँ हमारे मंत्री जी भी थे और भी बहुत सारी बहनें थीं, सब कह रही थीं कि तुम छूट जाओगी।
4: भाग्यवान हो, हमारी तो मियाद साल भर की है
3: और मेरी 6 महीने की। और क्यों ना हो, हमने तो अदालत के सामने जुबान ही नहीं खोली।
4: हम पुलिस वालों से भला क्यों जिरह करते?
3: हाँ, पुलिस से जिरह करते तो हम भी छूट जाते, लेकिन हमें तो यही दिखाना है ना कि नौकरशाही से हमें न्याय की कोई आशा ही नहीं है।
6: यह तो माफी मांग लेने के बराबर है। गई तो थी धरना देने, नहीं तो दुकान पर जाने का काम ही क्या था? वॉलेंटियर गए थे तो गए आपकी बला से, मगर आप क्यों गई थी वहाँ? और अब कहती है मैं तो धरना देने गई ही नहीं, तो साफ साफ क्यों नहीं कहती कि माफी मांगना चाहती है?
4: और नहीं तो क्या, जेल में रहने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए। उस वक्त तो वहाँ भाई लूटने आ गई, अब रोना आ रहा है। ऐसी स्त्रियों को तो राष्ट्रीय कामों के नजदीक भी नहीं आना चाहिए। आंदोलन को बदनाम करने से क्या फायदा?
2: अरे चलो रे, चलो। है ये तुम औरतों ने क्या चकचक लगा रखी है? चलो चुपचाप सो जाओ सब। चलो
6: चलो चलो बहनों, अपनी अपनी जगह पर आराम करते हैं।
1: अरे क्षमा दीदी, आप अभी तक यहीं खड़ी हैं? आप नहीं गई उन औरतों के साथ मुझे ताना देती हुई?
5: इतना ही जान पाई हो मृदुला मुझे?
1: नहीं दीदी, मैं क्या आपको जानती नहीं? आप इन औरतों में से नहीं हैं, आप उनसे बहुत अलग हैं।
5: हाँ, पता नहीं क्यों उन औरतों से घुलना मिलना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अभी एक ही महीना तो हुआ है मुझे यहाँ आए, पर देखो तो यहाँ और 15 कैदीने हैं इस जनाना जेल में, लेकिन किसी से भी दिल ही नहीं मिलता मेरा। ये कुत्सा, ये कानाफूसिया मुझे नहीं भाती मृदुला। सच कहूँ तो जो आत्माभिमान एक पॉलिटिकल कैदी में होना चाहिए वो इनमें से किसी में भी नहीं है।
7: आप इन वजहों से इन सब से दूर रहती हैं और ये समझती हैं कि मैं
5: घमंडी हूँ ना, यही इसी वजह से वो मुझसे ईर्ष्या करती हैं, मेरी उपेक्षा भी करती हैं।
7: सच दीदी, लेकिन मुझे आपसे मिलकर कभी ऐसा नहीं लगा।
5: सच कहूँ मृदुला, अभी यहाँ आए तुम्हें 8 ही दिन हुए हैं, लेकिन कितना स्नेह हो गया है तुमसे, जानती हो क्यों? तुम्हारे अंदर वो संकीर्णता, वो ईर्ष्या नहीं है, न निंदा करने की आदत, न श्रृंगार की धुन, न भद्दे दिल्लगी का शौक।
7: क्षमा दीदी,
5: मुझे लगा था कि तुम्हारे साथ 6 महीने आनंद से कट जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य मेरा कि कल तुम चली जाओगी और मैं फिर अकेली रह जाऊंगी। अब कहाँ बैठकर मैं अपना दुख दर्द बांटूंगी, बोल, देश की चर्चा कहाँ करूंगी?
7: आपकी सजा में तो अभी 8 महीने बाकी है ना दीदी।
5: किसी न किसी तरह कट ही जाएंगे बहना, पर तुम्हारी याद मुझे बराबर सताती रहेगी। इस 1 सप्ताह में तुमने न जाने क्या जादू कर दिया मुझ पर, कभी कभी आकर मिलती रहना।
7: जरूर मिलूंगी दीदी, मुझसे तो खुद ही नहीं रहा जाएगा, अकेली नहीं आऊंगी, भान को भी लेकर आऊंगी साथ में।
5: भान? हाँ हाँ, तुम्हारा वो लाडला बेटा।
7: हाँ, भान से कहूंगी चल तेरी मौसी आई है, तुझे बुला रही है, दौड़ा हुआ आएगा।
5: भान की बहुत याद आती है ना?
7: सच दीदी, मुझे यहाँ और किसी की याद नहीं आई सिवाय भान के। बेचारा रोया करता होगा, मुझे देखकर रूठ जाएगा, कहेगा तुम कहाँ चली गई थी, मुझे छोड़कर क्यों चली गई। जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलता, तुम मेरे घर से निकल जाओ। बड़ा शैतान है दीदी।
5: अच्छा, इतना बोलता है?
7: अरे बहुत पटर पटर करता है, अपनी तोतली जबान में बोलता है, छन्ना ऊंचा लहे हमारा।

0: झंडा ऊंचा रहे हमारा।
1: छोलाज का मंदिर जेल में है।
0: स्वराज का मंदिर जेल में।
1: हाँ,
0: अरे बाप रे।
1: और एक डंडी कंधे पर रख लेता है और कहता है, ताली छला पीनी हलाम है।
0: मतलब ताड़ी शराब पीना हराम। अच्छा मृदुला बहन, भान के पिता?
1: वो एक अंग्रेजी कंपनी में है, बार बार इस्तीफा देने का विचार करके रह जाते हैं, लेकिन गुजर बसर के लिए कोई काम तो करना ही पड़ेगा। कैसे छोड़ें? वो तो छोड़ बैठे होते दीदी।
0: अच्छा?
1: तुमसे सच कहती हूँ, उन्हें गुलामी से घृणा है, लेकिन मैं ही समझाती हूँ उन्हें। बेचारे कैसे दफ्तर जाते होंगे मैं ही जानती हूँ। जानती हो दीदी, भान अपने पिता से कहता है, तुम तो अंग्रेजों ते दुलाम हो। बेचारे जब्त करके रह जाते हैं।
0: अब भान की देखभाल कौन करता है?
1: यही तो चिंता है दीदी, बेचारे भान के बापू कैसे दफ्तर जाते होंगे, कैसे उसे संभालते होंगे। सास जी के पास तो वो रहता ही नहीं, वो बेचारी बूढ़ी उसके साथ कहाँ कहाँ दौड़े। वो तो चाहती हैं कि भान उनकी गोद में दुबका बैठा रहे, और भान को गोद से चिढ़ है।
0: तो तुम यहाँ चली आई जेल में, तुम्हारी सास को अच्छा लगता होगा?
1: अम्मा जी बहुत बिगड़ेंगी, सच कहती हूँ दीदी, बहुत बिगड़ेंगी।
0: अच्छा?
1: एक बार भी नहीं आई यहाँ मुझसे मिलने। बाबूजी बता रहे थे मुझ पर बहुत खफा हैं। 3 दिन तक तो दाना पानी छोड़े रही, कह रही थी इस छोकरी ने तो कुल मर्जा डुबा दी, खानदान में दाग लगा दिया। कलमुई कुलचनी ना जाने क्या क्या भक्ति है।
0: ऐसा तो नहीं कहना चाहिए उन्हें, तुम यहाँ किसी चोरी चकारी के इल्जाम से तो नहीं आई हो?
1: जाने दो दीदी, मैं उनकी बातों को बुरा नहीं मानती, पुराने जमाने की हैं, वो नहीं आएंगी यहाँ मिलने, उन्हें तो चलकर ही मनाना पड़ेगा, बड़ी मिन्नतों से मानेंगी। कल ही कथा होगी, ब्राह्मण खाएंगे, बिरादरी जमा होगी, देख लेना, जेल का प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। जब तुम्हारी सजा खत्म होगी ना, तुम हमारे घर 2-4 दिन रहकर तब जाना, मैं आकर ले जाऊंगी तुम्हें।
0: भाग्यशाली हो बहन, भरा पूरा घर है तुम्हारा, सभी लोग हैं जो तुम्हें चाहते हैं, प्रेम करते हैं।
1: आपने अपने बारे में कभी नहीं बताया दीदी, तुम्हारे घर में कौन कौन है?
0: रहने दो, क्या करोगी जानकर।
1: बताओ ना दीदी, बहन कहती हो पर बहन जैसा व्यवहार नहीं करती, अपनों से बांटे तो दर्द बढ़ता ही है ना दीदी।
0: वो तो सही है मृदुला, दर्द बटे इसीलिए चल बता रही हूँ, वरना सहानुभूति मिले ऐसी अपेक्षा मैं नहीं करती। मैं अकेली हूँ, एकदम अकेली, जलियांवाला बाग में मेरा सब कुछ लुट गया।
1: सब कुछ?
0: हाँ सब कुछ, पति और पुत्र दोनों की ही आहुति चली गई उस दिन। अब ऐसा कोई नहीं जिसे मैं अपना कह सकूं। सच कहूं तो अभी अभी मेरा हृदय इतना विशाल नहीं हुआ है कि प्राणी मात्र को अपना समझ सकूं।
1: दीदी,
0: इन 10 वर्षों में मेरा हृदय जाति सेवा में ही धैर्य और शांति खोज रहा है। जिन कारणों ने मेरे बसे हुए घर को उजाड़ दिया है, मेरी गोद सूनी कर दी, उन कारणों का अंत करके उन्हें मिटाने में लगी हूं। बड़ा बलिदान तो पहले ही कर चुकी हूं, अब मेरे पास अपने आप को होम करने के सिवा और रखा ही क्या है बताओ।
1: सच दीदी, आपकी तपस्या तो धन्य है।
0: हाँ, औरों के लिए जाति सेवा सभ्यता का एक संस्कार हो सकती है या यशोपार्जन का एक साधन, पर मेरे लिए तो ये तपस्या ही है।
2: अरे चलो, हाँ तुम चलो चलो, जेल में तुम्हारा समय पूरा हो गया, चलो।
1: हाँ हाँ चलते हैं। दीदी मैं तो बाहर जाकर भी तुम्हारा साथ

0: नहीं भूल पाऊंगी और जरूर आऊंगी तुमसे मिलने।
1: तुम्हारे लिए मैं तो कुछ नहीं थी, पर मेरे लिए तुम बहुत अच्छी थी। अपने प्रियजनों में बैठकर कभी कभी इस अभागिन को जरूर याद कर लिया करना बहन। भिखारी के लिए चुटकी भर आटा ही सही।
0: दीदी नहीं, दीदी ऐसा मत सोचो। दीदी मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी, हर रविवार मिलने आऊंगी तुमसे।
1: मैं इंतजार करूंगी।
2: यही खराबी है औरतों में, बातें बहुत करती। चलो
3: लो शमा दीदी, अब खाना भी खा लो।
4: दीदी यूं क्यों उदास बैठी हो?
5: क्या करे, ये इतवार भी चला गया पर वो मृदुला नहीं आई, इसीलिए उदास है।
3: बेचारी सारा दिन उसकी बात जोती रही।
4: इसमें नया क्या है कांता दीदी? पिछले 3 माह से बात देख रही हैं शमा दीदी, पर वो मृदुला नहीं आई।
5: हैं? 3 महीने हो गए? देखो तो समय कैसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता।
3: मुझे तो पहले ही मालूम था वो नहीं आने वाली, वो तो गलती से आ गई थी इस जेल में, इसलिए तो माफी मांग कर चलती बनी।
1: माफी? नहीं नहीं, कभी नहीं, उसने माफी कभी नहीं मांगी होगी।
4: माफी जैसा ही तो है दीदी, जिला करके कहना कि मैं तो धरने में शामिल ही नहीं थी। माफी नहीं तो और क्या है?
5: हर एक के बस की बात नहीं है गुलामी के खिलाफ लड़ना, कुछ लोग तो गुलामी करने के लिए ही ठीक हैं, जरा दबाव पड़ा तो टूट जाते हैं।
3: चलो हम क्यों उनके लिए अपना खाना खराब करें, चलो चलो अपन खाना खाते हैं।
4: हाँ दीदी, वैसे भी ये खाना ठंडा तो और भी बुरा लगता है।
5: नहीं नहीं, मैंने मैट्रन से कहकर अपने लिए अलग सब्जी बनवाई है, चुपचाप मेरे साथ आ जाना, शोर मत करना।
4: अच्छा तो चलो चलते हैं। आओ ना कांता दीदी, शमा दीदी।
3: चलो ना, चलो शमा दीदी, उठो ना।
1: नहीं नहीं, आप लोग खाइए, मैं यही ठीक हूँ।
3: हाँ भाई, आप क्यों आने लगी हमारे साथ, इससे आपकी इज्जत नहीं घट जाएगी। चलो रे अपन चलते हैं।
4: चलो चलो। हाँ दीदी चलो, हम चलते हैं।
1: मृदुला मृदुला, ये क्या जादू कर दिया रितु ने कि तेरे बिना कुछ अच्छा ही नहीं लगता। कहाँ तो दीदी से कहती थी कि हर रविवार को आएगी, और कहाँ 3 माह बीत गए, तेरे दर्शन भी नहीं हुए। हे भगवान, अभी और 5 महीने काटने, पता नहीं। अरे ये क्या, ये कोई नई सी कैदन है?
2: हाँ हाँ, चल जा।
1: अरे
2: चलो जाओ, अंदर जाके बैठो।
1: ये तो पहचानी हुई लगती है। अरे ये तो मृदुला ही लगती है। हाँ मृदुला ही तो है। हे भगवान, कैसी हो गई है ये, न वो रंग न रूप न वो कांति। मृदुला मृदुला
0: दीदी,
1: मृदुला
0: दीदी,
1: मृदुला
0: दीदी, मेरी क्षमा दीदी।
1: ये तेरी क्या दशा है मृदुला, सूरत ही बदल गई है तेरी, बीमार थी क्या?
0: बीमार? बीमार तो नहीं दीदी, विपत्ति से बंधी हुई हूँ। तुम भी मुझे खूब कोस रही होगी ना?
1: नहीं नहीं,
0: उन सारी निठुराइयों का प्रायश्चित करने आई हूँ और सब चिंताओं से मुक्त होकर आई हूँ दीदी।
1: ये कैसी बातें कर रही है मृदुला बहन, इतनी जल्दी तुम यहाँ फिर क्यों आई हो? अभी तो 3 महीने ही हुए हैं ना, सब कुशल तो है?
0: अब सब कुशल है दीदी, सदा के लिए कुशल है, कोई चिंता ही नहीं रही। अब यहाँ जीवन पर्यंत रहने को तैयार हूँ, तुम्हारे स्नेह और कृपा का मूल्य अब समझ रही हूँ।
1: ये कैसी बातें कर रही हो, मेरी समझ से तो परे है ये सब।
0: तुम्हें बाहर की खबरें क्या मिलती होंगी दीदी, परसों शहर में गोलियां चली थी।
1: हाँ हाँ कुछ सुना था, मगर ठीक से मालूम नहीं पड़ा क्या हुआ क्यों हुआ।
0: जानती हो देहातों में आजकल संगीनों की नोक पर लगान वसूल किया जा रहा है, भैरोगंज में भी ऐसा ही हुआ। एक किसान के घर में घुसकर कांस्टेबलों ने उसे पीटना शुरू कर दिया।
1: क्या कहती हो बहन?
0: हाँ

0: क्यों मार रहे हो?
1: आज सुअर कहीं का चमड़ी उधड़ेगी जब देगा दमड़ी।
0: अरे मैं सच कह रहा हूँ मालिक, मुझे चाहे जितना मार दो पर मेरे पास तो कानी कोड़ी भी नहीं बची है। अरे मेरे बीवी बच्चे।

0: इशारे पर अपने ही भाई को मार दिया। अरे दलालो, डूब मरो चुल्लू मत पानी में। तुमसे दो गले के कुत्ते ही अच्छे हैं, जो कम से कम इतना तो ईमान रखते हैं। अरे छोड़ो इसे, अरे छोड़ो।
1: अच्छा, अरे ये औरत तो बोलना भी जानती है, गाली भी देती है साली। ज़बान खींच लो इस कुतिया की।
2: क्या सार कपड़े ही खींच लेते हैं, फिर देखते हैं कैसे ज़बान लगाई।
1: हाँ, वो भी ठीक रहेगा। ऐसा सबक सिखाओ इसे कि इसका हश्र देखकर फिर कभी कोई लगान की चोरी नहीं कर पाए। वरना क्या कर लेगा है? अच्छा तो ये ले। मर गया साला, इसे उठाकर फेंक दो।

0: किसान की पत्नी के कपड़े फाड़ दिए गए, पीट पीट कर किसान को मार दिया गया।
1: इतना सब कुछ होता रहा और गांव के लोग तमाशा देखते रहे।
0: प्रजा की तो हर तरह से मरण है दीदी, अगर 10-20 आदमी जमा हो जाते तो पुलिस कहती हमसे लड़ने आए हैं। पुलिस के डंडों और गोलियों से सब डरते हैं, लेकिन जब किसान मरा तो गांव वालों को तैश आ गया।
1: अच्छा।
0: लाठियां लेकर दौड़ पड़े और कांस्टेबलों को घेर लिया। संभव है 2-4 आदमियों ने लाठियां भी चलाई हों। कांस्टेबलों ने गोलियां चलाना शुरू कर दी। 2-3 सिपाहियों को हल्की चोटें आईं। उसके बदले में 10-12 आदमियों की जानें ले ली गईं। हार कर गांव वालों ने लाशें उठाई और शहर वालों को अपनी विपत्ति की कथा सुनाने चले आए। इस हंगामे की खबर शहर में पहले से ही थी। लाशों को देखकर जनता उत्तेजित हो उठी और जब पुलिस अध्यक्ष ने इन लाशों का जुलूस निकालने की अनुमति ना दी तो लोग और भी झल्लाए। बहुत बड़ा जमाव हो गया। मेरे बाबूजी भी इसी दल में थे।
1: बाबूजी?
0: हाँ, भान के दादा।
1: ओह,
0: मैंने बहुत कहा मत जाओ, आज का रंग अच्छा नहीं है बाबूजी। तो कहने लगे मैं किसी से लड़ने थोड़े ही जाता हूँ। जब सरकार की आज्ञा के विरुद्ध जनाजा चला तो 50,000 आदमी साथ थे और उधर 50-100 सशस्त्र पुलिस रास्ता रोके खड़ी थी। सवार, प्यादे, सार्जेंट, पूरी फौज थी।
1: नामर्द कहीं के, निहत्तों के सामने नामर्दों को तलवार चमकाते और झंकार से शर्म भी नहीं आई।
0: जब बार बार पुलिस की धमकियों पर भी लोग ना भागे तो गोलियां चलाने का हुक्म हो गया। अम्मा जी कमरे में भान को लिए बार बार मुझे अंदर बुला रही थी। जब मैं ना गई तो वो भान को लिए छज्जे पर आ गई। उसी वक्त 10-12 आदमी एक स्ट्रेचर पर हृदेश की लाश लिए हुए द्वार पर आ गए।
1: हृदेश? हृदेश की लाश यानी भान के बापू की?
0: उन्हीं की।
1: हे भगवान,
0: अम्मा की नजर उन पर पड़ी। अम्मा ने जाकर एक बार बेटे को देखा, उसे छाती से लगाया, चूमा, आशीर्वाद दिया और उन मध्य दशा में चौराहे की तरफ चली गई।
1: हाँ?
0: और एक ही क्षण में उनकी लाश भी जमीन पर गिर पड़ी।
1: फिर
0: क्या? अम्मा के गिरते ही योद्धाओं का धैर्य टूट गया। व्रत का बंधन टूट गया। सभी के सिर पर खून सवार था। उन्होंने पुलिस पर धावा बोल दिया। सिपाहियों के होश उड़ गए। जान बचाने के लिए सिपाही भागने लगे। भागते

0: ये भागते भी वे बेतहाशा गोलियां चला रहे थे। भान छज्जे पर खड़ा था, न जाने किधर से एक गोली आकर उसकी छाती पर लगी और मेरे लाल वहीं पर गिर पड़ा। सांस तक डाली थी, मगर मेरी आंखों में अब भी आंसू ना थे।
1: हाँ बहन, कभी कभी आंसू भी पथरा जाते हैं। मृदुला, उसके बाद क्या हुआ? तुम अपने घर आ गई?
0: नहीं दीदी, नहीं, उस घर में जाने की हिम्मत ही ना पड़ी। मेरे लिए अब वो घर घर ना था। मेरा घर तो अब ये है जहां मैं बैठी हूं, या फिर वही चिता। मैं आश्रम में चली गई। कल की गोलियों में पार्टी का सफाया हो गया था। उसके दफ्तर पर पुलिस ने छापा मारा और ताला डाल दिया। महिला आश्रम पर भी हमला हुआ। हमने एक वृक्ष की छांव में अपना दफ्तर बनाया और वायु के समान मुक्त होकर स्वच्छंदता के साथ काम करते रहे।
1: वाह, लेकिन मैंने सुना कि कोई जुलूस भी निकाला गया था।
0: हाँ दीदी, और जानती हो नेतृत्व किसे सौंपा गया?
1: किसे?
0: मुझे।
1: सच?
0: हाँ हाँ दीदी, निश्चित समय जुलूस ने प्रस्थान किया। उसी वक्त पुलिस ने मेरी गिरफ्तारी का वारंट दिखाया। वारंट देखते ही मुझे तुम्हारी याद आ गई। पहले तुम्हें मेरी जरूरत थी, अब मुझे तुम्हारी जरूरत है। उस वक्त तुम मेरी हमदर्दी की भूखी थी, अब मैं तुम्हारी सहानुभूति की भिक्षा मांग रही हूँ दीदी। अब मुझ में लेश मात्र भी दुर्बलता नहीं है। मैं चिंताओं से मुक्त हूँ। मैजिस्ट्रेट जो कठोर से कठोर दंड देंगे उसका स्वागत करूंगी मैं। अब मैं पुलिस के किसी आक्षेप या असत्य आरोपण का प्रतिवाद नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि जेल के बाहर रहकर जो कुछ कर सकती हूं, जेल के अंदर रहकर उससे कहीं ज्यादा कर सकती हूं। जेल के बाहर भूलों की संभावना है, बहकने का भय है, समझौते का प्रलोभन है, स्पर्धा की चिंता है, परंतु जेल सम्मान और भक्ति की एक रेखा है। उसके भीतर शैतान कदम नहीं रख सकता। मैदान में जलता हुआ अलाव वायु में अपनी उष्णता को खो देता है, लेकिन इंजन में बंद होकर वही आग संचालक शक्ति का अखंड भंडार बन जाती है।
1: वाह मृदुला, सच तुम धन्य हो, तुम्हारा बलिदान अमर है। अमर हो गई तुम मृदुला।
2: अरे मृदुला, आ गई तुम?
0: हाँ, आओ आज हम भारत माता की सेवा का फिर से व्रत लें। आओ फिर से जय घोष करें, भारत माता की
3: जय,
0: भारत माता की
3: जय,
0: भारत माता की
3: जय।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद की जब्तशुदा कहानियों की रेडियो प्रस्तुति का तीसरा एपिसोड आप सभी अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स के साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने वाले हैं। मीडियम वेव पर अब हमारी सभा आरंभ होती है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 5 बजे हैं। अब सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि 2017 में शुरू होने के बाद से अब तक 16 पेंशन अदालतों के जरिए 20,676 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज बारडूना जिले के सांतिपनी विद्यालय में वरिष्ठजनों का सम्मान किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक ली एवं अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। प्रदेश में आज सेवा सेतु अभियान सरकार आपके द्वार के तहत नगरीय क्षेत्रों में वार्ड और जोन स्तर पर मेगा सेवा सेतु शिविर लगाए गए। शिविरों में विभिन्न विभागों के अधिकारी द्वारा नागरिकों की समस्याओं और आवेदनों का मौके पर निराकरण किया। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया से चर्चा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक देश को पूरी तरह नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी और देश के भविष्य के लिए ड्रग्स और नशे को खत्म करना बेहद जरूरी है। प्रदेश में मानसून 24 जून को दाखिल हुआ था और 3 अक्टूबर को विदा हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार मानसूनी सीजन में प्रदेश में 35.8 इंच बारिश दर्ज हुई, जो सामान्य से करीब 4% कम है। और एशिया खेल का जापान के नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। एशियाई खेलों में भारत ने 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदकों के साथ पदक तालिका में 4th स्थान हासिल किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। प्रस्तुति आकाशवाणी शिवपुरी की है।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके दैनिक कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त शिवानी राठौर। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा करेंगे विश्व पशु दिवस पर। साथ ही हमारा दूसरा विषय रहेगा विश्व अंतरिक्ष सप्ताह। दोस्तों, क्रम जीवनालोक में हम चर्चा करेंगे बुरे वक्त का सबसे अच्छा मित्र ज्ञानवर्धक पुस्तक विषय पर, और आपका मनोरंजन कराएंगे कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा कर रहे हैं विश्व पशु दिवस। विश्व पशु दिवस प्रत्येक वर्ष 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य पशुओं के प्रति लोगों में प्रेम, दया और संवेदनशीलता की भावना उत्पन्न करना तथा उनके अधिकारों और संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। पशु हमारे पर्यावरण और प्रकृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पृथ्वी पर जीवन के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पशु और मनुष्य का संबंध बहुत पुराना है। साथियों, प्राचीन समय से ही मनुष्य ने पशुओं को अपने जीवन का साथी बनाया है। गाय, भैंस, बकरी आदि पशु दूध प्रदान करते हैं। बैल और घोड़े जैसे पशु पुराने समय में खेती और परिवहन में सहायता करते थे।

थे। हाथी जैसे बड़े पशु भी मानव जीवन में विभिन्न कार्यों के लिए उपयोगी रहे हैं। दोस्तों, आज भी अनेक परिवार पशुपालन के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते हैं। दोस्तों, विश्व पशु दिवस हमें यह याद दिलाता है कि पशु भी जीवित प्राणी हैं और उन्हें भोजन, पानी, सुरक्षित वातावरण और उचित देखभाल की आवश्यकता होती है। हमें उनके साथ क्रूर व्यवहार नहीं करना चाहिए। कई बार लोग पशुओं को बिना भोजन पानी के छोड़ देते हैं या उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान करते हैं। यह मानवता के विरुद्ध है। हमें पशुओं के प्रति प्रेम और करुणा का व्यवहार करना चाहिए। साथियों, आज अनेक जंगली पशु और पक्षी संकट में हैं। जंगलों की कटाई, प्रदूषण, अवैध शिकार और प्राकृतिक आवासों के नष्ट होने के कारण कई प्रजातियों की संख्या कम हो रही है। यदि हम समय रहते प्रकृति और वन्य जीवों की रक्षा नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां कई महत्वपूर्ण पशु पक्षियों को केवल किताबों में ही देख पाएगी। इसलिए जंगलों की रक्षा करना और वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है। साथियों, पशु पर्यावरण के संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जंगलों में शाकाहारी और मांसाहारी जीव खाद्य श्रृंखला का हिस्सा होते हैं। पशु बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। मधुमक्खियां और अन्य जीव परागण में योगदान देते हैं। इस प्रकार प्रत्येक जीव प्रकृति के चक्र में किसी न किसी रूप से उपयोगी होता है। दोस्तों, विश्व पशु दिवस के अवसर पर विद्यालयों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। विद्यार्थियों को पशु संरक्षण के बारे में जानकारी दी जा सकती है। चित्रकला, निबंध, भाषण और पोस्टर प्रतियोगिताओं के माध्यम से लोगों को जागरूक कर सकते हैं। घायल या भूखे पशुओं की सहायता करना, गर्मी में उनके लिए पानी रखना और पशुओं के लिए दाना पानी की व्यवस्था करना भी अच्छे कार्य हैं। दोस्तों, हमें यह समझना चाहिए कि पशुओं की रक्षा केवल सरकार या पशु संगठनों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। हमें अपने आसपास रहने वाले पशुओं के साथ संवेदनशील व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, विश्व पशु दिवस केवल एक दिन मनाने का अवसर नहीं है, बल्कि पूरे वर्ष पशुओं के प्रति दया और जिम्मेदारी निभाने की प्रेरणा देता है। मनुष्य और पशु प्रकृति के एक ही परिवार का हिस्सा हैं। यदि हम पशुओं और उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा करेंगे तो पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और हमारी पृथ्वी अधिक सुंदर और संतुलित बनेगी। इसलिए हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम पशुओं से प्रेम करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे तथा उनके प्रति हमेशा दयालु व्यवहार रखेंगे। आइए साथियों, समय हुआ है फिल्म संगीत की दुनिया में जाने का। सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम आज की बात में हमारे अगले विषय विश्व अंतरिक्ष सप्ताह पर चर्चा करने का। संदर्भ है 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक। दोस्तों अंतरिक्ष मानव के लिए हमेशा से ही जिज्ञासा और आकर्षण का विषय रहा है। आकाश में चमकते तारे, चंद्रमा, सूर्य और अनेक ग्रहों को देखकर मनुष्य के मन में यह जानने की इच्छा उत्पन्न हुई कि इस विशाल ब्रह्मांड के रहस्य क्या हैं। अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करने और अंतरिक्ष विज्ञान के महत्व को समझने के लिए विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है। अंतरिक्ष विज्ञान ने मानव जीवन को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंतरिक्ष सप्ताह के माध्यम से लोगों को अंतरिक्ष अनुसंधान, वैज्ञानिक उपलब्धियों तथा ब्रह्मांड के बारे में जागरूक किया जाता है। अंतरिक्ष विज्ञान केवल वैज्ञानिक तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका संबंध हमारे दैनिक जीवन से भी है। आज संचार, मौसम की जानकारी, नेविगेशन, टेलीविजन प्रसारण और आपदा प्रबंधन जैसी अनेक सुविधाओं में अंतरिक्ष तकनीक का उपयोग किया जाता है। साथियों, मानव ने अंतरिक्ष की खोज के लिए अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। वर्ष 1957 में सोवियत संघ ने स्पुतनिक 1 नामक पहला कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा। इसके बाद अंतरिक्ष अनुसंधान में तेजी आई। वर्ष 1969 में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। इन उपलब्धियों ने पूरी दुनिया को अंतरिक्ष विज्ञान की नई संभावनाओं से परिचित कराया। साथियों, भारत ने भी अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की हैं। भारत की अंतरिक्ष यात्रा में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत ने अनेक कृत्रिम उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया है, जिनका उपयोग संचार, मौसम, कृषि, शिक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में किया जाता है। साथियों, भारत के चंद्र अभियान भी बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में योगदान दिया। इसके बाद चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 मिशनों ने भारत की अंतरिक्ष क्षमता को आगे बढ़ाया। दोस्तों, चंद्रयान 3 की सफलता ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जोड़ी। इसके अलावा मंगलयान के माध्यम से भारत ने मंगल ग्रह के अध्ययन की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाया है। साथियों, अंतरिक्ष विज्ञान का महत्व भविष्य में और बढ़ने वाला है। वैज्ञानिक दूसरे ग्रहों और उपग्रहों का अध्ययन कर रहे हैं। पृथ्वी से बाहर जीवन की संभावनाओं, ग्रहों की संरचना और ब्रह्मांड की उत्पत्ति जैसे विषयों पर लगातार शोध हो रहे हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान से विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में कई विकास कार्य हो रहे हैं। दोस्तों, विद्यार्थियों के लिए अंतरिक्ष विज्ञान विशेष रूप से प्रेरणादायक है। यह उन्हें विज्ञान, गणित और तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। साथियों, हम कह सकते हैं

अंतरिक्ष केवल रहस्यों से भरा हुआ विशाल संसार नहीं है, बल्कि यह मानव वैज्ञानिक प्रगति का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अंतरिक्ष अनुसंधान ने हमारे जीवन को अनेक प्रकार से प्रभावित किया है और भविष्य में भी इसके नए अवसर सामने आएंगे। दोस्तों, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह में विज्ञान के प्रति जिज्ञासु बनने, नई खोजों के लिए प्रयास करने तथा मानवता के उज्जवल भविष्य के लिए वैज्ञानिक सोच विकसित करने की प्रेरणा देता है। आइए साथियों, चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनते हैं एक और प्यारा सा ये गीत।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम जीवन आलोक में हमारे आज के विषय बुरे वक्त का सबसे अच्छा मित्र ज्ञानवर्धक पुस्तकें पर चर्चा करने का। दोस्तों पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र मानी जाती हैं। सच्ची मित्रता वही होती है जो कठिन समय में हमारा साथ दे, हमें सही रास्ता दिखाए और निराशा से बाहर निकलने की प्रेरणा दे। इस दृष्टि से ज्ञानवर्धक पुस्तकें बुरे व्यक्ति की सबसे अच्छी मित्र हैं। जब व्यक्ति अकेलापन, परेशानी, चिंता या असफलता का अनुभव करता है तब अच्छी पुस्तकें उसका मन शांत करती हैं और उसे नई सोच तथा नई दिशा प्रदान करती हैं। दोस्तों पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती हैं। उनमें विभिन्न विषयों से संबंधित जानकारी, अनुभव और विचार संकलित होते हैं। इतिहास, विज्ञान, साहित्य, दर्शन, भूगोल, कला, अनेक विषयों की पुस्तकें हमें दुनिया को समझने में सहायता करती हैं। एक अच्छी पुस्तक पढ़ने से हमारा ज्ञान बढ़ता है और हमारी सोचने समझने की क्षमता विकसित होती है। दोस्तों जीवन में कठिन समय आना स्वाभाविक है। विद्यार्थी को परीक्षा में असफलता मिल सकती है, किसी व्यक्ति को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है या कभी कभी मनुष्य किसी समस्या के कारण निराश हो सकता है। ऐसे समय में ज्ञानवर्धक पुस्तकें हमें यह समझाती हैं कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं और प्रयास करने से परिस्थितियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। महान व्यक्तियों की जीवनियां हमें संघर्ष और परिश्रम से आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। साथियों पुस्तकों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वे बिना किसी स्वार्थ के हमारा मार्गदर्शन करती हैं। एक अच्छी पुस्तक को जब हम बार बार पढ़ते हैं तो हर बार उससे कोई नई बात सीखने को मिलती है। पुस्तकें हमारे विचारों को सकारात्मक बनाती हैं और हमारी कल्पना शक्ति को बढ़ाती हैं। वे हमें सही और गलत के बीच अंतर समझने में सहायता करती हैं। दोस्तों आज के समय में मनोरंजन के अनेक साधन उपलब्ध हैं। मोबाइल फोन, इंटरनेट, टेलीविजन, सोशल मीडिया हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। इनके माध्यम से जानकारी प्राप्त करना आसान है, लेकिन पुस्तकों का महत्व आज भी कम नहीं हुआ है। पुस्तकें पढ़ते समय हमारा ध्यान किसी एक विषय पर केंद्रित रहता है, इससे एकाग्रता और धैर्य का विकास होता है। विद्यार्थियों के लिए ज्ञानवर्धक पुस्तकों का विशेष महत्व है। पाठ्य पुस्तकों के अलावा सामान्य ज्ञान, विज्ञान, इतिहास, साहित्य और महान व्यक्तियों की जीवनियों से संबंधित पुस्तकें पढ़ने से उनका ज्ञान व्यापक होता है। अच्छी पुस्तकें विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत, भाषा कौशल और तर्क करने की क्षमता विकसित करती हैं। दोस्तों ज्ञानवर्धक पुस्तकें केवल कठिन समय में ही हमारी मित्र नहीं होती, बल्कि अच्छे समय में भी वे हमारा मार्गदर्शन करती हैं। वे हमें अपनी सफलताओं का सही उपयोग करना सिखाती हैं और जीवन में विनम्र बने रहने की प्रेरणा देती हैं। यदि हम नियमित रूप से अच्छी पुस्तकें पढ़ने की आदत डाल लें तो हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। हमें अपनी रुचि के अनुसार अच्छी पुस्तकों का चयन करना चाहिए। दोस्तों हम कह सकते हैं कि ज्ञानवर्धक पुस्तकें वास्तव में बुरे वक्त की सबसे अच्छी मित्र हैं। वे कठिन परिस्थितियों में हमारा मनोबल बढ़ाती हैं, हमें ज्ञान देती हैं और सही दिशा दिखाती हैं। आइए साथियों अब चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनते हैं एक और प्यारा सा ये गीत।

0: अभी युवा श्रोताओं के लिए युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। प्रस्तुति आकाशवाणी शिवपुरी की थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। अब आपसे मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
2: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
1: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
2: कहाँ से पता चलेगा?
1: उद्गम से। RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
8: चाहिए
9: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
10: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
8: पिज़्ज़ा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
10: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है, अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
8: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
10: RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
11: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
12: न शोर दिन रात, न ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हां, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब पेश है फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है रामलीला फिल्म से, जिसे गाया है साहिल हाडा ने। इस गीत के बोल लिखे हैं सिद्धार्थ गरिमा ने और संगीत है संजय लीला भंसाली का।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश की है।
1: प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कटियार। श्रोताओं, किसी भी परिवार के लिए सिर पर पक्की छत का होना केवल एक घर की बात नहीं बल्कि उसकी सामाजिक सुरक्षा, सम्मान और बेहतर भविष्य की बुनियाद होती है। मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला आज विकास और जन कल्याण की इसी सुखद तस्वीर का साक्षी बन रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ने बालाघाट जिले में हजारों बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों के जीवन को बदल दिया है। वर्ष 2016-17 से लेकर अब तक जिले में 1,90,000 से अधिक आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से 1,74,000 से ज्यादा घर बनकर तैयार भी हो चुके हैं। यही नहीं, विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों के सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रहे प्रधानमंत्री जनमन अभियान के तहत भी 3400 से अधिक बैगा और जनजातीय परिवारों को पक्के मकान मिल चुके हैं। इसके साथ ही आवास प्लस सर्वे 2.0 के जरिए नए जरूरतमंद परिवारों की पहचान भी पूरी कर ली गई है। ग्रामीण विकास की इस ऐतिहासिक उपलब्धि और बालाघाट पक्के मकान, पीएम जनमन अभियान और ग्रामीण सशक्तिकरण के विषय पर गहराई से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार एवं सामाजिक राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर मनोज कुमार जी। मनोज जी, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर,
2: धन्यवाद अभिषेक।
1: मनोज जी, सबसे पहला सवाल मेरा इस बिंदु को लेकर है कि बालाघाट जिला, जो कभी एक नक्सल प्रभावित जिले के रूप में बहुत चर्चा में रहता था, अभी हाल ही में यह नक्सल मुक्ति की तरफ बढ़ रहा है। प्रशासन और बालाघाट पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के प्रयासों के चलते यहाँ के जो नक्सली थे आत्मसमर्पण करके अब मुख्य धारा से सरकार की पुनर्वास नीति से जुड़ रहे हैं। तो आज के दौर में जिले में जो 1,74,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों को पक्के घर का सपना पूरा होता दिख रहा है, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। उनके ग्रामीण जीवन स्तर में आए इस व्यापक बदलाव को, परिवर्तन को आप किस रूप में देखते हैं?
2: निश्चित रूप से एक आम आदमी का सपना होता है कि घर हो मेरा अपना
1: जी।
2: घर के बिना उसे लगता है कि कुछ भी नहीं है, और ऐसे में जो आंकड़े आप बता रहे हैं 1,74,000 मकान
1: जी,
2: ये अपने आप में अकल्पनीय है। इसके पहले हम सोच भी नहीं सकते थे ऐसा कुछ होगा
1: जी।
2: इसकी दो वजह हैं, एक तो उस तरह की सरकार, जो पूर्ववर्ती सरकारें थी, उनका मन नहीं था, उनके पास ऐसी योजनाएं नहीं थी। दूसरा, इस रास्ते में ये जो नक्सली हैं ये आड़े आते थे
1: जी,
2: कि जहां काम होना है वहां काम नहीं होने दे रहे हैं, और वो बेचारे ग्रामीण वही टूटी फूटी छतें, पानी टपक रहा है, बीमारियां हो रही वगैरह वगैरह अलग अलग चीजों से जूझते थे। लेकिन अब दृश्य बदल रहा है और 2,25,000 लोग करीब को उनको छत मिल चुकी है, और आप जैसे बता रहे कि 2,00,000 के आसपास का फिगर पहुंच रहा है जो स्वीकृत हो चुके हैं
1: जी।
2: तो आने वाले दिनों में इतनी बड़ी संख्या में अपना मकान अपने छत के नीचे रहना एक मतलब सपनों का सच होने जैसा है
1: जी। बिल्कुल ठीक आपने, और इस जिले में विशेष रूप से जो पिछड़ी जनजातियां हैं उनके लिए पीएम जनमन अभियान के तहत ही 3400 से अधिक पक्के मकान बनाए गए हैं, जो कि एक जनजाति समाज दर्शकों से बुनियादी सुविधाओं से दूर था, उनके जीवन में ये जो पीएम जनमन योजना है इसने कितनी बड़ी क्रांति लाई है, इसको किस प्रकार से देखते हैं?
2: निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की बहुत सारी योजनाएं जिसमें आप पीएम जनमन अभियान का उल्लेख अपन कर रहे हैं, ये इसने पूरे जो ट्राइबल्स हैं और पिछड़ी जनजातियां हैं सबके जीवन को बदल दिया है। अब आप जैसे बता रहे हैं कि बैगा समुदाय में 3400 लोगों को मकान मिला है
1: जी।
2: जब हम बैगा समुदाय की बात करते हैं तो हमारे सामने एक ऐसी तस्वीर खींची गई है कि वो भूखे गरीब से कहीं भी पड़े हुए कुछ भी नहीं है, और जब हम 3400 मकान की बात करते हैं तो सहसा यकीन नहीं होता है
1: जी
2: ऐसा हुआ है। लेकिन सच यही है कि धीरे धीरे करके जीवन में बदलाव आ रहा है, और उनका अपना मकान होना कितना सुखद है, और ये

0: राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कर मिलकर जो सुखद परिणाम दे रहे हैं, इसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं।
1: जी बिल्कुल ठीक, आपने जब हम बैगा समुदाय की, जब हम समाज के इस वर्ग की प्रगति होते देखते हैं तो ये अपने आप में एक उदाहरण बनता है कि हाँ वास्तव में प्रगति हो रही है। कच्चे मकान से पक्के मकान में जाना, अभी आपने चर्चा भी की थी, ये केवल एक भौतिक बदलाव नहीं होता बल्कि इससे परिवार के स्वास्थ्य, बच्चों की पढ़ाई और सामाजिक प्रतिष्ठा भी जुड़ती है। इस सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण को आप इन आदिवासी क्षेत्रों के लिए किस रूप में विश्लेषित करेंगे?
0: एक बड़ा बदलाव आया है कि अभी तक हमने जो देखा है वो चाहे जनपदी समाज हो या ग्रामीण समाज, वहाँ अगर मकान बनेगा या मकान की रजिस्ट्री होगी तो वो पति या पिता या भाई के नाम पर होगी, लेकिन पहली बार बदलाव हो रहा है जहाँ घर पर महिला का नाम है।
1: जी,
0: ये कितना बड़ा सुखद बदलाव है कि महिला अब मकान की मालकिन है।
1: जी,
0: और ये मालकिन शब्द अपने आप में इतना सुखद होता है, और इससे केवल ये सुखद नहीं होता है, एक सपना सच नहीं होता है, बल्कि उनके भीतर सुरक्षा और स्थायित्व का भाव पैदा होता है।
1: जी,
0: निर्णय में उनको एक आत्मविश्वास पैदा होता है।
1: जी,
0: और फिर ये जो वित्तीय समावेशन है, जो उनके आर्थिक रिसोर्सेज हैं, उसको डेवलप करने में उनको लगता है कि अब मैं सब कुछ कर सकती हूँ।
1: जी,
0: और वो कर रही हैं, और इसके लिए जो प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं, जो राज्य सरकार की सपोर्ट है, ये सारा कुछ मिला के एक सपने का बहुत बेहतर ढंग से जमीन पर उतरना है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने, और मेरा अगला सवाल इसी मुद्दे पर ही था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो अधिकतर मकानों की रजिस्ट्री या स्वामित्व है घर की महिलाओं के नाम या संयुक्त रूप से किया जा रहा है, ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के आत्मविश्वास और उनके निर्णय लेने की क्षमता पर इसका क्या कुछ असर आप देखते हैं आने वाले समय में?
0: अब अभी तक हम बात करते थे कि शहरी महिलाएं जो हैं, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जो दफ्तरों में नौकरी करती हैं, वो सशक्त हैं। लेकिन अगर असल सशक्तिकरण देखना है, जैसा कि हम जिस राज्य में रहते हैं वहां देवी अहिल्या का सशक्तिकरण है,
1: जी
0: लोक माता का जो सशक्तिकरण है, वो गांव में जाके देखिए, गांव का बदलता हुआ चेहरा देखिए, वहां की महिलाओं के भीतर आत्मविश्वास देखिए, तो आपको पता लगेगा कि पूरा भारत कैसे बदल रहा है, एक नया भारत कैसे गढ़ा जा रहा है। और ये महिलाओं में आत्मविश्वास के लिए आपको वहां तक चलकर जाना होगा।
1: जी,
0: और आप जाके देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि मैं वो शहरी महिलाओं से कहीं अधिक सशक्त और आत्मविश्वास से भरी ये हमारी महिलाएं, हमारी माता बहनें जो नए समाज की रचना कर रही हैं।
1: बिल्कुल ठीक, आपने कहीं ना कहीं हमारे ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं वे पहले से ही काफी सशक्त हैं अगर हम शहरी इलाकों की तुलना करें और ग्रामीण इलाकों की तुलना करें। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले अब चलिए सुनते हैं हमारे कुछ हितग्राहियों की बातें कि वे पीएम आवास योजना के तहत आवास पाकर अब क्या कुछ कहते हैं। सुधाकर कहते हैं कि पहले पीएम आवास मिलने के पूर्व जब हमारे पास झोपड़े थे तो बारिश में बहुत दिक्कत होती थी, घर के सामने कीचड़ भर जाता था, लेकिन अब जो पक्के आवास मिले हैं उससे अब और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है।
2: ये पुराने जो मकान थे झोपड़े, इन्हीं बारिश में क्या होता था, टपके, बंदर कूदने से, चूहों की वजह से भी कुछ ये होता था, यानी फिर आए दिन कहीं बल्ली टूट गई, सीवार ये हो गया, कुछ मनमानी ऐसी समस्याएं होती। मगर प्रधानमंत्री ये आवास योजना के अंतर्गत जो बिल्डिंग वाला दिया गया, रूप आने वाला, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या होता था, आजू बाजू कीड़े मकोड़े भी घुस जाया करते थे, मगर ये बंदिश होने से कोई कीड़े मकोड़े या कैसे कोई जीव जंतु ने जो घर में नुकसान पहुंचाया। अब क्या उनके रहते में तो पहले पैर भरते थे घर के सामने से निकलो, आज तो सीमेंट गली है, हमें पहले टार्च का लेना पड़ता था, लाइट है, पानी के लिए हमारे घर के सामने स्वयं दूर हमारे घर के परिवार को कहीं जाना नहीं पड़ता, सारी सुविधाएं तो जो मूलभूत है हमें पूर्ण मिल रही है।
1: वहीं बालाघाट जिले की ग्रामीण महिला सिवन बाई कहती हैं कि पीएम आवास मिलने से हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है।
3: पहले मैं कच्चे मकान में रहती थी, मतलब पानी बरसात के दिनों में पानी बहुत टपकता था जिस वजह से हमें बहुत समस्या होती थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री आवास योजना से जो हमें लाभ मिला है, पक्का मकान बन चुका है जिस वजह से हमारी छत टपकती नहीं और सभी मतलब अच्छे से रहते हैं।
1: वहीं बालाघाट जिले की प्रोजेक्ट अधिकारी नेत्रा उइके बताती हैं कि बालाघाट जिले में पीएम आवास योजना के तहत किस प्रकार से निर्माण कार्य हुए हैं।
4: जिला बालाघाट में योजना प्रारंभ से अब तक लगभग 190,733 आवास जिले से स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 170,000 आवास पूर्ण हो चुके हैं, 16,000 आवास अभी प्रगतिरत हैं, जिनमें प्लिंथ, लिंटल और छत स्तर का कार्य प्रगतिरत है। इसी प्रकार जिले में 4,187 पीएम जनमन आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 3,415 आवास कंप्लीट किए जा चुके हैं, बाकी आवास प्रगतिरत हैं। इसी प्रकार जो पुराने सर्वे में नाम छूट गए थे उनमें भी 1,63,000 नाम जिले में अभी जोड़े गए हैं, जिन पर शासन से कार्रवाई अभी
5: प्रचलन में। निश्चित रूप से बालाघाट जिले में पीएम आवास योजना के इन हितग्राहियों

0: की जबानी यह खुद बताती है कि किस प्रकार से आज वहां के ग्रामीण और आदिवासी अंचल की तस्वीर बदल रही है। इसके साथ ही आंकड़े भी गवाह हैं कि विकास हो रहा है।
1: 90% से अधिक स्वीकृत मकानों का सफलतापूर्वक निर्माण पूरा कर लेना ही इस योजना की दक्षता को दर्शाता है।

0: बहती नालियां हैं और तमाम तरह की दिक्कतें हैं, उसके बीच हम 90% से अधिक का लक्ष्य पूरा करने जा रहे हैं
1: जी।
0: ये एक वो जो हमने कहा ना आपसे, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच
1: जी,
0: इसके चलते ये सब कुछ संभव हुआ
1: है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, जो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है जिसमें प्रशासन और सरकार और साथ ही साथ आम जनता, वहाँ के जो मूल निवासी हैं, उन सबकी सहभागिता से कहीं ना कहीं ये योजनाएं धरातल पर
0: निश्चित रूप से देखिए कि किसी भी चीज में वो हम सारी चीजें जो सरकार पे डालते हैं ना
1: जी,
0: ये इस मानसिकता को बदलना होगा
1: जी।
0: दरअसल सरकार कौन है? सरकार हम हैं और हम सब मिलकर काम करेंगे तो ये चेहरा बदलेगा
1: जी,
0: विकास दौड़ेगी
1: जी।
0: और हमको एक नए भारत, एक नए समाज में जीने का अवसर मिलेगा
1: जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने सर, बुनियादी सुविधाओं का कहीं ना कहीं एकीकरण होता जा रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है।
0: बिल्कुल,
1: आज अगर हम यदि पीएम आवास की बात करें तो ये केवल चार दीवारें नहीं बल्कि इनके साथ नल से जल, उज्ज्वला की गैस कनेक्शन और शौचालय जैसी सुविधाएं भी डेवलप की जा रही हैं। इस समन्वित विकास जिसको हम मल्टी फेज्ड डेवलपमेंट बोल सकते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था खासतौर से जो ये हमारे आदिवासी बाहुल्य इलाके हैं जहाँ पर कभी नक्सलियों का बाहुल्य था, अब वो खत्म हो चुका है, किस प्रकार से उस ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधार रहे हैं, ये हमारा समन्वित विकास का मॉडल।
0: मुझे लगता है कि अब हम अपनी इस चर्चा में
1: जी
0: नक्सल मुक्त शब्द को छोड़ दें और हम कहें कि एक विकसित ग्रामीण भारत
1: जी
0: वो कैसा है
1: जी।
0: तो ये जो पीएम आवास योजना है
1: जी,
0: इसने इतनी सारी चीजें बदली हैं, जैसे अब उनको नल जल स्कीम से जोड़ लिया गया है, उज्ज्वला से जोड़ लिया गया है
1: जी।
0: अब इसके चलते क्या हो रहा है, समय की बचत हो रही है, अब उन्हें पानी भरने के लिए दूर तक नहीं जाना हो रहा है
1: जी,
0: घर पे अपने आंगन में पानी मिल रहा है
1: जी।
0: अब जब पानी साफ मिलेगा, रहने के लिए जगह होगी, तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य में भी सुधार होगा
1: जी।
0: जो बीमारियों पे पैसे खर्च होते थे वो खत्म हो गए हैं
1: जी।
0: अब इन जब चीजें होती हैं तो वो रोजगार पे ध्यान लगाते हैं
1: जी,
0: तो कौशल विकास करते हैं, और इस सब करने से इसका पूरा का पूरा असर लोकल मार्केट पे पड़ता है
1: जी।
0: और मार्केट बूम करने लगता है, दिखने लगता है कि हाँ अब इसमें आवक जावक बढ़ गई है, खरीदारी देनदारी बढ़ गई है
1: जी।
0: तो इस तरफ पूरा एक नए ग्रामीण भारत का चेहरा हमारे सामने उभर कर आता है,
1: एक नई ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकसित होती दिखाई पड़ती
0: है निश्चित रूप से।
1: और जैसा कि अभी आपने रोजगार के क्षेत्र की बात करी, तो ये जो सबसे अच्छी बात इस योजना की यही है कि जितने भी लाखों मकान यहाँ पर निर्मित किए जा रहे हैं उनके निर्माण में भी स्थानीय स्तर पर ही जो कारीगर लग रहे हैं, राजमिस्त्री हो, मजदूर हो, और निर्माण सामग्री से जुड़े जो स्थानीय व्यापारी हैं उनको भी कहीं ना कहीं समृद्धि मिली है, रोजगार और आर्थिक समृद्धि का साधन मिला है। तो क्या आपको लगता है कि पीएम आवास योजना को ग्रामीण रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था का एक बड़ा इंजन भी माना जा सकता है?
0: निश्चित रूप से अभिषेक, हमको इसको थोड़ा सा पलट के देखना पड़ेगा
1: जी।
0: हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा है
1: जी,
0: भारतीय ज्ञान परंपरा में ये सारे जो लोकल कौशल हैं, हमारे स्थानीय लोग हैं, वो कोई बिल्डिंग बनाने वाला है, कोई पढ़ाई वाला है, कोई और कुछ काम करने वाला है, ये सब मिलकर काम करते थे, हमें बाहर से कोई चीज आयात नहीं करनी पड़ती थी। पीएम आवास योजना और उनके पीएम साहब के निर्देश में ये सारी चीजें, वो जो भारतीय ज्ञान परंपरा है ना, वो लौटकर इन गांवों तक, इन आंगन तक आ गई है, तो अब सारी चीजें बहुत आसान हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है इसकी लागत कम
1: होगी,
0: क्योंकि अगर मजदूर बाहर से आता है तो उसके पैसे दुगुने होंगे, वो वही गांव में रहकर काम करता है तो अधिक समय काम करेगा, कम कीमत में काम करेगा
1: जी,
0: तो लागत भी कम हो रही है
1: जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, कहीं ना कहीं जो दूरस्थ और पहाड़ी इलाकों में सामग्री पहुंचाने और तमाम चीजों की व्यवस्था करने में एक्स्ट्रा लागत लग सकती थी वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाती है, स्थानीय स्तर पर ही रोजगार भी सृजित होता है। मनोज जी, मध्य प्रदेश के अन्य आदिवासी बाहुल्य जिलों के लिए बालाघाट का ये जो सफलता का मॉडल है किस प्रकार से एक नजीर बन सकता है, और इस गति को बनाए रखने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे?
0: ये जो तस्वीर बदल रही है
1: जी,
0: फौरी तौर पे तो हमें बेहतर लग रहा है
1: जी,
0: लेकिन इसको स्थायी बनाने के लिए हमको सतर्क और सजग रहना होगा
1: जी।
0: कठोर सुरक्षा नीति बनेगी, अगर कोई गड़बड़ करते दिखता है तो उसके लिए कोई रियायत नहीं होनी चाहिए
1: जी।
0: और इसके साथ ही भरोसा पैदा करने के लिए सड़क, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा और शिक्षा पे ज्यादा जोर देना होगा
1: जी।
0: जब शिक्षित होगा समाज तो मन बदलेगा, और खासतौर पे महिला और बच्चियों की शिक्षा के लिए बेहतर काम करने होंगे, क्योंकि वही हमारी जननी है, वही हमारी धुरी है, अगर वो शिक्षित होंगी तो महिलाएं इस पूरे भाव को बदलने की ताकत रखती हैं। महिलाओं पे फोकस सरकार को करना
1: जी। बिल्कुल ठीक है आपने, कहीं ना कहीं जब एक महिला शिक्षित होती है तो कहा भी जाता है कि पूरा समाज शिक्षित होता है, तो महिला सशक्तिकरण को जो प्राथमिकता दी गई है इन सरकारी योजनाओं में, चाहे पीएम आवास की बात करें या अन्य योजनाओं की बात करें, वो कहीं ना कहीं सरकार की जो इच्छा शक्ति है उसको दिखाता है कि महिलाओं को सशक्त करके ही हम लगातार आगे बढ़ते जाएंगे।
0: अभी हमने बात की ना कि घर पे महिलाओं के नाम पर टीका लग रही है
1: जी,
0: वो अपने आप में इतना सुकून का है, उनके भीतर कितना आत्मविश्वास भरता है
1: जी,
0: कितना और कुछ करने की ताकत रखती है वो दिखाता है इस पे
1: जी। बिल्कुल ठीक है आपने, एक बहुत ही सार्थक चर्चा हुई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। आपने

0: बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और पीएम जनमन अभियान के सफल क्रियान्वयन, इसके सामाजिक आर्थिक प्रभावों और ग्रामीण बदलाव से जुड़े तमाम पहलुओं पर अत्यंत व्यावहारिक और विचारणीय विश्लेषण हमारे श्रोताओं के साथ साझा किया। श्रोताओं, बालाघाट की यह विकास गाथा यह साबित करती है कि जब सरकारी नीतियां संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ धरातल पर उतरती हैं तो पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का जीवन भी सम्मान और सुरक्षा से भर जाता है। पक्की छत मिलना केवल एक सपने का पूरा होना नहीं बल्कि यह एक समृद्ध, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत की दिशा में बढ़ता हुआ मजबूत कदम है। इसी सकारात्मक संदेश के साथ प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के आज के इस विशेष कार्यक्रम को यहीं विराम देने की अनुमति दीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
2: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

Marco Tata. फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन. रामायण दिखी लेखू दिखा, चित्रहार दिखा, महाभारत दिखा, एशियाड दिखा, पोखरण दिखा, मिस वर्ल्ड दिखी, वर्ल्ड कप दिखा, चंद्रयान दिखा, इनसैट दिखा, नई कहानियों ने नया भारत लिखा. कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल. जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल.

0: कहानी नहीं है, फील नहीं है, बिली और फैमिली के साथ रील नहीं है, जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है, हिप हॉप भी है, न्यू रिलीजेस बॉलीवुड की न्यू थिंग भी है, एवरग्रीन भी है, कहानी
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
2: पेश है इस घंटे की खास खबरें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज पाडुना जिले के सांदीपनि विद्यालय में वरिष्ठ जनों का सम्मान किया। मुख्यमंत्री ने जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक ली एवं अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही पाडुना में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन भी किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मंडला में 9,04,126 तेंदुपत्ता संग्राहकों को 36,17,37,518 रुपए की बोनस राशि अंतरित की। इसके साथ ही वन समितियों के सदस्यों को काष्ठ लाभांश वितरित किया गया। प्रदेश में गौपालन को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार नई पहल करने जा रही है। इसके तहत वृंदावन ग्रामों में उत्कृष्ट गौपालकों की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसमें प्रथम पुरस्कार 1,00,000, द्वितीय पुरस्कार 50,000 और तृतीय पुरस्कार 25,000 रखा गया है। प्रदेश में आज सेवा सेतु अभियान सरकार आपके द्वार के तहत नगरीय क्षेत्रों में मेगा सेतु शिविर लगाए गए। शिविरों में विभिन्न विभागों के अधिकारी द्वारा नागरिकों की समस्याओं और आवेदनों का मौके पर निराकरण किया गया। प्रदेश में मानसून 24 जून को दाखिल हुआ था और 3 अक्टूबर को विदा हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार मानसूनी सीजन में प्रदेश में 35.8 इंच बारिश दर्ज हुई, जो सामान्य से करीब 4% कम है। और एशिया खेल का जापान के नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2030 एशियाई खेलों के मेजबान कतर को सौंपे गए। भारत ने खेलों में 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में चौथा स्थान हासिल किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें। अब पेश है फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार को फिल्म अधिकार में। इंदिवर का गीत था और धुन मनाई थी बप्पी लहरी ने। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश और आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। इस सुरीले सफर में आपके साथ हूँ मैं श्रद्धा गुप्ता। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा जिसे हमने लिया है आनंद फिल्म से। इस गीत को लिखा है गुलजार ने और स्वर दिया है लता मंगेशकर ने। संगीत सलिल चौधरी का है।

अभी आप सुन रहे थे देव कोहली का लिखा हुआ गीत शारदा सिन्हा की आवाज़ में, जिसको संगीतबद्ध किया था राम लक्ष्मण ने और फिल्म का नाम था मैंने प्यार किया। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत जिसे गाया है मन्ना डे ने। गीत के बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने और संगीत से सवारा है SD बर्मन ने।

खयाम के संगीत निर्देशन में शहरयार का लिखा हुआ गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म उमराव जान में। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश आपने ट्यून किया है और आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने, संगीत विशाल का है और फिल्म का नाम है माचिश।

सत्यम शिवम सुंदरम। इस गीत में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह को। विट्ठल भाई पटेल का गीत था और संगीत से सवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे लिखा और संगीतबद्ध किया है रविंद्र जैन ने। आवाज़ दी है आवाज़ दी है आशा भोसले ने और फिल्म का नाम है कोतवाल साहब।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह को परिचय में। गीत के बोल लिखे थे गुलजार ने और संगीत दिया था राहुल देव बर्मन ने। कार्यक्रम के आखिर में ये सुनते हैं आशा भोसले की आवाज़ में नमकीन फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा है गुलजार ने और संगीत से सवारा है राहुल देव बर्मन ने।

0: श्रोताओं भी आप आनंद ले रहे थे फिल्म संगीत का। मीडियम वेव डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर आप सभी ने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश। मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की

शान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: और चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: नसंसनी ना उत्तेजना न शोर दिन रात न ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हां, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
3: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कॉरपोरेट गवर्नेंस को आधुनिक अर्थव्यवस्था का दृश्य आधार बताया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मजबूत संस्थान और सुशासन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सतत आर्थिक प्रगति के लिए निवेशकों का विश्वास जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीव्र गति से तकनीकी विकास के युग में प्रवेश कर रहा है। नई दिल्ली में एक अन्य कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सच्चे विकसित भारत को अपने नागरिकों, पारिवारिक मूल्यों, चरित्रवान युवाओं और समाज में अनुकंपा पर विश्वास होना चाहिए। महापर्व क्षमापना समारोह में उन्होंने कहा कि ये क्षमा, मैत्री, अहिंसा और आंतरिक शुद्धि के सार्वभौम जीवन मूल्यों के उत्सव का अवसर है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश में गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने में सहयोग देगी। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर आज गुंटूर जिले में एक परियोजना का शुभारंभ किया। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के लिए 3 लाख मकान स्वीकृत किए हैं और चल रहे निर्माण कार्य के पूरा होने से पहले 3 लाख और मकान स्वीकृत करेंगे। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि अब तक आयोजित पेंशन अदालतों में कुल 28,797 शिकायतों में से 20,676 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। इनमें तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटें शामिल हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से दिनेश आर्य को, पश्चिम बंगाल से रुक्मिणी मल्लिक को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इसकी घोषणा की। उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की एक राज्यसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2030 एशियाई खेलों के मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत एशियाई खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ तालिका में 4थे स्थान पर रहा है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 7:05 हुए हैं। अब वक्त है कार्यक्रम विवरण का।

0: श्रोताओं, सबसे पहले आइए आपको आज शाम की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रम बता दें। शाम 7:21 पर ग्रामीण श्रोताओं के लिए ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इसके अंतर्गत शाम 7:30 से सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। आज का विषय होगा रबी फसलों की तैयारी एवं कृषि समसामयिक कार्य। विषय विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर रतनदीप सोनी। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा रात्रि 8:35 पर। 8:15 पर सुनिए कार्यक्रम डगर विकास की। प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी सागर का होगा। रूपको का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे रात्रि 9:30 पर। और रात्रि 10:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही सुनिए एशियन गेम्स 2026 पर आधारित डेली हाइलाइट्स। विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा सुनिए रात्रि 10:20 पर। श्रोताओं, ये तो थी जानकारी हमारी आज शाम की सभा के शेष कार्यक्रमों की। आइए अब आपको कल की तीनों सभाओं में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रम बता दें। सबसे पहले आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम। आपकी सुबह को और तरोताजा एवं रंगीन करने के लिए हम लेकर आते हैं दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल, जिसे आप सुन सकेंगे कल सुबह 7:20 पर। कल सुबह 8:30 पर सुनिए अखिल भारतीय संगीत सभा। इसके अंतर्गत कल आप सुनेंगे हिंडोल पेंड से ख्याल गायन। उर्दू कार्यक्रम आईना सुनिएगा सुबह 9:30 पर। और जिले की चिट्ठी का वक्त होगा सुबह 10:00। सुबह 10:05 पर सुनिए फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीत सागर। सुबह 10:30 शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला आप सुन सकते हैं। इसके अंतर्गत कल आप सुनेंगे दिव्या शर्मा से शुद्ध सारंग में ख्याल गायन। अब आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम। सुबह 11:00 सुनिए फोन इन कार्यक्रम फोन करेंगी सुने आपकी फरमाइश। ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दिन में 12:30 पर सुनिए कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत कल आप सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद की जप्तशुदा कहानियों की रेडियो प्रस्तुति का 4th एपिसोड। स्वास्थ्य दर्पण ये कार्यक्रम होगा दिन में 1:00, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की होगी। 1:30 पर सुनिए लोकगीत का कार्यक्रम। इसमें कल आप सुनेंगे आरती तिवारी से बुंदेली लोकगीत। 1:45 पर सुन सकेंगे सुगम संगीत, कलाकार होंगी चारुलता रथ। फिल्म संगीत का आनंद आप कल पूरे दिन ले सकते हैं दिन में 2:00, शाम 5:33 पर, शाम 6:30 और रात्रि 8:35 पर। दिन में 2:30 पर आप सुन सकेंगे आपकी फरमाइश कार्यक्रम। युवा धड़कनों को तरंगित करने वाला कार्यक्रम युववाणी आप सुन सकेंगे शाम 5:00, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की होगी। शाम 6:00 सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। शाम 6:40 पर होगा कार्यक्रम आजकल। प्रादेशिक समाचार दर्शन आप सुन सकेंगे शाम 6:45 पर। ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम सुनिएगा ग्राम सभा शाम 7:21 पर। रात्रि 8:00 सुनिए विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा। आकाशवाणी दिल्ली से कार्यक्रम होगा पब्लिक स्पीक रात्रि 9:30 पर। आपकी फरमाइश ये कार्यक्रम सुनिएगा रात्रि 10:00 और रात्रि 10:30 पर सुनेगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। कल कलाकार होंगे नीना श्रीवास्तव, इनसे आप सुनेंगे उपशास्त्रीय गायन। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

0: बंधन नियम 2026 1 अप्रैल 2026 से लागू है। अब अपने घर से ही कचरे को अलग अलग करके शहर को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें।
1: घर से ही गीला, सूखा, सैनिटरी और स्पेशल केयर कचरा अलग अलग करके दें।
0: गीला कचरा हरे डस्टबिन में डालें, जैसे फल, सब्जियों के छिलके, बचा भोजन, चाय पत्ती वगैरह।
1: सूखा कचरा नीले डस्टबिन में रखें। कागज, प्लास्टिक, कांच, धातु, कपड़ा और गत्ता।
0: सैनिटरी और स्वास्थ्य संबंधी कचरा लाल डस्टबिन में डालें। सैनिटरी पैड, डायपर, बैंडेज, मास्क, ग्लव्स और पीपीई किट।
1: स्पेशल केयर काले डस्टबिन में डालें। पुराने मोबाइल, चार्जर, बैटरी, बल्ब, रिमोट, तार, इलेक्ट्रॉनिक सामान और घरेलू खतरनाक कचरा।
0: याद रखिए, सही पृथक्करण से रिसाइकलिंग आसान होगी और शहर स्वच्छ रहेगा।
1: नियमों का उल्लंघन करने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एवं दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। स्वच्छता अपनाएं, शहर को स्वच्छ बनाएं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी।
2: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
4: दी, ये देख कैसे।
5: हैप्पी बर्थडे भाई।
6: हाँ, मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।
7: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
8: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
9: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
7: आई नो ना।
9: RBI कहता है,
10: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
11: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मंडला में तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज पाडुर्णा में तेज विकास को शासन की प्राथमिकता बताया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में 3D तकनीक से आवास निर्माण परियोजना का शुभारंभ किया और एशियन गेम्स में भारत ने 85 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने जीते 10 पदक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मंडला में आयोजित कार्यक्रम में 8 वन मंडलों के 9 लाख से अधिक तेंदुपत्ता संग्राहकों के खातों में 36 करोड़ 17 लाख रुपए से अधिक की बोनस राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। इस राशि से मंडला, डिंडौरी, जबलपुर, सिवनी और बालाघाट सहित विभिन्न वन मंडलों के तेंदुपत्ता संग्राहक लाभान्वित हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार वनवासियों और तेंदुपत्ता संग्राहकों के आर्थिक हितों को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पाडुर्णा में जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में जिले के तेज विकास और नागरिक सुविधाओं को शासन की प्राथमिकता बताया।
1: बात जब से जिले की घोषणा हुई है, हमने लगातार विकास के लिए पर्याप्त धनराशि देते हुए जिला कार्यालय से लेकर सभी लगातार पदों की मंजूरी भी देते जा रहे हैं और हरेक वो क्षेत्र, चाहे आज जिस जगह हमें है, ये सांदीपनी का भव्य दिव्य भवन बनना या अलग अलग प्रकार की सारी संभावना पे काम करते हुए सरकार के माध्यम से जो बताया गया कि जो सामान्य से बारिश कम हुई है, हमारे राज्य के लोगों के लिए, पांडुर्णा के लोगों के लिए रोजगार से लेकर के सभी प्रकार की मदद की जितनी प्रकार की जरूरत हो हम पूरी सहायता करेंगे।
0: उन्होंने युवाओं को उद्योग और स्वरोजगार से जोड़ने, कृषि एवं स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने और पशुपालन व दुग्ध उत्पादन की संभावनाओं के विस्तार पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने सेवा सेतु शिविर में विभिन्न योजनाओं के हित लाभ वितरित किए। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश में गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने में सहयोग देगी। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर आज गुंटूर जिले के बुरीपालेम गांव में 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक से मकान बनाने की परियोजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के लिए 3 लाख मकान स्वीकृत किए हैं और चल रहे निर्माण कार्य के पूरा होने से पहले 3 लाख और मकान स्वीकृत करेगी। राजगढ़ जिले के ब्यावरा में सेवा सेतु अभियान के तहत सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने हितग्राहियों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ और प्रमाण पत्र वितरित किए। वर्षों से आवासीय अधिकार की प्रतीक्षा कर रहे लोहपीटे समाज के पात्र परिवारों को आवासीय पट्टे भी प्रदान किए गए। मंत्री ने कहा कि पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ दिलाना सरकार की प्राथमिकता है।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook, साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यह यात्रा जारी है। सेवा और सुशासन की इसी भावना के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज की विशेष श्रृंखला में जबलपुर के स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब के हो रहे प्रभावों की जानकारी दी जा रही है।
3: पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय CMM जबलपुर में विद्यार्थियों के नवाचार और रचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की गई है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के तहत देशभर में चयनित 500 विद्यालयों में केंद्रीय विद्यालय CMM जबलपुर भी शामिल है। अटल टिंकरिंग लैब में विद्यार्थियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित की अवधारणाओं को व्यावहारिक रूप से समझने का अवसर मिल रहा है। लैब में रोबोटिक्स, सेंसर, माइक्रो कंट्रोलर, 3D प्रिंटर, कंप्यूटर और अन्य आधुनिक उपकरण उपलब्ध हैं। विद्यालय के विद्यार्थियों ने इस लैब में स्मार्ट डस्टबिन, स्मार्ट जेब्रा क्रॉसिंग, ब्लूटूथ कार, धुआं पहचानने वाली कार और बाधा पहचानने वाली कार जैसे नवाचारी प्रोजेक्ट तैयार किए हैं। लैब का उद्देश्य विद्यार्थियों में रचनात्मकता, समस्या समाधान और डिजाइन सोच विकसित करना तथा उन्हें केवल तकनीक का उपयोग करने वाला नहीं बल्कि नए समाधान तैयार करने वाला बनाने की दिशा में प्रोत्साहित करना है।
0: एशियन गेम्स 2026 में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया है। प्रदेश के खिलाड़ियों ने भी 5 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 10 पदक जीतकर देश की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शूटिंग में नीरू डांडा ने 2 स्वर्ण, 1 रजत सहित 3 पदक जीते। वहीं विवेक सावकर और इशिका चौधरी ने हॉकी में स्वर्ण, क्रांति गौड़ ने क्रिकेट में स्वर्ण और जयमीना ने सॉफ्ट टेनिस में कांस्य पदक हासिल किया। राज्य के अन्य खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन कर प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले के बड़ौद में आयोजित 2 दिवसीय प्रांत स्तरीय विज्ञान मेला एवं वैदिक गणित प्रतियोगिता में मालवा प्रांत के विभिन्न जिलों के 386 छात्र छात्राएं शामिल हुए। नीमच में सेवा संकल्प अभियान के तहत सेवा सेतु अभियान के माध्यम से नगर पालिका कार्यालय परिसर में जिला स्तरीय जनकल्याण शिविर आयोजित किया गया। खंडवा जिले के हरसूद में वीरांगना रानी दुर्गावती एवं गोंडवाना की गौरवशाली विरासत को समर्पित जयंती समारोह जारी है। आज दूसरे दिन पारंपरिक लंगड़ी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। छिंदवाड़ा में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत नगर निगम द्वारा प्रसिद्ध धर्म टेकरी में श्रमदान अभियान चलाया गया। भोपाल में दिव्यांग, अनाथ और निर्धन बच्चों के लिए करीब 45 वर्षों से काम कर रहे समाज सेवी सरदार खान के जीवन पर बायोपिक फिल्म बनाई जाएगी। गुना जिले के राघोगढ़ में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने एक दिव्यांग आवेदक को रेड क्रॉस के माध्यम से 10,000 रुपए की तत्काल सहायता दिलाई और स्वास्थ्य विभाग को उपचार में सहयोग के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मंडला में तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज पाडुना में तेज विकास को शासन की प्राथमिकता बताया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में 3D तकनीक से आवास निर्माण परियोजना का शुभारंभ किया और एशियन गेम्स में भारत ने 85 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने जीते 10 पदक। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।
4: 3 कॉलेज में
5: डोंट वरी
4: फीस तो देखो

0: क्या हाल है? क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
0: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही।
2: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए का नो कोलैटरल।
0: वो कहाँ है?
2: मिठाई।
3: RBI कहता है
4: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
5: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश।

घर आंगन कार्यक्रम सुनने वाली अपनी सभी बहनन का स्वाति बहन की राम राम। बहनों देखो, कहते हैं ना कि हर को प्यार को दुलार को जो है एहसास समझत है। अगर अपने घर में अपन पेड़ पौधा लगाओ थे और ध्यान से प्यार से उनकी देखरेख करत हैं तो वे फल फूल तो देते ही देते हैं, उनकी देखे की चमक ही अलग होते है। उसी प्रकार अगर हम अपने मोड़ा मोड़ियों का ध्यान रखत हैं तो हर चीज़ के लाने वे अपने पास आउत हैं। छोटे छोटे बच्चे भी प्यार की भाषा समझते हैं, और तो और अपने आसपास जो पशु हैं वे भी प्यार की भाषा बहुत अच्छे से समझते हैं। और कई ऐसे पशु हैं जो कि अपन अपने घर में पालत हैं, उनकी देख रेख करत हैं और अपन को पतो ही नहीं चलत है कि वे कब अपने परिवार को हिस्सा बन जाते हैं। और जब अपने घर में रहते हैं, अपने मोड़ा मोड़ी भी जो है उनके संगे खेलत हैं, कूदत हैं और आसपास उनकी एक अलग सी रौनक लगी राउत है। तो बहनों, अपने गांव की अगर अपन बात करें या देहातन की बात करें, जो पशु है अपन सभी के जीवन को एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। शुरू से अगर अपन देखें, कई पीढ़ी दर पीढ़ी अपने संगे जो खेती कर रहे हैं, अपने भैया बहन सभी, तो वे उके संगे संगे जो है पशुपालन सोई करते हैं। पशुपालन और खेती एक दूसरे पे निर्भर होवे वाले व्यवसाय हैं। सभी के घर में पहले तो देखो गाय होती, भैंसें होती, बकरी होती, बैल होते, बैल अपनी खेती में सहायता करते। यहाँ तक कि पहले के समय में तो कही जाते कि एक स्थान से दूसरे स्थान भी अपन को जाने आउते तो बैलगाड़ी का उपयोग अपन और करते थे। वहीं अन्य प्रकार के जो पशु हैं वे भी अपने आसपास रहते थे, ऐसो लगत थे जैसे कि पूरी प्रकृति जो है मिलके जुलके रह रही हो। लेकिन समय बदलो, स्थितियां बदली, वातावरण में अंतर आओ तो कई पशु पक्षी जो हैं अपने क्षेत्रों से दूसरी जगह चले गए, लुप्त भी हो जा रहे हैं। कई प्रजातियां तो ऐसी भी जो कि अब ना के बराबर हैं। कई ऐसी देसी गायों की भी प्रजाति हैं, लेकिन आज भी अपने जो पशु हैं अपने जीवन को एक हिस्सा है। और जो अपने पशु हैं उनकी अपन को हर तरह से जो है मदद भी करो चाहिए। अब देखो घरन में अपन कई प्रकार के पशु तो देखो पालते ही हैं, जैसे कि गाय भैंस बकरी की अपन ने बात करी, तो इनकी जो है अपन को उचित देख रेख भी करने की ज़रूरत होती है। अब जैसे गाय भैंस से अपन को भरपूर मात्रा में दूध मिलत है और खेती के लाने जो है बैल की आवश्यकता भी पड़त है। कई जगह तो देखो बकरी है और अन्य पशु है, वे भी अपने ग्रामीण जो भैया बहन है अपनी आजीविका के लाने जो पालत हैं, कई प्रकार के साधन में उनको उपयोग भी करते हैं। लेकिन केवल ये अपन की आजीविका या अपनी ज़रूरतें नहीं पूरत करते हैं, ये एक प्राणी मात्र नहीं, इनमें भी जीव होते हैं यानी जीवित होते हैं। तो हमें इनके संगे भी जो है प्यार से व्यवहार करो चाहिए, एक संवेदनापूर्ण व्यवहार करो चाहिए। वहीं इनके भोजन पानी और इन्हें सुरक्षित वातावरण भी दो चाहिए, क्योंकि अगर ये सुरक्षित वातावरण ना मिले तो ये भरपूर मात्रा में बढ़त नहीं है। वहीं भूख प्यास तो देखो जो अपन को बोल के बता ना पाते हैं तो अपन को इनकी ध्यान रखने हैं। वहीं जैसे कि अपन देखते हैं कि मौसम जो है समय के अनुसार बदलत है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होते हैं तो अपन को चाहिए कि इनके लाने अतिरिक्त

जो है पीने के पानी की व्यवस्था करके चलें। यदि अपने जो पशु हैं वे थोड़े से सुस्त हैं तो अपन उनको देखत भय, उनकी बात को समझत भय, अगर आवश्यकता लग रही है तो पशु चिकित्सक से भी अपन सलाह ले सकते हैं। इनकी भूख प्यास से ना रखें, इनके साथ कोनो जैसे मारपीट है या कछु अपनी नहीं सुन पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं बात, तो उनके साथ क्रूरता वालों व्यवहार ना रखें। और बहनों देखो, ये तो भाई अपने घरेलू पशु की, इसके अलावा भी अपन दिखाते हैं अपने घर के आसपास वातावरण में कई प्रकार के पशु रहते हैं, उनके प्रति अपन को सावधानी भी बरतने हैं और संवेदनशील भी रहने हैं। कई बार देखो जाता है कि वाहन चलाते समय गति को अगर अपन ध्यान में नहीं रखते तो कई पशुओं को चोट भी लग जाते हैं, तो अपन को ध्यान रखना है कि अपनी जो गति है वाहनों की बस सीमित और अपनी जो है संतुलन में रहे। वहीं कई जीव जंतु हैं जिनके लाने अपन को दाना पानी की भी अपन व्यवस्था कर सकते हैं, और जो पशु हैं इनके प्रति अपन को दया भाव रखने हैं। और ये काम और भी कर सकते हैं कि जैसे कि अपने घर के आसपास कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे अधिक मात्रा में पशु आते हैं तो वहाँ उनके पीने के पानी की व्यवस्थापन करके चलें, जिससे कि उनको पीने का पानी मिल सके। वहीं चारा और भी प्रकार की अगर व्यवस्थाएं अपन दे सके तो उनको अवश्य दें, तभी हमारे जो पशु हैं सुरक्षित रहेंगे और उनको सुरक्षित वातावरण मिलेगा। और अपन के ही प्रयास से जो है देख देख के दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी कि जिससे कि वे भी अपने आसपास रहने वाले पशु हैं उनके जीवन के प्रति संवेदनशील रहेंगे। यह केवल बहनों सेवा का काम नहीं होता है, ये मानवता की भी सेवा होती है। तो बहनों अपन अपने आसपास जो पशु पक्षी हैं उनका अपन को सबको मिलकर ध्यान रखने हैं, चाहे अपने घरेलू पशु हों या फिर बाहर रहने वाले पशु हों या फिर कोई भी पशु पक्षी हों, अपन से जो बन सके अपन को उनको ध्यान रखने हैं। कई बार देखो अपन देखा थे अपने धार्मिक आयोजनों में भी पशुओं की पूजा होती है, तो ये सब चीज़ें इसलिए ही जोड़ी गई हैं जिससे कि जो अपने पशु हैं वो सुरक्षित रहें और हम सबके जीवन का एक हिस्सा बन के रहें। तो बहनों बातें तो आगे भी हुई हैं, अब सुनते हैं लोकगीत, स्वर है लेखा निगम का।

0: बिन्नरो देखो, पहले अपन घोड़न पे, गाड़ी पे, ऊंट गाड़ी पे कई प्रकार की जो है सवारी करते थे, लेकिन अब देखो समय बदल गया है और उसी के साथ साथ अपने जो यातायात के साधन हैं उनमें भी बदलाव आया है। अपन सभी को जो जीवन है उनमें भी कई चीज़ें बदल गई हैं और धीरे धीरे करके आज सभी जो है आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की के उनके सामने कई रास्ते खुल रहे हैं और गांव में भी हर प्रकार की वे सुविधाएं पहुंच रही हैं जो एक समय में शहरों तक सीमित थीं। आज अपनी बहनों की अगर बात करें तो वे भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और आज अगर देखी जाए तो शिक्षा के साथ साथ पढ़ाई लिखाई के संगे संगे जो है तकनीकी बातों का भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम AI की उपयोगिता की बात करें, जिसे अपन कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहते हैं, केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, आज अपने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जो महिलाएं हैं उनके लाने में ही एक वरदान की तरह सामने आई है। वे इसके बल पे आत्मनिर्भर बन रही हैं। अगर अपन शिक्षा की बात करें, पढ़ाई लिखाई की, तो उसमें भी जो बहनों ने पहले के एक समय पे अपनी पढ़ाई छोड़ दी है तो उसमें उनको मदद मिल रही है। वहीं अगर हम कृषि के बारे में बात करें तो कृषि से जो भी जो अपनी बहनें हैं बहुत प्रकार के काम काज करती हैं, बहुत सी अपनी कृषक महिलाएं भी हैं, वे भी कृषि में इसकी मदद ले रही हैं। साथ ही अगर स्वास्थ्य संबंधी अगर जानकारी अपन को चाहनी होती है कि अपन को लग रही है कि कौन सी समस्या है, तो कई बार अपन AI को उपयोग भी करते हैं। और तो और अपनों रोजगार शुरू करने में या फिर अपनों खुद को स्वरोजगार शुरू करने में भी AI ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ तक कि अपने घर में जो मोड़ा मोड़ी होते हैं उनको भी पढ़ाने लिखाने में सहयोग करने में भी मदद मिली है। तो बहनों, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें आज AI की उपयोगिता बढ़ती जा रही है और हम तो अपने कार्यक्रम के माध्यम से यही कहें कि सभी को इसके बारे में जानकारी होना चाहिए और इसकी उपयोगिता को भी समझें। और आज बहनों, अभी अपन सुनवा रहे हैं आप सभी को LNIPE ग्वालियर में आयोजित AI वर्कशॉप में श्रीमती रेखा यादव अध्यक्षता, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग से AI पर विचार की स्थल रिकॉर्डिंग। तो आप सुनते हैं,
1: लीजिए सुनवा रहे हैं आपको मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती रेखा जी के द्वारा AI पर व्यक्त किए गए विचार।
2: जैसा समय बदलता जा रहा है वैसी टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है। आने वाले समय में भी और कुछ बदलेगा जो हमारी नई जनरेशन देखेगी। और AI का जो आज विषय है,

0: ऐसे वास्तव में बहुत कुछ सीखने की चीजें हैं और बहुत कुछ बचाने की चीजें हैं। आपको बहुत आगे भी बढ़ा देंगे, इसमें छोटे छोटे आप रोजगार भी डाल सकते, निकाल सकते। जैसा राम अवतार जी भैया ने बोला है कि इसमें खाना बनाने का, खाना ही नहीं सब कुछ दिखाता है, आप जो मांगोगे वो आपको दिखाएगा। मेरा तो निवेदन यही है कि आप लोग बहुत अच्छे से आगे बढ़ें। खासतौर पर मैं बेटियों से बात करना चाहती हूँ, क्योंकि आप सब लोग तो बहुत समझदार हैं, अपना जीवन जी चुके हैं, जितना मैंने जिया उतना लगभग आप लोगों का भी हो गया है, आप लोग तो वैसे भी समझदार हैं। लेकिन बच्चों को ये समझाने की ज़रूरत है कि अगर कहीं किसी भी तरह से कोई भी मोबाइल पे गलत चीज़ आती है तो उसको बिल्कुल नहीं छेड़ो, वहीं उसको स्टॉप कर दो, या फिर अपने भाई पिताजी किसी से भी पूछो ये क्या है, वो अपने आप हटा देंगे उससे, क्योंकि वही एक रास्ता है जो आपको सही रास्ते पे चला देगा या गलत रास्ते पे चला देगा। आप मोबाइल से ही आजकल पढ़ाई हो गई है, हर चीज मोबाइल पे आने लगी है। मोबाइल वास्तव में हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, पर उसका सही उपयोग करना, बच्चों को सही दिशा और सही शिक्षा मिल जाए तो हमारे बच्चे कहीं किसी से कम नहीं है। बेटियों में तो वो हुनर है कि बेटियां बहुत आगे तक पहुंची हैं। आज महिलाओं को थोड़ा बोल देते हैं, अरे तुम क्या जानो, लेकिन महिलाएं इस तरह से नहीं है। महिलाएं जो कर दिखाती हैं वो कोई नहीं कर पाता। आज महिलाएं घर भी संभालती हैं, परिवार भी संभालती हैं और देश भी संभालती हैं। हमारी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति, सबसे उसके आगे कोई है ही नहीं, तो कौन है उसमें, महिला है ना। तो ऐसी सोच लेके चलो तो कहीं किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अगर हमारी बहन, हमें लग रहा है कि कहीं हमारी बहन किसी तकलीफ में है, किसी परेशानी में है और वो अपनी बात नहीं कह पा रही लेकिन आपको समझ में आ रहा, तो उसकी ज़रूरत जो भी है उसको पूरी करो, उसकी मदद करो, उसके साथ खड़े हो, एकमात्र शक्ति है। मातृशक्ति बहुत बड़ा नाम है। अगर हम लोग अपनी शक्ति पहचानेंगे तो हमें कहीं किसी से डरने की या दबने की ज़रूरत नहीं है। बस रास्ता अपना पकड़े रहो, सही रास्ता पकड़ो, अच्छा पढ़ो, अच्छा आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: इसी अवसर पर राज्य महिला आयोग की सदस्य साधना जी ने भी अपने विचार व्यक्त किए।
2: क्योंकि आगे आने वाला समय AI का है, हम सब इसको महसूस कर रहे हैं, लेकिन AI यशोदा नाम पुराना है और समय आने वाला एडवांस है। दोनों के समन्वय की जरूरत है। इस नाम से हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रखा है कि हम भारतीय संस्कृति और संस्कार को भी याद रखें लेकिन नए युग का भी स्वागत करें। यशोदा नाम का अर्थ मैं पहले बताना चाह रही हूँ। यहाँ पर यशोदा AI जो नाम रखा है, यशोदा किसको कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण यशोदा नंद के घर आए, हमारे तुम्हारे घर तो नहीं आते। यशोदा का अर्थ होता है यश दान, जो अपने यश को भी जीवन में दान कर दे उसको कहते हैं यशोदा। और नंद कहते हैं जो दूसरों को जीवन भर आनंदित करे वो होता है नंद। और जब यशोदा और नंद बनोगे तभी श्री कृष्ण आएंगे और जब ही AI वाले समय का आप समय को एक्सेप्ट कर पाओगे। तो निश्चित बात है हमको एडवांस टेक्नोलॉजी में जाना चाहिए। मैं भी चाहती हूँ, क्योंकि समय परिवर्तनशील है, समय के साथ हम सबको चलना पड़ेगा। लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी की दोनों चीज़ें, बेनिफिशियल भी है और हार्मफुल भी है। उसको हम अच्छे से सदुपयोग करें तो बहुत अच्छी बात है, और दुरुपयोग करें तो ये हमारे लिए नुकसानदायक है। क्योंकि मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ, हमने मोबाइल टेलीविज़न ये पहले कुछ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये प्रतिस्पर्धा का युग आया, ये मोबाइल का युग आया, ये टेलीविज़न का युग आया, अब मोबाइल में यूट्यूब AI सब कुछ हम धीरे धीरे वन बाई वन स्टेप बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन वही मोबाइल हमारे बहुत अच्छी ज़रूरी काम की बात करने के लिए बहुत ज़रूरी, कभी कभी लगता है कि मोबाइल नहीं होता तो हम कैसे चल पाते। लेकिन वही मोबाइल हमारी बेटियां यहाँ पे बैठी हैं कि मम्मी जब 1 घंटे मायके बात करती है तो वो दुरुपयोग हो जाता। तो हम हर चीज़ का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें, तो एडवांस टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। क्योंकि बेटियाँ बैठी हैं, आने वाला समय इन लोगों का ज़्यादा है। जहाँ पर हम सब बैठे हैं वो तो एक अनुभव का अपना ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन आने वाले समय के लिए आज ये प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें सबका ज्ञान अधूरा है, मेरा भी अधूरा है, और हम सबको इसके लिए कुछ ना कुछ वर्कशॉप आयोजित करनी पड़ेगी, जैसे हमारे विशेषज्ञ आए हैं वो हम सबको बताएंगे। लेकिन हम सबको अपनी मानसिकता, क्योंकि जीवन का रोमांच सीखना है, हरदम सीखते जाओ कोई भी उम्र हो, लेकिन जीवन में सीखने के लिए बहुत कुछ होता है और सिखाने वाले का हमको सदैव आदर करना चाहिए। तो जीवन का रोमांच सीखना है, तो इसलिए साइबर अपराध की तरफ से हमारे जैसे बैठे हैं विशेषज्ञ, वो भी आपको बताएंगे, और हम लोग भी जैसा तोमर जी ने कहा कि अपने यहाँ पर ही साइबर वालों को हमने रखा है बिठा के, कि कोई भी केस आता है तो हम उन लोगों को देते हैं, और साइबर थाना सरकार ने भी अलग से बनाया है कि जिससे आपकी रिपोर्ट की तुरंत कार्यवाही हो सके। लेकिन ये AI मतलब डिजिटल हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ये हम सबका उद्देश्य की गई है। लेकिन हम सब मिलकर इसको बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि ये ऐसे ही सुनने की चीज़ नहीं है, ये बड़े ज्ञान की और ध्यान की चीज़ है। तो अगर आप लोग अच्छे से सुनेंगे तो बहुत कुछ समझ पाएंगे और अपने जीवन में उपयोग भी कर पाएंगे। कि अपराध करना भी अगर सही नहीं है तो अपराध सहना भी सही है, जो कि हमारी बहनें सहती आ रही हैं, बताती नहीं है, और उसका परिणाम उनकी आने वाली पीढ़ी भी भोगती है। किसी हिंसा का सामना करना पड़ रहा है या किसी भी तरह की, तो आप लोग भी आके बता सकते हैं, आप लोग भी उनको जागरूक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सब बहनें और महिलाएं बैठी। और सबसे पहले तो हमको एक संकल्प ये लेना पड़ेगा कि हम ही एक दूसरे के सहयोगी बने, क्योंकि कई जगह महिलाएं ही महिलाएं को पीछे खींचने का काम करती हैं। तो वो अभी हम तो इससे ही नहीं उभर पाएंगे, तो AI तक कैसे पहुंच पाएंगे। तो इसलिए हम सबको ये सोचना चाहिए, क्योंकि कुछ क्षेत्र भी ऐसे हैं, जैसे हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा भी कल अध्ययन कर रही थी कि एक मुरैना में क्षेत्र है, एक राजगढ़ में क्षेत्र है, यहाँ पर नात्रा और इस तरह की बहुत सारी समस्याएं, हम लोग भी उनको उठा रहे हैं। लेकिन अगर आप लोगों को भी कहीं पता चलता है तो हम लोगों को बताने का जरूर प्रयास करें, जिससे कि हम आप लोगों का नाम भी नहीं आएगा और हम लोग खुद पहुंचकर वहाँ पर कोशिश करेंगे कि उस महिला को हम लोग कुछ सहायता दे पाए। तो मैं इसमें बेटियों को भी सादर आवाहन करती हूँ और आप सबका भी करती हूँ कि इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से सुने, समझें और जीवन में उपयोग में लाएं। आप सब ने मुझे सुना, बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहनों, अभी अपन सुन रहे थे LNIPE ग्वालियर में आयोजित AI वर्कशॉप में श्रीमती रेखा यादव अध्यक्षा मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग से AI पर विचार। तो बहनों देखो, आज जैसे अपन ने बातचीत में भी बात करी कि आज हर प्रकार का ज्ञान हम सभी के लिए होना बहुत ज़रूरी है। हमने देखो कई प्रकार से देखो है अपन सभी ने कि आसपास अब जो है वातावरण बदल रहा है, लोगों के सोचने की समझने की क्षमताएँ बढ़ रही हैं, और तो और हर तरीके से काम करने का तरीका भी बदल रहा है। अब देखो, पहले अपन देखते थे बहुत समय तक अपन को बैंकों में अगर काम करने हैं तो समय लगत हो, कई बार हाट बाज़ार में भी समय लगत हो, या कहीं भी अपन को कोई भी जानकारी हो तो अपन को उस स्थान पे

जाने की जरूरत होती थी। लेकिन आज इंटरनेट कई माध्यम से अपन को घर बैठे ही सही जानकारी मिल जाती है, जिससे अपना समय भी बचता है और इसके साथ साथ हमें धीरे धीरे हमारा ज्ञान भी बढ़ता है। तो बहनों, आज अगर हम थोड़ी सी समझदारी दिखाएं तो अपने घर परिवार के साथ साथ अपने आप को बेहतर तरीके से आत्मनिर्भर भी बना सकते हैं। और ख़ास तौर से अगर देखा जाए कि शासन की भी कई योजनाएं हैं जो कि हमें ना मालूम होने पर हम उनका लाभ भी नहीं ले पाते हैं, लेकिन अगर अपने को सही समय पर जानकारी मिल जाती है तो वो अपने बड़े काम की होती है। ऐसी ही एक योजना है MP जो है PM मातृत्व योजना, जिसमें जो है अपनी जो शिशु हैं या फिर धात्री माताएं हैं या गर्भवती महिलाओं हैं उनको समय पर टीकाकरण, विभिन्न प्रकार की सहायताएँ, चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं जिसका उपयोग करके अपन लाभ ले सकते हैं। और बहनों, कहते हैं कि जो नवजात शिशु होता है उसकी देखरेख करना बहुत ही आवश्यक होता है, लेकिन सही तरीके से की जाए और उसकी देखरेख में अपन को कुछ बातों का ध्यान भी रखना होता है। कहा जाता है कि 5 वर्ष तक जो शिशु है उसका शरीर का संपूर्ण विकास हो जाता है, लेकिन अगर हम देख रेख में उसके पोषण में कमी रख देते हैं या तो उसके कारण उसके पूरी संपूर्ण जो है विकास पे उसका असर भी पड़ता है। तो हमें चाहिए कि सबसे ज़रूरी होता है कि जो नवजात शिशु होता है उसे ज़्यादा से ज़्यादा उसकी माँ के पास रखना चाहिए, और जो नवजात शिशु होता है उसका तापमान भी ठीक बनाए रखने के लिए ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पर कि थोड़ी गर्माहट भी हो, और मौसम को देखते हुए ही हमें उसको कपड़े लत्ते पहनाना चाहिए। कई प्रकार के अंधविश्वास के कारण जो है घरों में देखा जाता है कि माँ के दूध के अलावा कई चीज़ों को अभी दिया जाता है, तो हमें इन सारी भ्रांतियों को तोड़कर आगे बढ़ना है। साथ ही साथ जो टीकाकरण है उसको हमें नियमित रूप से ज़रूर कराना है, जिससे शिशु जो है कई प्रकार की बीमारियों से उसका बचाव हो सके, तभी हमारे शिशु जो है स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा और अपनी माँ की ममताओं की छाँव में उसका पालन पोषण हो पाएगा। और अब सुनते हैं संदेश।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले?
2: ना,
1: पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और? नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
4: RBI कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: देखो बहनों, कहते हैं ना कि वित्तीय जानकारी भी हो वो अपन सभी के लाने बहुत ही जरूरी है। अब देखो, घर गृहस्थी तो चलाते हैं, बाय में अगर अपन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें तो अपनी छोटी छोटी बचत भी जो है बड़े काम की हो जाऊत है। और कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरत है, और ये बात बिल्कुल साची है कि अपन जो भी रुपया पैसा बचाते हैं उसका सही तरीके से निवेश करें, जिससे कि अपन को अच्छी ब्याज दरें मिले और भविष्य में आने वाली ज़रूरतों की उसकी पूर्ति हो सके। और अब सुनते हैं लोकगीत, स्वर है मदन मोहन ब्रजवासी का।
7: छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी।

बहनों देखो, छोटे छोटे मोड़ा मोड़ी जब अपने घर आंगन में डोलत हैं तो ऐसो लगत है जैसे कि अपनो बचपन भी लौट आया होए। और ऐसे में अपन अपने मोड़ा मोड़ियन की देख रेख के संगे संगे बहनों अपन को अपनों भी तो ध्यान रखने हैं, और मोड़ा मोड़ियन की भी देखो त्वचा में अपन देखा था कि जैसी मौसम बदलत है तो विभिन्न प्रकार की कई बार समस्याएं भी आ जाती हैं। लेकिन बहनों कहते हैं ना कि अपनी रसोई में कई प्रकार के खजाने छुपे हुए हैं जिससे अपन अपनी त्वचा संबंधी समस्याओं का निराकरण भी कर सकते हैं। अब जैसे कि अपनी त्वचा बहुत ज़्यादा बार बार रूखी हो रही है तो अपन गुलाब जल और ग्रीसलिन मिला के भी लगा सकते हैं, या फिर तेल को या घी को थोड़ा सा उपयोग करके त्वचा को जो है निर्मल और कोमल बना सकते हैं। इसके साथ ही कई बार धूल के कण, विभिन्न प्रकार की चीज़ें जो है हमारी त्वचा पर लगातार इकट्ठी होने लगती हैं जिसके कारण कई प्रकार के जो है फोड़ा फुंसी भी होते हैं। तो ऐसे में अपन जो है नीम बेसन को मिला करके एक प्रकार से उपटन तैयार करके इसका उपयोग भी कर सकते हैं जिससे अपनी त्वचा जो है साफ सुंदर और स्वच्छ रह सकत है। तो बहनों अब नी बातें तो हुई हैं, अब सुनत हैं लक्ष्मी त्रिपाठी के स्वर में लोकगीत।

बिन्नारो देखो, घर घर जो है हमेशा कछु ना कछु काम काज चलत है। और अपन देखें कि कछु दिनों में जो है अपने घर घर जो है देवी मैया भी बजा रहे हैं, तो अपनी बहनें भी चाहती हैं कि अपन सुंदर से सुंदर जो है अच्छे भजन गाएं। तो अपन यही प्रयास कर रहे थे कार्यक्रम के माध्यम से कि आपको अच्छी से अच्छे लोग गीत सुनवाएं, अच्छे से नई नई बातें आपको मिलें, जिससे कि आप जीवन में आगे बढ़ पाएँ और जो भी काम कर वो चाह रही हैं बेहतर तरीके से करें, क्योंकि जीवन जो है हमेशा आगे बढ़ने के लिए होता है, नई चीज़ों को सीखने के लिए होता है। बस ज़रूरत होती है एक अच्छी सोच की और समझ की। पूरे विश्वास के साथ अगर हम आगे बढ़ें तो हमें निश्चित सफलता मिलती है। और बहनों, अब हो रही है चलबे की बेरा। सभी बहनों को स्वाति बहन की राम राम।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार को फिल्म कुदरत में। मजनू सुल्तानपुरी का गीत था और धुन बनाई थी आरडी बर्मन ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है सरस्वती चंद्र से। इस गीत को आवाज़ दी है मुकेश ने, इंदिवर का गीत है और संगीत निर्देशन है कल्याण जी आनंद जी का।

अभी आप सुन रहे थे मुकेश को सरस्वती चंद्र फिल्म में इंदिवर का गीत था और संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज़ में अंगूर फिल्म का नगमा, जिसको लिखा है गुलजार ने और संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं सागर फिल्म का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

श्रोता अभी आप आनंद ले रहे थे फिल्म संगीत का। मीडिया वेब डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नगर विकास की। प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी सागर का है।

0: श्रोताओं नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी वृहत योजना की जो आपकी घर की छत को ही आपका बिजली घर बना देगी। योजना का नाम है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इस क्रांतिकारी योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा फरवरी सन 2024 में किया गया।
1: 1 करोड़ परिवारों को सोलर रूफटॉप लगाने के लिए सरकार मदद करेगी।
0: कभी एक सपना था कि भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, आज लाखों परिवार इस सपने को हकीकत में बदलने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। देश के 50 लाख से अधिक परिवार पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से प्रकाशित हो रहे हैं। अब हर घर की छत पर सिर्फ सोलर पैनल नहीं बल्कि बचत, स्वावलंबन और एक दीप्तिमान भविष्य की उम्मीद रोशन हो रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से सतत विकास के लक्ष्यों में से एक स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य को हासिल करने में भी मदद मिल रही है। श्रोताओं, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में विस्तार से प्रकाश डाल रहे हैं सागर डिप्टी कलेक्टर रजत सोनी जी। आप नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के OIC भी हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है।
2: यह केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य सस्टेनेबल एनर्जी को बढ़ावा देना है, जिसमें मुख्य तौर पर जो सोलर एनर्जी है उसको बढ़ावा देते हुए और घरेलू उपयोग में रेसिडेंशियल मतलब खुद की छत पर ही खुद की बिजली का उत्पादन करना। मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्लांट लगाए जा रहे हैं। पहला प्लांट 1 किलोवाट का है जिनको कम ऊर्जा की आवश्यकता है, लगभग 100 यूनिट प्रति माह उनके लिए है, जिसमें 30,000 रुपए तक सब्सिडी मिल जाती है। दूसरा प्लांट जो है वो 2 किलोवाट का रहेगा जिसमें 60,000 रुपए तक की सब्सिडी है और लगभग ऊर्जा का उत्पादन 200 यूनिट प्रति माह। और तीसरा जो प्लांट रहेगा वह 3 किलोवाट का है जिसमें 78,000 रुपए तक सब्सिडी मिल जाती है और इसकी जो उत्पादन क्षमता होती है वह 300 यूनिट तक होती है, जो एक बड़े घर को या बड़े परिवार को भी कवर करती है।
0: सोलर प्लांट लगवाने के लिए किस तरह की जगह की आवश्यकता होती है? कोई विशेष स्थान होता है जहां ये लगाया जा सकता है?
2: नहीं, इसके लिए विशेष कोई स्थान की आवश्यकता नहीं है। बस छत पर जो दक्षिण पूर्व का कोना होता है उसमें लगभग 12x12 या थोड़ा बड़ा प्लांट है तो 16x16 की छत पर भी आसानी से लगाया जा सकता है।
0: जी, अब बात आती है आवेदन की, तो आवेदन की प्रक्रिया को हमें समझाइए।
2: इसके लिए आवेदन जो प्रधानमंत्री सूर्य ग्रह योजना का पोर्टल है उस पर आसानी से आवेदन किया जा सकता है।
0: इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए?
2: इसमें विशेष कोई पात्रता मापदंड नहीं है। भारत के सभी नागरिक इसके लिए पात्र हैं और जो सरकार का लक्ष्य है वह 1 करोड़ हितग्राहियों को इससे जोड़ना है और उनको सब्सिडी उपलब्ध कराना है। और एक बात और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें केवल 5% की ब्याज दर पर इसमें लोन भी उपलब्ध हो जाता है। काफी लंबे समय के लिए लोन रहता है, जो उसकी किस्त होती है, इंस्टॉलमेंट होता है, वो भी बहुत कम होता है, मुश्किल से 1,000 रुपए से 2,000 रुपए के बीच में।
0: ये योजना हमें आत्मनिर्भर तो बना ही रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से ये योजना हमारी आय का जरिया भी बन सकती है।
2: स्वाभाविक तौर पर जो अक्टूबर मंथ में इसका पूरा एक कैलकुलेशन होता है, एक ऐप से आप इसको ट्रैक भी कर सकते हैं और अक्टूबर मंथ में पूरा कैलकुलेशन होता है। यदि आपकी 1000 यूनिट बिजली एक्सेस में बन जाती है तो वह MPV आपसे लगभग 2.80 से 3 रुपीस के बीच में आपसे उसको रेट दे देती है आपको।
0: तो इस प्रक्रिया में जो बिजली उत्पादन हम उपभोग नहीं करते हैं उसका पैसा कहाँ दिया जाता है? क्या हितग्राही को नगद दिया जाता है या बिल में ही उसे समायोजित किया जाता है?
2: यह उनके बिल में ही समायोजित हो जाता है क्योंकि MPV का मीटर घर पर लगा होता है तो उसका जो नॉमिनल चार्ज होता है, मीटर चार्ज जो होता है, वो तो सोलर हो ना हो आपको देना ही पड़ता है, तो उसको भी उसमें समायोजित कर लिया जाता है। मीटर चार्ज को भी इसमें समायोजित कर लिया जाता है तो आपका बिल लगभग 0।

0: भी हो सकता है।
1: अच्छा, यानी इस योजना का लाभ लेने के लिए मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का कनेक्शन लेना भी जरूरी है।
0: मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का कनेक्शन होना अनिवार्य है। उसमें जो स्मार्ट मीटर होता है उसके माध्यम से ही पूरी प्रक्रिया संचालित होती है। बस इसमें दो ऑप्शन और होते हैं, एक ऑन ग्रिड एक ऑफ ग्रिड। ऑन ग्रिड में एमपीवी से ही पूरा संचालित होता है और ऑफ ग्रिड में इन्वर्टर और बैटरी के माध्यम से भी आप अपनी ऊर्जा को अपने घर में ही संचित कर सकते हैं।
1: अंत में इस योजना के बारे में आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं इस योजना को लेकर एलन मस्क का एक कथन कहना चाहूंगा कि सूर्य कभी बिल नहीं देता और यह जो ऊर्जा है यह बहुत सस्टेनेबल है। आप आज निवेश करेंगे और इसकी आगामी आपको कई पीढ़ियों तक इसका लाभ मिलेगा।
1: धन्यवाद आपका। श्रोताओं, अभी आपने जाना कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है, आवेदन कैसे किया जाता है, और अब हम जानेंगे सोलर पैनल की गुणवत्ता कैसी होती है, उपभोक्ताओं को किन सुरक्षा उपायों का ध्यान रखना है, इनकी वारंटी, मॉनिटरिंग और रखरखाव आदि के बारे में। और ये जानकारी हमें दे रहे हैं लोकेंद्र गोयल जी, आप असिस्टेंट हैं मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड सागर में।
2: एक उपभोक्ता को प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली योजना संयंत्र लगवाने के लिए हमारे विभाग से जो रजिस्टर्ड वेंडर्स हैं उनसे संपर्क करना चाहिए और अच्छी ब्रांडेड कंपनी के संयंत्र को ही लगवाना चाहिए। मार्केट में आ रहे सस्ते लो क्वालिटी के संयंत्र को नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि ये संयंत्र लॉन्ग लाइफ के लिए लग रहा है और इसमें ब्रांडेड कंपनी के संयंत्र में सोलर पैनल 25 साल की गारंटी के लिए आता है, उसमें लगने वाला इन्वर्टर 8 साल की गारंटी के लिए आता है, ब्रांडेड कंपनी की वायरिंग लाइफ टाइम की गारंटी के लिए आता है, इसमें लगने वाला स्ट्रक्चर लाइफ टाइम की गारंटी वाला भी आता है। तो उपभोक्ता को चाहिए अच्छे कंपनी का संयंत्र लगवाएं, जिससे उसका आपको रिजल्ट भी भविष्य में अच्छा मिलेगा। सोलर पैनल ब्रांडेड कंपनी का 25 साल की वारंटी के साथ मार्केट में उपलब्ध है। इसमें सभी ब्रांडेड कंपनियों ने अपने एक ऐप बनाए हुए हैं, सामान्यतः हर वर्ग का व्यक्ति मोबाइल को उपयोग कर रहा है। जिस भी इस कंपनी का आपने अपने घर पर वेंडर से मिलकर संयंत्र स्थापित किया है उसका ऐप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप को आप सोलर संयंत्र के इन्वर्टर के पास ब्लूटूथ चालू कर उसका जनरेशन देख सकते हैं। कहीं भी दुनिया में रहें अपने मोबाइल में इंटरनेट चालू करके उसकी रीडिंग वहीं बैठे बैठे पूरी जानकारी पर डे की, पर मिनट की, पर मंथ की, पर ईयर की ले सकते हैं। इसमें सिस्टम के बारे में, आपको डिस्कॉम में जा रही लाइट के बारे में, घर पर उपयोग होने वाली लाइट के बारे में पूरा आपको अपने मोबाइल पर डाटा प्रतिदिन दिखता है। अभी वर्तमान में जो सोलर पैनल मार्केट में उपलब्ध हैं वो डिस्कॉम धातु से बनाए हुए पैनल हैं, बहुत सेंसर पैनल हैं। सुबह 6 बजे जब सूर्यनारायण देव का उदय नहीं होता उसके पहले ही आप देखिए सिस्टम में इन्वर्टर में अपने मोबाइल पे देखिए जनरेशन प्रारंभ हो जाता है। इसी तरह से शाम को भी सूर्यास्त के बाद भी उजाला जब रहता है वायुमंडल में उस उजाले में भी सोलर पैनल काम करता है। या यूं कहे साल भर में इसका एवरेज जितने दिन भी कम धूप भी होती है तब भी जनरेशन पर्याप्त होता है और उपभोक्ता को पर्याप्त जनरेशन और इसका लाभ मिलता है। हमारे विभाग का एक स्लोगन भी है, सौर ऊर्जा से देश का विकास, गांव गांव बिजली घर घर प्रकाश।
1: गांव गांव बिजली घर घर प्रकाश, ये स्लोगन है ऊर्जा विभाग का। अब हम बात कर रहे हैं इस योजना के हितग्राहियों से और सुनते हैं सागर शहर के क्षेत्र बड़ा बाजार निवासी अनुश्री जैन को।
3: पहले मैं पेट्रोल वाली गाड़ी चलाती थी, उसके बाद जब ये सिस्टम लगाया तो मुझे लगा कि मुझे दूसरी ई वाहन का यूज करना चाहिए, तो मैंने एक ई वाहन खरीदा और मेरा बिल फिर भी जीरो है और मेरा पेट्रोल का खर्चा भी बच रहा है। मैं सबको यही सलाह दूंगी कि सभी ये सिस्टम लगवाएं और अपने सारे इक्विपमेंट्स को ई में कन्वर्ट करें, जिससे आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे और एनवायरमेंट के लिए भी ये सिस्टम फ्रेंडली है। मैंने 2 साल पहले ये सिस्टम लगवाया था। मैंने 3 किलोवाट का सिस्टम लगवाया है जिसमें मुझे 78,000 की सब्सिडी भी 2 महीने बाद मिल गई थी।
1: और अब सुनिए इस योजना के हितग्राही प्रोफेसर गिरीश मोहन दुबे को।
4: मैं गिरीश मोहन दुबे डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र विभाग से मैं प्रोफेसर के पद से रिटायर हुआ हूँ। जब मैं पहली बार अपने एक मित्र के यहाँ गया और मैंने वहाँ सोलर प्लांट देखा तो मुझे भी ऐसा लगा कि क्यों ना मैं अपने घर में भी सोलर प्लांट लगाऊं। और इस सोलर प्लांट को लगभग 3 साल हो गए हैं। कंपनी से सीधे बात की थी और कंपनी ने सब्सिडी जो है उसको इंक्लूड करते हुए मुझे 4 KV का प्लांट लगाया था। इस पर मैंने अभी तक 1 पैसा भी खर्च नहीं किया है 3 साल।

0: अधिक अवधि होने को है, क्योंकि उनसे मेरा 3 महीने में सफाई का एग्रीमेंट है। मैंने भी स्वयं अपने थोड़े से व्यय से उस पर इस तरह की व्यवस्था की है कि साप्ताहिक रूप से मैं उस पैनल को साफ करता हूं, ताकि जितना उसकी कैपेसिटी है वह मैक्सिमम हमारे पास प्राप्त हो सके। मैं कहूंगा ये प्लांट जो है सभी को लगाना चाहिए, और इससे जो सरकारी ऊर्जा है उसका भी व्यय कम हुआ है। मैंने कम से कम 8 से 10 ऐसे लोग होंगे जिन्होंने मेरे अनुभव से या मेरे सोलर प्लांट से प्रेरित होकर अपने घर में लगाया है।
1: और अब हितग्राही राजकुमारी जैन के अनुभव।
2: ऊर्जा सिस्टम से बिजली में हमको पूर्णतः लाभ मिला है, हमारा 0 बिल आता है, सभी सिस्टम हमारे यहाँ काम करते हैं। हम तो यही कहना चाहेंगे जल्दी से जल्दी आप लोग भी इस योजना से जुड़े।
1: श्रोताओं, विशेषज्ञों और हितग्राहियों की सकारात्मक राय इस बात का प्रमाण है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भारत को हरित और अधिक ऊर्जा कुशल भविष्य की ओर आलोकित कर रही है। आइए हम सब मिलकर इस सुनहरे सफर का हिस्सा बने और सशक्त भारत के विकास की डगर पर कदम बढ़ाएं। डगर विकास की सूत्रधार अदिति जैन, प्रस्तुति सुब्रता यादव, योगदान आकाशवाणी सागर।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम डगर विकास की, प्रस्तुति आकाशवाणी सागर की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: न सनसनी, न सनसनी, न सनसनी, न उत्तेजना, न उत्तेजना, न शोर दिन रात, न शोर दिन रात, न शोर दिन रात, न ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हां, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: हे मन्नु भाई मोटर चली पाम पाम पाम मन्नु भाई मोटर चली पाम पाम पाम।
1: जब भी हम सड़क पर निकाले वाहन तो रखें इन बातों का ध्यान।
2: स्कूटर मोटरसाइकिल जैसे दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनें
1: और चार पहिया वाले वाहन चलाते समय सीट बेल्ट जरूर बांधें।
2: चौराहे पर हमेशा वाहन को जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रोकें और ट्रैफिक सिग्नल का पालन अवश्य करें।
1: वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करें।
2: वाहन हमेशा निर्धारित गति सीमा के अंदर ही चलाएं।
1: नशे की हालत में कभी वाहन न चलाएं।
2: 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और किशोरों को वाहन चलाने के लिए प्रोत्साहित न करें।
1: दो पहिया वाहन में दो से अधिक व्यक्ति न बैठें।
2: चार पहिया वाहन में भी सीट की संख्या के अनुरूप ही लोग बैठें।
1: वाहन के इंडिकेटर, हेडलाइट, ब्रेक, पहिए इत्यादि को हमेशा दुरुस्त हालत में रखें।
2: वाहन के सभी कागजात अपने साथ जरूर रखें।
1: थोड़ी सी सावधानी
2: दूर करे सभी परेशानी।
0: बाजू बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम।
3: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा।
4: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
5: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
3: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
4: आकाशवाणी है ना,
6: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
4: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
3: शाम सुहानी हो,
4: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
3: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
4: सफर में
3: आपके साथ
4: आकाशवाणी।
1: महात्मा गांधी ने कहा, हिंदी राष्ट्रीयता के मूल को सींचती है और उसे दृढ़ करती है। देश का कोई भी सच्चा प्रेमी हिंदी का तिरस्कार नहीं कर सकता। दुनिया से कह दो, गांधी अंग्रेजी नहीं जानता।
7: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।

तुम्हारे लिए इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, संगीत निर्देशन जयदेव का था। इस कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं सनी फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से संवारा है आर डी बर्मन ने।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन। कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

होता था। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। रामायण दिखी लेखू दिखा, चित्रहार दिखा, महाभारत दिखा, एशियाड दिखा, पोखरण दिखा, मिस वर्ल्ड दिखी, वर्ल्ड कप दिखा, चंद्रयान दिखा, इनसैट दिखा, नई कहानियों ने नया भारत लिखा। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

0: कहानी नहीं है, फील नहीं है, बिली और फैमिली के साथ रील नहीं है, जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है, हिप हॉप भी है, न्यू रिलीजेस, बॉलीवुड की न्यू थिंग भी है, एवरग्रीन भी है, कहानी एवर बीन टोल्ड।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, थोड़ी ही देर में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, बदलते वैश्विक परिदृश्य से उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खुले। उन्होंने शांति आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और संपर्क को इन देशों की प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत से बने 3 लाख मकान सौंपे। उन्होंने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग कर देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला रखी। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का प्रचार समाप्त हुआ, मतदान मंगलवार को। ईरान ने कहा, अमेरिका जब तक उसकी 7 शर्तें पूरी नहीं करेगा, हुर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा। ईरान की मिसाइलों की रेंज बढ़ाने की भी योजना। और जापान में एशियाई खेल भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न, भारत ने खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, 21 स्वर्ण पदक सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ. जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
1: There are countries who are emerging.
2: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों से संचालित बदलता परिदृश्य, अमेरिका की बदलती स्थिति, चीन के उभार और परस्पर बढ़ती अत्यधिक निर्भरता की बहस को जन्म दे रहा है। उन्होंने कहा कि उभरती और मध्य स्तरीय शक्तियों का दृष्टिकोण जोखिम कम करना और विविधता लाना है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत से 3 लाख घरों के लिए पहली किस्त जारी की। ये कार्यक्रम गुंटूर जिले में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में आयोजित किया गया। श्री चौहान ने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला भी रखी। इसके अंतर्गत 14 करोड़ रुपए की लागत से 177 घरों का निर्माण किया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र और आंध्र प्रदेश सरकार राज्य भर में विकास को गति देने और इसे देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए मिलकर काम कर रही है।
3: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 3 लाख मकान बनाने की पहली किस्त आंध्र प्रदेश के गरीबों को समर्पित की है। 100% मकान गरीबों को बनाने में आपके साथ भारत सरकार खड़ी है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, एक नई टेक्नोलॉजी से ये मकान हम बनाने वाले हैं कि ये मकान 6 महीने के अंदर कम्प्लीट हो, उसमें लागत भी कम आए।
0: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि भारत की निरंतर आर्थिक मजबूती, मजबूत कॉरपोरेट प्रदर्शन और निरंतर निवेश गतिविधियों का असर अब विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा देश के विकास अनुमानों में की गई बढ़ोतरी में परिलक्षित हो रहा है। नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक कॉन्क्लेव के दौरान श्री गर्ग ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज करने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बरकरार रखी है। इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव वित्तीय शक्तिकांत दास ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत की आर्थिक मजबूती का मुख्य कारण वित्तीय क्षेत्र में सुधार रहा है। उन्होंने कहा कि दिवालियापन और दिवालिया संहिता बैंकों के पुनर्पूंजीकरण और रचनात्मक नियामक निगरानी जैसे सुधारों से भारत का वित्तीय क्षेत्र आर्थिक विकास का एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कॉरपोरेट गवर्नेंस को आधुनिक अर्थव्यवस्था का अदृश्य आधार बताया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के साथ स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मजबूत संस्थान और सुशासन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सतत आर्थिक प्रगति के लिए निवेशकों का विश्वास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीव्र गति से तकनीकी विकास के युग में प्रवेश कर रहा है।
4: Our country stands as one of the fastest growing economies of the world, while

0: परिवर्तित किया जाता है जो आज समूची मानवता के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: अपडेट रहे, आगे रहे, एक्स पर @AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। इनमें तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थन्नट चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटें शामिल हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से दिनेश आर्य को और पश्चिम बंगाल से रुक्मणी मल्लिक को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इसकी घोषणा की। उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि कैसे 3 नए आपराधिक कानूनों के जरिए न्याय को आसान और सुलभ बनाया गया। इसमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 शामिल हैं।
2: नए आपराधिक कानूनों के अंतर्गत 0 FIR, त्वरित जांच, सीमित स्थगन, फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह और वीडियोग्राफी तथा लैंगिक रूप से तटस्थ अपराध जैसे प्राविधान शामिल किए गए हैं। नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
3: भारतीय न्याय संहिता का मूल मंत्र है सिटीजन फर्स्ट। ये कानून नागरिक अधिकारों के प्रोटेक्टर बन रहे हैं, ईज ऑफ जस्टिस का आधार बन रहे हैं। पहले FIR करवाना भी कितना मुश्किल होता था, लेकिन अब 0 FIR को भी कानूनी रूप दे दिया गया है।
2: संगठित अपराध से निपटने और महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। पहली बार भीड़ द्वारा हत्या को धारा 103 की उपधारा 2 के तहत एक अलग अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यदि 5 या उससे अधिक लोगों का समूह नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा या व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो समूह के प्रत्येक सदस्य को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड के साथ साथ जुर्माने की सजा हो सकती है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सुनील कुमार ने कहा,
4: 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने पुराने IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट की जगह ली है। इनका उद्देश्य न्याय व्यवस्था को आधुनिक, तेज और तकनीक अनुकूल बनाना है। इनमें महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग जैसे अपराधों पर विशेष प्रावधान है। साथ ही EFIR, डिजिटल साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक कार्यवाही और फोरेंसिक जांच को बढ़ावा दिया गया है।
2: पहले 16 वर्ष और 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान था। अब इस प्रावधान में संशोधन किया गया है। वहीं अब 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के अपराध के लिए आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ जून के अंतरिम समझौते में निर्धारित 7 शर्तें पूरी होने तक हुर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोला जाएगा। दोनों देश संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों पर अड़ियल रवैया अपना रहे हैं। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमेरिका

0: के साथ हाल के युद्ध के बाद वह अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ाएगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के आईटी नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2023 एशियाई खेलों के मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में 2रा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में 4थे स्थान पर रहा। खेलों के दौरान कई भारतीय खिलाड़ियों ने नया इतिहास रचा।
1: एथलेटिक्स भारतीय अभियान का सबसे शानदार पहलू रहा। यहां भारतीय खिलाड़ियों ने सबसे अधिक 24 पदक जीते। मुक्केबाजी में भी भारत ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। मुक्केबाज लवलीना बोरगोहिन ने स्वर्ण पदक जीत कर इतिहास रचा। वो 2014 में मैरीकॉम के बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाज बनी। भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी में भी स्वर्ण पदक हासिल किए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 साल का इंतजार खत्म करते हुए एशियन गेम्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने पहली बार लगातार 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। कुमकुम महोद एशियन गेम्स में व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में प्रतियोगिता का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में विद्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 42 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए कांस्य पदक हासिल किया। सावन बरवाल ने मैराथन में 1982 के बाद भारत को पहला पदक दिलाया। सुचिका तरियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स और जयमीना ने सॉफ्ट टेनिस में देश को पहली बार पदक दिलाया। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता। समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: भारत और कनाडा कल से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश व्यापार समझौते को इस वर्ष के आखिर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों के नेतृत्व में 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के लिए कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटीय और दक्षिणी आंतरिक क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, बदलते वैश्विक परिदृश्य से उभरते और मध्यम स्तरीय देश के बीच सहयोग के नए रास्ते खुले। उन्होंने शांति, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और संपर्क को इन देशों की प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत से बने 3,00,000 मकान सौंपे। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का प्रचार समाप्त हुआ, मतदान मंगलवार को। और जापान में एशियाई खेलों का भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न, भारत ने खेलों के इतिहास में 2रा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says changing global landscape opens new avenues for cooperation among emerging and middle powers, highlights peace, supply chain resilience and connectivity as their key agendas. Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan hands over 3 lakh houses worth 3,600 crore rupees to Andhra Pradesh, lays foundation stone for country's first pilot housing project using 3D concrete printing technology. Campaigning ends for by-polls to 5 assembly seats across Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and a Lok Sabha constituency in Assam, voting on Tuesday. Iran says Strait of Hormuz to remain closed until US meets its 7 conditions, plans to expand range of missiles. And Asian Games 2026 draw to a close in Japan in a dazzling ceremony. India sign off in 4th place with 85 medals comprising 21 gold. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said international peace and security, supply chain resilience and connectivity are among the key areas where emerging and middle powers can play an important role. डॉक्टर जयशंकर।

0: सप्लाई चेन की मजबूती और कनेक्टिविटी वो अहम शोबे हैं जिनमें उभरती हुई और औसत दर्जे की ताकतें अहम रोल अदा कर सकती हैं। डॉक्टर जयशंकर आज नई दिल्ली में 62वीं म्यूनिख सलामती कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि दुनिया, इसका एजेंडा और इसका जोग्राफियाई व सियासी मंजरनामा, ये सब अहम तब्दीलियों के मरहले से गुजर रहे हैं जिससे उभरती हुई और औसत दर्जे की ताकतों के माबैन ताउन का एक खातिरखा माहौल पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा है कि यह सब अमरीका की एक नई हैसियत कायम होने, चीन के तरक्की करने और बढ़ते हुए आलमी इन्हिसार के मुतरादिफ है।
1: There is today a substantial agenda for emerging and middle powers to cooperate. The world is changing, its agenda is changing, the landscape is changing, the architecture is changing, and I'm very glad today that we have this issue as a starting point before us, because I hope that it would give our gathering a stronger purpose and a clearer direction.
0: क्वाड को एक मिसाल के तौर पर पेश करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इससे औसत दर्जे की ताकतों के माबैन ताउन का इजहार होता है।
1: टुडे इन अ मैरिटाइम स्पेस इन द इंडो पैसिफिक स्पेस वी हैव क्वाड एज अ एग्जांपल ऑफ आई वुड से इमर्जिंग मिडिल पावर कोऑपरेशन विद एन इमर्ज्ड पावर। A second example would be in the field of connectivity, where you have something like the IMEC initiative, the India Middle East Europe Connectivity Corridor, the International North South Transport Corridor, even the Polar Route, the Northern Sea Route could be the subject of cooperation.
0: وزیر خارجہ نے جدید ترین manufacturing semiconductors, مصنوعی ذہانت AI اور خلا سے متعلق صلاحیتوں کو ऐसे अहम शोबे करार दिया जिनमें भारत यूरोपीय यूनियन ताउन में तौसी की जा सकती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की आवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं जो जनसेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस अंथक अज्म का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की खातिर अंथक काम कर रही है। आज अपनी खुसूसी सीरीज में हम तस्करा कर रहे हैं कि फौजदारी के तीन नए कवानीन के जरिए इंसाफ के हुसूल को किस तरह आसान बनाया गया। ये कवानीन भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 BSA हैं।
2: यकुम जुलाई 2024 से नाफिज होने वाले नए फौजदारी कवानीन शहरियों को बाइख्तियार बनाने की समत एक अहम कदम है। इन कवानीन का मकसद सबके लिए एक मजीद काबिल रसाई, मुआविन और इंसाफ का एक मौसर निजाम तश्कील देना है। नए फौजदारी कवानीन के तहत जीरो FIR, जल्द तहकीकात, मुकदमात के इल्तवा को कम करना, फोरेंसिक शवाहिद इकट्ठा करना और वीडियोग्राफी नीज ऐसे जराइम के लिए दफात मुकर्रर की गई हैं जिनके इर्तिकाब में सिन्फी लिहाज न रखा गया हो। नए फौजदारी कवानीन के निफाज के बाद एक इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता का बुनियादी मंत्र शहरी मुकदम है। उन्होंने कहा कि यह कानून शहरियों के हकूक की हिफाजत करने वाला है और इससे इंसाफ की आसान फराहमी हो सकेगी।
3: भारतीय न्याय संहिता का मूल मंत्र है सिटीजन फर्स्ट। ये कानून नागरिक अधिकारों के प्रोटेक्टर बन रहे हैं, ईज ऑफ जस्टिस का आधार बन रहे हैं। पहले FIR करवाना भी कितना मुश्किल होता था, लेकिन अब जीरो FIR को भी कानूनी रूप दे दिया गया है।
2: एक बड़ी कानूनी इसलाह के तहत भारतीय न्याय संहिता 2023 में मुनज्जम जराइम से निमटने और खवातीन और बच्चों की सलामती को और पुख्ता करने के लिए सख्त दफात मुतारिफ कराई गई हैं। ऐसा पहली बार है कि मॉब लिंचिंग को दफा 103 की जैली दफा 2 के तहत एक अलग जुर्म करार दिया गया है। अगर 5 या इससे ज्यादा अफराद नस्ल, जात, बिरादरी, जिन्स, जाय पैदाइश, जबान या जाती अकीदे की बुनियाद पर किसी शख्स का कत्ल करते हैं तो हर मुजरिम को उम्र कैद या सजाए मौत के साथ साथ जुर्माने की सजा दी जा सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट के वकील सुनील कुमार ने आकाशवाणी न्यूज से खसूसी बातचीत में कहा कि नए फौजदारी कवानीन में मुनज्जम जराइम, दहशतगर्दी और मॉब लिंचिंग से मुतालिक दफात शामिल की गई हैं, जबकि डिजिटल शवाहिद को भी तस्लीम किया गया है और इलेक्ट्रॉनिक FIR के इंदराज की भी सहूलत रखी गई है।
4: तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने पुराने IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट की जगह ली है। इनका उद्देश्य न्याय व्यवस्था को आधुनिक, तेज और तकनीक अनुकूल बनाना है। इनमें महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग जैसे अपराधों पर विशेष प्रावधान है। साथ ही EFIR, डिजिटल साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक कार्यवाही और फोरेंसिक जांच को बढ़ावा दिया गया है।
2: नई दिल्ली से सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: ज़राअत और किसानों की बहबूद निजदेही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज 3 लाख मकानात की पहली खेप आंध्र प्रदेश के सुपुर्द की, जिन पर 3,600 करोड़ रुपए की लागत आई है। यह मकानात प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे मरहले के तहत आंध्र प्रदेश के सुपुर्द किए गए हैं। इसके लिए गुंटूर जिले में एक तकरीब मुनाकिद की गई। जनाब चौहान ने पहले आजमाइशी हाउसिंग प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखा, जिसमें 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके तहत 14 करोड़ रुपए की लागत से 177 मकान तामीर किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू भी इस मौके पर मौजूद थे। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने इज्तम से खिताब करते हुए इस प्रोजेक्ट को देही मकानात को जदीद शक्ल दिए जाने की जानिब एक बड़ा कदम करार दिया।
5: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 3 लाख मकान बनाने की पहली किस्त आंध्र प्रदेश के गरीबों को समर्पित की है। 100% मकान गरीबों को बनाने में आपके साथ भारत सरकार खड़ी है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, एक नई टेक्नोलॉजी से ये मकान हम बनाने वाले हैं कि ये मकान 6 महीने के अंदर कम्प्लीट हो, उसमें लागत भी कम आए।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी और मगरबी बंगाल में 5 असेंबली हलकों और आसाम में 1 लोकसभा हलके की जिमनी चुनाव की मुहिम आज खत्म हो गई। मंगल को इन 6 सीटों के लिए पोलिंग कराई जाएगी और वोटों की गिनती जुमा को की जाएगी। असेंबली हलकों की पोलिंग तमिलनाडु में मधुरांतकम और धारापुरम, पुडुचेरी में थट्टन चावड़ी और मगरबी बंगाल में रेजी नगर नीज नंदीग्राम में कराई जाएगी। आसाम में पोलिंग नावगांव लोकसभा हलके में कराई जाएगी। ये असेंबली सीटें मौजूदा कानून साज अरकान की तरफ से इस्तीफा दिए जाने की वजह से खाली हो गई थीं, जबकि नौगांव लोकसभा सीट कांग्रेस रहनुमा प्रद्युत बोर्दोलोई के इस्तीफे के बाद खाली हो गई थी। इसी दौरान बीजेपी ने दिनेश आर्या को उत्तराखंड में राज्यसभा के 2 साल में 1 बार होने वाले आइंदा इंतखाब के लिए पार्टी उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। बीजेपी ने रुक्मिनी मलिक का नाम मगरबी बंगाल में राज्यसभा के जिमनी चुनाव के अपने उम्मीदवार के तौर पर पेश किया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड नीज मगरबी बंगाल में जिमनी पोलिंग इस महीने की 16 तारीख को कराई जाएगी। अदादोशुमार और प्रोग्राम पर अमल दरामद की वजारत के सेक्रेटरी सौरभ गर्ग ने आज कहा है कि भारत की इकतसादी मजबूती, जिसे कारपोरेट की जानिब से पुख्ता कारकर्दगी और मुस्तकिल सरमायाकारी की मदद हासिल है, अब मुख्तलिफ बैनुल अक्वामी एजेंसियों के भारत की तरक्की से मुतालिक तखमीनों से ऊंचाई की तरफ बढ़ती हुई जाहिर हो रही है। नई दिल्ली में कौटिल्य इकतसादी कॉन्क्लेव से अलग नामा निगारों से बात करते हुए जनाब गर्ग ने कहा कि भारतीय मईशत ने माली साल 2026-27 की पहली सहमाई में 7.8% शरह तरक्की हासिल करने के बाद अपनी रफ्तार बरकरार रखी है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि भदोही जिला अब संत रविदास नगर भदोही के तौर पर जाना जाएगा। भदोही में मुनाकिदा आज एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि नए नाम से कुरूने उस्ता के साधु संत और समाजी मुसलह संत रविदास की जिले से वाबस्तगी का इजहार होता है। इस मौके पर वजीर आला ने 1,340 करोड़ रुपए के 112 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। भारत और कनाडा कल से ओटावा में जामे इक्तसादी शराकतदारी के अपने मुजव्वजा मुआहदे CEPA के बारे में 5वीं दौर की मुदाकरात शुरू करेंगे, क्योंकि दोनों मुल्कों का मकसद इस तजारती मुआहदे को 2026 के अवाखिर तक मुकम्मल कर लेना है। दोनों मुल्कों के आला मुजाकरातों की क्यादत में ये 5 रोज़ा मुजाकरात इस महीने की 9 तारीख तक जारी रहेंगे। गुज़िश्ता दौर की बातचीत नई दिल्ली में पिछले महीने 18 तारीख को मुकम्मल हुई थी, जिसके तहत अफसरान कतई मुआहदे की जानिब तेज तर पेशरफ्त पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। इस साल मार्च में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कनाडा के उनके हम मनसब मार्क कार्नी ने तय किया था कि दोनों मुल्कों के दरमियान CEPA के मुजाकरात साल के आखिर तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। इसके अलावा नई दिल्ली में अपनी मीटिंग के दौरान तवानाई और अहम मैदानियात के शोबों में 2 तरफा तालमेल में गहराई लाने से इत्तफाक किया था। अशिया के शोबे में भारत कनाडा की 2 तरफा तजारत 2024-25 के दौरान 8 अरब 66 करोड़ अमरीकी डॉलर थी, जबकि इस मुल्क के लिए भारत की बरामदात 4 अरब 22 करोड़।

0: करोड़ अमरीकी डॉलर थी। ईरान ने कहा है कि अबनाए हुरमुज उस वक्त तक दोबारा नहीं खोली जाएगी जब तक अमरीका उन 7 शर्तों को पूरा नहीं कर देता जो जून के एक अबूरी मुआहदे में पेश की गई हैं। ईरान के सरकारी मीडिया ने आज पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ के हवाले से बताया कि उन्होंने कहा है कि अबनाए हुरमुज को दोबारा खोलने पर ईरान का मौकिफ पूरी तरह वाज़ह और मुसम्मम है। उन्होंने कहा है कि अबनाए हुरमुज को दोबारा उस वक्त तक नहीं खोला जाएगा जब तक उसकी 7 शर्तें पूरी नहीं हो जाएंगी। ये शर्तें इस्लामाबाद मुफाहमतनामे पर मबनी हैं। इसके अलावा ईरानी फौज के तर्जुमान मोहम्मद अक्रामीनिया ने कहा है कि ईरान अमरीका के साथ अपनी हालिया जंग के बाद अपने मिज़ाइलों की तादाद में इजाफा करेगा। एक खबर रसा एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस तनाज़े से ईरान की यह ज़रूरत उजागर हो गई है कि वो तवील दूरी की मिज़ाइल तैयार करे और मुल्क ने इस तरह के इकदाम शुरू कर दिए हैं। स्विट्जरलैंड के सदर गाय परमिलिन भारत के 3 रोजा दौरे के लिए कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। वह आला सतही वफ्द सीनियर सरकारी अफसरान और कारोबारी लीडरों के साथ मीटिंग करेंगे। वजीर आजम मोदी और सदर परमिलिन मुख्तलिफ मामला समेत दो तरफा ताउन में पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए बाहमी बातचीत करेंगे। जापान के आइची नागोया में मुनदा शानदार तकरीब के साथ एशियन गेम्स इख्ताम पजीर हो गए। इस दौरान 43 खेलों के लिए 2 हफ्तों से ज्यादा जारी रहने वाले सनसनीखेज मुकाबलों का इनका किया गया। इख्तामी प्रोग्राम में रवायती तौर पर खिलाड़ियों की परेड, एशियन गेम्स के परचम को उतारने और 2030 के मेजबान शहर दोहा को बाजाबता तौर पर मेजबानी सौंपने की तकरीब शामिल थी। एशियन गेम्स की अलामत समझे जाने वाली मशाल और परचम कतर के नुमाइंदों के हवाले किए गए, जिसके साथ अगले एशियाई खेलों की मेजबानी की बाजाबता तौर पर मुंतकली अमल में आई। इख्तामी तकरीब में भारतीय तिरंगा उठाने का एहसास शूटिंग की उभरती हुई भारतीय खातून खिलाड़ी नीरो धांडा को हासिल हुआ। सोने के 2 तमगे जीतने वाली नीरो ने इस काबिले फख्र लम्हे में भारतीय दस्ते की क्यादत की। भारत मजमूई तमगों की फहरिस्त में चीन, जापान और जनूबी कोरिया के बाद 4th मकाम पर रहा। भारतीय दस्ता 85 तमगों के साथ वतन वापस लौटा, जिनमें सोने के 21, चांदी के 27 और कांसे के 37 तमगे शामिल हैं। ये एशियन गेम्स की तारीख में भारत की दूसरी सबसे बड़ी तमगों की तादाद है। आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि दुनिया के बदलते हुए मंजरनामे से उभरती हुई और औसत दर्जे की ताकतों के माबैन ताउन के नए मौके पैदा हो रहे हैं। उन्होंने अमन, मजबूत सप्लाई चेन और कनेक्टिविटी को इनका अहम एजेंडा करार दिया। देही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3 लाख से ज्यादा मकानात सुपुर्द किए, जिनकी लागत 3,600 करोड़ रुपए है। उन्होंने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पहले आदमाइशी हाउसिंग प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। तमिलनाडु, पुडुचेरी और मगरबी बंगाल में 5 असेंबली सीटों और आसाम में 1 लोकसभा हलके के लिए जिमनी चुनाव की मुहिम अपने इख्तिताम को पहुंची। वोटिंग मंगल को कराई जाएगी और एशियन गेम्स 2026 जापान में जगमगाती हुई तकरीब के दौरान अपने इख्तिताम को पहुंचे। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में प्रस्तुत है वरिष्ठ नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य पर केंद्रित रूपक मन के मौसम उम्र के साथ। आलेख डॉक्टर बानी आनंद, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। आइए सुनते हैं रूपक मन के मौसम उम्र के साथ।

0: सूरज हर सुबह लगभग एक ही जगह से उगता है, लेकिन हर उम्र में उसकी रोशनी एक जैसी नहीं लगती। कभी वही सुबह एक नई शुरुआत लगती है, तो कभी वही सुबह एक बहुत लंबा दिन।
1: उम्र बढ़ती है तो शरीर में बदलाव दिखाई देते हैं, बालों में सफेदी, चाल में धीमापन, चश्मे का नंबर, दवाइयों की संख्या। लेकिन कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जिन्हें कोई एक्सरे नहीं पकड़ता।
0: काम से रिटायर होने के बाद खाली हुआ समय, बच्चों के घर से चले जाने के बाद खाली हुआ कमरा, जीवन साथी के जाने के बाद खाली हुई कुर्सी, और धीरे धीरे कम होती बातचीत के बीच

0: मन में पैदा हुई एक खामोशी।
1: हम अक्सर पूछते हैं उम्र कितनी हो गई, लेकिन शायद एक और सवाल पूछा जाना चाहिए, उम्र के इस पड़ाव पर मन कैसा है? क्योंकि उम्र बढ़ना केवल शरीर की कहानी नहीं है,
0: ये रिश्तों की कहानी है, भूमिकाओं की कहानी है, पहचान की कहानी है, और साथ ही बिछोह की कहानी है, और इन सबसे बढ़कर ये सुने जाने की कहानी है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष में हम इसी अनकहे संसार में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं।
1: दिल्ली स्थित एक प्राइवेट ओल्ड एज होम से कुछ आवाजें और कुछ आवाजें सुदूर बिहार से।
2: मेरा नाम आशुतोष मुखर्जी, इलाहाबाद से आए हैं। हम इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री में ऑफिसर थे, रिटायर हो गए। म्यूजिक इज माय हॉबी, बोंगो कॉन्गो। हमारा पूरा ऑर्केस्ट्रा था वहाँ। इलाहाबाद में अब कोई है ही नहीं मेरा। हमारे दो डॉटर्स हैं, दोनों ऑस्ट्रेलिया में हैं। लड़कियों की शादी हो गई, वाइफ डेथ हो गई।
3: माय नेम इज कृष्णा विश्वास। आई यूज्ड टू लिव विद माय डॉटर, बट शी हैज एक्सपायर्ड। आई केम हियर, आई फील वेरी लोनली। जनरली आई लाइक टू वॉच टीवी and like to story book.
4: मेरा नाम है विजेंद्र सिंह शेखावत, आर्मी से रिटायरमेंट हूँ चौधर से, और मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। उनकी देख रेख, जैसे रात बिरात हारी बीमारी होती है, 10 का मेरा स्टाफ है। नहीं ऐसे को नहीं, सभी आते हैं, एक दो दिन तो उनका मन नहीं लगता, फिर यहाँ पर माहौल में डल जाते हैं, सब खुश रहते हैं, एक साथ बैठते हैं, यहाँ पर टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं, यहाँ कीर्तन भाव होते हैं हफ्ता में एक दिन। कॉलेज के स्कूल के स्टूडेंट आते हैं, वो डांस करते हैं, तमल्ला खिलाते हैं, अंताक्षरी करते हैं, गाना सुनाते हैं, तो उनका अच्छा टाइम पास हो जाता है।
5: मेरा नाम बेबी सिन्हा है, मैं खगड़िया चित्रकूट नगर डीएवी रोड से हूँ। मैं यहाँ पर अपने लड़का के नाम से स्कूल खोली हुई हूँ। मैं अकेले अपने घर में रहती हूँ, तो स्कूल खोलने का मकसद मेरा यही था कि बच्चे के बीच में रहूँगी, मैं खुश रहूँगी।
6: मेरा नाम श्यामा कांती सिन्हा है, मेरी उम्र 69 बरस है। मैं बिहार शरीफ में रहती हूँ, अपने पति के साथ अकेले। मैं पहले सर्विस करती थी, अब मैं रिटायर हो गई हूँ, अकेले दोनों रहती हूँ। कभी कभी बहुत मुश्किल होती है, गिर जाती हूँ मैं भी, मेरा पति भी। पूरे दिन अकेले काटती हूँ, पेपर पढ़ती हूँ, कभी मोबाइल देखती हूँ। मेरे बच्चे हैं जो दूर में रहती हैं, दो बेटियाँ, और वो आना भी मुश्किल है। मैं सोच के कभी कभी रोना आता है, रोते रहती हूँ।

0: दस्तखत कर गई मैं भुलावे कौबटन हिमल तारा कौन से रास्ते जान किस मोड़ पर कब बिछड़ कर मेरा बागपन रह गया पत्ते झरने लगे बूढ़ा बरगद हुआ बस गई उम्र का आकलन रह गया पत्ते झरने लगे बूढ़ा बरगद हुआ पत्ते झरने लगे बूढ़ा बरगद हुआ।
1: भारत को लंबे समय तक युवा देश के रूप में देखा गया लेकिन अब भारत की जनसंख्या की तस्वीर बदल रही है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की एल्डरली इन इंडिया 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी का हिस्सा 2021 में लगभग 10.1% अनुमानित था और 2031 में 13.1% तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया था।
2: और इससे आगे की तस्वीर देखें तो UNFPA की इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की हिस्सेदारी 2022 के 10.5% से बढ़कर 2050

0: में 20.8% होने का अनुमान है। यानी आने वाले दशकों में भारत में हर 5 लोगों में लगभग एक व्यक्ति 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो सकता है।
1: ये सिर्फ जनसंख्या का बदलाव नहीं है, ये परिवार की संरचना बदलेगा, स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत बदलेगा, सामाजिक सुरक्षा की जरूरत बदलेगा और मानसिक स्वास्थ्य की हमारी समझ को भी बदलना होगा। क्योंकि सवाल ये नहीं कि हम कितने लोगों को लंबी जिंदगी दे पाएंगे, सवाल ये भी है कि क्या हम उस लंबी जिंदगी को अर्थपूर्ण, सम्मानजनक और सामाजिक रूप से जुड़ा हुआ बना पाएंगे। कई वर्षों तक भारत में और वर्तमान में दोहा कतर में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के रूप में सेवाएं दे रहे डॉक्टर नवाब खान कहते हैं,
2: केयर सिस्टम है ना इंडिया में चेंज हो रहा है। पहले एक जॉइंट फैमिली सिस्टम था, वो अब न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में तब्दील हो रहा है। केयर टेकर्स थे पहले के कंपैरिजन में कम हो रहे हैं एक्चुअली। दूसरा है कि जो चीजें उनके अंदर होती है, एंजाइटी है, जो लोनलीनेस है, जो फॉरगेटफुलनेस है, डिमेंशिया से रिलेटेड चीजें होती है, जो उनका लॉस है, जिसमें लॉस ऑफ पार्टनर है, इस चीजों के लिए। तो बेसिकली होता क्या है कि इंसान जब हार जाता है तो उनका गुस्सा खुद की तरफ होने लगता है, लेकिन जब गुस्सा बाहर की तरफ होता है तो फिर वो फाइट की स्पिरिट में दिखता है कि अपने राइट्स के लिए लड़ना, स्पेस के लिए लड़ना, अपने इमोशनल कनेक्टिविटी के लिए लड़ना, मतलब आई एम समथिंग, ये सेल्फ हो जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी इसको फैमिली वाले अलग वे में ले लेते हैं कि अच्छा इस उम्र में इतना ईगो दिखा रहे हैं, ये एक ब्लेसिंग है एक्चुअली, जिसको फैमिली वाले को समझना ये चाहिए कि नहीं, स्टिल ही इज हैविंग फाइटिंग स्पिरिट, द लाइफ इज देयर। ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि आप कितने साल तक जीते हैं, इंपॉर्टेंट तो ये होता है कि इन सालों में जिंदगी कितनी थी, उस जिंदगी को भरने की जरूरत होती है एक्चुअली।
0: पूरी जिंदगी किसी व्यक्ति की पहचान कई भूमिकाओं से बनती है। कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक, डॉक्टर, किसान, व्यापारी, गृहिणी, माता पिता, फिर एक दिन नौकरी या सेवा समाप्त होती है और उसके साथ सिर्फ वेतन या खुद की भूमिका ही नहीं ठहरती, कभी कभी दिनचर्या भी रुक जाती है। सहकर्मियों से रोज का मिलना रुकता है, निर्णय लेने की आदत बदलती है और व्यक्ति के मन में एक प्रश्न जन्म लेता है, अब मैं कौन हूं?
1: ये प्रश्न विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य केवल बीमारी की अनुपस्थिति नहीं है। व्यक्ति को अपने जीवन में उद्देश्य, सामाजिक संबंध और अपनी भूमिका का एहसास भी चाहिए।
0: अकेले रहना और अकेलापन महसूस करना एक ही बात नहीं है। कोई व्यक्ति परिवार के बीच भी रहकर भीतर से बहुत अकेला महसूस कर सकता है और कोई व्यक्ति अकेला रहकर भी अपने जीवन से संतुष्ट हो सकता है।
3: मेरा नाम नसरत भगत है, मैं प्लस टू विद्यालय स्थानीय खगड़िया स्टेशन रोड से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मैं अभी अकेले घर में रहता हूँ, मेरी पत्नी शिक्षिका थी, 2013 में एक्सपायर कर गई। 3 बच्ची है, तीनों बच्ची की शादी हो गई है। एक लड़का है, वह बीटेक करके बीपीएससी की तैयारी करता है, लेकिन घर में मैं अकेला रहता हूँ। अकेलापन तो अनुभव होता है लेकिन साथी लोग हैं, इसलिए हम लोग का समय बड़ी आसानी से कट जाता है। थोड़ा अध्यात्मिक होने के कारण और विभिन्न संस्था से जुड़े रहने के कारण मेरा पर्सनल लाइफ ठीक है। बुनियादी केंद्र में ये हम लोगों का एक मनोरंजन होता है, मैं खुश हूँ अपने लाइफ से।
0: WHO के अनुसार दुनिया में लगभग हर 6 व्यक्ति में एक व्यक्ति लोनलीनेस का अनुभव करता है। वृद्ध लोगों में लगभग 11.8% लोनलीनेस का अनुमान दिया गया है। WHO ये भी रेखांकित करता है कि लोनलीनेस और सोशल आइसोलेशन का संबंध मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, क्वालिटी ऑफ लाइफ और लॉन्गजीविटी से है। और सोशल आइसोलेशन इससे अलग अवधारणा है। यहाँ व्यक्ति के सामाजिक संपर्कों और रिश्तों की संख्या और गुणवत्ता महत्वपूर्ण हो जाती है।
1: कभी कभी कितने लोग हैं ये समस्या नहीं है, बल्कि कितने लोग हैं जिनसे मन की बात की जा सकती है। यही वो जगह है जहाँ मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। डॉक्टर नवाब खान कहते हैं,
2: ये चीज जो स्टडीज से रिफ्लेक्ट हुई है,

0: मैक्सिमम स्ट्रेस अपने पार्टनर के खोने से होता है, बाकी स्ट्रेस सब उसके नीचे आते हैं। इवन अगर जो लोग ओल्ड एज में रहते हैं, उनके दोस्त हैं और उनकी नजरों के सामने अगर कोई जाता है, दे फील वेरी वेरी सैड एंड बैड। अल्टीमेटली उनको ये फील होता है कि मेरा नंबर आ रहा है। जिस वक्त इंसान को ये फीलिंग होने लगे कि मेरा नंबर आ रहा है, क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है उसके पास से, तो इनोवेशन खत्म हो जाते हैं, एक दो जील जो जील की होती है वो खत्म हो जाती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। कि हर कम्युनिटी में उम्र के साथ जो स्पेसिफिक चैलेंजेस है वो आते ही आते हैं। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कुछ कर ले, तब भी एक जो कम्युनिटी का रोल होता है, जो एक रिलेटिव का रोल होता है, जो एक दोस्तों का रोल होता है, उसको सब्स्टिट्यूट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
1: भारत में पारिवारिक संरचना भी बदल रही है, माइग्रेशन बढ़ा है, शहरीकरण बढ़ा है, परिवार छोटे हुए हैं, बच्चे शिक्षा और रोजगार के लिए दूसरे शहरों या दूसरे देशों में चले जाते हैं। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ सोशल सपोर्ट की आवश्यकता कम नहीं होती।
2: इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार जब वृद्ध लोग अपने वयस्क बच्चों के साथ नहीं रहते तो लिविंग अरेंजमेंट में जेंडर डिफरेंसेस दिखाई देते हैं।
1: यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है, उम्र के बहुत आगे के पड़ावों पर विडोहुड और अकेलेपन का जोखिम महिलाओं में अधिक हो सकता है।
2: UNFPA की रिपोर्ट विशेष रूप से एजिंग के फेमिनाइजेशन की ओर ध्यान दिलाती है, यानी वृद्ध आबादी में महिलाओं का बढ़ता अनुपात और उनके साथ जुड़ी आर्थिक या सामाजिक वल्नरेबिलिटीज।
1: इसीलिए सीनियर सिटीजन्स को एक समान समूह मानकर नहीं देखा जा सकता। एक अकेले रहने वाले पुरुष का अनुभव अलग हो सकता है, महिला का अलग, ग्रामीण बुजुर्ग का अलग और शहर में अकेले रहने वाले वृद्ध का बिल्कुल ही अलग। और आर्थिक रूप से सुरक्षित व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अनुभव भी आर्थिक रूप से असुरक्षित व्यक्ति से बिल्कुल अलग हो सकता है। लंबे समय से भारत में सामाजिक सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर।
3: भारत में बुजुर्गों की मानसिक सेहत और इलाज से जुड़े आंकड़े गंभीर हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज यानी IIPS के देश के सबसे बड़े सर्वे जो अब तक हुआ है, लॉन्जिट्यूडिनल एजिंग स्टडी इन इंडिया यानी LASI LASI की रिपोर्ट के मुताबिक, और आपको बता दूं कि बुजुर्गों की मानसिक सेहत से जुड़े ये आंकड़े मुख्य रूप से LASI वेव 1 रिपोर्ट से लिए गए हैं। इन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 6 जनवरी 2021 को जारी किया था। ये आंकड़े देख लेने चाहिए, इससे हमें समस्या कितनी गंभीर है और कितना ज्यादा और काम किया जाना बाकी है इससे पता चलता है। तो आंकड़े इस तरह है कि भारत में लगभग 20% वरिष्ठ नागरिक 60 साल से जिनकी उम्र ज्यादा हो, किसी न किसी तरह की मानसिक स्वास्थ्य समस्या या मनोरोग से जूझ रहे हैं। डिप्रेशन यानी अवसाद बुजुर्गों में ये आम समस्या हो गई है। आंकड़े देखें तो लगभग 41.7% बुजुर्गों ने किसी न किसी स्तर पर डिप्रेशन के लक्षणों की शिकायत की है, ये रिकॉर्ड में है। इसके अलावा डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी, भारत में 60 साल से ज्यादा उम्र के लगभग 7.4 बुजुर्ग, ये संख्या बैठती है लगभग 88 लाख। अब महिलाओं में ये खतरा ज्यादा रहता है, बुजुर्ग पुरुषों के मुकाबले बुजुर्ग महिलाओं में मानसिक तनाव और डिप्रेशन की दर ज्यादा देखी गई है। इसकी जो खास वजह है वो एकाकीपन और आर्थिक निर्भरता है। शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों के बुजुर्गों में अवसाद के लक्षण ज्यादा पाए गए हैं, क्योंकि वहां मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच अभी अपेक्षा के हिसाब से कम है।
1: LASI के विश्लेषण में 75 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में प्रोबेबल मेजर डिप्रेशन की प्रेविलेंस 9.4% तक दर्ज हुई। 60 से 64 वर्ष में ये 8.3% थी।
2: एक और महत्वपूर्ण अंतर सामने आता है, LASI में सिम्टम बेस्ड असेसमेंट से डिप्रेशन का स्तर सेल्फ रिपोर्टेड डायग्नोसिस की तुलना में कहीं अधिक पाया गया। इन दोनों आंकड़ों के बीच का अंतर हमें एक महत्वपूर्ण सवाल देता है, क्या मानसिक स्वास्थ्य की समस्या कम है या हम उसे पहचान कम रहे हैं? यही इस कार्यक्रम की केंद्रीय चिंता भी है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य की समस्या को बीमारी मानकर ही नहीं देख

0: देता तो वो मदद लेने कैसे जाएगा?
1: और अगर परिवार हर उदासी को उम्र का असर है कहकर टाल देता है तो पहचान और उपचार की संभावना और कम हो जाती है। रवि पाराशर।
2: भारत में लगभग 8% बुजुर्ग ऐसे हैं जो गंभीर डिप्रेशन से पीड़ित हैं, लेकिन उन्हें खुद इस बीमारी की जानकारी नहीं है। ये भी एक गंभीर बात है। इसकी जो खास वजह है वो सामाजिक संकोच है। वो ये बताना नहीं चाहते दूसरों को, अपने बच्चों को, अपने मित्रों को, कि वे उन्हें कोई मानसिक समस्या है। एक और बड़ी वजह रिपोर्ट में पाई गई है कि मानसिक सेहत की जांच करने वाले और इलाज करने वाले डॉक्टरों की अभी कमी है। तो इस दिशा में सरकार काम कर रही है और लगातार काम जारी रहेगा, ऐसा मुझे अपने अनुभव के आधार पर लगता है।
0: उम्र बढ़ने के साथ मानसिक स्वास्थ्य को केवल मानसिक बीमारी के संदर्भ में देखना भी अधूरा होगा। उम्र के साथ साथ फिजिकल लिमिटेशंस भी बढ़ती हैं। 60 प्लस के लोगों में लगभग 23.8% को कम से कम एक एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में लिमिटेशन और लगभग 48% को इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में कम से कम एक लिमिटेशन दर्ज की गई है।
1: अब जरा इसे एम्फैटिकली यानी मनोवैज्ञानिक स्तर पर समझते हैं। जब किसी व्यक्ति को रोजमर्रा के कामों के लिए दूसरे की मदद चाहिए, जब चलने फिरने की स्वतंत्रता कम हो, जब सुनने या देखने में कठिनाई हो, जब दर्द लगातार साथ हो, तो सिर्फ शरीर नहीं बदलता, व्यक्ति की ऑटोनॉमी, कॉन्फिडेंस और सोशल पार्टिसिपेशन भी प्रभावित हो सकती है। इसीलिए वरिष्ठ नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य पर बात करते हुए फिजिकल हेल्थ, डिसेबिलिटी और फंक्शनल इंडिपेंडेंस को अलग नहीं किया जा सकता। डॉक्टर नवाब खान।
3: बुजुर्गों में एक उम्र के बाद सुनने की जो ताकत होती है थोड़ी कम हो जाती है, कभी कभी विजन पे असर हो जाता है। और आप, हम लोग ये सब जानते हैं कि उम्र के साथ मेमोरी पे भी असर पड़ता है। सब पे ना हो, लेकिन एक मेजर पॉपुलेशन पे ऐसा काम होता है। जब आपके सुनने की, देखने की, याद करने की क्षमता में कुछ चेंजेस हो जाए तो फिर ट्रस्ट का इश्यू आता है कि किस पे ट्रस्ट करें। कभी कभी आपकी मेमोरी आपका साथ नहीं दे रही होती तो मेमोरी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। सो अगर आपने खाना खा लिया है या नाश्ता कर लिया है तो फिर आपको याद भी नहीं है। तो उसके लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग की जरूरत होती है, प्रॉपर चैट की जरूरत होती है, तो प्रॉपर टीम की जरूरत होती है। और इस हालत में बुजुर्गों को खुद अपनी मॉनिटरिंग करनी बहुत जरूरी होती है। जैसे कुछ चीजें आप रखिए फिर भूल जाते हैं, या किसी ने कुछ बात कही तो हमको शक हो ऐसे शायद ये मेरे बारे में बोल रहा है। दे स्टार्ट ओवर हियरिंग एवरीथिंग, दे स्टार्ट रेफरिंग देमसेल्फ फॉर एवरीथिंग, जो पेनफुल हो जाता है बात के। और ये जेंडर से एक्चुअली चेंज नहीं होता है, दोनों जेंडर के लिए इक्वली इन चीजें एप्लीकेबल होती है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये बेसिकली आपके कॉग्निशन मतलब थिंकिंग पैटर्न, उससे रिलेटेड इमोशन और उससे रिलेटेड बिहेवियर, इन तीनों चीजों को एक लॉजिकल वे में रिस्ट्रक्चर करने का तरीका है। कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं कि हम यहाँ पर हैं, इस जगह पे हैं, तो ठीक है, तो मे बी ऐसी ही मेरी जिंदगी थी और ऐसा ही होना था, इसलिए हो रहा है ये। तो इसलिए स्टार्ट ब्लेमिंग असर्थ, एक्चुअली हम ही इसको फेथ को ओन करते हैं, इस प्रॉब्लम्स को हम ही ओन करते हैं और हमको ये करना ही होगा, बट सिचुएशन कुछ भी और हो सकती है। तो ये जो कॉग्निटिव एरर्स हो जाते हैं उसको एक जेंटली, मोर लॉजिकली चैलेंज करके रिस्ट्रक्चर करने का तरीका है। लेकिन इसका इस्तेमाल तब होता है जब पेशेंट या पर्सन जो है, बोले आप, या ओल्ड एज में जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके अंदर लॉजिकल एबिलिटी हो समझने के लिए कि इसका ये अल्टरनेटिव कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है, इसका ये अल्टरनेटिव कॉज भी हो सकता है।
0: मानसिक स्वास्थ्य की चर्चा में एक और पक्ष अक्सर पीछे छूट जाता है, वो है आर्थिक सुरक्षा।
1: अब जरा सोचिए, अगर उम्र बढ़ने के साथ आय का स्रोत समाप्त हो जाए, स्वास्थ्य खर्च बढ़ जाए, दवाइयां नियमित रूप से लेनी पड़े और व्यक्ति आर्थिक रूप से पूरी तरह परिवार के सदस्यों पर निर्भर हो जाए, तो आर्थिक चिंता और मानसिक तनाव के बीच दूरी कितनी रह जाती है।
0: इसीलिए वृद्धावस्था का मानसिक स्वास्थ्य केवल काउंसलिंग का विषय नहीं, ये सोशल सिक्योरिटी, इनकम सिक्योरिटी, हेल्थ केयर और डिग्निटी का भी विषय है। यानी समाधान केवल ये नहीं कि बच्चे अपने माता पिता से फोन पर बात करें, जरूरत इससे बड़ी है कि ऐसे मोहल्ले हों जहां बुजुर्ग सुरक्षित होकर निकल सके, ऐसे पार्क हों जहां बैठने की जगह हो, ऐसी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था हो जिसका उपयोग वृद्ध आसानी से कर

0: सके।
1: ऐसे कम्युनिटी सेंटर्स हों जहां वे केवल लाभार्थी नहीं सहभागी हों, और ऐसी सामाजिक गतिविधियां हों जिनमें उम्र बाधा न बने, क्योंकि किसी व्यक्ति के सामाजिक रिश्ते उसकी मानसिक सेहत का हिस्सा हैं।

0: तो मीनिंगफुल एंगेजमेंट भी एजिंग पॉलिसी का हिस्सा होना चाहिए। भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी कई सरकारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। लंबे समय से भारत में सामाजिक सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर।
1: सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि सरकारी योजनाओं का फायदा सभी बुजुर्गों को मिलना चाहिए, चाहे वो ग्रामीण इलाकों में रह रहे हों, चाहे वो शहरी इलाकों में रह रहे हों, चाहे वो वृद्धाश्रमों में रह रहे हों। और इसके लिए ग्रामीण इलाकों में मुझे लगता है कि वहां के जो प्रधान होते हैं और सरपंचों को, उनको जवाबदेह बनाया जाना चाहिए, इनसे सीधे जोड़ा जाना चाहिए। और शहरी इलाकों में जो सबसे निचली इकाई है, मोहल्लों के वार्डों के जो पार्षद हैं, उनके जिम्मे ये काम किया जाना चाहिए, अनिवार्य कर देना चाहिए बल्कि। और कुछ सरकारी योजनाओं का जिक्र यहाँ करना सही रहेगा। आयुष्मान भारत योजना, ये योजना ऐसी है कि 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों को, देश भर के सभी बुजुर्गों को इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज मिलता है, जिसमें मानसिक समस्याओं का इलाज भी शामिल है। दूसरी योजना है टेली मानस, ये मानसिक सेहत से जुड़े परामर्श के लिए, सलाह मशवरे के लिए सरकार की 24 घंटे सातों दिन चलने वाली हेल्पलाइन सेवा है। ये बुजुर्ग इस पर कॉल करके मुफ्त मानसिक सलाह ले सकते हैं। इसके नंबर दो हैं, एक है 14416 और दूसरा नंबर है 1800-89-14416। और अच्छी बात यह है कि ये सेवा जो है वो हिंदी समेत कई क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है, तो इसका लाभ उठाया जा सकता है। बिना संकोच किए आप फोन घुमाइए, अगर दूसरों को नहीं बताना चाहते, अकेले में सलाह लेना चाहते हैं, अपनी मानसिक सेहत से जुड़ी समस्या का निराकरण चाहते हैं, तो फोन पर बात कर सकते हैं। एक और नंबर है जिसको एल्डर लाइन कहा जाता है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन, वो है 14567। ये आसानी से याद भी किया जा सकता है, 14567। इस पर कॉल करके बुजुर्गों को न केवल मानसिक मदद मिलती है, मानसिक समस्याओं से जूझने में मदद मिलती है, बल्कि पेंशन, कानूनी विवाद और पारिवारिक समस्याओं में भी ये यहाँ पर सलाह मशविरा और सही मार्गदर्शन दिया जाता है। इसके अलावा आयुष्मान आरोग्य मंदिर, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र भी सरकार ने जगह जगह स्थापित किए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य स्तर पर बुजुर्गों को बुनियादी सलाह मशविरा और मानसिक स्वास्थ्य के लिए दवाएं यहाँ इसके माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम NMHP और जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम DMHP, इसके तहत जिलों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं और परामर्श दिया जाता है। वयोवृद्ध जन कल्याण योजनाएं भी हैं, सरकार चलाती है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इन्हें चलाता है। इसके तहत डे केयर सेंटर, आश्रय और मोबाइल मेडिकल यूनिट जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं, अगर घर पर आपको परामर्श चाहिए। और अच्छी बात यह है कि ये सभी हेल्पलाइन सेवाएं पूरी तरह से मुफ्त हैं और 2400 घंटे उपलब्ध हैं। ये जानकारी भी होनी चाहिए कि भारत में मानसिक बीमारी के इलाज और अस्पताल में भर्ती होने की प्रक्रिया को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 में एक कानून बनाया गया था, और आयुष्मान भारत यानी पीएम जय के नियमों के तहत बेहद सुगम और मरीज के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए तैयार किया गया है।
2: आंकड़े जरूरी है, वो हमें समस्या का आकार बताते हैं, लेकिन आंकड़े ये नहीं बताते कि किसी शाम अकेले कमरे में बैठना कैसा लगता है, पति या पत्नी की मृत्यु के बाद पहली रात कैसी होती है, रिटायरमेंट के बाद सोमवार और रविवार में फर्क क्यों मिट जाता है, या जब परिवार कहता है आप आराम कीजिए तो कभी कभी उस वाक्य के पीछे छुपा संदेश कैसा महसूस हो सकता है।
0: इसीलिए इस वर्ष की थीम लिव्ड एक्सपीरियंसेस हर्ड, रियल वॉइसेस, रियल चेंज एक महत्वपूर्ण दिशा देती है। सिर्फ लोगों के बारे में बात मत कीजिए, लोगों को बोलने की जगह दीजिए। मन के मौसम बदले जा सकते हैं, उम्र बढ़ना एक बायोलॉजिकल रियलिटी है, लेकिन अकेलापन हमेशा अनिवार्य नहीं।
2: शायद उम्र का सबसे कठिन मौसम वो नहीं होता जब शरीर कमजोर पड़ने लगता है, सबसे कठिन मौसम वो होता है जब व्यक्ति को लगे कि उसकी जरूरत कम हो गई है, जब बातचीत उसके बारे में होती है लेकिन उससे नहीं, जब उसके लिए फैसले लिए जाते हैं लेकिन उसकी राय नहीं पूछी जाती, जब उसके पास घर होता है लेकिन संवाद के लिए कोई नहीं, जब उसके पास परिवार होता है लेकिन अपनापन नहीं।

0: और जब उसके भीतर बहुत कुछ कहने को होता है, सुनने वाला कोई नहीं।
1: हमारे पास आंकड़े हैं और आंकड़े हमें बताते हैं कि भारत तेजी से एजिंग सोसाइटी बन रहा है। वे बताते हैं कि डिप्रेशन, सोशल आइसोलेशन और लोनलीनेस वास्तविक और गंभीर चिंताएं हैं।
0: लेकिन एक आंकड़ा कभी किसी व्यक्ति की पूरी कहानी नहीं होता, इसलिए शायद अब समय है कि हम सवाल बदलें। ये पूछने के बजाय कि आपको क्या परेशानी है, कभी पूछें आप इन दिनों क्या महसूस कर रहे हैं।
1: ये पूछने की बजाय आपको किस चीज की जरूरत है, कभी पूछें आप अभी भी क्या करना चाहते हैं।
0: और ये मान लेने के बजाय कि उम्र के साथ मन के रंग फीके पड़ जाते हैं, उसे फिर से रंगने के लिए एक जगह बनाते हैं, क्योंकि मन भी मौसम की तरह है, उसमें पतझड़ आता है तो वसंत भी आ सकता है, कभी बादल घिरते हैं तो धूप भी लौटती है।
1: जरूरत सिर्फ इतनी है कि खिड़कियां बंद न कर दी जाएं, किसी के मन की खिड़की खुली रहे, कोई वहां से आती आवाज तो सुन सके, रुके, बात करे और कहे कि हाँ, मैं आपको सुन रहा हूँ।
0: क्योंकि शायद मानसिक स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी सुना जाना है। किसी उम्र में जीवन समाप्त नहीं होता, हर उम्र में एक नया मौसम आने की गुंजाइश हमेशा रहती है।
1: और ये नया मौसम हर किसी के जीवन में आए, ऐसी हमारी कामना है।
2: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में वरिष्ठ नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य पर केंद्रित रूपक मन के मौसम उम्र के साथ। आलेख डॉक्टर बानी आनंद, वाचन स्वर हर्ष रंजन, नवोदिता मिश्रा, रमेश शर्मा की गीत पंक्तियों को स्वर दिया ओम प्रकाश मिश्र ने, प्रस्तुति सहयोग हरदीप सिंह और सुमन ठाकुर, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ
4: You're listening to the news headline at 10 o'clock.

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: नमस्कार, आईची नगोया में एशियन गेम्स 2026 का समापन हो चुका है। यहाँ से एशियाई खेलों का ध्वज अब कतर की राजधानी दोहा के लिए निकल चुका है, जहाँ चार साल बाद 2030 में एक बार फिर से पदकों के लिए गदर मचेगा और एशियाई देशों के धुरंधर खिलाड़ी देश के लिए एक पदक जीतने की चाह में अपने हुनर का एक एक कतरा झोंक देंगे। 20वें एशियाई खेलों की बात करें तो भारत के लिहाज से प्रदर्शन मिला जुला रहा। ओवरऑल पदकों की संख्या हांगझू के मुकाबले भले ही कम हुई, लेकिन हम अपना चौथा स्थान कायम रखने में सफल रहे। इस बार जो भारतीय दल ने कुल 85 पदक जीते, उनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। पिछले एशियाई खेलों में हमारे पदकों की संख्या 28 गोल्ड समेत कुल 106 थी। इस बार पदकों की संख्या कम होने की वजह पिछली बार के मुकाबले छोटा दल और कुछ प्रमुख खेलों में प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप न होना रहा। हालांकि कुछ ऐसे खेल रहे जिनमें हमारे मैदान के योद्धाओं ने उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन किया। खासकर भारत की बेटियों ने इस बार कमाल कर दिया। अगर हम पदक तालिका पर गौर करते हैं तो हमने 11 स्वर्ण लड़कियों के इवेंट में हासिल किए, जबकि 7 गोल्ड लड़कों की स्पर्धाओं में रहे, 3 गोल्ड मिक्स इवेंट में आए। अब हम आपको बताते हैं कि भारतीय दल ने किन किन खेलों में कौन सा पदक जीता और हांगझू एशियन गेम्स के मुकाबले प्रदर्शन कैसा रहा। शुरुआत ट्रैक एंड फील्ड के खेल एथलेटिक्स से करते हैं, जिसमें हमारा सबसे बड़ा दल उतरा था और पदक की भी ढेर सारी उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद खरी नहीं उतर सकी। इस बार एथलेटिक्स में हमने 1 गोल्ड, 9 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज समेत कुल 24 पदक जीते। पदकों की संख्या तो पिछले एशियन गेम्स के 29 पदकों के आसपास ही रही, लेकिन गोल्ड मेडल में भारी गिरावट आई। पिछली बार हमने 6 गोल्ड जीते थे। पदकों की दूसरी सबसे बड़ी उम्मीद शूटिंग में भी हमारी आस पूरी नहीं हुई। निशाना साधने के खेल में इस बार हमने 3 गोल्ड, 8 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज समेत 15 मेडल जीते। 19वें एशियाई खेलों में हमारे खाते में 7 स्वर्ण, 9 रजत और 6 कांस्य समेत 22 पदक आए थे। यहाँ भी सोने के तमगे की संख्या में 4 की कमी आई। बैडमिंटन, टेनिस और घुड़सवारी ने खासा निराश किया। पिछली बार स्क्वाश में हमारे 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक थे। इस बार कुल पदकों की संख्या तो 5 रही, लेकिन उसमें सोने का कोई तमगा शामिल नहीं रहा। 2 रजत और 3 कांस्य पदक भारत के खाते में आए। बैडमिंटन ने भी निराश किया। 2022 के एशियन गेम्स के 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक की तुलना में 2026 में सिर्फ 1 कांस्य पदक खाते में आया। टेनिस में तो पदकों का खाता तक नहीं खुला। पिछली बार 1 गोल्ड और 1 सिल्वर समेत 2 पदक आए थे। घुड़सवारी में भी अकाउंट ओपन नहीं हो सका। हांगझू में 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल आया था। दूसरी तरफ कुछ खेलों में हमारे सितारे पिछली बार से ज्यादा चमके। बॉक्सिंग में भरोसा तो था, लेकिन रिंग के उस्तादों ने उन उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन किया। जापान में 3 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज समेत 6 पदक आए, जबकि चीन में 1 रजत और 3 कांस्य पदक ही भारत के खाते में था। कुश्ती के अखाड़े में भी हमारे पहलवानों ने खूब दांव दिखाए और पिछली बार के 1 रजत और 5 कांस्य पदकों को इस बार 2 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य में बदल दिया। कमाल तो ये भी हुआ कि ग्रीको रोमन शैली में भारत का कोई पहलवान 64 साल बाद फाइनल में पहुंचा। नितेश शिवाच ने ये कमाल कर दिखाया। गोल्फ में न सिर्फ पदकों की संख्या पिछली बार के 1 रजत से बढ़कर 2 हो गई, बल्कि इनमें 1 सोना और 1 चांदी का मेडल भी शामिल रहा। खास बात तो ये भी रही कि प्रणवी उर्स व्यक्तिगत गोल्फ स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। हमारे धनुर्धनों ने पदकों की संख्या को कम नहीं होने दिया। इस बार भी 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज जीता। खास बात ये रही कि तीरंदाजों ने न सिर्फ कंपाउंड टीम इवेंट में अपने पिछले 3 गोल्ड मेडल को कायम रखा, बल्कि रिकर्व में भी कमाल किया। महिला टीम ने एशियन गेम्स के इतिहास में पहला स्वर्ण पदक जीता। इतना ही नहीं, 17 साल की कुमकुम महोद ने महिला व्यक्तिगत इवेंट में भी स्वर्णिम निशाना साधा। पुरुष टीम को रजत पदक मिला। वेट लिफ्टिंग में देश की बड़ी उम्मीद मीराबाई चानू ने निराश नहीं किया। पिछली बार वजन उठाने के इस खेल में हमारा हाथ खाली रहा था, तो इस बार मीरा ने रजत देश के नाम किया। टीम इवेंट में भी हमारा प्रदर्शन पिछली बार से बेहतर रहा। हॉकी के पुरुष वर्ग में न सिर्फ हमारी टीम अपने स्वर्ण पदक का बचाव करने वाली एशिया की पहली टीम बनी, बल्कि महिला टीम तो उससे भी आगे निकल गई। झारखंड की सलीमा टेटे की अगुवाई में महिला टीम ने 44 साल बाद न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता, बल्कि बेहद मजबूत चीन को हराकर लॉस एंजलिस ओलंपिक का टिकट भी कटाया। क्रिकेट में महिला और पुरुष टीमें अपने गोल्ड मेडल का बचाव करने में कामयाब रही। अपने पारंपरिक खेल कबड्डी के महिला और पुरुष दोनों वर्गों में हमारी बादशाहत कायम रही। दोनों ही वर्गों में ईरान को हराकर गोल्ड मेडल जीतने में कामयाबी मिली। हालांकि कुछ अन्य खेलों में हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन पिछली बार के मुकाबले कमतर रहा। इन खेलों में हमने पिछली बार 17 मेडल जीते थे, लेकिन इस बार ये संख्या 10 तक सिमट गई। इस समय हमारे साथ भारत के प्रदर्शन पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पारसारथी। मोना, स्वागत है आपका।
3: शुक्रिया।
2: मोना, 20वें एशियाई खेलों में एक समय हम पदकों की दौड़ में काफी पिछड़ रहे थे और लग रहा था कि भारत का पोजीशन 2022 के मुकाबले पीछे न रह जाए, लेकिन जब अंतिम मेडल टैली आई और हम फिर से चौथा स्थान हासिल करने में कामयाब रहे, तो एक खेल प्रशंसक, एक भारतीय और खेल पत्रकार के तौर पर आपने कितनी राहत महसूस की?
3: जी बिल्कुल, आखिर के 4-5 दिन में जो प्रदर्शन हुआ उसने काफी राहत की सांस महसूस कराई, क्योंकि पहले 10वें 11वें 12वें नंबर पर लगातार भारत रह रहा था और ऐसा लग रहा था कि शायद हम टॉप 10 में आ पाएंगे भी या नहीं। एक उम्मीद जरूर थी कि कुछ टीम गेम्स के मेडल आने बाकी थे, लेकिन फिर भी लगा था कि 5वां 6वां स्थान शायद रह जाएगा, लेकिन अंत में जो आखिरी मेडल गोल्ड आया उसमें हमने उज्बेकिस्तान को पीछे छोड़कर फिर चौथा स्थान हासिल किया, तो ये जरूर राहत की बात रही। हालांकि पदकों की अगर हम बात करें तो पिछली बार सेंचुरी लगाई थी और इस बार 85 पर सिमट कर रह गए, तो वो थोड़ा चिंता का विषय रहा, लेकिन ये ब्रॉडर एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो अलग अलग खेलों में इस बार पदक आए हैं, तो ये हम अगर सकारात्मक देखें तो ये हो सकता है।
2: तो मोना, पदकों की कुल संख्या का कम होने के पीछे वजह क्या रही और क्या सचमुच ये हमारे लिए चिंता की बात है, या फिर जिस तरह से हमने 20 गोल्ड मेडल गवाए तो 13 नए गोल्ड मेडल जोड़े भी हैं, तो ये सकारात्मक पहलू भी तो हो सकता है।
3: जब भी हम किसी बहुराष्ट्रीय खेलों में जाते हैं तो जिन खेलों से सबसे ज्यादा उम्मीद होती है उसमें निशानेबाजी है, बैडमिंटन है, टेनिस है और एथलेटिक्स है, तो इन खेलों में हमारा पिछली बार जो प्रदर्शन था अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो एथलेटिक्स में हमारे 6 गोल्ड मेडल थे, इस बार एक ही आया, तो काफी कुछ निराशा यहाँ रही, क्योंकि पारंपरिक रूप से भारत का इनमें पलड़ा भारी रहता है, तो जो अपनी ताकत है उस पर हम नहीं खेल पाए, वहां निराशा हाथ लगी। लेकिन जैसे आपने कहा कि कई नए खेलों में हमने, जैसे रिकर्व आर्चरी में हमने पहली बार गोल्ड मेडल जीता, ट्रैप शूटिंग में पदक आया, महिला हॉकी में 44 साल बाद पदक आया, तो ये कुछ अच्छे पहलू रहे। लेकिन नए खेलों में पदक जीतने के मायने ये नहीं है कि जो हमारे पारंपरिक रूप से मजबूत खेल है उनमें हमने अपना जो नुकसान हुआ है उस पर जरूर आत्ममंथन करने की जरूरत है।
2: हमारे पदकों की संख्या कम जरूर हुई, लेकिन हमें याद भी रखना होगा कि पिछली बार हमारे 700 से ज्यादा खिलाड़ियों की टीम गई थी, लेकिन इस बार उसके मुकाबले करीब करीब संख्या 200 कम थी, उसका भी कुछ असर हुआ है क्या?
3: नहीं, मुझे लगता है कि जो पदक उम्मीदें थी वो सारी ही थी इस कॉन्टिंजेंट में, और ये स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जहां पर उम्मीद नजर आती है पदकों की, भारतीय दल का हिस्सा वही खिलाड़ी होंगे, और उसको देखते हुए लगता है कि जो रेशो रहा है वो जिनसे उम्मीद की जा रही थी, अगर वो मैदान पर उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं ला पाए तो वहां पर संख्या से मुझे लगता नहीं कि उसका कोई लेना देना है।
2: मोना, हम जानते हैं कि हॉकी पर आपकी खास निगाह रहती है और भारतीय पुरुष टीम ने तो स्वर्ण का बचाव कर नया इतिहास ही लिखा है इस बार, और महिला टीम ने 44 साल बाद स्वर्ण जीत कर कमाल कर दिया है, दोनों टीमों के प्रदर्शन में इस बार क्या खास रहा?
3: देखिए, पुरुष टीम की अगर हम बात करें तो पिछली बार भी हमारी पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक जीता था और सीधे ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था, और उस प्रतियोगिता में उतना जो प्रतिस्पर्धा का स्तर था वो भी इतना नहीं था। अगर आपने ग्रुप मैचेस देखे हो तो बहुत बड़े बड़े अंतर से हमने जीत दर्ज की। एक पाकिस्तान के खिलाफ मैच को छोड़ दिया जाए तो भारत को बहुत ज्यादा चुनौती का यहाँ सामना नहीं करना पड़ा, और जिस तरह से विश्व कप में प्रदर्शन रहा था भारतीय पुरुष हॉकी टीम का, 8वें स्थान पर रही थी, तो उस निराशा से उबरते हुए ये गोल्ड मेडल ने जरूर राहत का काम किया होगा। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि पुरुष हॉकी के लिए खासतौर पर बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रतिस्पर्धा का जो स्तर था वो बहुत अच्छा नहीं था। अब आगे के लिए हमें बड़ा सोचना होगा, लेकिन ये बात महिला हॉकी की अगर हम करें तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी उपलब्धि है। 1982 में दिल्ली में जब एशियन गेम्स हुए थे तब हमको गोल्ड मेडल मिला था, और यहाँ 44 साल बाद भारतीय महिला हॉकी टीम ने इसे ठीक एक महीना पहले विश्व कप में 52 साल बाद सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके 5वां स्थान हासिल किया, और यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि सीधे लॉस एंजलिस ओलंपिक का टिकट कटाया है। पिछली बार पेरिस में टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी टोक्यो हाई के बाद, तो ये सबसे बड़ी यहाँ राहत की बात है कि अब पूरे 2 साल महिला हॉकी टीम के पास है, और जिस तरीके से टीम की तैयारियां चल रही है अगर हम ओलंपिक में पदक के दावेदारों में शामिल हो तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं होगी।
2: तीरंदाजी में मोना हमने कमाल किया, पहले हमारी ताकत कंपाउंड इवेंट हुआ करती थी लेकिन इस बार तो रिकर्व में भी कमाल हुआ। हमारे धनुर्धरों की सफलता को लेकर आप कितनी खुश हैं और भविष्य का क्या संकेत मिलता है?
3: जो भारतीय टीम का पदक तालिका में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ वो मुझे लगता है तीरंदाजों ने ही शुरुआत की, और खासतौर पर यहाँ तारीफ करनी होगी कुमकुम मोहत की, जिन्होंने सिर्फ 17 साल की उम्र में जिस तरीके की परिपक्वता अपने खेल में दिखाई है। कोरिया की लेजेंडरी आर्चर को हराकर गोल्ड मेडल जीता और जिस खिलाड़ी को उन्होंने हराया उन्हें वो अपना आदर्श भी मानती है और शूट ऑफ तक उनका एक मुकाबला गया था। जबरदस्त संयम और एकाग्रता का प्रदर्शन देते हुए उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है। 3 पदक उनकी झोली में गिरे हैं और जब चयन हुआ था तीरंदाजी टीम का तो काफी सवाल उठे थे कि अनुभव पर युवाओं को तरजीह दी गई, लेकिन यहाँ पर कुमकुम की अगुवाई में रिकर्व टीम ने इतिहास रचा। और कंपाउंड आर्चरी की भी अगर हम बात करें तो ज्योति व्यक्तिगत स्पर्धा में भले ही कमाल नहीं कर पाई हो लेकिन उनकी अगुवाई में भारतीय टीम ने प्रदर्शन जबरदस्त किया और गोल्ड मेडल अपनी झोली में डाला। तो तीरंदाजी में भारत का बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन इन खेलों में देखने को मिला।
2: मोना, निशाना साधने की एक और खेल शूटिंग की बात करें तो वहां पर मेडल पिछले बार जितने नहीं आए लेकिन नीरू ढांडा का प्रदर्शन, जो कि कोविड से जूझ रही थी, करियर समाप्त होने की तरफ था, लेकिन उन्होंने 2 गोल्ड पर निशाना साधा।
3: बिल्कुल, इसको कहते हैं ना कि इच्छा शक्ति हो, लगन हो और कुछ पाने की चाहत हो। नीरू का मैं इंटरव्यू देख रही थी और कह रही थी कि मैं आई थी तो यही सोच के आई थी कि मुझे सिर्फ गोल्ड ही जीतना है और उस तरीके का उन्होंने प्रदर्शन भी किया। ट्रैप में भारत को पहली बार स्वर्ण पदक दिलाया, महिला निशानेबाज बनी और किनान के साथ मिलकर उन्होंने मिक्स में भी पदक जीता, तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा। ध्वजवाहक भी रही वो क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की और मुझे लगता है कि अगर इसी तरीके का उनका प्रदर्शन जारी रहा तो शायद 2004 के बाद जो शॉटगन में भारत को एक ओलंपिक मेडल की उम्मीद के रूप में वो उभर सकती है।
2: जी, और कुश्ती के मैट पर भी हमारे पहलवानों ने खूब दाव पेंच दिखाया, 2 सोने का मेडल भी जीता। ये पारंपरिक खेल हमारे लिए ओलंपिक में भी पदक की एक बड़ी उम्मीद हमेशा से रहा है। पहलवानों के इस बार के प्रदर्शन ने आपको कितना प्रभावित किया?
3: खास तौर पे सुजीत कलकल की अगर हम बात करें तो जिस तरह से हारा हुआ एक तरह मुकाबला था और वो जो वापसी की उन्होंने वो बहुत शानदार रही। अमन सहरावत के लिए भी ये वापसी वाले खेल रहे तो कुश्ती में प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप रहा। 2 गोल्ड मेडल भारत की झोली में आए और आगे उम्मीद यही रहेगी कि वहां से अच्छी खबरें ही सामने आए।
2: और खासकर ग्रीको रोमन शैली में भी सालों बाद हमारा कोई पहलवान फाइनल में पहुंचा, 2 मेडल भी आए। ये कुश्ती की पारंपरिक शैली नहीं है फिर भी इस बात का संकेत तो मिलता है कि ग्रीको रोमन शैली की कुश्ती पर भी काफी काम हो रहा है।
3: बिल्कुल, जब भी कुश्ती के मैट पे भारतीय उतरते हैं तो फ्री स्टाइल में ही माना जाता है कि वो हमारा एक मजबूत पक्ष है, लेकिन ग्रीको रोमन ने चाहे वो नितेश सिवाच हो चाहे सुनील कुमार हो जिस तरह से भारत की झोली में पदक डाले तो अब लगता है कि आगे किसी भी खेलों में इस शैली से भी भारत को पदक की उम्मीद की जा सकती है।
2: मुक्केबाजी में भी इस बार एशियाई देशों ने हमारे बॉक्सर्स के पंचों के दम को देखा, 3 गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहे। लॉस एंजलिस ओलंपिक में हमारी मुक्केबाजी क्या कमाल कर सकती है?
3: बिल्कुल, लवलीना बोरगोहेन ने जो शुरुआत की, जिस तरह से उनका प्रदर्शन रहा और अपने जन्मदिन के दिन उन्होंने गोल्ड मेडल भारत की झोली में डाला तो एक तरह से कहा जाए कमबैक ही रहा उनके लिए भी। परवीन हुड्डा ने उस सिलसिले को आगे बढ़ाया और अंकुश पंघाल, तो कुल मिलाकर 3 गोल्ड मेडल किसी भी खेल में अगर आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए एक बहुत अच्छा संकेत भी है।
2: क्रिकेट और कबड्डी जैसे खेल में दोनों वर्गों में हमारी टीम्स का गोल्ड मेडल, क्या ये साबित करता है कि फिलहाल इनमें से कम एशियाई स्तर पर तो हमारी कोई टक्कर नहीं है?
3: बिल्कुल नहीं है। खास तौर पे अगर हम बात करें क्रिकेट की तो महिला वर्ग में भी और पुरुष वर्ग में भी जिस तरीके का प्रदर्शन था, एक ही समय पर भारत की 2 टीमें अलग अलग टूर्नामेंट खेल रही है, वहाँ सीरीज जीत रही है, यहाँ पे एशियन गेम्स, तो क्रिकेट में जो भारत की गहराई है उसका कोई मुकाबला नहीं और एशिया स्तर पर तो कोई चुनौती थी नहीं भारत के पास। कबड्डी में एक ईरान को छोड़कर किसी टीम से भारत को चुनौती मिलने की वैसे भी उम्मीद नहीं थी और भारतीयों ने उस पर खरे उतरते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम की।
2: एथलेटिक्स में पिछले एशियन गेम्स में हमारी झोली में सबसे अधिक पदक आए थे। इस बार न सिर्फ ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में पदकों की संख्या कम हुई बल्कि गोल्ड मेडल में भी ड्रास्टिक गिरावट आई। एशियन स्तर पर यह प्रदर्शन हमारे लिए कितनी चिंता की बात?
3: बिल्कुल, बहुत चिंता की बात है क्योंकि पिछली बार 6 गोल्ड मेडल आए थे, इस बार 1 ही गोल्ड मेडल भारत की झोली में आया है और इस तरह के इवेंट में जो एथलेटिक्स होता है वो उसको कहा जाता है रूह है उस आयोजन की, उस पूरे खेलों की रूह है और उसमें सबकी नजरें लगी होती है। एशियन गेम्स शुरू होने से पहले ही नीरज चोपड़ा के न होने की वजह से काफी कुछ लग रहा था, रौनक कम हो गई है। डिफेंडिंग चैंपियन भी थे भाला फेंक में, लेकिन यहां निराशा हाथ लगी। अभी भाला फेंक की अगर हम बात करें तो यशवीर और रोहित ने 2 पदक पदक भारत की झोली में डाले और काफी समय तक यशवीर आगे भी चल रहे थे, लग रहा था गोल्ड आएगा, लेकिन जो इस समय एक तूफान आया हुआ है श्रीलंका के पाथिरागे के नाम से, उन्होंने एक भाला ऐसा फेंका कि वो एक गोल्ड भारत के पास से निकल गया। फिर पूजा की अगर हम बात करें, वो भी काफी समय तक आगे चल रही थी लेकिन आखिरी दो प्रयास में वो भी चूक गई। मुरली श्रीशंकर हो, एनसी सोजन हो, सर्वेश कुशारे हो और तेजिंदर पाल सिंह तूर लगातार जिनका दबदबा रहा है वो भी चूके, उनका गोल्ड जो है सिल्वर में, तो काफी जो गोल्ड है हमारे सिल्वर में चले गए। लेकिन रिले टीम की यहाँ तारीफ करनी होगी, महिलाओं की 4x400 मीटर, उसमें भी विथ्या रामराज की खासतौर पर, जिन्होंने लास्ट लैप में जिस तरीके से ओवरटेक किया है और भारत को गोल्ड दिलाया है, तो वो एक सिल्वर लाइनिंग रहा पूरे एथलेटिक्स में, प्रदर्शन में। लेकिन यहाँ जरूर निराशा रही कि 5 गोल्ड सीधे हाथ से निकल गए।
2: और गोल्फ की बात करना भी जरूरी है क्योंकि वहां भी महिला वर्ग में हमने इतिहास रचा है। जो प्रदर्शन रहा प्रणवी उर्स का, वो कैसे देखती हैं आप, कितनी बड़ी ताकत हम बनने जा रहे हैं एशिया में?
3: देखिए, आप अगर ओवरऑल देखें मेडल टैली, तो महिलाओं ने ही बाजी मारी है इस बार स्वर्ण पदकों में। मुझे रियो ओलंपिक याद आ रहा है जब महिलाएं पदक लेकर आई थी, तो गोल्फ में भी आप प्रणवी उर्स का प्रदर्शन देखिए, शुरू से उन्होंने एक कंसिस्टेंसी बरकरार रखी और आखिर में पहली महिला बनी। कितनी ईमानदारी से लोगों ने सोचा होगा जब ये कंटिजेंट रवाना हो रहा था कि गोल्फ में हमें गोल्ड मेडल मिलेगा, कम से कम हम लोगों ने, खेल पत्रकारों ने तो इसकी उम्मीद नहीं की थी। और ये एक अनएक्सपेक्टेड गोल्ड भारत की झोली में आया है और बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा टीम का भी, जिसमें अदिति अशोक और दीक्षा डागर भी थी कि सिल्वर मेडल भारत की झोली में डाला। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में काफी अच्छा प्रदर्शन यहां से देखने को मिलेगा। और इसकी शुरुआत अदिति अशोक से हुई थी जब उन्होंने ओलंपिक में 4th स्थान हासिल किया था और अभी महिलाओं ने उस सिलसिले को आगे बढ़ाया है, तो शुरुआत अच्छी हुई है।
2: उन्हें स्क्वाश में भी मेडल तो आया, लेकिन आपको लगता है कि उतना भरोसा पूरा हुआ जितने की उम्मीद थी?
3: स्क्वाश में गोल्ड मेडल नहीं आया भारत की झोली में, लेकिन संभावनाएं जरूर जगी हैं, खासतौर पे अनहद सिंह ने जो वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जीती हैं और भविष्य के लिए बहुत अच्छी उम्मीद मानी जा रही। उन्होंने पहली बार महिला एकल में फाइनल में पहुंचने वाली पहली खिलाड़ी रही और सिल्वर मेडल अपने नाम किया, तो ये

0: एक अच्छा प्रदर्शन भारत के लिए रहा।
1: साइकिलिंग और स्विमिंग जैसे खेलों ने पूरी तरह से निराश किया, आप मानती हैं कि इन खेलों में काफी काम करने की जरूरत है?
0: देखिए, हमारी जो पूरी स्ट्रेटजी तैयार होती है खेलों की, तो उसमें फोकस इस बार ये था कि उन खेलों पर भी ध्यान दिया जाए जिनमें पारंपरिक रूप से हम अच्छे पदक जीतने की हमारी उम्मीद नहीं होती है, जैसा चीन ने किया था बीजिंग ओलंपिक से पहले। लेकिन मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दबाजी होगा कुछ कहना, क्योंकि इन खेलों में जिस तरह से निराशा सामने आई है, हर वर्ग में भारतीय फाइनल दौड़ में भी जगह नहीं बना पाए, शुरुआती दौर में ही बाहर होते गए, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन।
1: और एक अंतिम सवाल, सेलिंग, सेपक टेकरा, सॉफ्ट टेनिस जैसे खेल नई उम्मीद जगा गए, जबकि घुड़सवारी जैसे कुछ खेलों ने निराश किया। कुल मिलाकर इस बार के एशियाई खेल भविष्य के लिए कितनी उम्मीदें जगाने वाले रहे और किन खेलों में और ज्यादा मेहनत करने की तरफ इशारा कर गए?
0: बिल्कुल, आप देखिए, सेलिंग में जिस तरह नेत्रा कुमारन काफी अनुभवी सेलर है और डिंगी, महिलाओं की डिंगी स्पर्धा में उन्होंने एक मेडल भारत को दिलाया जो पहला पदक है। जय मीणा ने, जैसे आपने बात की सॉफ्ट टेनिस की, और पुरुषों की चौकड़ी ने सेपक टेकरा में भारत को पदक दिलाया। तो ये जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि एक ब्रॉड हुआ है, जो स्पेक्ट्रम है वो थोड़ा चौड़ा हुआ है कि अलग अलग खेलों में हमें पदक मिले जरूर है, लेकिन जो पारंपरिक हमारे खेल है उनमें कहीं ना कहीं हम पिछड़े हैं। तो यहाँ पर ये आत्ममंथन करने की जरूरत है कि एक तरफ आपको ये सकारात्मक बात भी है कि आपने नए नए खेलों में प्रवेश किया, पदक को पोडियम पर खड़े हुए, लेकिन जो हमारी ताकत है उस पर भी हमें पोडियम पे ही खड़े होना है, उसमें किसी तरह का समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि उसका सीधा असर आपकी मेडल टैली पर पड़ता है। आप देखिए, टेनिस में 40 साल बाद एक भी पदक नहीं भारत को मिला, बैडमिंटन में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी दोनों गोल्ड मेडल जीते थे, शुरुआती दौर में ही बाहर हो गए। तो बिल्कुल सारे हमारे धुरंधर बैडमिंटन टीम में थे लेकिन कोई पदक नहीं उसमें हाथ लगा। तो यहाँ बहुत निराशा है और इस पर जरूर आत्ममंथन करने की जरूरत है।
1: स्टूडियो में आने के लिए और हमसे एशियाई खेलों में भारत के प्रदर्शन पर बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: शुक्रिया।
1: आईची नागोया में भारत का 85 पदकों का यह आंकड़ा जश्न मनाने के लिए काफी है, लेकिन कहीं न कहीं आत्ममंथन का भी संकेत है। पिछली बार के मुकाबले इस बार पदकों की संख्या में थोड़ी गिरावट आई है, जिसका मतलब है कि हमें एथलेटिक्स, शूटिंग, कुश्ती के साथ साथ उन खेलों में भी ग्रास रूट स्तर पर काम करना होगा जहां एशियाई स्तर पर हम पीछे रह जाते हैं। लेकिन हमारे हर खिलाड़ी का जोश और जज्बा ये कह रहा है कि 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक और भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय मंचों के लिए भारत की नींव बेहद मजबूत है। तो जीत का जश्न जारी रहे और खिलाड़ियों का ये कारवां यूं ही तिरंगा ऊंचा करता रहे। एशियन गेम्स 2026 में भारत के प्रदर्शन पर हमारी स्पेशल कवरेज के अंतिम एपिसोड से कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शहनवाज खान, एडिटर विशाल कुमार के साथ मुझे धर्मेंद्र मणि राजेश को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: इस पर आधारित डेली हाइलाइट्स, जिसका अनुप्रसारण हमने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा।
4: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 18वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, व्यापक निवेश और सुलभ कारोबार। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक दिलीप चेनॉय और संतोष तिवारी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
5: एक समय था जब भारत में एक नया कारखाना शुरू करने के लिए 50 से ज्यादा दफ्तरों की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थीं, महीनों की फाइलें, अनगिनत हस्ताक्षर और दबी हुई लाल फीताशाही। दुनिया भारत को एक विशाल बाजार तो मानती थी, लेकिन यहाँ कारोबार करने से कतराती थी। फिर आया अक्टूबर 2001, गुजरात की धरती पर जब नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के रूप में बागडोर संभाली, तो उन्होंने व्यवस्था से एक तीखा सवाल पूछा, व्यापारी पर अविश्वास क्यों, फाइलें दफ्तरों में महीनों क्यों रुके, और उसके बाद जन्म हुआ एक ऐसे विचार का जिसने भारत के आर्थिक भूगोल को हमेशा के लिए बदल दिया। गुजरात के वाइब्रेंट सम्मेलनों और सिंगल विंडो की पहली डिजिटल क्रांति से शुरू हुआ वो साहसिक प्रयोग आज 140 करोड़ से अधिक लोगों के देश की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। फाइलों की धूल से निकलकर वन क्लिक नेशनल सिंगल विंडो तक, बिचौलियों के मायाजाल को तोड़कर जेम पोर्टल के डिजिटल लोकतंत्र तक और लंदन दुबई को सीधी चुनौती देते गुजरात के गिफ्ट सिटी के आसमान छूते टावरों तक। ये सिर्फ सुधारों की कहानी नहीं है, ये भारत

0: के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की रोमांचक पटकथा है। लोक कल्याण से राष्ट्र निर्माण तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन और सुशासन के 25 ऐतिहासिक वर्षों पर आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति जनसेवा से देश सेवा। आज का हमारा विषय है कारोबार आसान, निवेश व्यापक। इस अभूतपूर्व बदलाव को आज हम डेटा, तथ्यों और दूरदृष्टि के चश्मे से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो आर्थिक विश्लेषक मौजूद हैं, प्रसिद्ध आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय जी और वरिष्ठ अर्थशास्त्री संतोष तिवारी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत।
1: धन्यवाद।
2: धन्यवाद
0: संतोष जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं तो इसकी नींव गुजरात से मानी जाती है। बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात सिंगल विंडो सिस्टम और इन्वेस्टर्स समिट का मॉडल पेश किया। आपसे समझना चाहते हैं कि उस सिंगल विंडो और प्रो बिजनेस गवर्नेंस मॉडल ने भारत के नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के गठन में क्या भूमिका निभाई और उससे कितना बड़ा बदलाव पिछले एक दशक या गुजरात से देखें तो 25 वर्षों में आप देखते हैं।
1: आनंद, ये एक ऐसा सवाल है जो कि मेरे लिए काफी रोमांचक भी है, क्योंकि जब गुजरात के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे उस वक्त मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं दो बड़े प्रोजेक्ट्स जो गुजरात के समुद्र तट पर लग रहा था, दहेज और हजीरा में एलएनजी टर्मिनल, और मैं उस वक्त इसलिए कि मैं उसमें पत्रकार था और इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते थे उनमें मेरा इंटरेस्ट भी था, तो मैंने दोनों के इनॉग्रेशन को कवर किया। और दोनों में जो एक बात निकल के आई जो आपने अभी कहा, वो उस वक्त लगता नहीं था कि ये कोई ऐसी चीज है जो कि नेशनल लेवल पर की बड़ी भूमिका अदा करेगी, और वो था सिंगल विंडो सिस्टम और सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम।
0: जी,
1: तो जब इनॉग्रेशन के बाद जो बड़े बड़े व्यवसायी जो वहां इकट्ठा हुए थे उनसे प्रधानमंत्री जो अभी है नरेंद्र मोदी, वो मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने सीधी बातचीत की, और कोई लबोलुभाव नहीं, वो सीधी बातचीत की। तो मैंने एक बड़ी कंपनी के CMD से बाहर निकलने के बाद एक चीज पूछा, मुझे भी जिज्ञासा हुई कि भाई ये क्या बात है कि इतने सारे व्यवसायी जो है वो इकट्ठा हो रहे हैं और एक मुख्यमंत्री के पीछे इतना आकर्षण है। उस वक्त ये कहानी लगती थी, लेकिन उस व्यवसायी ने मुझे उस वक्त बताया था कि संतोष, गुजरात में ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, वो इसलिए आ रहे हैं कि ये वन विंडो क्लियरेंस सिस्टम जो है वो रियल में वन विंडो या सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है। आपको एक बार अगर राज्य सरकार ने, यानी गुजरात के राज्य सरकार ने अगर क्लियरेंस दिया और आपसे कहा कि लैंड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हर तरह के क्लियरेंसेस जो हैं वो आपके इस प्रोजेक्ट के लिए अवेलेबल हैं
0: जी,
1: तो आप आंख मूंद कर ये मान के चलिए कि आने वाले दिनों में जब भी कभी आपको उस जो चीज अवेलेबल कराया गया है सिंगल विंडो सिस्टम के तहत उस चीज की आवश्यकता है, आपको किसी और दरवाजे नहीं जाना पड़ेगा और वही सिंगल विंडो सिस्टम जो है वो काम आएगा। और आपने सही कहा कि इसी सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर गुजरात में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगे हैं, चाहे वो ऑटो सेक्टर में आप देख लीजिए या मैं नाम ले सकता हूँ, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो बाकी जगहों पर अलग अलग राज्यों को छोड़कर गुजरात में जाकर लगे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब इंडिया सेमीकंडक्टर हब बनने की तैयारी कर रहा है, वहां भी धौलेरा अगर है या सेमीकंडक्टर का डेवलपमेंट का सेंटर अगर कोई राज्य बनना चाह रहा है तो वो गुजरात ही बन रहा है। ये सब ऐसे एक दिन में नहीं होता, ये एक सोच होता है। तो अगर व्यवसायी के लिए, इन्वेस्टर के लिए अगर सिंगल विंडो सिस्टम कोई चीफ मिनिस्टर अगर अवेलेबल करा सकता है, तो वो जब प्रधानमंत्री बने तो उसे बिल्कुल पता है कि ये सिंगल विंडो सिस्टम का कितना इंपॉर्टेंस है, तो ये इंश्योर होता है। और बाकी राज्यों में भी कोशिश बहुत की गई है, की जा रही है, और जहां जहां इसमें सफलता मिली है वहां भी इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे तो उसी लिहाज से बढ़ा है। लेकिन गुजरात एक एक्सेप्शनल स्टेट हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर या बड़े इन्वेस्टमेंट को लाने में रहा है, और उसमें सिंगल विंडो सिस्टम की भूमिका बहुत अहम रही।
0: निवेश की बात कर रहे हैं संतोष जी, अगर इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं दिलीप जी, तो भारत अब केवल एक घरेलू बाजार नहीं रहा बल्कि वैश्विक निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है। और जब भी बात हम निवेश की करते हैं और राज्यों में निवेश की करते हैं तो वाइब्रेंट गुजरात हमें याद आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वाइब्रेंट गुजरात की पहल की तो उस समय शायद ही किसी ने सोचा था कि विदेशी कंपनियां भारत में आकर वो भी गुजरात जैसे राज्य में निवेश करेंगी। उसके बाद हमने देखा कि भारत के अलग अलग राज्यों में इस तरह के समिट्स होने लगे, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज होने लगी और कई कंपनियां न सिर्फ भारत आई बल्कि उससे रोजगार की स्थिति भी बदली। तो उस शुरुआत को और आज के सफर तक कैसे देखते हैं आप?
2: ये एक बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जैसे संतोष जी ने आपको पहले बताया कि जो उन्होंने सिंगल विंडो क्लियरेंस किया था, और उसमें एक खास तौर है कि जो गुजरात का सिंगल विंडो सिस्टम है वो हालांकि 2017 में अनाउंस किया गया था, लेकिन उससे पहले 100 करोड़ के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स थे वो खुद चीफ मिनिस्टर एक तरीके से उनको ओवरसी

0: करते थे और वो एक सिंगल विंडो सिस्टम के दौर पे किया जाता था। और अगर आप देखें तो वाइप एंड गुजरात जो 2003 में मेरे ख्याल से शुरू हुआ था उसको आप लिखे तो जब तक कोई स्टेट लेवल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ नहीं करता था, इंडिया में नेशनल लेवल इन्वेस्टमेंट समिट्स भी नहीं हुआ करते थे, तो एक स्टेट गुजरात जो ये 2003 में जो इन्वेस्टमेंट समिट किया था उस टाइम भी अगर आप देखें तो निवेशों को इंडिया से बाहर से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। और इसमें एक खास बात थी, तो अगर आप देखें संतोष जी ने ऑटो सेक्टर का जिक्र किया था, तो अगर आप देखें कि वेस्ट बंगाल में एक कंपनी का एक प्रॉब्लम था तो वो अलग अलग जगह ढूंढ रहे थे जहाँ पे यहाँ पर लैंड है। वाइब्रेंट गुजरात समिट में उन्होंने अनाउंस किया और वहां पे जो उनको बोला गया था कि आपको हम ना हम आपको लैंड एक्वायर करना है ना कुछ करना है, लैंड एक्वायर्ड है, हम आपको सब्सिडी नहीं देंगे, आप MOU साइन करिएगा और आप कल से वहां पे अपना जो प्लांट है शुरू करें। आज की डेट में वो एक हब बन गया है। 2005 में वाइब्रेंट गुजरात में मैं खुद शामिल था, उसमें ऑटो सेक्टर के बारे में काफी चर्चा हुई थी। उस टाइम अमित शाह जी इंडस्ट्री मिनिस्टर थे वहाँ के, एक पूरा ऑटो सेक्टर पे सेक्शन किया गया था। उन्होंने उस टाइम कहा था कि भी हमें थ्री व्हीलर देखना चाहिए। जब उनको बताया गया कि भाई अहमदाबाद में भारत का थर्ड लार्जेस्ट ऑटो थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरर, उन्होंने दिशा बदला और उन्होंने अलग काम किए। तो अगर आप देखें तो आप स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे थे, आप इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, तो अगर आप देखें 2019 से आज तक लगभग 3.50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये वाइब्रेंट गुजरात समिट में कमिट किया गया है। अक्टूबर यानी कि 2019 से मार्च 2025 तक इस साल का जो वाइब्रेंट गुजरात का समिट है वो अभी होने वाला है। और दूसरा जो उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात में जो किया था वो खाली फॉरेन इन्वेस्टर्स के नहीं था, वो देश में जा करके अलग अलग जगह में इन्वेस्टर्स मीटिंग्स करते थे, वो भी एक नया ट्रेंड था और अब सारे जो स्टेट्स हैं वो इसको फॉलो करते हैं। और एक तरीके से जो कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म आप देख रहे हैं, स्टेट्स कम्पीट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए सिंगल विंडो सिस्टम डाल दें, उसकी शुरुआत वाइब्रेंट गुजरात से हुई थी, गुजरात में जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
1: जी हाँ, जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे वहां से वाइब्रेंट गुजरात की पहल हुई और उसके बाद दुनिया भर की कई कंपनियों ने भारत में निवेश किया। चर्चा को आगे बढ़ाते संतोष जी, भारत ने पिछले दशक में ऐतिहासिक FDI प्राप्त किया है। अगर थोड़ी चर्चा FDI की करें, फेमा सुधारों और 100% ऑटोमेटिक रूट के विस्तार से विदेशी निवेशकों का भारत ने भरोसा जीता है, इस कोशिश को आप कैसे देखते हैं, क्या बदलाव किए गए? चूंकि एक अविश्वास का केंद्र भारत माना जाता था, वहां से विश्वास को जीतना FDI की पहल और उसमें भी बहुत रिकॉर्ड बने।
2: आनंद जी, निवेशक कोई भी जो विदेशी निवेशक होता है या जो कंपनियां होते हैं वो दो तीन चीजें किसी भी देश में जाने के पहले देखती हैं। अगर आप विश्व परिप्रेक्ष्य में भी अगर देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि चाहे वो चीन हो या अमेरिका हो या वैसे देश जहाँ की निवेश ज्यादा हुए हैं या होते रहे हैं, वहां पर जैसा मैंने कहा दो या तीन चीजें होते हैं जिसको देखते हैं। एक, जो आपकी पॉलिसी है उसमें सर्टेनिटी कितनी है, चाहे वो राज्य हो या देश हो। निवेशक के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय यह होता है कि कहीं हम ऐसी जगह में निवेश तो नहीं कर रहे कि यहाँ पॉलिसीज जो है वो बहुत तेजी से चेंज होता है, सरकारें बदलती हैं, पॉलिसी चेंज होता है। एक तो पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि भारत जैसे देश में पिछले एक दशक से ज्यादा जिस तरह से निवेशकों को जो चाहिए वैसी पॉलिसीज जिस तरह से चेंज करके लाई गई है फॉर देयर बेनिफिट, यानी उनकी सहूलियत के लिए, वो एक दूसरी चीज है जो कि निवेशक देखता है कि जो हमारे लिए प्रॉब्लम का विषय है, जो हमारे इन्वेस्टमेंट को दिक्कत में ला सकता है, वैसी पॉलिसीज अगर हम चाहें तो सरकार उस दिशा में सोच रही है या नहीं सोच रही। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात होती है और जो कि पिछले डेढ़ दशक में जिसने सबसे ज्यादा अहम भूमिका अदा की है भारत के इंडस्ट्रियल सिनेरियो को चेंज करने में, मैं चेंज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप आंकड़े देखोगे तो भी चेंज है, सेंटिमेंट देखोगे तो भी चेंज है, अगर स्टेबिलिटी देखोगे तो भी चेंज है, और जो एक्सपेंस होता है यानी कौन कौन सी कंपनियां आपकी देश में आ रही हैं उसमें भी चेंज है। ये चेंज जो है वो बिल्कुल रिकॉर्डेड है, कोई भी उसको देख सकता है। ये तीनों जो मैंने बात बताई आपको उसके चलते ये चेंज है। पहली बात, पॉलिसीज में सर्टेनिटी आई। जो भी पॉलिसी आज से डेढ़ दशक पहले जो भारत में चल रही थी उन पॉलिसीज में कोई मेजर बदलाव नहीं किया गया जो कि निवेशक जो आते थे उनको ये लगे कि नहीं, नई सरकार आई है या सरकारें दूसरी आएंगी तो हमारी पॉलिसी, कंटिन्यूटी इन पॉलिसी रही। दूसरा, जब भी आप किसी देश में जाते हैं अगर नियम कानून को पालन करने में इतनी जहमत हो कि आपको ये लगे कि ऐसी जगह में हम निवेश करें क्यों, इस सरकार ने, आप चाहे फेमा ले लें या जो इंडस्ट्रियल एक्ट्स हैं उसको ले लें, या जो सेंट्रल लेवल में जो भी एक्ट्स जितने बने हैं कन्विक्शंस ले लीजिए, यानी छोटी छोटी चीजों के लिए जो निवेशक होता था या कंपनियां होती थी उनको कन्विक्ट कर दिया जाता था। इन सारी चीजों में जो मैंने एक दो तीन चीजें बताई कि कन्विक्शन हो या निवेश की सहूलियत हो या फिर रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना हो, चाहे वो विदेशी फंड से रिलेटेड हो या देश में पैसा लगा रहे हो उससे हो, इन सब चीजों में एक बार में नहीं, धीरे धीरे धीरे करके साल दर साल जो है वो चेंजेस हुए। अगर आप देखोगे FDI लिमिट ऑटोमेटिक अप्रूवल या 100% FDI जो है जहां जहां बचा हुआ था वहां वहां, मैं सेक्टर्स का नाम नहीं ले रहा, जहां जहां बचा हुआ था ऑलमोस्ट जितने क्रिटिकल सेक्टर्स हैं सब में वो 100% लिमिट हो गया है। एक दिन में सब कुछ बदल देना बहुत मुश्किल है, बट जो डेढ़ दशक में बदलाव हुआ है वो निवेशकों का भरोसा हो या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए एक अट्रैक्शन हो वो क्वेश्चन हो, या फिर ये सर्टेनिटी हो कि अगर हम इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी अगर लेके आ रहे हैं तो हमें इस बात की चिंता नहीं रहनी चाहिए कि हमारा ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर होगा तो हमें दिक्कत और परेशानी हो जाएगी। इन तीनों लिहाज से पिछले डेढ़ दशक के सरकार के नियमों और कार्यक्रम को आप अगर देखेंगे तो डेटा जिस तरह का इन्वेस्टमेंट हुआ है, आपने कहा कि FDI जो है हमारा बहुत बड़ा है, वो सिर्फ इंटेंट है जो आया है। जिस तरह से अभी काम चल रहा है, चाहे वो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख लीजिए आप, चाहे आप सेमीकंडक्टर देख लीजिए, चाहे आप डेटा सेंटर्स देख लीजिए, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स लग रहे हैं आज इंडिया में, चाहे आप क्वांटम कंप्यूटिंग देख लीजिए जो सबसे नया विधा है जो अभी आ रहा है, किसी भी न्यू एज टेक्नोलॉजी को आप देख लीजिए, न्यूक्लियर एनर्जी देख लीजिए आप, हर जगह एक इंडिया टेक प्लेबुक तैयार हो रहा है। और उसके जो दो बड़े पहलू हैं जो कि लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं इस इंडिया टेक प्लेबुक में, एक सर्टेनिटी ऑफ पॉलिसीज एंड टू द गवर्नमेंट इज रेडी, सरकार तैयार है, जो चीज आपको चाहिए आप मेरे से बात करिए, प्रधानमंत्री खुद बात करते हैं, बात करिए और हम ये कोशिश करेंगे जितना ज्यादा से ज्यादा आपकी सहूलियत बढ़ा सके वो हम बढ़ाएंगे। एक इकोसिस्टम और सेंटिमेंट ये दोनों तैयार हुआ है, कोशिश सिर्फ यही करनी है कि इसको कंटिन्यू किया जाए और इसको आगे इंडस्ट्री के साथ मिलकर बढ़ाए।
1: दिलीप जी, थोड़ी चर्चा गिफ्ट सिटी और IFSCA की भी कर लेते हैं। IFSCA हम अपने श्रोताओं को बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण है। इन दोनों की कोशिशों के तहत भारत को लंदन, सिंगापुर या दुबई की तर्ज पर एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनाने की कोशिश की गई है। कितने सफल हुए हैं हम और गिफ्ट सिटी के माध्यम से होने वाले बैंकिंग और फंड मैनेजमेंट के ताजा आंकड़े क्या संकेत दे रहे हैं?
0: तो अगर आप देखें तो गिफ्ट सिटी जो है वो गिफ्ट सिटी के पहले इंडिया एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब के द्वारा बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था। गिफ्ट सिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण ये ऑब्जेक्टिव था कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज पूरे विश्व को इंडिया से कैसे दे जाए। इसका दो पहलू में, एक हम इंटरनेशनल सर्विसेज इंडिया से कैसे दें और दूसरा जो है इंडिया में जो फैमिली ऑफिसेज हैं, जो दूसरे एंटिटीज हैं वो जाके विश्व में सेटअप करते हैं, उनको क्या गिफ्ट सिटी एक अल्टरनेटिव सिस्टम दे कि वो विश्व भर दूसरे जाए, सिंगापुर जैसे आपने कहा, सिंगापुर, हांगकॉन्ग, दुबई, लंदन जाए, वो गिफ्ट सिटी से कर सके। अगर आप देखें तो उनका जो ढांचा है गिफ्ट सिटी का, बैंकिंग, कैपिटल मार्केट्स का जो है, फंड मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, अगर आप देखें गोल्ड का एक खास तौर से है। सबसे बड़ी बात जो इंडिया में जो हमारे जो एयरलाइंस की एक्सपेंशन हुई थी, हम एयरक्राफ्ट लीजिंग बाहर से करते थे, वो एयरक्राफ्ट लीजिंग अभी गिफ्ट सिटी से हो सकता है। दूसरा शिपिंग, हम करीब $70 बिलियन जो हमारे डिफेंस बजट से ज्यादा है वो शिप के लीजिंग में खर्च करते हैं, तो उसको कैसे भी ऑनशोर करें और गिफ्ट सिटी में उसको पोजीशन करें, ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम वहां पे है। फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के है और ग्लोबल इनहाउस, तो ये एक एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये कैपिटल अट्रैक्ट करने का एक्सपेरिमेंट नहीं है जैसे हम पहले FDI के बात कर रहे थे। ये है इंडिया से हम फाइनेंशियल सर्विसेज कैसे एक्सपोर्ट करें और इंडिया का जो फिनटेक सेक्टर और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है वो पूरे विश्व पे कैसे छाए और अपना एक नाम करें। गिफ्ट सिटी जो है आज की डेट में ये एक नया इंटरफेस बन सकता है इंडिया के डोमेस्टिक इकोनॉमी के साथ और ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स। अभी भी अगर आप आगे जाके देखें तो इस टाइम ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में टोकनाइजेशन और रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन पे काफी चर्चा हुई थी। उसका जो पायलट हुआ था वो गिफ्ट सिटी में हुआ था और गिफ्ट सिटी एक बड़ा एक पैनामे पे एक प्रोग्राम एस्टैब्लिश कर रहा है टोकनाइजेशन। अगर आप देखें उसी वैल्यू का, रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन का, तो आगे जाकर के वो $16 ट्रिलियन का एक मार्केट बन सकता है। और अगर हम उसको एंकर करें गिफ्ट सिटी में, तो अगर आप उसका 20% या कुछ भी ले ले, फिर भी वो एक बहुत बड़ा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का एक हब हो सकता है। अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है। जो राजा रामन है उन्होंने ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में यह कहा था कि अलग अलग नए प्रोडक्ट्स

0: भी अभी आ रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं टोकनाइजेशन ऑफ बॉन्ड्स, टोकनाइजेशन ऑफ जो स्टॉक्स वगैरह, उसको हम कैसे करके एक ग्लोबल सर्विस इंडिया से दें, और या कि नहीं कि इंडियन कंपनीज जो हैं दुबई, हांगकांग, सिंगापुर या लंदन जा करके वहाँ पे अपना काम करें।
1: जी, कारोबार आसान, निवेश व्यापक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों पर आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा में आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। और हमारे स्टूडियो में दो बेहद खास अर्थशास्त्री मौजूद हैं, दिलीप चिनोय और संतोष तिवारी जी। संतोष जी, व्यापार का आधार स्तंभ हमारे सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्योग माने जाते हैं, और जब से एमएसएमई की संशोधित परिभाषा आई है, ऐसे में क्या हुआ है कि छोटे उद्योग बिना अपना प्रारूप चेंज किए हुए स्केल अप हो गए हैं। कैसे देखते हैं इस बदलाव को और विकसित भारत की दिशा में इन कोशिशों को?
2: आनंद, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और ये रेवोल्यूशन है, और ये रेवोल्यूशन ऑलरेडी इंडिया में आपको दिख रहा है। अगर आप निचले स्तर पर, गांव के स्तर से लेके आप जिला के स्तर पर जाएं या देश के कोने कोने में अगर जाएं, तो युवा जो है वो आज पहले जैसा नहीं रहा। आज उसको नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, उसको एक इंडस्ट्री चाहिए। आप कितने ही अपने फैमिली में देख लीजिए, कहीं भी जाइए, कोई भी यंग यूथ जो आ रहा है, उसको अपनी कंपनी चाहिए, उसको अपना बिजनेस चाहिए, उसका अपना आइडिया है, वो उसको एग्जीक्यूट करना चाहता है। और ये बदलाव ऐसे ही नहीं आया है, ये बदलाव इसलिए आया है कि एक समय था जब ये कहा जाता था, और आज भी दिक्कतें हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% जो है वो दिक्कत नहीं, आपको बिजनेस चलाना हो दिक्कतें हैं, लेकिन आज ये स्थिति है कि सरकार ने जिस तरह से, आपने कहा एमएसएमई के लेवल होते हैं, उसमें डेफिनेशन में चेंज किया गया, और जो करोड़ में जो पैसा है, जिस तरह से आप डिफाइन होते हैं एमएसएमई, वो बड़ा कर दिया गया, 100 करोड़ कर दिया गया। वो सिर्फ इसलिए है कि जो एमएसएमई से रिलेटेड सहूलियतें हैं वो आपको मिल जाएं, और जो भी सरकार कर सकती थी वो सरकार ने किया है, और दिशा उसमें यही है कि अगला जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, आपको वो बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं करेंगी इंडिया में। अगला जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंडिया में होने वाला है, वो स्काई रूट करेगा। जो एक छोटी सी कंपनी मानी जाती थी, वो आज स्पेस में अपने जो है प्रोडक्ट्स वो भेज रहा है। इसी तरह से आप अगर स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप में जिस जिस तरह की कंपनियां आ रही हैं, मैं बिल्कुल रूबरू हूं स्टार्टअप वर्ल्ड से, जिस तरह से आ रही हैं, वो आप देखकर हैरान रह जाओगे कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो आइडिया है और उनको बड़ा बिजनेस बनाना है। तो जिस तरह के एमएसएमई के डेफिनेशन में चेंजेस हैं, या फिर जो भी इंसेंटिव्स जो दिया जाता है, अलग अलग विभाग और अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग इंसेंटिव्स हैं जो सरकार ने लाए हैं। अगर आप स्पेस सेक्टर में आपको काम करना है, तो आज भारत में स्पेस सेक्टर में काम करने के लिए एक पूरा स्ट्रक्चर है। एक कंपनी है जो आपको सहूलियत देती है, आपको फंड तैयार करती है, फंड देती है। दूसरी है जो कि एक संस्था है जो कि आपको टेक्नोलॉजी में हेल्प कोई चाहिए वो देती है। तीसरी है जो सरकार से आप चले आइए और आप बोलिए कि देखिए हमको ग्लोबल कोई अट्रैक्शन चाहिए, ग्लोबल कोई हमें चाहिए, सीखना है, हमें बाहर जाना है और सीखना है, उसमें मदद करती है। और मैंने सिर्फ स्पेस सेक्टर को कहा, हर सेक्टर में सेमीकंडक्टर चले जाइए। और हर अगले दिन जो है सरकार सेमीकॉन 2 में कुछ नई चीजें आई हैं, जो कि सेमीकॉन 1 जो था, जिसमें इतने इन्वेस्टमेंट जो आए गुजरात में, उसके आगे की चीज है, उसमें भी फिर जो है छोटे मझोले उद्योग जो है, उन लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, वो सारी चीजें आ रही हैं, हम लिस्ट नहीं कर रहे यहां पर। लेकिन जिस तरह से भारत सरकार ने ना सिर्फ बड़ी इंडस्ट्रीज को, बल्कि लोअर लेवल पे माइक्रो, स्मॉल और स्टार्टअप्स को जिस तरह से सपोर्ट करना और हैंड होल्डिंग करना शुरू किया है, कि ज्यादा से ज्यादा इस तरह के छोटे और मझोले उद्योग जो है, आने वाले दिनों में आपको बड़े बड़े उद्योगों में हेल्प करने वाला एक इकोसिस्टम तैयार करने के लिए बिल्कुल खड़े हैं, और ये हो रहा है।
1: दिलीप जी, थोड़ी चर्चा जेम की कर लेते हैं। पहले सरकारी कॉन्ट्रैक्ट या सप्लाई केवल बड़ी कंपनियों या रसूखदार बिचौलियों तक सीमित रहते थे, लेकिन जेम ने इस बिचौलिए तंत्र को समाप्त कर लोकतांत्रिकरण किया है। और आंकड़े बताते हैं कि जेम पोर्टल की शुरुआत होने से लेकर अब तक 18.4 लाख करोड़ से अधिक का सरकारी व्यापार दर्ज हुआ है। जो जेम के आंकड़े हैं, उसमें एमएसएमई कारोबारी, महिलाओं और छोटे उद्यमियों का जो योगदान है, उसको आप कैसे देखते हैं?
0: जेम पोर्टल जो है एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है, और ये इसको हम गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस कहते हैं। तो इसमें जितने भी गवर्नमेंट जो प्रोक्योरमेंट है, और वो जैसे आपने आंकड़े बताए, गवर्नमेंट के काफी प्रोक्योरमेंट होते हैं, तो उसमें आपको डायरेक्टली उस पोर्टल पे लिस्ट करने होता है। और देश में चाहे आप स्टार्टअप हो, जैसे संतोष जी ने कहा, चाहे मध्यम उद्योग हो, चाहे लार्ज उद्योग हो, आप उस पे अगर बिड कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट ला सकते हैं। इसका एक काफी अच्छा फायदा है, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एक तरह से ट्रांसपेरेंसी हो जाता है। दूसरा, अगर आप देखें तो इसमें जो छोटे और स्मॉल इंडस्ट्री है, उनकी एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो पेमेंट की प्रॉब्लम है। अब जेम पोर्टल को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म से लिंक करके उसमें बिल डिस्काउंटिंग का एक जो

0: प्रावधान है वो मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज और छोटे जो स्टार्टअप्स है, और स्टार्टअप्स को एग्जेम्प्ट किया गया है क्वालिफिकेशन के फ्रेमवर्क में, तो उसमें ये एक नेशनल काइंड ऑफ मार्केट प्लेस किया गया है और ये बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। और अभी उन्होंने सारे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनको भी बोला है कि आप इसी से आगे जाकर के करिएगा। एक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट प्लेस भी क्रिएट किया गया है ईनैम, उसमें जो है आप कहीं पे भी एक कृषि उत्पादक हो आप अपना प्राइस डिस्कवरी कर सकते हैं, बेच सकते हैं। और अगर आप देखें तो टोकनाइजेशन में भी अभी जो कर रहे हैं वेयर हाउस रिसीट टोकनाइजेशन का एक काफी सिलसिला चल रहा है। तो अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में जो पहले हम DGSND उसको कहा करते थे वो एक फिजिकल सिस्टम था, अब वो एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया है। दिल्ली में अगर आप देखें तो छोटे छोटे कॉलेजेस भी उससे प्रोक्योर करते हैं, बड़े डिपार्टमेंट्स भी प्रोक्योर करते हैं। और ये जो ग्रोथ हुआ है इसके पिछले कई साल पे, और उन्होंने इसको प्राइवेट सेक्टर के लिए एक और एक्सपेरिमेंट शुरू किया था, उसको हम ONDC कहते हैं
1: जी।
0: वो जैसे वो भी इनिशियल स्टेजेस में है, अगर वो बढ़ेगा तो वो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन सकता है, ओपन सोर्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जिसमें बहुत सुविधा होगी मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज को जो प्राइवेट सेक्टर में है और प्राइवेट सेक्टर को बेच रहे हैं। अगर वो ट्रेड से उसको भी जोड़ देते हैं तो ये जेम पोर्टल लेकर के और ONDC पोर्टल लेकर के एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस बन सकता है।
1: जी हाँ, चर्चा को थोड़ी आगे बढ़ाते हैं। और संतोष जी, व्यापार को सुगम बनाने के लिए सिर्फ नियमों को ही आसान बनाना काफी नहीं होता है, जो पुराने बेकार नियम हैं उनको भी खत्म करना बहुत जरूरी होता है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात से लेकर अपने अब तक के सफर में इस पर भी बहुत ज्यादा काम किया है। जन विश्वास अधिनियम ने लगभग 40,000 से अधिक शिकायतों को खत्म किया, कई मामूली उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया। सवाल यह है कि इसका भारतीय उद्योगपतियों के मनोविज्ञान और आर्थिक कार्य प्रणाली पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है।
2: मैं इसको एक सूत्र में पिरोने की कोशिश करता हूं आनंद जी, क्योंकि कहीं ना कहीं अलग अलग जो स्टेप्स हैं उनको लेकर ये सूत्र जो है ना वो रिफ्लेक्ट करना भी जरूरी है। क्योंकि ये सारी चीजें, जैसा आपने कहा कि जब नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे गुजरात में, तो उन्होंने इन सब चीजों को ग्राउंड लेवल पर ठीक किया था
1: जी।
2: उसमें से भी ये जो डिक्रिमिनलाइजेशन उसको बोलते हैं, बहुत सरल भाषा में आपको मैं बताऊंगा, इसका मतलब यह है कि छोटी छोटी चीजों के लिए, मैंने पहले उल्लेख किया था इस बात का, छोटे छोटे नियमों के उल्लंघन के लिए आपको इम्प्रिजनमेंट हो जाता था, जेल में डाल दिया जाता था। आप व्यवसायी हो, जाहिर तौर पर तरह तरह की दिक्कतें हैं, नियमों का उल्लंघन अगर हुआ और आपको जेल में डाल दिया जाए कोई छोटे से उल्लंघन के लिए, बड़ी बात थी और वो एक सिग्नल गलत देता था। तो जो जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट 2023 का जो आया था, उसमें 183 ऐसे माइनर ऑफेंसेज को, करीब 42 सेंट्रल लॉज में, जहां पर कि इन सब के चलते आपको इम्प्रिजनमेंट या जेल में डाल दिया जाता था फॉर टेक्निकल और माइनर लैप्सेस, उनको मॉनेटरी जो है वो पेमेंट करके आपको छूट जाएंगे आप। बहुत बड़ी सहूलियत है ये। 2025-26 के बजट में जो जनविश्वास 2 बिल आया, उसमें ऐसे 355 प्रावधान जो है अक्रॉस 16 मोर सेंट्रल एक्ट जो है उनको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया। देखने में बहुत आसान सी चीज लगती है, लेकिन आप सोच के देखिए उस व्यवसाय के लिए या किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कि किसी एक छोटे नियम के उल्लंघन के लिए आपको जेल में डाल दिया जाए, तो भारत जैसे देश में तो आपके लिए बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताऊंगा। आर्थिक जगत में फिक्की जो है वो एक बहुत बड़ी संस्था है भारत के, वहां पर एक बार हम ये चर्चा कर रहे थे कि भाई कौन सी ऐसी चीज है जो कि सबसे ज्यादा तकलीफ बड़े बिजनेसेस को, छोटे बिजनेसेस को और सबको देती है। तो निकल कर ये आया कि ये जो लॉज हैं जो रिडंडेंट हैं, यानी वैसे लॉज रूल्स रेगुलेशंस स्टेट और सेंट्रल लेवल पे जिनकी कोई जरूरत नहीं है और उनको पालन करने के लिए उसमें सबसे ज्यादा कंपनियों का समय जाता है। ये बात यहां लिखा हम नहीं चर्चा कर रहे, पर मैं आपको परिप्रेक्ष्य के लिए बता रहा हूं। तो हमने जाकर केंद्र सरकार में, जहां बताना चाहिए वहां पर ये बताया। पहली दफा फिक्की ने जो रिप्रेजेंटेशन दिया वो इकोनॉमिक सर्वे में आया कि ये रूल्स रेगुलेशंस हैं जिनको बेकार में जो पड़े हुए हैं इतने सारे और हजारों की संख्या में, जिनकी जरूरत कोई नहीं है। अगले साल के बजट में इन रूल रेगुलेशंस को सरकार ने हटा दिया। ऐसी चीजें भी हुई हैं। डिक्रिमिनलाइजेशन जो है, जो जनविश्वास बिल है, वो तो है बहुत बड़ी बात, लेकिन सहूलियत बढ़ाने के लिए भी जो रिडंडेंट लॉज थे उनको भी हटा दिया गया। तो चेंज करने के लिए आप ब्यूरोक्रेसी में मत जाओ कि एक सरकार, एक डिपार्टमेंट, एक मंत्रालय, उससे घूमते घूमते 15 साल लग गए और ये चेंज हुआ। नहीं, आप आइए लाइन मिनिस्ट्री को बताइए, यानी जिस मिनिस्ट्री के अंडर में आप हैंडल होते हैं, ऊपर के तौर पर सबसे टॉप में प्राइम मिनिस्टर्स के लेवल पर, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के लेवल पर उसको समझा जाएगा और अगर जायज है उसको ठीक कर दिया जाता है।
1: दिलीप जी आपसे एक और चीज समझना चाहेंगे कि जब भी हम व्यापार को बेहतर बनाने की बात

0: करते हैं तो एक चीज जो परेशान करती है वो है लॉजिस्टिक कॉस्ट, यानी माल ढुलाई की लागत। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना मास्टर प्लान और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी ने देश में लॉजिस्टिक्स लागत को जीडीपी के 13-14% से घटाकर सिंगल डिजिट की ओर लाने में जो भूमिका निभाई है, इसका असर आप कैसे देखते हैं?
1: ये भी एक तरीके से गुजरात से ही शुरू हुआ था, क्योंकि गुजरात में भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर का स्कीम था, ठीक है, क्योंकि पहला जो गति शक्ति का जो पहला था वो एक प्रगति नाम का एक सिस्टम था, और वो जो पीएम गति शक्ति बना है जो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी में बना है। प्रगति में क्या होता था कि ये प्राइम मिनिस्टर खुद रिव्यू ले करते थे, जिसमें जो प्रोजेक्ट स्टॉल्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तो कहीं नहीं जा रहे, उनका क्या कारण है, और उसमें काफी अकाउंटेबिलिटी होता था, क्योंकि जिसके पास वो एक तरीके से एक्शन पेंडिंग था उसका डॉक्यूमेंटेशन होता था, उसको क्लियर करना पड़ता था। फिर प्रगति में क्या हुआ कि एक बहुत अच्छी चीजें हुए, एक तो डिजिटल डेटा आ गया हर प्रोजेक्ट के बारे में, दूसरा फिजिकल मीटिंग्स नहीं होते थे, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसेस होते थे, तीसरा ये जीआईएस और जियो स्पेशल इन्फॉर्मेशन आ गया, चौथा सारे सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, स्टेट मिनिस्ट्रीज और जो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग अथॉरिटीज वो इकट्ठा आ गया, और पांचवी जो किसी का अगर ग्रीवियंस होता था वो रिजोल्व हो जाता था। अगर आप देखें 2026 का जो डेटा है तो 382 प्रोजेक्ट्स प्रगति में रिव्यू हुए थे, करीब 85 लाख करोड़ के भी थे, और करीब 3000 इश्यूज एक से रिजोल्व हो गए। इसको एक नई सोच आई, ये प्रोजेक्ट्स को एक तरह से सैंक्शन नहीं करना चाहिए, इसको कंटिन्यूस मॉनिटर करना चाहिए था। फिर 13 अक्टूबर 2021 में ये पीएम गति शक्ति, उन्होंने एक लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट खड़ा किया और एक सेक्रेटरी था लॉजिस्टिक्स के लिए। तो उसमें क्या किया था कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स में देखें, तो अगर आपके पास एक किसी इंडस्ट्रियल इस्टेट में शहर में आपका एक फैक्ट्री है, तो आपको लोकल इंडस्ट्रियल इस्टेट से हाईवे तक ले जाना या एयरपोर्ट तक ले जाना या पोर्ट तक ले जाना, वो एक जुरिस्डिक्शन आता है, पोर्ट में दूसरा जुरिस्डिक्शन आता है, अगर आप हाईवे में ले गए तो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी आ जाती है, फिर पोर्ट आ जाता है, फिर एयरपोर्ट आ जाता है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये सारे जो बॉडीज है इसमें इंटीग्रेट करते हैं, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में सीमलेस कनेक्टिविटी, और उसको कैसे करें, और हम उसको इतना ध्यान नहीं देते कि नहीं, जो फास्ट टैग सिस्टम भी आया है टोल हाईवेज में, वो भी इसी का, क्योंकि टोल में वेटिंग होता था और टाइम करता था। एक कोई नया मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, जैसे संतोष जी ने पहले धोलेरा का सेमीकंडक्टर्स का बोला था, अब सेमीकंडक्टर्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट और पोर्ट कनेक्टिविटी चाहिए, क्योंकि वो क्विक टर्न अराउंड है। तो एक तो आपने कॉस्ट की बात की थी, कॉस्ट तो एक चीज है जो हम 16-17% से हम उसको एक सिंगल डिजिट 8-9% में ले आए हैं। दूसरा जो पोर्ट में टर्न अराउंड टाइम है, एयरपोर्ट में टर्न अराउंड टाइम है, अगर आप देखें तो आज आप दिल्ली से मुंबई 17-18 घंटे में कर सकते थे, जैसे आपको 3 दिन या 4 दिन लगते थे। और ये जो फैक्ट्री से, रोड से, रेलवे से, लॉजिस्टिक पार्क से, पोर्ट और शिपिंग और एयरपोर्ट, ये पूरा जो चेन पीएम गति शक्ति में आ गया है, अब आप उसको बॉटलनेक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, जो सेक्टर एसोसिएशन हैं, उनसे फीडबैक लिया जाता है भी कहाँ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। गति शक्ति जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक बिल्डिंग कनेक्टिविटी एज ए नेटवर्क का एक तरीका है। और सारा स्कीम आप देखें तो इसमें पीएम गति शक्ति के द्वारा उन्होंने एक नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी भी अनाउंस किया था, और ये पूरा इंडिया एक मॉडल हो सकता है।
0: विषय बहुत व्यापक है, समय बहुत कम है संतोष जी, हम कार्यक्रम के अपने समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। 25 वर्षों का सफर हमने बहुत छोटे छोटे तरीकों से चर्चा करने की कोशिश की, इस सफर का जो लक्ष्य है वो है 2047 का विकसित भारत। कैसे देखते हैं आने वाले समय में इस आधार पर किस तरह की इमारतें बनते हुए, संक्षेप में?
2: जिस समय में मुख्यमंत्री थे गुजरात के नरेंद्र मोदी जी, और उस समय चुनाव का वक्त था, तो मैंने एक बहुत ही सीनियर ऑफिशियल फाइनेंस मिनिस्ट्री में थे जो मेरे दोस्त थे, और उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, चल रही थी, मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे देखते हैं, क्योंकि उनको गुजरात का एक्सपीरियंस था। तो मैंने पूछा कि एक विजनरी या इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर है, वो पूरे देश को विजन के तौर पर देखता है, दूसरी तरफ एक चीफ मिनिस्टर है जो कि यहाँ आएंगे वो जीत जाएंगे तो आएंगे, तो आपको क्या लगता है? उन्होंने बड़ा ही इंटरेस्टिंग जवाब दिया था, और वो इस पूरे 25 साल के सफर को समअप करता है, और आगे की बात जो आपने 2047 की उसको भी इंगित करता है। उन्होंने ये कहा, संतोष देखिए, पॉलिसी बनाना ये भी जरूरी है, लेकिन पॉलिसी को ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करना ये आज देश की जरूरत है। नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लाया है। भारत को आज बड़े प्रोजेक्ट्स की जरूरत है, इसलिए इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो देश की तरक्की जो है

0: 2047 में हम सिर्फ विकसित भारत नहीं होंगे, हम एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब होंगे जो बनाता भी है, टेक्नोलॉजी इनोवेट भी करता है और विश्व में सप्लाई भी करता है।
1: दिलीप जी, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स।
2: देखिए, अगर आप प्रधानमंत्री का एक जर्नी देखें तो गुजरात से भारत तक जो ये एक यात्रा सिर्फ योजनाओं की नहीं है, ये एक बहुत बड़ी परिवर्तन की एक कहानी है। यह सरकार की ये बदलती भूमिका है, तो जहाँ पे पहले वो एक गेटकीपर थी, आके आपको सबके चीज के लिए एक परमिशन चाहिए होता था, अब सरकार की अनुमति चाहिए थी, फिर सुविधाएं देने के लिए और सब चीज़ें प्राप्त करने के लिए मल्टीपल विंडोज हुआ करते थे, आपको कहीं कहीं जाने से। अगर अब जो सरकार देखे, अब कोशिश है कि ये सरकार कारोबार, निवेश और रोजगार के नए अवसर बनाने की काम कर रही है। और जैसे जो आज की इकोनॉमी है वो 2047 में इकोनॉमी में काफ़ी अंतर होगा, और इस सरकार का ये प्रयास है कि सबको साथ लेके, सबका विकास लेकर के आगे करके एक विकसित भारत बनाए।
1: यदि हम देखें तो पिछले 25 वर्षों में सुशासन से समृद्धि की यात्रा केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि ये करोड़ों युवाओं के सपने को आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से जोड़ने की कहानी है। गुजरात की सिंगल विंडो से शुरू हुआ ये सफर आज डिजिटल इंडिया और विश्व स्तरीय वित्तीय केंद्रों तक पहुंच गया है। दिलीप जी आपका और संतोष जी आपका आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद आनंद जी।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 18वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, व्यापक निवेश और सुलभ कारोबार। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय और संतोष तिवारी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnhdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा। आज का विषय था व्यापक निवेश और सुलभ कारोबार। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।

मीडियम वेव डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा हैं। नई दिल्ली में म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में डॉ. जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य भी बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
1: There are countries who are emerging.
2: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों से संचालित बदलता परिदृश्य, अमेरिका की बदलती स्थिति, चीन के उभार और परस्पर बढ़ती अत्यधिक निर्भरता की बहस को जन्म दे रहा है। उन्होंने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों का दृष्टिकोण जोखिम कम करना और विविधता लाना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और रूस के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से बहुत अच्छे रहे हैं। उन्होंने बताया कि सोवियत संघ कई मौकों पर भारत के साथ खड़ा रहा, खासकर तब जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। नई दिल्ली में आयोजित 62वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया के अधिकांश देश पड़ोसी देश की सैन्य तानाशाही के समर्थन में थे, तब रूस एक ऐसा देश था जिसके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंध कई मायनों में इसी विरासत से प्रभावित हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आज दोनों देशों के रिश्ते पहले से ज्यादा व्यापक हो गए हैं। इसमें सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष से जुड़े पहलुओं के साथ साथ व्यापार और निवेश भी शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने रूस यूक्रेन संघर्ष को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि भारत का रुख स्पष्ट है कि वह इस संघर्ष का अंत देखना चाहता है। श्री जयशंकर ने कहा कि भारत ने काला सागर में जहाजों और वाणिज्यिक जहाजरानी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मुद्दे से इस मदद की शुरुआत की है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत के 3,00,000 घरों के लिए पहले

0: पहली किस्त जारी की। ये कार्यक्रम गुंटूर जिले में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में आयोजित किया गया। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। संयुक्त अरब अमीरात यूएई में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल ने कहा है कि पायलट स्मित मछार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थनाएं जारी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राजदूत मित्तल ने बताया कि स्मित तेजी से ठीक हो रहे हैं और उनका मनोबल काफी ऊंचा है। उन्होंने कहा कि दूतावास स्थानीय अधिकारियों और परिवार के साथ संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ जून के अंतरिम समझौते में निर्धारित 7 शर्तें पूरी होने तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोला जाएगा। दोनों देश संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों पर अड़ियल रवैया अपना रहे हैं। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमेरिका के साथ हाल के युद्ध के बाद वह अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ाएगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के आइची नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों के समापन के अवसर पर भारतीय दल के प्रत्येक सदस्य को देश का दृढ़ संकल्प, जुनून और शानदार खेल भावना के साथ प्रतिनिधित्व करने के लिए बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said international peace and security, supply chain resilience and connectivity are among the key areas where emerging and middle powers can play an important role. Dr. Jaishankar was speaking at the 62nd Munich Security Conference in New Delhi today. He said the world, its agenda and its geopolitical landscape are all undergoing significant changes, creating substantial scope for cooperation among emerging and middle powers. He said it is marked by the repositioning of the United States, the rise of China and growing global interdependence.
2: There is today a substantial agenda for emerging and middle powers to cooperate. The world is changing, its agenda is changing, the landscape is changing, the architecture is changing. And I'm very glad today that we have this issue as a starting point before us, because I hope that it would give our gathering a stronger purpose and a clearer direction.
1: The minister also emphasized that Russia is a country that stood by India in many ways when India's security and territorial integrity was under threat. He stressed that at a time when much of the world preferred backing a military regime next to India, Russia was a country with which India's relations were very good. Union Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan today handed over the first installment of 3 lakh houses worth 3,600 crore rupees to Andhra Pradesh under the Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen 2.0 at an event in Guntur district. Mr. Chauhan also laid the foundation stone for the country's first pilot housing project using 3D concrete printing technology, comprising 177 houses at a cost of 14 crore rupees. Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu was present on the occasion. Campaigning ended today for by-elections to 5 assembly constituencies across Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and 1 Lok Sabha constituency in Assam. Polling for the 6 seats will be held on Tuesday, while counting of votes will take place on Friday. The assembly constituencies going to polls are Madurandagam and Tharapuram in Tamil Nadu, Tattanchavadi in Puducherry and Rijinagar and Nandigram in West Bengal. In Assam, voting will be held for the Nagaon Lok Sabha constituency. The assembly seats fell vacant following the resignation of the sitting legislators, while the Nagaon Lok Sabha seat became vacant after the resignation of Congress leader Pradyut Bordoloi. Indian Ambassador to UAE Deepak Mittal has said prayers continue to flow in for good health of Captain Smit Mashar in a social media post.